मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूं आपके साथ मंजू। वक्त हुआ है 5:39, भोर सुहानी का सफ़र आप तय कर रहे हैं मेरे यानी मंजू के साथ। ये वो समय है जब हमारा मन सबसे ज़्यादा शांत होता है और जब हमारा मन शांत होता है तो हम खुद के बहुत नज़दीक होते हैं और जब हम खुद के नज़दीक होते हैं तो ईश्वर तक पहुँचना आसान हो जाता है। अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में।

सुख के सब साथी दुख में ना कोई, कितना बड़ा और कड़वा सच पिरोया है इस भजन में। ये संसार भी कितना विचित्र है, है ना। जब हमारे जीवन में सुख की धूप खिलती है, जब सफलता हमारे कदम चूमती है, तो अपनों का चाहने वालों का मेला लग जाता है हमारी ज़िंदगी में। लेकिन जैसे ही दुखों का साया मंडराता है, जैसे ही कठिन परीक्षा की घड़ी आती है, तो एक एक करके सब साथ हमारा छोड़ जाते हैं। लेकिन एक ऐसा सहारा भी है जो कभी नहीं छूटता। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी उस ईश्वर का द्वार हमेशा हमारे लिए खुला रहता है।

क्या अद्भुत और निष्पाप भाव है इस प्रार्थना के। जब भी ये पावन स्वर गूंजते हैं, मन की सारी कलुषता, सारा अहंकार अपने आप बह जाता है। हम ईश्वर से जीवन में कितनी सारी चीज़ें मांगते हैं, सुख, संपत्ति, मान सम्मान, लेकिन इस प्रार्थना में जो मांगा गया है वही जीवन का असली सार है। केवल इतना सा वरदान कि चाहे राह में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमारा कदम कभी सत्य और नेकी के रास्ते से ना भटके। जब मन में सच्चाई होती है तो ईश्वर खुद ब खुद हमारा हाथ थाम लेता है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 अगस्त 2026 सुबह के 5:53 और 37 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूचना देते हैं। 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण, 6:44 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड भाग 30, 7:10 पर आप सुनेंगे गोल्ड सुप्रभात,

9:10 पर आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल लगी। दस बजकर तीस मिनट पर आप सुनेंगे दिल का मेल बॉक्स। 11:10 पर आप सुनेंगे तस्वीर, जिसमें बात होगी टिक्कर ताल हरियाणा के बारे में। और 12:10 पर आप सुनेंगे घर आंगन। 1:10 पर आप सुनेंगे कलाकार बेमिसाल, जिसमें आज बात होगी अभिनेत्री सायरा बानो के बारे में। 2:30 पर आप सुनेंगे संगीत.com। 3:25 पर मनभावन लेकर आपके साथ रहेंगी सीमा वर्मा। 5:10 पर आप सुनेंगे गाते गुनगुनाते।

7:25 पर शाम 7:25 पर आप सुनेंगे सांझ ढले, 8:10 पर आप सुनेंगे मधुरिमा नुपुर गुप्ता के साथ,

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 6 बजने वाले हैं और अब आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की और कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक कल जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी देने के साथ संपन्न हुई। जयपुर घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट के मल्हार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेन जी से धैर्य और जिम्मेदारी के साथ अर्थव्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं को भारत की अलग अलग सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने वाले कार्यक्रम जरूरी हैं, इससे उनमें देश के प्रति जुड़ाव की भावना मजबूत होती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू चेंग शू और टैन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया ई फैन और झांग शू शियान को हरा दिया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। इस बीच पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से सिर्फ 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has said that reforms are not a compulsion but a commitment and conviction for his government and that its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi last evening, Mr. Modi said his government has created a clear roadmap for reforms, with the primary focus being on reforms at the governance level. He said India is undertaking next-generation reforms at the policy level to secure the country's future.
1: हमने reforms को लेकर एक clear roadmap बनाया. इस roadmap की प्रमुख दिशा रही है governance level के reforms हो. इसके लिए आज 21वीं सदी के भारत में हम सिर्फ regulation नहीं बदल रहे, हम regulation की पूरी philosophy बदल रहे हैं.
2: The Prime Minister also spoke about the global economic environment, saying that the weaponization of resources and growing mistrust were creating new challenges. He said that even in such circumstances, the world continues to see India as a bright spot of hope and growth. Union Home Minister Amit Shah has lauded West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari for handing over 1,129 acres of land to the Border Security Force BSF and Sashastra Seema Bal SSB for fencing along the India-Bangladesh border in the state within 45 days of the new government coming to power. He said the request for the land required for the border fence had been pending since 2014. Mr. Shah was speaking while attending a program at the Sashastra Seema Bal SSB Frontier Headquarters in the Rani Danga area at Siliguri in West Bengal yesterday. The Home Minister said completing border fencing is crucial to stopping infiltration and protecting national security. He said the government will continue its zero tolerance policy towards illegal immigration. India will host the BRICS Youth Ministers Meeting and the BRICS Sports Minister Meeting at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh. The BRICS Youth Ministers Meeting will be held tomorrow, while the BRICS Sports Ministers Meeting will take place tomorrow. The meetings will be chaired by Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandaviya with the Minister of State for Youth Affairs and Sports Raksha Khatse also participating. According to the Ministry of Youth Affairs and Sports, the Youth Ministers meeting will focus on strengthening cooperation in youth development and empowerment with discussions on education, skill development, entrepreneurship, well-being and sustainable development. India and

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड। सुबह के 6:12:03 ये समय है भक्ति रस में डूब जाने का कार्यक्रम अर्पण के माध्यम से। आज मैं हूं आपके साथ सुनीता। नमस्कार, सुप्रभात।

श्रीमद् भगवद् गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझे जिस भाव से पुकारते हैं मैं उन्हें उसी भाव से प्राप्त होता हूँ। हे अर्जुन, सभी मार्ग अंततः मुझ तक ही पहुँचते हैं।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 6:31 हो चले हैं। सुनीता के साथ आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण।

जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। कबीरदास जी कहते हैं कि जहां दया है वहीं धर्म है, और जहां लालच है वहां पाप है, जहां क्रोध है वहीं मृत्यु है, और जहां क्षमा है वहां प्रभु स्वयं विराजमान है।

वन गमन के समय श्री राम के शोक में व्याकुल अयोध्या के नरनारी किसी प्रकार भी उनका साथ छोड़ने को राजी नहीं हुए। वे रथ के पीछे खींचे से चल दिए। प्रेम युक्त वचनों द्वारा उन्होंने लोगों को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु स्नेह डोर में बंधे लोग किसी भांति लौटने को तैयार नहीं होते। शोक और परिश्रम से थके लोग जब रात्रि में सो गए तो उन्हें देवताओं की माया से गाढ़ी नींद आ गई। दोपहर रात गए श्री राम ने सुमंत्र को रथ कुछ इस प्रकार हांक ले चलने को कहा कि पृथ्वी पर उसके पहियों के निशान ना दिखें। इस प्रकार शिव के चरणों में सिर नवाकर सीता और लक्ष्मण सहित राम अयोध्या के नर नारियों को सोता छोड़कर चल दिए। सवेरा होने पर जब लोग जागे तो श्री राम को ना पाकर हाहाकार मच गया। कहीं रथ के पहियों के निशान तक नहीं मिले। संताप से भरे लोग प्रलाप करते अयोध्या लौट चले। उधर सीता तथा मंत्री समेत दोनों भाई गंगा तट पर बसे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। रथ से उतरकर उन्होंने पतित पावनी गंगा को हर्षित होकर प्रणाम निवेदित किया।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान और अब आकाशवाणी एफएम गोल पर समय हो चला है समाचार का। अब आप सुनेंगे संस्कृत हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और उसके बाद ठीक 7:10 पर एक बार फिर मैं सुनीता रहूंगी आपके साथ। प्रोग्राम गोल सुप्रभात होगा। तो फिलहाल समय है समाचार का।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् परिष्काराः तस्य प्रशासनस्य कृते बाध्यता न अपितु प्रतिबद्धता दृढ विश्वासश्च। तेनोक्तं यत् प्रशासनस्य नीतयः जनकल्याणपराः विकासोन्मुखाः प्रगतिवर्धकाश्च सन्ति। ह्यः सायंकाले नवदिल्ल्याम् इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम इत्येतत् मञ्चं सम्बोधयन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् तस्य प्रशासनेन परिष्कारेभ्यः स्पष्टा योजना निर्मिता अस्ति, यस्यां प्राथमिकता शासनस्तरीय परिष्कारेभ्यः प्रदत्ता अस्ति। सः उक्तवान् यत् देशस्य भविष्यं सुरक्षितं कर्तुं भारतं नीति निर्माण स्तरे नव परिष्कारान् करोति।
1: 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्त धारा की, सप्त शक्तियों की बात की है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् तस्य प्रशासनं केवलं नियमेषु परिवर्तनं न करोति अपितु तेषां नियमानां पृष्ठे विद्यमानायाः सम्पूर्ण दृष्टेः परिवर्तनमपि करोति। सः उक्तवान् यत् पूर्वं नियमसम्बद्ध दृष्टिः अनुमति पर्यन्तं निषिद्धम् इति आसीत्, अधुना च प्रशासनं ताम दृष्टिं परिवर्त्य निषेध पर्यन्तम् अनुमतम् इति दिशि अग्रेसरति। भारतस्य अध्यक्षतायाम् आयोजितं ब्रिक्स पर्यटन मन्त्रिणाम् उपवेशनं ह्यः जयपुर घोषणापत्रं सर्वसम्मत्या स्वीकरणेन सम्पन्नम्। एतत् घोषणापत्रं ब्रिक्स सदस्य देशानां मध्ये पर्यटन क्षेत्रे सहयोगं सुदृढीकर्तुं कार्ययोजना प्रददाति। घोषणापत्रे सहयोगस्य प्रमुख क्षेत्राणि निर्दिष्टानि सन्ति। एतेषु पर्यटन क्षेत्रे कृत्रिम बुद्धेः उपयोगः, स्थायी पर्यटन पद्धतयः, कौशल विकासः, अबाधित यात्रायाः सौविध्यानि च सम्मिलितानि सन्ति। उपवेशनस्य अध्यक्षतां केन्द्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः राजस्थानस्य जयपुरे अकरोत्। अनेन सहैव अस्मिन् वर्षे भारतस्य अध्यक्षतायाम् आयोजितस्य ब्रिक्स पर्यटन कार्यसमूहस्य अपि समापनम् अभवत्। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः पुनरुक्तवान् यत् अवैध प्रवासिनां विरुद्धं शून्य सहिष्णुता नीतिः निरन्तरं प्रवर्तिष्यते तथा अवैध प्रवासिनां परिचय निष्कासन निर्वासन सम्बद्धा प्रक्रिया कठोरतया क्रियान्विता भविष्यति। असौ उक्तवान् यत् देशात् प्रत्येकस्य अवैध प्रवासिनः निर्वासनं प्रति प्रशासनस्य प्रतिबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता अस्ति। असौ एतदपि उक्तवान् यत् जन सांख्यिकीय परिवर्तनं पूर्णतया निरोद्धुं प्रयत्नः करिष्यते। गृहमन्त्री ह्यः पश्चिम बंगालस्य सिलीगुड़ी नगरे कावाखाली प्रांगणे भारतीय न्याय संहितायाः विषये षड् दिवसीय अवबोधन प्रदर्शनीम् उद्घाट्य एकां सभां सम्बोधयन् एतत् उक्तवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः आगामी मासस्य पञ्चमदिनांके नवदिल्ल्यां स्थिते विज्ञान भवने अष्टचत्वारिंशत् विद्यालयीय शिक्षकेभ्यः राष्ट्रिय शिक्षक पुरस्कारान् प्रदास्यति। शिक्षा मन्त्रालयेन संसूचितं यत् विद्यालयीय शिक्षकाणां चयनं जनपदस्तरे, राज्यस्तरे तथा राष्ट्रियस्तरे विद्यालय शिक्षा साक्षरता विभागेन त्रिचरणात्मक चयन प्रक्रियया कृतम्। चयनिताः अष्टचत्वारिंशत् शिक्षकाः सप्तविंशति राज्येभ्यः, सप्त केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः अथ केन्द्रप्रशासनस्य षड् संस्थाभ्यः च सन्ति। चयनितेषु अष्टचत्वारिंशत् शिक्षकेषु षड्विंशतिः पुरुषाः, द्वाविंशति च महिलाः सन्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य पूर्व मध्य प्रदेशे प्रचण्डात् अति प्रचण्ड वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा राज्येषु सोमवासर पर्यन्तं प्रचण्ड वृष्टेः सम्भावना वर्तते। अद्य दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखण्ड, हिमालयीय प्रदेशानां केषुचित् भागेषु अपि समान स्थितेः सम्भावना वर्तते इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की भी सोच बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि नई सरकार बनने के 45 दिन के भीतर ये जमीन दी गई, जबकि सीमा बाड़ के लिए जमीन की मांग 2014 से लंबित थी। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई जारी रहेगी। भारत की अध्यक्षता में जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ कल संपन्न हो गई। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूलन, पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों और कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपये से बढ़कर करीब 55 रुपये प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवम्बर तक लागू है। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल

आज संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। दो दिन की इस बैठक में सीमा पार अपराध रोकने, बुनियादी ढांचे, सड़क और रेल संपर्क मजबूत करने तथा अतिक्रमण हटाने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी तालमेल और क्षमता बढ़ाने पर भी विचार साझा किए और इन मुद्दों पर आगे भी बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। FIH पुरुष हॉकी विश्वकप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडेम में भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह है आपका अपना आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड। 7:10 शुरुआत कैफ भोपाली साहब के शेर के साथ की, इधर आ रकीब मेरे मैं तुझे गले लगा लूं, इधर आ रकीब मेरे मैं तुझे गले लगा लूं, मेरे इश्क बेमजा था तेरी दुश्मनी से पहले। यह गोल्ड सुप्रभात, मैं हूँ सुनीता।

साहिर का म्यूजिक, रवि के बोल, महेंद्र कपूर जी की आवाज में ये सॉन्ग फिल्म हमराज से था। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो क्या आपको याद है कि सुनील दत्त साहब के साथ हीरोइन कौन थी जिसके लिए वो ये गाना गा रहे थे? उनका रियल नेम विमलेश कौर वधावन और रियल नेम विम्मी है। हमराज उनकी डेब्यू फिल्म थी और 1977 में 22 अगस्त को मात्र 34 साल की उम्र में विम्मी जी का निधन हो गया था। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं और उन्हीं पर फिल्माया गया एक और सॉन्ग अब मैं प्ले कर रही हूँ। ये फिल्म थी आबरू।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम और 25 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रहेगा आज तापमान मौसम विभाग के अनुसार। और जब मैं सुबह स्टूडियो आ रही थी तो झमाझम बारिश थी, अभी भी दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में बारिश हो रही है। तो इस मौसम के साथ रेट्रो मेलोडीज एंजॉय करते रहें FM गोल्ड पर। मैं हूं सुनीता, ये है गोल्ड। सुप्रभात।

सावन को आने दो, ये फिल्म थी 1979 में रिलीज हुई थी और इसका टाइटल ट्रैक अभी आपने सुना जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा की आवाज में। प्रोग्राम्स की बात करें आज के तो 10:30 सुबह आज आप दिल का मेल बॉक्स सुन पाएंगे। 11:10 तस्वीर प्रोग्राम होगा जिसमें आज टिक्कर ताल हरियाणा की जानकारी दी जाएगी और दोपहर 1:10 पर कलाकार बेमिसाल प्रोग्राम में आज सायरा बानो जी की बातें होंगी। तो फिलहाल एक और गाना, बहुत ही प्यारा सा, फिल्म चिराग से है ये लता जी की आवाज में।

0: अनप्रिडिक्टेबल से मौसम है इस वक्त दिल्ली का, और अगर आप इस मौसम को एंजॉय करना चाहते हैं तो जो जैसा है ना, बस जस्ट वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, फ्लो विद द फ्लो, एंजॉय करते रहें। और देखिए, अब यहाँ आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर समाचार सेवा प्रभाग के प्रोग्राम आज सवेरे का वक्त हो चला है। मैं फिर मिलती हूँ म्यूजिकल दिल्ली में 8:45 पर।
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं न्यूज मैगजीन आज सवेरे। आज के इस अंक के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और साथ हैं तन्वी। गुड मॉर्निंग तन्वी।
1: गुड मॉर्निंग देवेंद्र, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। यस, दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे एंड वी हैव अ लॉट इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ यू टिल 8 AM। सो डू लिसन टू अस। टुडे इज 22nd of August 2026। कैन यू बिलीव दैट ऑगस्ट इज अबाउट टू एंड देवेंद्र?
0: बिल्कुल, इतनी जल्दी से अगस्त अपने समापन की ओर पहुंच चुका है। अभी हाल ही में हमने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया और एक सप्ताह और बाकी रह गए हैं एक तरह से देखा जाए तो।
1: एब्सोल्युटली, सो वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द 9th मंथ ऑफ 2026 इन जस्ट अ वीक। सो डोंट थिंक अबाउट टाइम, जस्ट लिव विद इट एंड एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट। टुडे इज सैटरडे, सो अ वेरी हैप्पी सैटरडे एंड हैप्पी वीकेंड एज वेल। लेट्स बिगिन आवर प्रोग्राम विद द न्यूज़ हेडलाइंस।
0: जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल नियम नहीं बदल रही बल्कि नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और देशों के बीच अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इसके बावजूद भारत को दुनिया में विकास और उम्मीद की एक बड़ी किरण के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल हैं।
1: Union Home Minister Amit Shah has lauded West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari for handing over 1,129 acres of land to the Border Security Force and Sashastra Seema Bal for fencing along the India-Bangladesh border in the state within 45 days of the new government coming to power. He said the request for the land required for the border fence had been pending since 2014. Mr. Shah was speaking while attending a program at the Sashastra Seema Bal Frontier Headquarters in the Rani Danga area at Siliguri in West Bengal yesterday. The Home Minister said completing border fencing is crucial to stopping infiltration and protecting national security. He said the government will continue its zero tolerance policy towards illegal immigration, highlighting the strategic importance of

0: The Siliguri corridor, also known as the Chicken Neck, Mr. Shah said it is vital for the security of the Northeast and the country. He said the corridor, which connects the Northeast with the rest of the country and is bordered by three countries, Nepal, Bhutan and Bangladesh, will be protected by the triangular grid of army posts in Chopra, Dhubri and Kishanganj. On the occasion, he laid foundation stones for infrastructure worth around 189 crore rupees and inaugurated several other projects.
1: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक आज से शुरू होगी। ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक आज होगी, जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता कार्यक्रम और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। इससे पहले भारत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक कल जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी देने के साथ संपन्न हुई। जयपुर घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पर्यटन से शहरों के साथ साथ छोटे कस्बों, गांवों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में भी रोजगार और विकास के अवसर बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में होटल, होम स्टे, टैक्सी चालक, गाइड, कारीगर, बुनकर, किसान और उद्यमियों सहित लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है।
0: India and Nepal reviewed the entire spectrum of bilateral cooperation and reaffirmed their commitment to strengthening cooperation on border management and security. The discussion came up during the 14th meeting of the India-Nepal Joint Working Group, which concluded in Dehradun yesterday. Joint Secretary BMI in the Union Home Ministry, Pausumi Basu, led the Indian delegation at the meeting, while the Nepalese side was led by the Joint Secretary in the Ministry of Home Affairs, Ananda Kafle. Union Home Ministry in a statement said, during the two-day meeting, discussions covered addressing trans-border crime and criminal activities, strengthening an effective utilization of border infrastructure, roads and railway networks, removal of encroachments and maintenance of boundary pillars. The two sides also exchanged views on strengthening institutional coordination and capacity building across various sectors and agreed to sustain engagement in these areas.
1: और खेलों की तरफ चलते हैं। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंग शू और टैन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया ई फैन और झांग शू शियान को 16-21, 21-15, 21-13 से हराया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स का पदक जीतने वाली त्रिशा और गायत्री दूसरी भारतीय जोड़ी भी बन गई हैं। इससे पहले ये उपलब्धि ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने 15 वर्ष पहले लंदन में कांस्य पदक जीता था। इस बीच पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन के लियांग वेई किंग और वांग चांग से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है।
0: And moving towards hockey, in FIH Hockey World Cup, Indian men's team will begin their second stage campaign against host Netherlands today at Amstelveen. The match will begin at 7:30 p.m. Indian Standard Time. India secured second place in Pool D with a convincing 5-3 victory over Pakistan. The win was particularly significant as India displayed greater attacking fluency and finished the pool stage on the strong note. India will now join England and the top two teams from Pool A in Pool E. The top two teams from Pool E will qualify for the semi-finals. Unlike England, India will not carry any points into the second stage and will have to start afresh today against a strong Netherlands side. India now needs a win to keep their hopes of progressing in the tournament alive, and Indian women's will face Australia tomorrow.

0: देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बाद अब हम चलते हैं महानगरों की ओर, जानते हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद से क्या खबरें हैं। तो सबसे पहले तन्वी बताएंगी चेन्नई से जुड़ी खबरें।
1: इन चेन्नई द बटरफ्लाई गार्डन एट वेंडलूर जू हैज बीन रीओपन्ड आफ्टर मेजर रेनोवेशन। द गार्डन वाज लॉन्च्ड अराउंड 10 इयर्स अगो टू सपोर्ट द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाइज फ्रॉम एग टू विंग्ड एडल्ट। द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द जू मनीष मीणा सेड दैट द पार्क हैज बीन अपग्रेडेड विद इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचुरलिस्टिक फीचर्स एंड इंटरैक्टिव फैसिलिटीज। द पार्क हाउसेस लावल एंड प्यूपल रियरिंग रूम्स alongside dedicated host and nectar gardens that supply plants for butterfly breeding and feeding. And some more news from Chennai itself. The state government has planned to launch the Singapen credit scheme for women entrepreneurs at an outlay of 7,015 crore rupees. Minister for Cooperation V. Gandhiraj said that the government would provide rural business loans at 9% interest for micro and small scale farmers. The state will allocate 5,000 crore rupees for the same. And what do you have from Delhi, Devendra?
0: जी, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस वर्ष जनवरी से जुलाई के बीच 2000 से अधिक औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि निरीक्षण के दौरान 106 इकाइयां पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करती पाई गई। वहीं 78 इकाइयां दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से वैध संचालन की सहमति के बिना संचालित होती हुई मिली। 44 मामलों में पर्यावरण से संबंधित मुआवजा लगाया गया और 33 इकाइयों को बंद करने के आदेश जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि निर्माण स्थलों पर धूल, प्रदूषण और नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए इस बार 500 वर्ग मीटर से बड़े सभी निर्माण स्थलों की डस्ट पोर्टल और एआई सक्षम कैमरों से निगरानी की जाएगी। और तन्वी, जैसा कि हमने कहा कि अब मानसून का समय भी खत्म होने वाला है और मानसून के बाद जब सर्दियों का मौसम शुरू होता है उससे पहले दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है, तो इस तरह के कदम, एहतियाती उपाय बेहद जरूरी हैं दिल्ली के लिए। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सिसोद ने बताया कि मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2047 का लक्ष्य किफायती आवास, पुरानी और अनधिकृत कॉलोनियों के पुनर्विकास, बेहतर संपर्क और हरित क्षेत्र बढ़ाकर दिल्ली को आधुनिक तथा टिकाऊ राजधानी बनाना है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि दिल्ली में जमीन सीमित है लेकिन हमारी सोच और विजन सीमित नहीं है। इस मास्टर प्लान के प्रमुख प्रावधानों में 30 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर, ग्राउंड फ्लोर पर व्यावसायिक गतिविधियों, 500 मीटर के दायरे में आवागमन के लिए उचित प्रबंध और पुरानी कॉलोनियों के पुनर्विकास की व्यवस्था शामिल है। और दिल्ली नगर निगम ने डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन 2026 अभियान शुरू किया है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान के पहले चरण में लगभग 75 किलोमीटर रेलवे ट्रैक और आसपास के क्षेत्रों में एंटी लार्वल दवाओं का छिड़काव किया जाएगा। ट्रेन के साथ पावर स्प्रे टैंकर तैनात होंगे ताकि जल भराव और मच्छरों के संभावित प्रजनन स्थलों तक दवा पहुंचाई जा सके। निगम के अनुसार अभियान अगले महीने तक चरणबद्ध तरीके से दिल्ली के विभिन्न रेलवे रूटों पर चलेगा। महापौर ने दिल्ली के लोगों से मच्छरों के प्रजनन स्थलों को खत्म करने की अपील भी की है।
1: And moving towards Bangalore, Chief Minister D.K. Shivakumar yesterday launched Kio, an AI-enabled computing device developed through Kionix, with the aim of expanding access to artificial intelligence and emerging technologies among government school students. The government will initially deploy 1,000 Kio AI PCs in government schools, particularly in rural areas, with the long-term goal of covering every government school in Karnataka. Shiv Kumar said Kio would help students learn coding, AI, machine learning and electronics, while enabling teachers to use AI-based learning tools. And the Railway Board has notified the transfer of the Mangaluru region from Palakkad Division of Southern Railway to Mysuru Division of South Western Railway, fulfilling a long-standing demand from railway users in Karnataka.
0: और चलते हैं मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे इस वर्ष केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत प्राप्त धनराशि का 95% से अधिक उपयोग सुनिश्चित करें। शुक्रवार को मुंबई में हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस ने विभागों को उपलब्ध धनराशि, व्यय और शेष राशि का नियमित आकलन करने और समय पर उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के पास अगले वर्ष केंद्रीय निधि से लगभग 16,000 से 17,000 करोड़ रुपए का उपयोग करने की क्षमता है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा पूंजीगत व्यय में जाने की उम्मीद है।

0: IoT सेंसर और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करते हुए एक पायलट परियोजना शुरू करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को परियोजना की समीक्षा की और कृषि विभाग को कपास, सोयाबीन, गन्ना, संतरा, हल्दी, प्याज और मक्का जैसी फसलों को कवर करते हुए फसलवार और क्षेत्रवार डिजिटल सिस्टम विकसित करने का निर्देश दिया। पहले चरण में 10,000 किसानों को शामिल किया जाएगा और सफल होने पर इस मॉडल का विस्तार पूरे महाराष्ट्र में किया जाएगा।
1: And about Hyderabad, Telangana hosted the PM Gati Shakti and Leads 2025 dissemination workshop for southern states in Hyderabad yesterday, bringing together senior officials from 8 southern states and union territories to discuss ways to improve logistics efficiencies across the region. The workshop was organized by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Government of India, along with the Commerce and Export Promotion Department, Government of Telangana. This is the first time Telangana has hosted the Southern Regional Workshop. Officials from Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep took part along with industry and logistics sector representatives.
0: जी, और चलते हैं कोलकाता, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सिलीगुड़ी के सुकना में दार्जिलिंग हिल्स के गोरखा नेताओं के साथ एक अहम बैठक करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य गोरखाओं की अलग राज्य की लंबे समय से चली आ रही मांग का स्थायी समाधान निकालना है। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था कि सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर वे पश्चिम बंगाल को अखंड रखते हुए संवैधानिक दायरे में गोरखाओं की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालेंगे। और श्रोताओं, महानगरों से जुड़ी खबरों के बाद महानगरों के मौसम का हाल भी जान लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम का हाल। आज सुबह से ही तन्वी बारिश कई जगहों पर दिल्ली में हो रही है, एनसीआर में हो रही है, और इसके चलते दिन में तापमान 34-35 डिग्री के आसपास रहेगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रहा। और मुंबई में आज आमतौर पर बादल छाए रहने, हल्की बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26, अधिकतम 32 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है। उधर कोलकाता में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 26 डिग्री रहने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है।
1: Let's talk about Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Chennai might see rain or thunder showers towards the evening or night. The temperatures are expected to range between minimum of 27 degrees and the maximum of 37 degrees Celsius. Now, Bengaluru is forecast to experience generally cloudy with light rain or drizzle possibility. The minimum temperature is expected to be 21 degrees while the maximum may reach 28 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a partly cloudy sky with one or two spells of rain or even thunder showers. Temperatures are expected to range from 25 degrees to 31 degrees Celsius.
0: जी, और अब बात इतिहास की। इतिहास में आज के दिन कौन सी बड़ी घटनाएं हुई जिन्हें हम जानना चाहेंगे, आप जानना चाहेंगे, तो श्रोताओं आपको बता दें, 1639 में आज ही के दिन यानी 22 अगस्त के दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, जिसे तत्काल समय में मद्रास कहा गया, उसकी स्थापना की थी। और 1864 में पहला जिनेवा कन्वेंशन अपनाया गया। 12 राष्ट्र स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मिले। वे अपने पक्ष की परवाह किए बिना घायल सैनिकों की देखभाल करने पर सहमत हुए। इसी से अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस की नींव पड़ी।
1: In 1894, महात्मा गांधी founded the Natal Indian Congress in South Africa to fight discrimination against Indian traders. In 1911, Leonardo da Vinci's Mona Lisa was stolen by Vincenzo Perugia, causing a worldwide sensation. The painting was recovered in 1913, 2 years later. In 1963, Captain Joseph A. Walker flew the X-15 rocket plane. He became the first person to reach space twice.
0: और 2007 में आज के दिन मिस्र के पुरातत्वविदों ने पश्चिम रेगिस्तान के सिवा क्षेत्र में लगभग 20 लाख साल पुराने मानव पद चिन्हों का पता लगाया था।
1: In 2017, the Supreme Court of India declared instant triple talaq unconstitutional in a historic verdict protecting Muslim women's rights.
0: और आज सवेरे में अब बारी उस सेगमेंट की जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जिसका इंतजार आपको भी रहता है। इस क्रम में हम स्मरण करते हैं उन महान लोगों को जिनकी जयंती, जन्मदिन या पुण्यतिथि है। और इसी क्रम में सबसे पहले स्मरण कर रहे हैं गिरिजा कुमार माथुर को, जिनकी आज जयंती है। उनके साहित्य जगत के योगदान को हम सभी जानते हैं। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म मध्य प्रदेश के अशोकनगर में 22 अगस्त 1919 को हुआ। गिरिजा कुमार माथुर उन रचनाकारों में से थे जिन्होंने हिंदी कविता

0: नई संवेदना, नए बिंब और आधुनिक जीवन बोध से समृद्ध किया। अज्ञेय द्वारा संपादित प्रसिद्ध काव्य संकलन तार सप्तक के कवियों में उनका विशेष स्थान था। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले और मैं वक्त के हूँ सामने उनकी चर्चित कृतियां हैं। उनकी कविता छाया मत छूना मन आज भी पाठकों के बीच लोकप्रिय है। गिरिजा कुमार माथुर की रचनात्मक पहचान केवल कविता तक सीमित नहीं थी, उन्होंने नाटक, आलोचना और गीत के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। लोकप्रिय गीत हम होंगे कामयाब का हिंदी रूपांतरण भी उनकी साहित्यिक सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा है।
1: And today is the death anniversary of Vimi, an Indian actress who acted in Indian films like Hamraaz, Aabru, a Punjabi film with Prithviraj Kapoor and Patanga. In 1967, Vimi made her debut opposite Sunil Dutt in B.R. Chopra's Hamraaz, and the film was a huge hit. When Sunil Dutt sang to her the song Nasar Jhuka Ke Jiyo, Namu Chupa Ke Jiyo, the expressions of Vimi were appreciated by the audience. So her film career was quite short, but the movies that she has done has left an unforgettable mark in the history of cinema. Let's just enjoy two amazing tracks from her extremely successful films.

0: और आज हम स्मरण कर रहे हैं हिंदी साहित्य के महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी को, जिनकी लेखनी ने समाज की विसंगतियों पर न केवल तीखा प्रहार किया बल्कि हमें आत्मचिंतन के लिए भी प्रेरित किया। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, जिसे अब नर्मदापुरम कहा जाता है, जिले में हुआ था और उन्होंने हिंदी व्यंग्य को साहित्य की एक सशक्त और प्रतिष्ठित विधा के रूप में स्थापित किया। परसाई जी का व्यंग्य केवल हंसाने के लिए नहीं था, उनकी रचनाओं में आम आदमी का जीवन, सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड, भ्रष्टाचार और रूढ़ियों के प्रति गहरी संवेदना दिखाई देती है। वे सरल भाषा में ऐसी बातें कह जाते हैं जो पाठकों को देर तक सोचने के लिए विवश करती थी। उनकी प्रमुख कृतियों में भोलाराम का जीव, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, रानी नागफनी की कहानी, तब की बात और थी, पगडंडियों का जमाना और निठल्ले की डायरी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनकी रचनाओं ने हिंदी साहित्य में व्यंग्य को नई ऊंचाई दी। विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए उन्हें साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। वर्ष 1992 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। परसाई जी की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद ये है कि उन्होंने व्यंग्य को समाज के प्रति जिम्मेदार साहित्य बनाया। उनकी लेखनी हमें बताती है कि सच्चा व्यंग्य किसी व्यक्ति का उपहास नहीं बल्कि व्यवस्था और समाज की कमियों को पहचानने का एक बड़ा माध्यम है। इस महान रचनाकार को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि।
1: And today is the death anniversary of Kishore Sahu, an Indian actor, film director, screenwriter and producer. He appeared in 22 films between 1937 and 1980 and he also directed 20 films between 1942 and 1974. Before I tell you more about his films and Kishore Sahu himself, let me play a song titled Ajeeb Dasta from the film Dil Apna Aur Preet Parai. Ajeeb.

और आज पुण्यतिथि है काशी के प्रकांड विद्वान रेवा प्रसाद द्विवेदी की। साहित्य शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान रेवा प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रतिमान गढ़े। वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के पूर्व संकाय प्रमुख रहे। अनेक ग्रंथों के रचनाकार रेवा प्रसाद द्विवेदी के 3 महाकाव्य अद्भुत हैं। 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा महाकाव्य स्वातंत्र्य संभव जो 103 सर्ग का है। संस्कृत साहित्य के महाकवि, नाटककार और समीक्षक पंडित रेवा प्रसाद पंडित द्विवेदी ने संस्कृत भाषा में 3 महाकाव्य, 20 खंड काव्य और 2 नाटकों से ज्यादा कृतियों की रचना की थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वो 1971 से 1990 तक विभागाध्यक्ष और संकाय प्रमुख रहे। उनके महाकाव्य स्वातंत्र्य संभव के लिए उन्हें 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और श्रोताओं, प्रसिद्ध भारतीय फिल्म और रंगमंच अभिनेता, निर्देशक और नाटककार शोम्भू मित्रा की भी आज जयंती है। बंगाली थिएटर में उनके योगदान के लिए उन्हें विशेष रूप से याद किया जाता है। शोम्भू मित्रा को पहचान मिली उनकी फिल्म धरती के लाल और जागते रहो से। फिल्म जागते रहो से एक गाना आप सुन रहे हैं जो सावन के महीने में बेहद प्रासंगिक है।

0: ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध कन्नड़ साहित्यकार, आलोचक और शिक्षाविद यूआर अनंत मूर्ति की भी आज पुण्यतिथि है। उन्हें कन्नड़ साहित्य के नव्या आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना संस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले 8 कन्नड़ साहित्यकारों में से वे छठे थे। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1998 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
1: And today is the birthday of James Corden, an English actor, comedian, writer, producer, singer and TV host. Along with him, it's the birthday of Sudhanshu Pandey, an Indian model, film and TV actor, singer, writer, producer and part-time poet. He's appeared in many Hindi films and few Tamil films as well. So, he was there in the Pankaj Udhas album, Mehak, and we all know him by the boys band, A Band of Boys, which was India's first ever boy band. To all the listeners from 1990s, these songs are for you.

0: से भी ज्यादा। और श्रोताओं, इन्हीं खूबसूरत गीतों और संगीतों के साथ हम चाहेंगे आप सभी से अनुमति।
1: Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 AM. Thanks for tuning in. Have a superb day.
0: Namaskar.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1,129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से। और अम्स्टरडेम में पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
3: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किला से दिए गए स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल हैं।
3: 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्तधारा की, सप्त शक्तियों की बात की है। और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो। गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
2: गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1,129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की है। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है।
4: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1,129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
2: गृहमंत्री ने अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई जारी रखने की बात कही। श्री शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसे पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। गृहमंत्री ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया।

0: शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभालने के 3 दिन के भीतर 3 नए आपराधिक कानून लागू कर अपना वादा पूरा किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्यसमूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: चर्चा के दौरान सीमा पार अपराधों और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उपायों, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने, एकीकृत जांच चौकी, सड़क और रेल नेटवर्क पर बात हुई। दोनों पक्षों ने अतिक्रमण हटाने और सीमाओं के रखरखाव पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत और क्षमता विकास को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया और इन क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने नेपाल में होने वाली संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक की तारीख पर भी सहमति जताई। समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: भारत की अध्यक्षता में जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ कल संपन्न हो गई। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
2: एक ऐसा पर्यटन का भविष्य जो अधिक रेजिलिएंट हो, जो इनोवेशंस को अपनाए और उसके साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी की आधारशिला का निर्माण करे, क्योंकि भारत के लिए पर्यटन केवल मॉन्यूमेंट्स की विजिट तक सीमित नहीं, अभी तो हमारी संस्कृति को जानने, हमारी संस्कृति की पहचान कराने का और इस तरह का अनुभव कराने का एक सशक्त माध्यम भी है, जिसके माध्यम को हम लोग अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता के साथ में जोड़ सकते हैं।
0: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक आज से शुरू होगी। ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक आज होगी, जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपये से बढ़कर करीब 55 रुपये प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट मल्हार कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेंजी से धैर्य और दायित्व के साथ व्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्र स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। ये कार्यक्रम दूरदर्शन और शिक्षा मंत्रालय के स्वयं प्रभा चैनल पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल

0: कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से केवल 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंककर पहला स्थान हासिल किया। उधर कुश्ती में भारत की महिला पहलवान काजल धोचक ने स्लोवाकिया में अंडर-20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में काजल ने चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराया। इधर BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टेन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया यी फैन और झांग शू शान को 16-21, 21-15, 21-13 से हराया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। उधर अमस्टल फैन में FIH महिला हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम को कल नीदरलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। और पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान पर 5-3 की शानदार जीत के बाद भारत ने पूल डी में दूसरा स्थान हासिल किया है।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गरज के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वर्तमान में अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दक्षिण कैरोलिना में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोक दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
2: धन्यवाद कनक। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का संक्रमण, नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण की पहली खबर है। दैनिक जागरण लिखता है, राजधानी में एक दिन में स्वाइन फ्लू के 114 मरीज मिले। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, कुल मामले पिछले साल से 7 से 8 गुना बढ़े, केंद्र ने स्वाइन फ्लू पर दिल्ली के अस्पतालों को किया अलर्ट। हिंदुस्तान ने लिखा है, फेफड़े हो रहे प्रभावित। चीनी की बढ़ती कीमत पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा 15 दिन की भंडारण सीमा तय करने पर जनसत्ता ने अपने संपादकीय में चीनी की कड़वाहट शीर्षक से लिखा है, भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी रोकना है तो ये स्वागत योग्य, मगर सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि छोटे कारोबारियों पर नियमों का अनावश्यक बोझ न पड़े। लद्दाख में ग्रेविटी आधारित डायवर्जन से ग्लेशियर का पानी इगुफे सिंचाई नहर की ओर मोड़कर खेतों तक पहुंचाने की योजना दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पर है। पत्र लिखता है, 9 करोड़ लीटर पानी अब भारत को सींचेगा। यमन के पास समुद्री लुटेरों द्वारा 2 जहाजों को अगवा किए जाने की खबर भी अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, 22 भारतीय नाविकों को बंधक बनाया, विदेश मंत्रालय ने कहा सभी भारतीय सुरक्षित। सिविल जज भर्ती योग्यता नियमों में बदलाव की खबर दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी सहित कई अखबारों में है। नवभारत टाइम्स लिखता है, 1 साल की वकालत पर अब बन सकेंगे जज। राजस्थान पत्रिका ने विदेश कारोबार में मोदी सरकार का बड़ा कदम शीर्षक से लिखा है, अब डॉलर ही नहीं रुपए में भुगतान ले सकेंगे निर्यातक। पत्र लिखता है, इससे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में रुपए का रुतबा बढ़ेगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दिल्ली में खाली सरकारी मकानों को किराए के घर में बदलने की योजना नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। और अमर उजाला ने अपने अंतिम पृष्ठ पर बताया है, पाकिस्तान में दिल्ली की चाट और ढाका में खूब पसंद की जा रही बनारसी साड़ियां, न्यूयॉर्क से कराची तक भारतीय व्यंजनों का क्रेज।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says reforms are not compulsion but a commitment and conviction for government, asserts its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Home Minister Amit Shah hails West Bengal government for handing over 1,129 acres of land to BSF and SSB for India-Bangladesh border fencing within 45 days of coming to power. India and Nepal reaffirm commitment to strengthen bilateral cooperation in border management and security. BRICS tourism ministers adopt Jaipur Declaration, focusing on sustainable tourism, AI integration and seamless travel. Indian women's doubles pair of Treza Jolly and Gayatri Gopichand to take on top seed Chinese duo in semi-finals of BWF World Championships in Delhi. And in Hockey World Cup, Indian men's team to begin their second stage campaign against hosts Netherlands at Amstelveen this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that reforms are not a compulsion, but a commitment and conviction for his government, and that its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi last evening, Mr. Modi said his government has created a clear roadmap for reforms, with the primary focus being on reforms at the governance level. He said India is undertaking next generation reforms at the policy level to secure the country's future.
4: हमने reforms को लेकर एक clear roadmap बनाया। इस roadmap की प्रमुख दिशा रही है governance level के reforms हो। इसके लिए आज 21वीं सदी के भारत में हम सिर्फ रेगुलेशन नहीं बदल रहे, हम रेगुलेशन की पूरी फिलॉसफी बदल रहे हैं।
3: The Prime Minister pointed out that his government is not merely changing regulations, but is changing the entire philosophy behind them. He said that earlier, the approach to regulations was prohibited unless permitted. Mr. Modi said the license raj under earlier governments contributed to unemployment, while his government's production-linked incentive model is creating new opportunities. The Prime Minister also spoke about the global economic environment, saying the weaponization of resources and growing mistrust were creating new challenges. He said that even in such circumstances, the world continues to see India as a bright spot of hope and growth.
4: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों, रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
3: Union Home Minister Amit Shah has lauded West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari for handing over 1,129 acres of land to the Border Security Force and Sashastra Seema Bal for fencing along the India-Bangladesh border in the state within 45 days of the new government coming to power. He said the request for the land required for the border fence had been pending since 2014. Mr. Shah was speaking while attending a program at the Sashastra Seema Bal Frontier Headquarters in the Rani Danga area at Shiliguri in West Bengal yesterday. The Home Minister said completing border fencing is crucial to stopping infiltration and protecting national security. He said the government will continue its zero tolerance policy towards illegal immigration.
5: सरकार के गठन के 45 दिन
6: विद इन 45 डेज ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट सुवेंदु जी एलोकेटेड 1129 एकर्स ऑफ लैंड फॉर द बीएसएफ एंड एसएसबी फ्रेंड्स दिस सेंस ऑफ अर्जेंसी कम्स नॉट मेयरली फ्रॉम बीइंग अ चीफ मिनिस्टर ऑफ भारतीय जनता पार्टी बट फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग दैट अनलेस इन्फिल्ट्रेशन इज स्टॉप्ड नीदर वेस्ट बंगाल नॉर इंडिया कैन रिमेन सिक्योर
5: भारत सुरक्षित रह सकता
3: The BRICS Tourism Ministers meeting held under India's chairship concluded yesterday with the unanimous adoption of the Jaipur Declaration, which provides a framework for strengthening tourism cooperation among BRICS member countries. The declaration outlines key areas of cooperation, including the use of artificial intelligence in tourism, sustainable tourism practices, skill development, and seamless travel facilitation. The meeting was presided over by Union Minister for Culture and Tourism, Gajendra Singh Shekhawat at Jaipur in Rajasthan, and marked the culmination of the BRICS tourism track under India's chairship in 2026. The tourism track was taken forward under the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Addressing the meeting, Mr. Shekhawat said tourism will play an important role in India's journey towards Viksit Bharat by 2047 and had the potential to extend economic growth beyond major urban centres to towns, villages and remote regions. India will host the BRICS Youth Ministers Meeting and the BRICS Sports Ministers Meeting at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh. The BRICS Youth Ministers Meeting will be held today, while the BRICS Sports Ministers Meeting will take place tomorrow. The meetings will be chaired by Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandaviya, with Minister of State for Youth Affairs and Sports Raksha Khadse also participating. According to the Ministry of Youth Affairs and Sports, the Youth Ministers' meeting will focus on strengthening cooperation in youth development and empowerment, with the discussions on education, skill development, entrepreneurship, well-being and sustainable development. President Draupadi Murmu will confer National Teachers Awards to 48 school teachers on the 5th of next month at Vigyan Bhavan in New Delhi. The Education Ministry said school teachers have been selected through a three-stage selection process at the district, state and national levels by the Department of School Education and Literacy. The 48 selected school teachers are from 27 states, 7 union territories and 6 organizations of the central government. Out of the 48 selected teachers, 26 are male and 22 are female. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. India and Nepal have reviewed the entire spectrum of bilateral cooperation and reaffirmed their commitment to strengthening cooperation on border management and security. The discussion came up during the 14th meeting of the India-Nepal Joint Working Group, which concluded in Dehradun yesterday. More from a correspondent.
7: Discussions covered measures to address trans-border crime and criminal activities and strengthening and effective utilization of border infrastructure, particularly integrated checkposts, roads and railway networks. The two sides also discussed the removal of encroachment and maintenance of boundary pillars. They exchanged views on strengthening institutional coordination and capacity building across various sectors and agreed to sustain engagement in these areas. Both sides also agreed that the next meeting of the joint working group will be held in Nepal at a mutual convenient date. Ishani Yadav, Akashvani News, Delhi.
3: India and the UK have agreed to expand bilateral exchanges between the armed forces of the two countries through joint exercises, training and capacity building, as both sides held a key dialogue in Delhi. Defence Secretary Rajesh Kumar Singh co-chaired the 25th India-UK Defence Consultative Group meeting with Permanent Under Secretary for Defence of UK, Jeremy Pocklington, in the national capital. During the meeting, both the countries reviewed the ongoing defence industrial cooperation with emphasis on research and development through the India-UK Vision 2035 and the 10-year Defence Industrial Roadmap. Ministry of Defence said both sides acknowledge the robust maritime security collaboration in the Indo-Pacific, including establishment of the Regional Maritime Security Centre of Excellence under the Indo-Pacific Oceans Initiative. The government has said that a total of 29 foreign direct investments, FDI, have been reported under the revised framework as of the 20th of this month, involving proposed FDI of more than 4,800 crore rupees. These investments span a range of sectors, including information technology, artificial intelligence, information and communication, manufacturing, pharmaceuticals, data centers, and transport services, among others. In Kerala, the 72nd Nehru Trophy

0: Tourism ministers adopt Jaipur Declaration, focusing on sustainable tourism, AI integration and seamless travel. Indian women's doubles pair of Treza Jolly and Gayatri Gopichand to take on top seed Chinese duo in semi-finals of BWF World Championships in Delhi. And in Hockey World Cup, Indian men's team to begin their second stage campaign against hosts Netherlands at Amstel Wynn this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस्लाहात मजबूरी नहीं है बल्कि हुकूमत के लिए एक अज़्म और यकीन है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हुकूमत की पॉलिसियां अवाम के मुआफिक और तरक्की पसंदाना हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने मगरिब बंगाल सरकार की इस बात के लिए तारीफ की है कि नई सरकार ने इख्तदार में आने के 45 दिन के अंदर भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाकर बीएसएफ और एसएसबी को 1129 एकड़ जमीन हवाले की। भारत और नेपाल ने सरहदी इंतजामात और सिक्योरिटी में बाहमी तावुन को मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया है। ब्रिक्स के सियाहत के वुज़रा ने पायदार सियाहत, मस्नूई जहानत को हम आहंग करने और बिला रुकावट सफर पर तवज्जो देते हुए जयपुर एलामिया मंजूर किया है। दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ आलमी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारत की जोड़ी चीन की जोड़ी से मुकाबला करेगी। और हॉकी आलमी कप में आज शाम नीदरलैंड के एम्स्टेलवीन के मकाम पर भारत की मर्दों की टीम अपने दूसरे मरहले के मैच में मेजबान नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस्लाहात मजबूरी नहीं है बल्कि हुकूमत के लिए एक अज़्म और यकीन है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उसकी पॉलिसियां अवाम के मुआफिक और तरक्की पसंदाना हैं। कल शाम नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने सरकारी एतबार से इस्लाहात पर खसूसी तवज्जो देते हुए इस्लाहात के सिलसिले में एक वाज़ह खाका तैयार किया है। उन्होंने कहा कि भारत मुल्क के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए पॉलिसी सतह पर नए दौर की इस्लाहात कर रहा है।
2: हमने रिफॉर्म्स को लेकर एक क्लियर रोडमैप बनाया। इस रोडमैप की प्रमुख दिशा रही है गवर्नेंस लेवल के रिफॉर्म्स हो। इसके लिए आज 21वीं सदी के भारत में हम सिर्फ रेगुलेशन नहीं बदल रहे, हम रेगुलेशन की पूरी फिलॉसफी बदल रहे हैं।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़े किया कि उनकी हुकूमत महज ज़ाब्ते तब्दील नहीं कर रही है बल्कि वो ज़ाब्तों की पूरी पॉलिसी ही तब्दील कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि साबिका हुकूमतों के दौर में लाइसेंस राज ने बेरोजगारी में इजाफा किया था जबकि उनकी हुकूमत के पैदावार से जुड़े तरगीबी मॉडल नए मौके पैदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी इक्तसादी माहौलियात के बारे में भी बात की और कहा कि वसाइल को आलायकार बनाना और बढ़ती हुई बदगुमानियां नए चैलेंजेस पैदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के हालात में भी भारत को पूरी दुनिया में तरक्की के एक दरख्शां मकाम के तौर पर देखा जा रहा है।
2: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: जनाब मोदी ने कहा कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने पेशगोई की है कि भारत दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई बड़ी मईशत रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे इकदाम कर रहा है जो उसकी तरक्की को नई जहत दे रहे हैं। मुल्क की सतह पर इस्तेहकाम के गहरे आलमी असरात को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने इस बात पर जबरदस्त एतमाद का इजहार किया कि मुल्क की तरक्की के सफर को महफूज बनाकर बैनुल-अक़वामी बिरादरी के लिए फितरी तौर पर ज्यादा इस्तेहकाम लाया जा सकेगा। مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ سوویندو ادھیکاری کی اس بات کے لیے تعریف کی ہے کہ نئی سرکار نے اقتدار میں آنے کے 45 دن کے اندر ریاست میں بھارت بنگلہ دیش سرحد پر خاردار تار لگانے کے بعد 1129 ایکڑ زمین بی ایس

0: एसएफ और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के हवाले की है। उन्होंने कहा कि सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए जमीन की दरख्वास्त 2014 से जेरे अल्तवा थी। जनाब शाह कल मगरबी बंगाल की सिलीगुड़ी में रानी दंगा इलाके में सशस्त्र सीमा बल फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स में एक प्रोग्राम में शिरकत के दौरान इजहार ख्याल कर रहे थे। वजीर दाखिला ने कहा कि खारदार तार लगाने के काम को मुकम्मल करना जरूरी है ताकि दरअंदाजी को रोका जा सके और कौमी सलामती का तहफ्फुज किया जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत की गैर कानूनी इमिग्रेशन के तई कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी जारी रहेगी।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: ब्रिक्स के सियाहत के वुज़रा की मीटिंग जो भारत की सदारत में मुनाकिद हुई थी कल खत्म हो गई। इसमें जयपुर ऐलामिये को मुत्तफ़िका तौर पर मंजूरी दी गई जिसमें ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के दरमियान सियाहत के शोबे में तआवुन को मुस्तहकम करने के लिए एक फ्रेमवर्क की गुंजाइश फराहम की गई है। ऐलामिये में सियाहत में मसनूई जहानत के इस्तेमाल, पायदार सियाहत के तौर तरीकों, हुनरमंदी की तरक्की और बिला रुकावट सफर की सहूलत फराहम की गई है। मीटिंग की सदारत राजस्थान के जयपुर में सकाफत और सियाहत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने की और 2026 में भारत की सदारत में ब्रिक्स टूरिज्म ट्रैक इख्तिताम पजीर हुआ। टूरिज्म ट्रैक का मौजू साबित कदमी, इख्तिरा और पायदारी था और इस मौजू को आगे ले जाया गया। मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब शेखावत ने कहा कि सियाहत 2047 तक विकसित भारत के लिए भारत के सफर में एक अहम रोल अदा करेगी और भारत के पास इतनी सलाहियत है कि वो माशी तरक्की को बड़े शहरी मराकज से कस्बों, गांवों और दूरदराज के खित्तों तक लेकर जा सके। ब्रिक्स के सियाहत के वुज़रा के ऐलामिया 2026 को जयपुर ऐलामिया के तौर पर भी माना जाता है जो भारत की सदारत के तहत ब्रिक्स सियाहत वर्किंग ग्रुप के जरिए किए गए काम की अक्कासी करता है और चार अहम तरजीहात पर तवज्जो देता है जिनमें मसनूई जहानत और सियाहत, पायदारी और जिम्मेदाराना सियाहत, सियाहत हुनरमंदी, सलाहियत साजी और सियाहत के तबादले और बिला रुकावट सफर की सहूलियात शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स के नौजवानों के उमूर के वुज़रा की मीटिंग और ब्रिक्स के खेलों के वुज़रा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स के नौजवानों के उमूर के वुज़रा की मीटिंग आज होगी जबकि खेलों के वुज़रा की मीटिंग कल होगी। इन मीटिंगों की सदारत नौजवानों के उमूर के वुज़रा और खेलों के वुज़रा डॉ मनसुख मांडविया करेंगे। खेलों के वजीर डॉ मनसुख मांडविया करेंगे। नौजवानों की उमूर और खेलों की वजीर मुमलिकत रक्षा खट्टे भी इन मीटिंगों में शिरकत करेंगी। नौजवानों की उम्र खेलों की वजारत के मुताबिक नौजवानों की उम्र के वुज़रा की मीटिंग में तालीम, हुनरमंदी का फरोग, सनतकारी, फलाओ बहबूद और पायदार तरक्की के साथ नौजवानों की तरक्की और तफवीज इख्तियारात में तआवुन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू अगले माह की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली असातजा को नेशनल टीचर्स अवार्ड्स अता करेंगी। वजारत तालीम के मुताबिक अवार्ड्स के लिए स्कूल के टीचर्स को स्कूली तालीम और ख्वानगी के महकमे के जरिए जिला, रियासत और कौमी सतह पर 3 मरहलों पर मुश्तमिल इंतखाबी अमल के जरिए मुंतखब किया गया है। ये 48 स्कूली टीचर्स 27 रियासतों, 7 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और मरकजी हुकूमत की 6 तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं। इनमें 26 मर्द और 22 खवातीन टीचर्स शामिल हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत और नेपाल ने सरहदी इंतजाम और सलामती के ताल्लुक से बाहमी तआवुन को मुस्तहकम करने के अपने 2 तरफा तआवुन और अज़्म का इयादा करने से मुतालिक सभी पहलुओं का जायजा लिया। कल देहरादून में भारत नेपाल मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की 14वीं मीटिंग के दौरान मस्कूरा मामलात पर बातचीत की गई। वजारत दाखिला में ज्वाइंट सेक्रेटरी बीएमआई पौसमी बासु ने 2 रोजा मीटिंग में भारतीय वफद की क्यादत की जबकि नेपाली वफद की क्यादत वजारत दाखिला के ज्वाइंट सेक्रेटरी अनंदा कैफले ने की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि 2 रोजा मीटिंग के दौरान सरहद पार जराइम और मुजरिमाना सरगर्मियों, सरहदी बुनियादी ढांचे, खासतौर से मजबूत चेक पोस्ट, सड़कों और रेलवे नेटवर्क को मुस्तहकम करने और उनके मौसर इस्तेमाल के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन ने नाजायज कब्जे के खात्मे और सरहदी सतूनों की देख रेख से मुतालिक मामलात पर भी बातचीत की। वफूद ने मुख्तलिफ शोबों में इदारा जाती राबता कारी को

0: मजबूत बनाने और सलाहियत साजी में इजाफा करने से मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया और इन शोबों में मुसलसल ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। दोनों मुल्कों ने इस बात पर भी इत्तेफाक किया कि मुश्तरका वर्किंग ग्रुप का अगला इजलास बाहमी तौर पर किसी मुनासिब तारीख पर नेपाल में मुनक़िद किया जाएगा। ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: भारत और बरतानिया ने मुश्तरका फौजी मशकें करने, तरबियत और सलाहियत साजी के जरिए दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान बाहमी ताल्लुकात और तबादलों को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है, जबकि दोनों ममालिक ने दिल्ली में कलीदी मुज़ाकरात किए। कौमी राजधानी में दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने बरतानिया के दिफा के मुस्तकिल अंडर सेक्रेटरी के साथ भारत बरतानिया के दिफाई मशावरती ग्रुप DCG की 25वीं मीटिंग की मुश्तरका सदारत की। हुकूमत ने कहा है कि नजरसानी शुदा फ्रेमवर्क के तहत इस माह की 20 तारीख तक मजमुई तौर पर 29 गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी FDI की इत्तला मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए की मुजवजा गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी शामिल है। ये सरमायाकारी इतलाती टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतलात व मवासलात, मैनुफैक्चरिंग, दवासाजी, डेटा मराकज और ट्रांसपोर्ट खिदमात समेत वसी शोबों का अहाता करती है। केरला में 72वें नेहरू ट्रॉफी बोट रेस अलप्पुज़ा की पनामदा झील में मुनाकिद की जाएगी। इस बावकार सालाना कश्ती दौड़ में सांप की बनावट जैसी रवायती कश्तियों के बीच जबरदस्त मुकाबला होगा। और बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय खवातीन ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी खवातीन के डबल्स के सेमीफाइनल्स में आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में चीन की जोड़ी लियू शेंगशू और टैनिंग से मुकाबला करेगी। भारतीय जोड़ी कल चीन के चौथे मुकाम की जोड़ी को 16-21, 21-15 और 21-13 से हराकर सेमीफाइनल्स में दाखिल हो गई। FIH हॉकी आलमी कप में भारत की मर्दों की हॉकी टीम आज शाम नीदरलैंड के एम्स्टेलविन में मेजबान नीदरलैंड के खिलाफ अपना दूसरे मरहले का मैच खेलेगी। मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5-3 से जीत हासिल करने के बाद पूल डी में दूसरा मकाम हासिल कर लिया है। ये भारत के लिए काफी अहम कामयाबी थी क्योंकि भारत ने जारहाना और शानदार खेल का मुजाहरा किया था। दूसरी जानिब भारत की खवातीन हॉकी टीम को अब टूर्नामेंट में कायम रहने के लिए सिर्फ एक मैच जीतना है और कल भारत की खवातीन टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारत के नेजा फेंकने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लॉसेन डायमंड लीग में 88.05 मीटर नेजा फेंक कर दूसरा मकाम हासिल किया है। ये उनकी सीजन की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी थी, जबकि श्रीलंका के रोमेश थरंगा ने 88.14 मीटर की दूरी तक नेजा फेंका और पहला मकाम हासिल किया। रोमेश थरंगा ने अपनी तीसरी कोशिश में ये सबकत हासिल की। नीरज चोपड़ा थरंगा से महज 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। कोई भी एथलीट बाकी राउंड्स में अपने निशाने को बेहतर नहीं कर सका। हुकूमत ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि अंदाजे से कम पैदावार के बावजूद घरेलू मांग से निमटने के लिए मुल्क में चीनी का खातिर ख्वाह ज़खीरा मौजूद है। चीनी की कीमत में हालिया इजाफे के तनाजुर में हुकूमत ने कई इकदाम किए हैं ताकि चीनी की खातिर ख्वाह दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सके और सारिफीन के लिए मुस्तहकम कीमतों को बरकरार रखा जा सके। सारिफीन के उमूर, खुराक और अवामी निज़ाम तकसीम की वजारत ने बताया है कि वो सूरत हाल का बारीकबीनी से जायजा ले रही है। हालिया कुछ हफ्तों में चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है। पिछले महीने की 20 तारीख को इसकी कीमत 48 रुपये फी किलोग्राम थी, जो जुमेरात के रोज बढ़कर तकरीबन 55 रुपये फी किलोग्राम हो गई है। वजारत ने कहा है कि चीनी की कीमत में हालिया इजाफे की वजह इथेनॉल की पैदावार के लिए चीनी की मुंतकली को करार देना दुरुस्त नहीं है। और अब अखबारात के आईने के साथ मुजीब अख्तर।
2: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 20 खलाई स्टार्टअप्स के सरबराहों से मुलाकात की खबर को अहमियत दी है। इस मौके पर जनाब मोदी ने भारत को आलमी खलाई टेक्नोलॉजी का अहम मरकज बनाने के लिए जिद्दतराजी और बाहमी ताउन पर जोर दिया। जापान के वज़ीर दिफा शिंजिरो कोइज़ुमी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और भारत के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के तईं जापान की हुकूमत के मुसलसल अज़्म की तस्दीक की। इस खबर को रोज़ाना प्रताप ने खसूसी तौर पर शाया किया है। रोज़ाना प्रताप ने भारतीय वजारत खारजा के हवाले से खबर दी है कि भारत और सिंगापुर के दरमियान चौथी वजारती गोलमेज मीटिंग सिंगापुर में हुई, जिसमें फरीकैन के वज़रा ने आला दर्जे की मैनुफैक्चरिंग, कनेक्टिविटी, सेहत और तिब हुनरमंदी के फरोग और पायदारी जैसे शोबों में जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की पेशरफ्त का जायजा लिया।
1: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस्लाहात मजबूरी नहीं है बल्कि हुकूमत के लिए एक अज़्म और यकीन है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि

8:45 और 55 सेकेंड यानी आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर म्यूजिकल दिल्ली का टाइम हो गया है। ब्यूटीफुल मॉर्निंग, हर सैटरडे की तरह थोड़ा काम, थोड़ा आराम और बहुत सारा सुकून। अभिजीत अलका याग्निक के इस डुएट के साथ करते हैं शुरुआत। मैं हूँ सुनीता।

1999 की फिल्म बादशाह का ये सॉन्ग फिल्माया गया शाहरुख खान और ट्विंकल खन्ना पर। एक्शन कॉमेडी फिल्म थी ये और अब्बास मस्तान ने डायरेक्ट किया था इस फिल्म को। वैसे उस दौर की फिल्म्स के बहुत सारे गाने काफ़ी पॉपुलर हुए। 1998 की फिल्म जब प्यार किसी से होता है का टाइटल ट्रैक अब मैं प्ले करने वाली हूँ। कुमार सानू ने गाया और म्यूजिक जतिन ललित का था।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी FM गोल्ड, और यहाँ जो म्यूजिक आप सुनते हैं वो आपका मूड रिफ्रेश करता है, दर्द को कम करता है और हमारे और आपके रिश्ते को और मजबूत भी करता है। तो अब सुनीता को फिलहाल इजाजत देनी होगी आपको। आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें और इंजॉय कीजिए ये अगला गाना सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के लिए राज्य सरकार की सराहना की है। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है। गृहमंत्री ने अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई जारी रखने की बात कही। श्री शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसे पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक आज से शुरू होगी। ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक आज होगी, जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगे। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने बताया है कि संशोधित नियमों के तहत इस महीने की 20 तारीख तक कुल 29 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का प्रस्ताव है। ये निवेश सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सूचना और संचार, विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, डेटा केंद्र और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्रों में है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपए से बढ़कर करीब 55 रुपए प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग कल नई दिल्ली में अपना 32वां स्थापना दिवस मनाएगा। इस कार्यक्रम में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले उपस्थित रहेंगे। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टरडेम में भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। एम्स्टरडेम में FIH महिला हॉकी विश्व कप के अपने पहले मैच में भारतीय टीम को कल नीदरलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। नीदरलैंड्स ने दोनों गोल पेनल्टी कॉर्नर से किए। इसके साथ ही मौजूदा चैंपियन नीदरलैंड्स ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत को अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पूल ई में अपने अंतिम मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराना ही होगा। इसके अलावा नीदरलैंड्स को चीन पर जीत भी दर्ज करनी होगी। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह है प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी और मैं हूं आपके साथ भावना।

सपनों में खोने को बहुत समय मिल जाता है, सपनों में खोने को बहुत समय मिल जाता है, जब दिल के आंगन में तुम सा कोई आ जाता है, लगता नहीं दिल फिर कहीं और, जब दिल में कोई बस जाता है, कहती है धड़कन धीरे से, ये कौन मेरे मन में समाता है, ये कौन मेरे आसपास हमेशा मंडराता है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है ये। समय मिला लीजिए 9:21 और 30 सेकंड हो चुके हैं।

उनसे हम कभी गुस्सा नहीं होते जो हमारे दिलों में जगह बना लेते हैं, है ना। बातें छोटी छोटी सी होती हैं लेकिन असर बड़ा डालती हैं। जैसे कि आने वाले वाहन को हाथ दिखाकर रोकते हुए किसी बुजुर्ग को रास्ता पार कराता एक इंसान। एक बार हम उसे पीछे मुड़ के देखते जरूर है, देखो किस तरह से कितनी मतलब सलीकियत से ये रास्ता पार करा रहे हैं इस बुजुर्ग को। एक बार हम उसे देख कर मन में भाव जरूर आते हैं अच्छे वाले। कभी रास्ते में अचानक कोई सामने आ जाए, कोई जानवर या कोई इंसान कुछ भी, तो अचानक से ब्रेक लगा देना, अपनी परवाह ना करके उनकी परवाह करते हुए ब्रेक लगा देना, है ना। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब हमारी स्पीड रफ्तार कंट्रोल में हो। वाहन की रफ्तार काबू में रखना बहुत जरूरी है इस लवली लवली प्यारे प्यारे सावन के मौसम में। नियमों का पालन कीजिए, यातायात के नियमों का पालन कीजिए और अपनी गड्डी को ध्यान से सड़क पर चलाइए मौसम का आनंद लेते हुए।

एनसीआरईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

जब रब जोड़ी बनाता है तो लक्ष्मी का घर में आगमन होता है और किस्मत चमक जाती है। लेकिन किस्मत को चमकाने के लिए घर में बिजली की चमक होना भी जरूरी है कि नहीं? इसीलिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसको 25 सितंबर 2017 को भारत सरकार द्वारा शुरुआत इसकी की गई थी, इसको लाया गया था। मुख्य उद्देश्य यही था कि सभी ग्रामीण और शहरी गरीब घरों को मुफ्त या बेहद कम कीमत पर बिजली कनेक्शन देकर हर घर तक बिजली पहुंचाना, यही इसका उद्देश्य था और इसको पूरा भी किया गया है। ग्रामीण इलाकों के सभी घरों और शहरी इलाकों के गरीब जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन परिवारों को मुफ्त

बिजली कनेक्शन दिया गया। आज जो गरीब परिवार थे, सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना के दायरे में आने वाले जितने भी गरीब परिवार हैं उनके लिए कनेक्शन तो पूरी तरह मुफ्त था। इसके अलावा जो इच्छुक परिवार थे उनसे बहुत ही कम लगभग 500 रुपए लिए गए और बाकी की जो रकम थी वो 10 मासिक किश्तों में उसको लिया गया। यानी सबको सुविधा दी गई ताकि सबका घर चमके, सबके घर में बिजली चमके। जब सरकार जनता के बारे में सोचती है ना, तभी ये जो रिश्ता है जनता और सरकार का वो मजबूत होता है और धीरे धीरे धीरे धीरे ये रिश्ता दोस्ती में और फिर प्यार में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते चलें और हर सरकारी योजना का पूरा लाभ उठाएं, और ये तभी हो सकता है जब हमें पूरी जानकारी हो।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: सजना के लिए।
1: जैसे हमारी प्रकृति हमारे लिए इतना कुछ करती है, हमें सजाती है, संवारती है, कुछ कुछ ऐसे ही हम भी अपने प्रियतम के लिए करते हैं। मतलब हम कहना ये चाहते हैं कि हमारी प्रकृति हमारे लिए सबसे खास, सबसे प्यारी है, क्योंकि वो हमें वो सब कुछ देती है जो हम खुद भी अपने आप को नहीं दे सकते अगर चाहें तो भी। प्रकृति संतुलन को बनाए रखती है, जैसे नदियाँ स्वयं अपने आप को शुद्ध करती हैं अपने स्वयं के जल प्रवाह से। लेकिन परेशानी तब आती है जब हम जानबूझकर प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे? अपने आप से पूछिए, पेड़ काटकर, प्रदूषण फैलाकर। अपने आप से पूछिए, क्या आपने अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन चेक सही समय पर हमेशा करवाया? क्या आपने किसी भी शुभ अवसर पर एक पेड़ लगाया? ये जो मौसम है बारिश का, इसमें अपने आसपास साफ सफाई रखना अपने मोहल्ले में, घर के आसपास, समाज में हमारा कर्तव्य है। प्रकृति से प्यार करना सिर्फ बातों में नहीं, हमारे कर्मों में भी झलकना चाहिए, क्योंकि जिसे हम प्यार करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी देखभाल के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, है ना? सोना चांदी हम देते हैं अपने चाहने वालों को, लेकिन प्रकृति को तो कुछ भी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ हमारा साथ, हमारा प्यार और हमारा अपनापन चाहिए, सिर्फ अपनापन।

म्यूजिकल दिल्लगी का सफर आज अभी यहीं तक। 10:30 बजे मैं भावना आपके साथ ही रहूंगी। प्रोग्राम होगा दिल का मेल बॉक्स, जिसमें आपके मेल्स आते हैं, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं। तो उसके लिए आपको हमारा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर चाहिए होगा। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldaird@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868867853। तो जुड़ जाइएगा हमारे साथ, अभी स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार। 10:30 बजे मैं मिलूंगी, लेकिन अभी समय है समाचारों का।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग

0: और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के लिए राज्य सरकार की सराहना की है। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने बताया है कि संशोधित नियमों के तहत इस महीने की 20 तारीख तक कुल 29 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव शामिल हैं। ये निवेश सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सूचना और संचार, विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, डेटा केंद्र और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्रों के लिए हैं। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपए से बढ़कर करीब 55 रुपए प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवम्बर तक लागू रहेगी। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग कल नई दिल्ली में अपना 32वां स्थापना दिवस मनाएगा। इस कार्यक्रम में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले उपस्थित रहेंगे। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टलफेन में भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगापथिराज से सिर्फ 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान प्राप्त किया। अम्स्टलफेन में FIH महिला हॉकी विश्व कप के अपने पहले मैच में भारतीय टीम को कल नीदरलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi has said that reforms are not a compulsion but a commitment and conviction for his government and that its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi last evening, Mr. Modi said his government has created a clear roadmap for reforms.

0: के नियंत्रण वाला क्षेत्र बताया। ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने के खिलाफ चेतावनी दी। खाड़ी देशों ने भीख मांगने और सुरक्षा कारणों से 20,000 से अधिक पाकिस्तानियों को निर्वासित किया। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला चीन के शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से। अब समाचार विस्तार से। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ दो वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वह अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।
1: दो जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
0: भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण और कौशल बढ़ाने के जरिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में हुई भारत ब्रिटेन रक्षा परामर्श समूह की 25वीं बैठक में दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में जारी सहयोग की समीक्षा की। बैठक में रक्षा अनुसंधान और विकास के साथ साथ 2035 तक की योजनाओं पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन तथा सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: चर्चा के दौरान सीमा पार अपराधों और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उपायों, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने, एकीकृत जांच चौकी, सड़क और रेल नेटवर्क पर बात हुई। दोनों पक्षों ने अतिक्रमण हटाने और सीमाओं के रखरखाव पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत और क्षमता विकास को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया और इन क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने नेपाल में होने वाली संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक की तारीख पर भी सहमति जताई। समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: भारत की अध्यक्षता में जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ कल संपन्न हो गई। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
3: एक ऐसा पर्यटन का भविष्य जो अधिक रेजिलिएंट हो, जो इनोवेशंस को अपनाए और उसके साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी की आधारशिला का निर्माण करे, क्योंकि भारत के लिए पर्यटन केवल मॉन्यूमेंट्स की विजिट तक सीमित नहीं, अपितु हमारी संस्कृति को जानने, हमारी संस्कृति की पहचान कराने का और इस तरह का अनुभव कराने का एक सशक्त माध्यम भी है, जिसके माध्यम को हम लोग अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता के साथ में जोड़ सकते हैं।
0: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक आज से शुरू होगी। ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक आज होगी, जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल आयोजित की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1,129 एकड़ जमीन देने के लिए राज्य सरकार की सराहना की है। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है।
4: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1,129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: गृहमंत्री ने अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई जारी रखने की बात कही। श्री शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसे पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया।

0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हुर्मुस जलडमरू मध्य वर्तमान में अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दक्षिण कैरोलिना में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोक दिया है। उन्होंने संकेत दिया कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता चाहता है। इस बीच ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख मोहसिन रेजाई ने भी ट्रंप की टिप्पणियों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जलडमरू मध्य को फिर से खोलने में असमर्थता और रणनीतिक जलमार्ग पर उसके नियंत्रण के दावे के बीच एक बड़ा अंतर है। खाड़ी देशों में नियमों का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पेश आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस साल 1 मार्च से 13 जुलाई के बीच बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिकों को अलग अलग मामलों में खाड़ी देशों से निर्वासित किया गया। आंकड़ों के मुताबिक सऊदी अरब से 15,500, संयुक्त अरब अमीरात से 3,803, ओमान से 1,606, बहरीन से 521, कतर से 429 और कुवैत से 97 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा गया। इनमें भीख मांगने, अवैध प्रवेश, मादक पदार्थों से जुड़े अपराध, वीजा नियमों के उल्लंघन और तय अवधि से ज्यादा समय तक रहने जैसे मामले शामिल हैं। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से केवल 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान हासिल किया। उधर कुश्ती में भारत की महिला पहलवान काजल धोचक ने स्लोवाकिया में अंडर-20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में काजल ने चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराया। इधर BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टेन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया यी फैन और झांग शू शियान को 16-21, 21-15, 21-13 से हराया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। उधर अमस्टल फैन में FIH महिला हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम को कल नीदरलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। और पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 से खेला जाएगा। पाकिस्तान पर 5-3 की शानदार जीत के बाद भारत ने पूल डी में दूसरा स्थान हासिल किया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने सोमालिया के समक्ष 22 भारतीय नाविकों वाले 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मुद्दा उठाया। उच्चायोग ने बताया सभी भारतीय नाविक सुरक्षित। भारत और ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हुर्मुस जलडमरू मध्य को अमेरिका के नियंत्रण वाला क्षेत्र बताया। ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने के खिलाफ चेतावनी दी। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह है प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स, जिसमें आपके मेल्स और मैसेजेस हम शामिल करते हैं। मेल के लिए ईमेल आईडी fmgoldairdelhi@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9868868753। तो हमारे पास संदेश आने शुरू हो गए हैं। ये नवी हसन जी हैं और प्यार भरा आदाब इन्होंने लिखकर भेजा है। मारहरा दरवाज़ा एटा से इनका संदेश आया है, साथ में इनके सभी साथी भी हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं अनिल मोहन जी, उषा मोहन टिल्लू नायक और मधु नायक पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, राशिद हुसैन अंसारी साहब हैं। इन्होंने एड्रेस तो नहीं लिखकर भेजा है, लेकिन हाँ हाँ लिखा है नीचे लिखा है, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से इनका संदेश हमें मिला है। राशिद हुसैन अंसारी और उनके सभी साथी हैं। साथ में बहुत सारे संदेश एक के बाद एक आ रहे हैं, तो थोड़े से जरा गाना वाना सुनवा देते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार का संदेश आया है। गाना कौन सा सुनना चाहते हैं? गाना ये वाला।

व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव दिव्येंदु भूषण संस्कृति और पौरुष का संदेश हमें मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये माया है और माया का मायापुरी दिल्ली से संदेश आया है। गुड मॉर्निंग भावना जी, इन्होंने लिखकर भेजा है, गुड मॉर्निंग आपको भी, पसंद का गीत कोई भी चला दीजिए। ठीक है, मस्कीन दादा है, ये तुलसी मस्कीन है, वीना मस्कीन है, आशीष राजा है, चैतन्य मस्कीन है, मेघा राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, ये दिल्ली शाहदरा बिहारी कॉलोनी से इनका संदेश आया है। और किसी भी गाने में हमारा नाम शामिल कर लीजिए, बहुत ही प्यारी सी बात इन्होंने लिखकर भेजी है। इसके अलावा हमारे साथ हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निकट परवीन अब्बास, शाहनवाज, सरफराज, वर्दीन, सुहान, अरजान, अबान, ऊपर कोट, मोहल्ला चौखुंटी, बुलंदशहर से इनका संदेश आया है। और ये फिल्म आ गले लग जा का ये गीत सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और सुषमा श्रेष्ठ की आवाज में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक बार फिर स्वागत है आपका। दिल का मेलबॉक्स प्रोग्राम है ये। चारू जटोलिया, राजेंद्र जटोलिया, दिल्ली नांगलोई यानी नांगलोई दिल्ली से इनका संदेश आया है। इन्होंने कुछ पंक्तियां लिखकर भेजी हैं, थोड़ा सा राइमिंग में ना मैंने चेंज किया है वो मैं सुना देती हूँ आपको। इन्होंने लिखकर भेजा, लोगों को समझने का हुनर हम में नहीं, लोगों को समझने का हुनर हम में नहीं, जो दिल में आया वही कहा हमने सही। भीड़ के साथ चलना हमें आता नहीं, इसलिए अकेले चलने के अलावा रास्ता नहीं। क्या बात है। कोमल प्रसाद शर्मा हैं, उत्कर्ष कौशिक हैं, योगेश जैन हैं, कस्बा रबूपुरा ग्रेटर नोएडा से इनका संदेश हमें मिला है। मुकेश हैं गुडविल, अरे वाह बड़ा प्यारा नाम है गुडविल। ऋषभ कमल नाभ इनका रामनगर पुराना बिहार से संदेश हमें मिला है। इन्होंने लिखा है, राधे राधे भावना मैडम, राधे राधे मुकेश सर। इसके अलावा हमारे पास जो संदेश आए हैं, अफरोज शेख हैं, इनका संदेश नेमुआ सुपौल बिहार से हमारे पास आया है। मुकेश कश्यप जी का संदेश है, शीतल सोनू राजपाल काजल मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी सीमा मोहिनी ऋतिक बलबीर सिंह, ये सब मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से अपना संदेश हमें भेज रहे हैं। और हाशमी साहब हैं, मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी, इनका संदेश कहाँ से आया है? नई बस्ती गंज डुंडवारा से इन सबका संदेश हमें मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गॉड का संदेश हमें मिला है और फिल्म गाइड का ये बहुत ही प्यारा सा लता जी की आवाज़ में गीत सुनना चाहते हैं, ये रहा।

आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेरा जहां, इनका संदेश हमें मिला है। बहुत ही बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारे गुलाब के फूल जो हैं ये हमें भेजते हैं अपने संदेश में, बहुत अच्छा लगता है। भारत भूषण जी हैं, ये कहां चले गए जी, एक मिनट, दूसरा संदेश खुल गया। भारत भूषण जी हैं, इनका संदेश हम पहले भी ले चुके हैं, व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से बार बार इन्होंने हमें संदेश भेजा है। एस पी गोयल साहब हैं, ये सत्य प्रकाश गोयल हैं, रेनू गोयल हैं, विदित गोयल हैं, रोहिणी दिल्ली से इनका संदेश हमें मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल और गीतिका खोरवाल का संदेश है। साथ में भानु प्रकाश जी भी हैं उत्तम नगर दिल्ली से, ये जो गीत सुनना चाहते हैं फिल्म अनजाना का, बहुत ही खूबसूरत सावन का गीत है, ये रहा आपकी पसंद का गीत।

लता जी और रफी साहब की आवाज में इतना खूबसूरत सा गीत ये हमने सुना। संदीप मक्कड़ जी हैं, ज्योति मक्कड़ है, मन्नत मक्कड़ है, भारत मक्कड़ है, कमल सानी है, पिंगा वाला चौक गुरैया जलंधर से। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपनी पसंद का गीत भी इन्होंने लिखकर भेजा है, लेकिन अभी तो समय हो चला है। नवाब अहमद साहब भी हैं, दिल्ली रेडियो लिसनर क्लब है। नवाब अहमद भारती हैं, बबलू कश्यप हैं, महेश अग्रवाल हैं, अशरफ अली हैं, सिराज मिथुन हैं, संजय ढींगरा हैं, सलीम अख्तर हैं, दिल्ली से इनका संदेश हमें मिला है। और परभणी महाराष्ट्र से संघई परिवार है पूरा, रूपेश, महेश, प्रज्ञेश और प्रत्येक संघई है। और फिल्म घर का बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत सुनना चाहते हैं।

सचमुच आपके मैसेजेस और ईमेल्स के जो अंदाज हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, मन करता है कि बस पढ़ते रहें, लेकिन समय कह रहा है कि अब चलना होगा। भावना को दीजिए इजाजत। 11:10 पर प्रोग्राम तस्वीर लेकर मैं भावना आपके साथ ही रहूंगी, लेकिन उससे पहले समय है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के लिए राज्य सरकार की सराहना की है। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपए से बढ़कर करीब 55 रुपए प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। भारत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक कल जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी देने के साथ संपन्न हुई। जयपुर घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच AI पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ दो वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के जरिए किया गया है। खाड़ी देशों में नियमों का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पेश आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस साल 1 मार्च से 13 जुलाई के बीच बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिकों को अलग अलग मामलों में खाड़ी देशों से निर्वासित किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वर्तमान में अमेरिकी क्षेत्र है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दक्षिण कैरोलिना में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोक दिया है। उन्होंने संकेत दिया कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता चाहता है। इस बीच ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने ट्रंप के दावों को खारिज किया है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टरडेम में भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह है प्रोग्राम तस्वीर। मैं हूं आपके साथ भावना और आज हम रेडियो तस्वीर बनाएंगे हरियाणा के

हरियाणा के पंचकुला जिले में मोरनी हिल्स में है टिक्कर ताल, एक बेहद खूबसूरत, शांत और लोकप्रिय झील। ये हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन माना जाता है। यहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ है, यहाँ करने के लिए बहुत कुछ है। बात करेंगे, बस बने रहिए हमारे साथ तस्वीर प्रोग्राम में।

शिवालिक पर्वतमाला की निचली पहाड़ियों में बसा है मोरनी। अपने ठंडे मौसम, खूबसूरत प्राकृतिक नजारे और ट्रेकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और बहुत सारे एडवेंचरस गेम्स हो सकते हैं यहाँ पर जो लोग खेलते हैं। दिल्ली से महज 5 घंटे और चंडीगढ़ से 45 किलोमीटर दूर है पंचकुला जिले का मोरनी। एक शांत और रमणीय स्थान होने के साथ साथ रोमांच, मस्ती और मनोरंजन का भी बेहतरीन संगम है। यहाँ आके आप एक अलग तरह की खूबसूरती में खो जाएंगे और इसी मोरनी में है ये टिक्कर ताल जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो एक बार एक फील लें कि यहाँ आने के बाद कैसा महसूस होता है। अमित जी के वचनों के साथ फिल्म सिलसिला का ये गीत है। थोड़ी सी फील लाने के लिए वहाँ जगह की आपको ये सुनवाते हैं और फिर उसके बाद आते हैं टिक्कर ताल की खूबसूरती पर।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

खूबसूरती का अंदाजा तो कुछ कुछ आपके मन को हुआ ही होगा, है ना। टिक्कर ताल दो कृत्रिम झीलों, एक बड़ा ताल और एक छोटा ताल, इनका एक समूह है जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ आप शांत वातावरण का आनंद उठा सकते हैं। और वो पहाड़ियाँ कैसी हैं, थोड़ा सा मन की आंखों से देखने की कोशिश करते हैं, रेडियो की आंखों से देखने की कोशिश करते हैं, तस्वीर बनाते हैं। ये समुद्र तल से लगभग 3600 फीट की ऊंचाई पर मोरनी, जहाँ पर है ये टिक्कर ताल। यहाँ पे वनस्पतियों और जीवों की एक आकर्षक विविधता पाई जाती है। चीड़ के वृक्ष पहाड़ियों की चोटियों को सुशोभित करते हैं और नीम, ओक, पीपल, जामुन, अमलतास और जैकारांडा जैसे पेड़ ढलानों को सुशोभित करते हैं। यानी पहाड़ पे ऊपर से नीचे की ओर ये सब पेड़ दिखाई देते हैं आपको। और जब ये पेड़ खिलते हैं ना, तो पहाड़ियाँ रंगों से सराबोर हो जाती हैं। इतना मनमोहक दृश्य होता है ये कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। इन वृक्षों को पहाड़ियों में एक प्रायोगिक प्रयास के रूप में लगाया गया था, यानी शुरू में एक्सपेरिमेंट के रूप में लगाया गया था। यहाँ की जो जलवायु थी वो इन पेड़ों के फलने फूलने के लिए उतनी अनुकूल नहीं थी, लेकिन एक प्रयोग किया गया था। इसीलिए जो यहाँ पर चीड़ के पेड़ हैं वो थोड़े छोटे होते हैं और शंकु होते हैं। मोरनी, जहाँ पर ये टिक्कर ताल है, वो वन्य जीव प्रेमियों और पक्षी प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ बटेर, सैंड ग्राउस, कबूतर ऐसे पक्षियों की प्रचुर आबादी के साथ साथ सियार, लक्कड़, वगे, सांभर और यहाँ तक कि एक दो जंगली बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये टिक्कर ताल और इसके आसपास मोरनी का ये पूरा नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत है। बस मन करता है कि ज़्यादा दूर थोड़ी दिल्ली से गाड़ी उठाएं और पहुंच जाए यहाँ पर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम तस्वीर। मैं हूं आपके साथ भावना और आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा के टिक्कर ताल की।

ये जो दो कृत्रिम तालों से मिलकर बना है टिक्कर ताल ना, ये दोनों ताल एक छोटी पहाड़ी से अलग अलग बहने के बावजूद रहस्यमय तरीके से आपस में जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। और खास बात ये कि पानी का स्तर हमेशा एक जैसा रहता है दोनों तालों में, और स्थानीय लोग इस झील को, इस ताल को शुभ मानते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान यहाँ लोग एकत्रित भी होते हैं, और झील के किनारे छोटा सा मंदिर भी है जहाँ पर लोग पूजा करते हैं। पुराने किले के अवशेष जो इस ताल के पास हैं, वो इस जगह की इतिहास की कहानी बयां करती है। ये पुराने

0: के जो अवशेष हैं ये बहुत खास हैं और यहाँ पर लोग आकर इनको देखकर जाने की कोशिश करते हैं कि क्या कहानी रही होगी। कुछ अगर आपको यहाँ पे गाइड मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो बता भी सकते हैं आपको। अब मोरनी में ट्रैकिंग के कई दिलचस्प विकल्प हैं। यहाँ से दो तालों और पुराने किले तक ट्रैकिंग की जाती है और साहसिक कार्यों के शौकीनों के लिए मोरनी के पास से बहने वाली घग्गर नदी, इसके किनारे भी ट्रैकिंग के रास्ते मौजूद हैं।
1: मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे।

0: एनसीआरईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जब ताल के अंदर आप बोट में बैठे हों, बोटिंग कर रहे हों, पैरा मोटरिंग कर रहे हों और दूसरी एक्टिविटीज़ कर रहे हों, तो ऐसे ही लगता है ना कि ताल आपको अपनी बाहों में बुला रही है। बहुत मज़ा आता है। बहुत सारे एडवेंचर्स यहाँ पर आप जो स्पोर्ट्स हैं वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो मोरनी फोर्ट है वो भी आप देख सकते हैं। किले के आसपास की जितनी पहाड़ियाँ हैं ना, उनका सुंदर नज़ारा इस मोरनी फोर्ट से बहुत खूबसूरत दिखता है। पुराना ऐतिहासिक किला है, इसे घूमने में भी बहुत मज़ा आता है, देखने में मज़ा आता है। और यहाँ पर मतलब आप ना पिक्चर्स ले सकते हैं ना आप वीडियो बना सकते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये मनाइए यहाँ पर। और यहाँ की खूबसूरती का जो आनंद आप लेना चाहें वो तो आप ले ही सकते हैं।

पसीना बड़ी खूबसूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

सचमुच बहुत ही खास है। टिक्कर ताल एडवेंचर पार्क है यहाँ पर, जहाँ पर रोप क्लाइंबिंग होती है, ब्रिज क्रॉसिंग होती है, कारो पीक है, शिवालिक पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पर ट्रेकिंग होती है। फोटोग्राफी के लिए शौकीन लोग जो है यहाँ आना पसंद करते हैं। टिक्कर ताल टूरिज्म कॉम्प्लेक्स है, हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा संचालित है। इस परिसर में रुकने और खाने की बेहतरीन सुविधा है, तो फिर यहाँ आने में क्यों देर लगाई जाए, बस पहुँच जाया जाए।

उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का जो रेडियो प्रोग्राम तस्वीर है वो आपको पसंद आया होगा, जिसमें हमने टिक्कर ताल की तस्वीर बनाने की कोशिश की। आप वहाँ जाएंगे तो हमें ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और कोई अगर चीज़ जो हमसे रह गई हो तो आप वो भी ऐड करके हमें बता सकते हैं। अभी स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार, मैं आपसे मिलूंगी अगले शनिवार, लेकिन अभी समय है समाचारों का, और समाचारों के बाद 12:10 पर घर आंगन सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल नियम नहीं बदल रही बल्कि नीतियों में भी व्यापक बदलाव कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
1: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है। और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है कि रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगे। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास,

0: शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। 57वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है ताकि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की सशक्त समिति ने आज नई दिल्ली में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के गैर कृषि आजीविका घटक के अंतर्गत प्रस्तावों की समीक्षा की। बैठक का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को मजबूत और व्यापक बनाना तथा स्वयं सहायता समूहों के छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाकर विकासोन्मुख व्यवसायों में बदलने का मार्ग तैयार करना था। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल ने की। झारखंड के रामगढ़ जिले में मां छिन्नमस्तिका सीमेंट एंड स्टील पावर प्लांट में कल रात टरबाइन में तेज धमाके के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण प्लांट का प्रोटेक्शन सिस्टम काम नहीं कर पाया, इससे टरबाइन की गति अचानक बढ़ गई और इसमें विस्फोट हो गया। प्लांट कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम में बढ़ते तापमान और पर्याप्त कूलिंग व्यवस्था नहीं होने की जानकारी प्रबंधन को पहले से ही दी गई थी लेकिन समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। एक केमिकल रिएक्टर के अचानक फटने से औद्योगिक इकाई में जोरदार धमाका हुआ और भीषण आग लग गई। रिएक्टर फटने के कारणों की जाँच की जा रही है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टरडैम में भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. India has raised with Somalian authorities the issue of hijacking of 2 foreign-flagged commercial vessels with 22 Indian sailors on board. The vessels carrying 16 Indian seafarers on board MT Cebu and 6 Indian seafarers on board MV Lutuf were hijacked by armed pirates in separate incidents off Yemen and Somalia. In a social media post, the Indian High Commission in Kenya said all Indian seafarers are reportedly safe. Yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal, in response to a query during his bi-weekly media briefing, also addressed growing safety concerns regarding Indian mariners operating in volatile waters, reiterating New Delhi's commitment to prioritizing the welfare of its seafaring community. The government today imposed restrictions on the manufacturing, sale and distribution of all fixed-dose combinations, FDCs, containing chlorpheniramine maleate and phenylephrine hydrochloride for children below 4 years of age. The Health Ministry, in a notification, mandated a clear warning that these medicines shall not be used in children below 4 years of age, in a significant step to safeguard the health and safety of young children. The government directed manufacturers to clearly display the warning, fixed-dose combination shall not be used in children below 4 years of age on the label, package insert and promotional literature associated with these formulations. The government said that

0: आंगन।
1: कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ रेनू,
0: और मैं हूं अमित कमल। तो स्वीकार कीजिए हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। आप हमें सुन रहे हैं दोस्तों आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ

0: पर भी, यानी 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर।
1: तो अमिता, शुरू करते हैं अपनी बातों मुलाकातों का सिलसिला। वो मिले तो दुनिया खिल जाए, न मिले तो मन मुरझाए, दे हौसला जो मेरे इरादों को, वो सुकून जिसकी बातों में,
0: बिना कुछ कहे जो मुझे समझे, मेरी खामोशियों को सुने, लड़े झगड़े रूठे भी पर ना हो खफा कभी दिल से,
1: ना खत्म हो रूठने मनाने का ये सिलसिला, हर मौसम में दोस्ती का रंग रहे यूं ही खिला। जी हाँ, बात है दोस्ती की, दोस्तों की। तो अब तक तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि आज का हमारा सवाल है दोस्ती पर। तो आपकी नजर में दोस्ती क्या है, और किसी को अपना दोस्त बनाने से पहले आप उनकी कौन सी खूबियां देखते हैं? जी हाँ, बताना है आज आपको यही।
0: और तो दोस्तों, लिख भेजिए हमें fmgoldg@gmail.com पर। हमें रहेगा बेसब्री से आपके मेल्स का इंतजार।

0: लेजेंडरी मूवी शोले से आपने ये गीत सुना किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाज में। और रेणु, क्या बताने वाली थी हमारे दोस्तों को आप?
1: देखो अमिता, हम लोग दिन विशेष की बात अपने कार्यक्रम में जरूर करते हैं, तो आज है 22 अगस्त यानी कि आज जयंती है हिंदी व्यंग के उस महान लेखक की, जिन्होंने हमें सिर्फ हंसना नहीं सिखाया बल्कि हंसते हंसते अपनी कमियों को देखना और उस पर गंभीरता से सोचना सिखाया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हिंदी के सर्वश्रेष्ठ व्यंगकार हरिशंकर परसाई जी की,
0: जो सिर्फ एक महान व्यंगकार ही नहीं थे रेणु, बल्कि वो एक संवेदनशील कहानीकार, गंभीर संपादक और जागरूक सामाजिक चिंतक भी थे। इन्होंने साहित्य की लगभग हर विधा में अपनी कलम चलाई और हर विधा को एक नया आयाम दिया।
1: बिल्कुल, तो उन्हें याद करते ही अक्सर चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती है अमिता। लेकिन उनका व्यंग सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, बल्कि एक व्यंग उनका जो था वो एक विचार था, एक उद्देश्य था। और उनसे पहले, परसाई जी से पहले जो व्यंग था, सटायर का अर्थ सिर्फ मजाक या मनोरंजन से लिया जाता था, लेकिन उनके व्यंग लेखन ने बताया कि व्यंग पाखंड, भ्रष्टाचार और समाज के दिखावे के विरुद्ध एक बड़ा हथियार भी हो सकता है।
0: परसाई जी को हिंदी साहित्य का प्रवर्तक लेखक माना जाता है। इनके मुख्य व्यंग संग्रह हैं सदाचार की ताबीज और ठिठुरता हुआ गणतंत्र, शिकायत मुझे भी है, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना और विकलांग श्रद्धा का दौर, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
1: और अमिता, उनकी रचनाएं पढ़ते हुए हम हंसते तो हैं, लेकिन हंसी जो है वो तुरंत एक विचार में बदल जाती
0: बिल्कुल।
1: है। और परसाई जी स्वयं कहते हैं कि व्यंग जीवन से साक्षात्कार करना सिखाता है, जीवन से भागना नहीं। परसाई जी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी समाज के ढोंग पर कोई तीखा कटाक्ष होगा तो उनकी कलम हमेशा जिंदा रहेगी। आज उनकी जयंती पर हम सब उनके अपने कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें याद कर रहे हैं और उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

0: ये गीत आपने सुना शिकारी फिल्म से, आवाज थी लता जी और मोहम्मद रफी की।
1: और अमिता देखो, हमने जो सवाल पूछा था अपने श्रोताओं से, तो मेल सानी उनकी शुरू हो गई हैं और ये पहला मेल जो है हमारे पास आया है नवीन भाटिया का। और भाई इनको, इनके बारे में तो मानना पड़ेगा कि जब भी हम कोई सवाल पूछते हैं या कार्यक्रम से, सबसे पहले इनका मेल आ जाता है और ये जुड़ते हैं हमारे साथ सबसे पहले।
0: हमारे रेगुलर श्रोता
1: भी हैं। हाँ, तो इन्होंने लिखा है कि दोस्ती इबादत है, दोस्तों में सच्चाई और दोस्ती निभाने की चाह होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कही, दोस्ती तो निभाने का ही नाम है, क्योंकि दोस्ती जब निभाई जाती है तभी
0: तो वो दोनों तरफ से होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, दोनों तरफ से होनी चाहिए और निभाने का नाम ही दोस्ती है। और ये जो दूसरी मेल एक और है मेरे हाथ में, ये है अफरोज शेख नेमुआ सुपौल बिहार से, और ये लिखते हैं कि दोस्ती सिर्फ मदद करने का नाम नहीं, दोस्तों में अपनापन झलकना चाहिए। तो दोस्ती में जब तक अपनापन नहीं, दोस्ती नहीं चलती।
0: बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। जब तक अपनापन नहीं लगेगा तो दोस्ती कैसे लगेगी?
1: बिल्कुल, कोई अपना लगता है तभी तो वो दोस्त लगता है। बिल्कुल सही बात कही। और देखो अमिता, अब ये एक और मेल जो तुम्हारे हाथ में है, ये कौन है, ये कौन कहाँ से जुड़े हैं?
0: ये योगराज सहगल जी हैं और ये लिख रहे हैं, इन्होंने ये तो नहीं लिखा है ये कहाँ से लिख रहे हैं, पर इन्होंने लिखा है, नमस्ते रेणु जी और अमिता जी, मैं सिमरन सहगल, मतलब योगराज सहगल की मेल आईडी से सिमरन सहगल जी ने है, मैं आपका प्रोग्राम अपने पापा के साथ रोज सुनती हूं। आज मेरे पापा ने बताया कि आज का टॉपिक दोस्ती के ऊपर है। मेरा मानना है कि दोस्ती बहुत खूबसूरत चीज होती है अगर वो दोनों तरफ से हो।
1: बिल्कुल सही बात है, एक तरफा कोई चीज, कोई रिश्ता नहीं चलता और दोस्ती का तो बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्त अगर कोई है तो वो जरूर आपको निभाएगा, जैसे कहते हैं एक कदम आपने बढ़ाया तो दूसरा कदम वो भी बढ़ाएगा और तभी दोस्ती और चलती है।
0: बिल्कुल रेणु, और एक और मैसेज आ गया है हमारे पास चरण दास जी का, ये लिख रहे हैं, रेणु जी अमिता जी नमस्कार। नमस्कार आपको चरण दास जी। और ये राजू अग्रवाल केशव विवेक चौधरी वास हिसार से लिख रहे हैं, पैदा होते सभी रिश्ते बने हुए हमें मिलते हैं, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो खुद बनाना पड़ता है, और दोस्त वही है जो आपका दर्द समझे, झूठी हमदर्दी दिखाकर, आपकी बात सुनकर दूसरों के सामने मजाक बनाए, ऐसे दोस्तों से दूर रहना चाहिए, ये कह रहे हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी सीख और अनुभव दे रहे हैं ये।
0: और अब बात कर लेते हैं रेणु डेज ऑफ द डे की, और हम बात करेंगे मद्रास स्थापना दिवस की। जी हाँ, मद्रास जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसकी स्थापना 22 अगस्त 1639 को हुई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के फ्रांसिस डे ने स्थानीय नायक शासकों के साथ भूमि अनुदान पर हस्ताक्षर किए थे। और कोरोमंडल तट पर स्थित इस भूमि ने फोर्ट सेंट जॉर्ज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था, जो आगे चलकर एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र और प्रशासनिक केंद्र बन गया। सदियों से मद्रास अपनी संस्कृति, वास्तुकला और समृद्ध व्यापार के लिए प्रसिद्ध एक जीवंत शहर के रूप में विकसित हुआ।
1: बिल्कुल अमिता, मद्रास दिवस केवल इतिहास को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि शहर की पहचान का जश्न मनाने का अवसर भी देता है। ये चेन्नई की परंपरा, आधुनिकता के अनूठे संगम की याद दिलाता है, कर्नाटक संगीत और भरतनाट्यम से लेकर आईटी पार्क और फलते फूलते फिल्म उद्योग तक।
0: और ये उत्सव शहर की उत्पत्ति को सम्मान देने के लिए ऐतिहासिक नाम मद्रास का उपयोग करता है। हालांकि शहर का आधिकारिक नाम 1996 में बदलकर चेन्नई कर दिया गया था, ये तो आपको पता ही है, लेकिन ये आयोजन अपनी विरासत को उजागर करने के लिए पुराने नाम का ही इस्तेमाल करता है।
1: बिल्कुल अमिता, और आज के दिन यहाँ विरासत यात्रा निकाली जाती है, और इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी 2004 से।

0: अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी चरित्रहीन और आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। और अमिता, देखो लगातार हमारे श्रोता हमसे जुड़ते जा रहे हैं अपने मेल के माध्यम से, और ये जो एक मेल हमारे सामने है ये है राजेश शर्मा गाजियाबाद से, और ये लिख रहे हैं कि हमने दोस्ती की, अपने दोस्तों में कोई खास खूबी नहीं देखी, बस दोस्ती हो गई।
1: और अच्छी बात,
0: बिल्कुल अच्छी बात है, सही बात है, दोस्ती सोच समझ के नहीं की जाती, ये भी अच्छी बात, मतलब ये दोस्ती की पहचान होती है। और इसके साथ उन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छा लगता है जब हम तीनों दोस्त क्लास छठी से लेकर ग्रेजुएशन तक साथ में रहे, और हम तीनों अब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद यूनिवर्सिटी और में पढ़ाई के बाद अलग हो गए हैं, अपने अपने व्यवसाय और अपने अपने शहरों में चले गए हैं, लेकिन आज तक दोस्ती कायम है और कभी कभी हम आपस में मिल लेते हैं।
1: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है,
0: सही बात है। अगर दोस्ती है वास्तव में तो दोस्त निभाने का तरीका यही है कि आप लोग मिलते जुलते रहें, और दोस्ती तो मन से होती है, दिल से होती है।
1: और ना दोस्तों, आप भी हमें मेल कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं हमारा मेल आईडी fmgoldga@gmail.com। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। और रेणु, एक और मैसेज आ गया है गौरी शंकर जी का, आप दोनों बेटियों को राम राम। तो हमारी तरफ से भी गौरी शंकर अंकल आपको राम राम। उम्र के साथ कितने ही दोस्त हैं जो चले गए, अभी यादें बाकी हैं, ये लिख रहे हैं। और अगर दोस्त समझदार हो तो मुसीबत में काम आता है, यानी कि रोते हुए को हंसा देता है।
0: बिल्कुल सही बात कही है, देखो अमिता इन्होंने, क्योंकि दोस्ती का तो नाम यही है कि जब आप पे कोई मुसीबत आए या किसी परेशानी में हो, दुख में हो, तो वो जो अपने होते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, वो आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ते, बल्कि और करीब आते हैं और आपकी समस्या का समाधान करने में आपका सहयोग करते हैं। तो देखो, दोस्ती की तो बात होती रहेगी, लेकिन अभी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं अटल टिकरिंग लैब की। टिकरिंग का मतलब है कुछ नया करना या नया सोचना, आविष्कार करना। अटल टिकरिंग लैब नीति आयोग की ऐसी ही एक कमाल की पहल है, जिसमें स्कूल की वो चार दीवारें जहां सिर्फ कॉपियां और किताबें होती थीं, अब एक ऐसी जगह में बदल चुकी है जहां रोबोट्स बनते हैं, 3D प्रिंटर से जादुई चीजें छपती हैं और बच्चे आसमान में ड्रोन उड़ाते हैं।
1: जी हाँ, यही है अटल टिकरिंग लैब, जिसमें हमारे देश के छठी से 12वीं क्लास के छोटे छोटे बच्चे जाकर कोडिंग सीख रहे हैं। इंटरनेट ऑफ

0: थिंग्स पर काम कर रहे हैं और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो बड़े बड़े इंजीनियर भी नहीं सोच पाते हैं रेणु।
1: बिल्कुल अमिता, और एक बच्चा जो गांव के स्कूल में पढ़ता है वो खुद एक ऐसी ऑटोमेटिक लाइट बना रहा है जो रात को तो जलती है और सुबह अपने आप बंद हो जाती है। ये कोई जादू नहीं बल्कि ये ATL लैब का कमाल है।
0: यहाँ रटना मना है, यहाँ सीखना चाहता है और छात्रों को केवल किताबों तक सीमित न रखकर डू इट योरसेल्फ यानी DIY के जरिए विज्ञान और तकनीक सिखाना और बच्चों की सोच को समाधान केंद्रित इनोवेटिव बनाना ही तो इस लैब का उद्देश्य है रेनु।
1: बिल्कुल, तो युवाओं से अपेक्षा है कि अपनी क्लास से निकलकर उस लैब में जाएं और अपने न्यू आइडियाज को हकीकत में बदलें।

0: हरजाई फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में।
1: और अमिता, देखो श्रोता हमारे जुड़ते जा रहे हैं और अपनी दोस्ती के किस्से हमें बयां कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने दोस्ती को याद करते हुए बता रहे हैं। तो अभी जो मेल हमारे सामने है, ये महेश अग्रवाल बहादुरगढ़ हरियाणा से लिख रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं और जिसके पुराने दोस्त होते हैं वो लोग बहुत ही दिल से पक्के और दिल के सच्चे होते हैं। तो भाई सही बात है, और दोस्ती का जो संबल होता है उसकी वजह से तो आपके अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास आता है और उस आत्मविश्वास के सहारे आप जो है बहुत कुछ कर गुजरते हैं और सफलता जब आपको मिलती है तो सबसे पहले खुश होने वाले आपके दोस्त ही होते हैं।
0: और साथ ही सोनीपत से हमारे साथ सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी ने हमें लिखा है, आदरणीय रेणु और अमिता जी सादर प्रणाम। दोस्त वो नहीं होते जो तस्वीर में आपके साथ खड़े होते हैं, सच्चे दोस्त वो होते हैं जो तकलीफ में आपके साथ खड़े होते हैं। बहुत ही सुंदर बात कही,
1: सही बात है कि दोस्ती वही है जो तकलीफ में साथ दे।
0: और अब बात कर लेते हैं सफलता की कहानी की, क्योंकि हमारा जो सेगमेंट है घर आंगन कार्यक्रम में, एक सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं जिसमें हम एक ऐसी सफलता की कहानी की बात करते हैं जो आपको प्रेरणा देती है कुछ कर गुजरने का। ऐसी ही कहानी आज के आपके साथ साझा कर रहे हैं रेणु। समय के साथ समाज की सोच जो है वो जरूर बदल रही है, लेकिन आज भी कई ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में महिलाओं के लिए जीवन आसान नहीं है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में भी कई महिलाएं आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रही हैं। हालांकि इन्हीं परिस्थितियों के बीच कुछ महिलाएं अपने हौसले और मेहनत से नई मिसाल कायम कर रही हैं। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी रामपुर नैकिन के भरतपुर गांव की गुड्डू रावत की भी है।
1: बिल्कुल, अमिता और गुड्डू रावत की शादी जो है महज 14 साल की उम्र में हो गई थी और कम उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारियां उनके कंधे पर आ गई थीं। तो इन विपरीत परिस्थितियों के कारण घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था उनके लिए। ऐसे में गुड्डू ने भी परिवार की मदद के लिए खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया और कई बार पूरे दिन उन्हें खेत में कड़ी मेहनत करने के बाद मजदूरी के रूप में सिर्फ 4 किलो गेहूं ही मिल पाता था। सोचो क्या उनकी हालत थी घर की, और इतनी कम आमदनी में परिवार की जरूरतें पूरी करना तो भाई बहुत मुश्किल, बहुत कठिन था उनके लिए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी
0: और रेणु इसी दौरान भरतपुर गांव में आजीविका मिशन के तहत हथकरघा और दस्तकारी सहकारी समिति की शुरुआत हुई और समिति प्रबंधक के मार्गदर्शन में गुड्डू रावत की इस समिति से जुड़ गई और यहाँ उन्हें हथकरघा से कपड़ा बुनने का प्रशिक्षण दिया गया। शुरुआत में उन्होंने सामान्य धागों से कपड़ा सीखा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस काम में महारत हासिल कर ली।
1: बिल्कुल अमिता, क्योंकि ये विद्या जो है वो उसमें बिना बिजली के हाथों से करघे पर धागों को पिरोकर कपड़ा तैयार किया जाता है और गुड्डू ने इस कला को इतनी लगन और मेहनत से सीखा कि आज वे कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। वर्तमान में गुड्डू रावत भरतपुर हथकरघा केंद्र में करीब 150 महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं।
0: और रेणु, गुड्डू रावत की मासिक आय अब 14,000 से 15,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। उनके द्वारा तैयार किए गए शुद्ध कॉटन के कपड़ों की मांग अब सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं है, भोपाल, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी उनके उत्पादों की अच्छी खासी मांग है।
1: बिल्कुल अमिता, तो गुड्डू रावत की ये कहानी बताती है कि अगर सही मार्गदर्शन और अवसर मिल जाए तो ग्रामीण महिलाएं भी अपने हुनर से अपनी जिंदगी बदल सकती हैं और बहुत कुछ अपने परिवार के लिए कर सकती हैं।

0: अभी आपने सुना ये गीत फिल्म रोजा से, और गायिका स्वर था मिनमिनी का।
1: और हमारे पास एक मेल आ गया है रेणु, ये हैं डी राजेश्वर राव शकरपुर दिल्ली से। ये लिख रहे हैं, अ फ्रेंड इज अ पर्सन यू नो वेल लाइक एंड फील अफेक्शन फॉर समवन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ योर फैमिली बट विद वूम यू शेयर ट्रस्ट केयर एंड म्यूचुअल सपोर्ट। अ फ्रेंड इज नीड इज अ फ्रेंड इज डीड। बहुत अच्छी बात,
0: बिल्कुल सही बात है कि दोस्ती में जो है वो भावनाओं की सर्वोपरि होती हैं, भावनाएं जरूरी होती हैं। और इसके बाद एक मेल और है हमारे पास इदरीस सैफी जी, ये भी हमारे रेगुलर श्रोता हैं। इन्होंने कहा है कि मेरी दोस्ती जूनियर हाई स्कूल में किसी से हो गई थी और वो सीनियर से हो गई थी और सीनियर से आज तक चल रही है। तो बिल्कुल सही बात है, देखो अमिता कहते हैं ना कि दोस्ती में उम्र की सीमा नहीं होती, बस दोस्त आपको अच्छा लगना चाहिए और दोस्त साथ निभाने वाला होना चाहिए, तो फिर वो दोस्ती जो है वो ता उम्र चलती है।
1: बिल्कुल। और रेणु, हम जब कार्यक्रम करते हैं तो हमारे इस सेगमेंट में कई सारी बातें हम करते हैं, तो हम कई

0: और इसके कौन से फायदे हैं पता है तुम्हें रेणु, वो मुझे बताओ और हमारे श्रोताओं को बताओ।
1: बिल्कुल अमिता, तो आंखों की रोशनी बढ़ाने की अगर बात करें तो शरीफा जो है वो सबसे अच्छे फल माना जाता है और ये विटामिन सी और विटामिन ए से भरपूर होता है जो आपकी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने में मदद करता है।
0: रेणु, ये जो फल है कॉपर और डाइट्री फाइबर से भरपूर होता है और ये आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम अपच संबंधित समस्याओं को ठीक करने और कब्ज को दूर करने में मदद करता है।
1: बिल्कुल अमिता, और ये विटामिन ए के उच्च स्तर के साथ शरीफे के का गूदा जो है वो अल्सर और फोड़े के इलाज के लिए भी काफी प्रभावी होता है और ये न केवल त्वचा को मॉइस्चराइज करने में मदद करता है बल्कि ये उसकी त्वचा की लालिमा और सूजन को भी कम करता है।
0: और साथ ही शरीफा मैग्नीशियम और पोटेशियम से भी भरपूर होता है दोस्तों, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो अपने दिल का ख्याल रखिए।

0: मित्री।
1: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत आपने सुना पराया धन से, और कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन।
2: बिल्कुल अमिता, और देखो ना अब बात कुछ घूमने फिरने की हो जाए, क्योंकि घूमने फिरने का असली मजा जो है वो दोस्तों के साथ ही होता है। तो अगस्त का ये महीना एक अलग ही जादू बिखेरता सा मौसम, पेड़ों पर छाई हरियाली, तन मन भिगोती ये बारिश की बूंदे, फूलों की बहार। जी हाँ, आपने सही सुना, फूलों की बहार इस सुहाने मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए सज चुका है देश का सबसे वीआईपी और खूबसूरत बागीचा अमृत उद्यान।
1: आजकल राष्ट्रपति भवन के इस ऐतिहासिक बगीचे में चल रहा है बेहद खास मॉनसून फ्लावर शो, समर एनवर्स। वैसे तो हम सर्दियों या वसंत में यहां जाते हैं, लेकिन इस बार 16 अगस्त से अमृत उद्यान 15 सितंबर 2026 तक आम जनता के लिए खुल चुका है।
2: तो 15 सितंबर तक ये उद्यान मॉनसून के उन अनोखे फूलों से गुलजार होने वाला है जो सिर्फ और सिर्फ इसी मौसम में अपनी छटा बिखेरते हैं। आसमान में काले काले बादलों के बीच रंग बिरंगे मॉनसून के अनगिनत फूल, बेबलिन ब्रूक, बोनसाई गार्डन और बाल वाटिका, ये है यहाँ के विशेष आकर्षण।
1: और हम आपको बता दें कि अमृत उद्यान के इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए कोई भी फीस नहीं देनी आपके, और फ्री एंट्री है आपकी। बस आपको राष्ट्रपति भवन के विजिटर पोर्टल पर जाकर अपना स्लॉट बुक कराना है और गेट नंबर 35 से फूलों की इस रंगीन दुनिया में कदम रखना है।
2: लेकिन अमिता, मैं ये भी बता दूं कि ध्यान रखना है कि सोमवार के दिन इसका प्लान मत करिए जाने का, क्योंकि उस दिन ये उद्यान बंद रहता है। तो देर किस बात की, प्रकृति के इन रंगों को अपने समेटने और अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसका आनंद लेने जरूर जाइए।

0: और रफी की आवाज में ये गीत आप सुन रहे हैं दो कलियां फिल्म से।
1: और अमिता, इसी के साथ घड़ी ने इशारा कर दिया है कि हमारे कार्यक्रम का समय अब समाप्त होने को है, तो मुझे यानी रेनू को
0: और मुझे यानी अमित कमल को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: घर आंगन।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सुकना में सहयोगी गोरखा नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरंग के अनुसार बैठक में लंबे समय से चली आ रही स्थायी राजनीतिक समाधान की मांग पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा है। इसके बाद आज गृहमंत्री सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें बीएसएफ, एसएसबी, आईबी, पुलिस तथा केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल नियम नहीं बदल रही बल्कि नीतियों में भी व्यापक बदलाव कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान जा रहा है।
1: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है। और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है कि रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
0: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इफ्फी इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोनिरामाइन मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। झारखंड के रामगढ़ जिले में मां छिन्नमस्तिका सीमेंट एंड स्टील पावर प्लांट में कल रात टरबाइन में तेज धमाके के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतकों की पहचान रांची के संजीव कुमार केसरी, बोकारो के विनीत महतो और गढ़वा के अभिषेक पांडे के रूप में हुई है। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। एक केमिकल रिएक्टर के अचानक फटने से औद्योगिक इकाई में जोरदार धमाका हुआ और भीषण आग लग गई। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तेज वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सोमवार तक अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्सों और बुधवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टरडैम में भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। India has raised the issue of two hijacked foreign-flagged commercial vessels with 22 Indian sailors on board with Somali authorities. The vessels carrying 16 Indian seafarers on board MT Cebu and 6 Indian seafarers on board MV Lutuf were hijacked by armed pirates in separate incidents of Yemen and Somalia. In a social media post, the Indian High Commission in Kenya said all Indian seafarers are reportedly safe. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal, in response to a query during his bi-weekly media briefing yesterday, also addressed growing safety concerns regarding Indian mariners operating in volatile waters, reiterating New Delhi's commitment to prioritizing the welfare of its seafaring community. The government today imposed restrictions on the manufacturing, sale and distribution of all fixed-dose combinations FDCs containing chlorpheniramine maleat and phenylphrine hydrochloride for children below 4 years of age. The Health Ministry, in a notification, mandated a clear warning that these medicines shall not be used in children below 4 years of age and that safer alternatives are available. The government directed manufacturers to clearly display the warning, fixed dose combination shall not be used in children below 4 years of age, on the label, package insert and promotional literature associated with these formulations. Union Home Minister Amit Shah holds an important meeting with allied Gorkha leaders today at Sukna in Darjeeling, West Bengal. As per Gorkha Janmukti Morcha President Bimal Gurung, the issue of permanent political solution regarding long-pending demand will be discussed in the meeting. The details of meeting are yet to come. Later today, the Union Home Minister will chair a high-level Siliguri Corridor meeting with top BSF, SSB, IB, police and other state and central officials. India will host the BRICS Youth Ministers meeting today and the BRICS Sports Ministers meeting tomorrow at Visakhapatnam in Andhra Pradesh. According to the Ministry of Youth Affairs and Sports, the Youth Ministers meeting will focus

वक्त हो चला है 1:10:57 आकाशवाणी दिल्ली का ये एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। और कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल और मैं संगीता हूँ आप सभी के साथ। तो सिनेमा के सुनहरे दौर की एक बेहद खूबसूरत और दिलकश अदाकारा का जिक्र करेंगे हम। कौन है वो? आज हम याद करेंगे सायरा बानो को। कल है 23 अगस्त और कल उनका जन्मदिन है, तो हम उन्हें आज ही जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें। तो बात है साल 1961 की फिल्म जंगली और सामने थे शमी कपूर। पहली ही फिल्म में सायरा ने अपनी शोख अदाओं से और चुलबुले अंदाज से दर्शकों के दिल में जगह बना ली थी। जंगली की कामयाबी ने बता दिया था कि बॉलीवुड को एक नया सितारा मिल चुका है। तो चलिए हम आपको सुनाते इसी फिल्म से एक गीत। और आपसे क्या कहना है? आपसे कहना यह है कि आप जुड़े रहिए हमारे साथ एफएम गोल्ड के साथ।

कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल और हम बेमिसाल अदाकारा सायरा बानो का जिक्र कर रहे हैं। जंगली के बाद सायरा बानो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शागिर्द, आई मिलन की बेला, झुक गया आसमान, ब्लफ मास्टर और दीवाना जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग अलग किरदार निभाए। उनकी खूबसूरती के साथ उनकी स्क्रीन प्रेजेंस भी ऐसी थी कि कैमरा जैसे उन्हें देखते ही बिल्कुल ठहर सा जाता था।

कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल और आज हम याद कर रहे हैं बेहद खूबसूरत और दिलकश अदाकारा सायरा बानो को। सायरा बानो के करियर में शागिर्द का जिक्र खास तौर पर होना चाहिए क्योंकि आईएस जौहर के साथ बनी इस फिल्म में उनका चुलबुला और मासूम अंदाज लोगों ने खूब पसंद किया और उनके अभिनय में एक खास तरह की मासूमियत थी, एक नटखटपन था जो उस दौर के दर्शकों को खूब भाया।

आज हम याद कर रहे हैं सायरा बानो को, कल उनका जन्मदिन है तो हम आज उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और हम ऐसी ही दुआ करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और आप हमेशा हमारी यादों का हिस्सा रहती हैं, क्योंकि इतनी बाकमाल फिल्में आपने की हैं कि उन फिल्मों को देखने का जो हमारे दिलो दिमाग पे असर होता है वो बिल्कुल अलग तरह का है। और हमने ये आपको शागिर्द फिल्म से एक खूबसूरत सा गीत सुनाया, और एक और फिल्म का जिक्र किए बिना तो मुझे लगता है कि बात बढ़ ही नहीं सकती है, वो है पड़ोसन। सायरा बानो का एक और रंग सामने आया। असल में सुनील दत्त और किशोर कुमार जैसे कलाकारों के बीच उन्होंने जो बिंदु का किरदार किया और इतनी खूबसूरती, इतनी सहजता से उस किरदार को निभाया कि फिल्म आज भी हिंदी सिनेमा की क्लासिक कॉमेडी में शुमार होती है। सायरा बानो ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर तक या रोमांस तक सीमित नहीं है, वो हर तरह के रोल निभाने में सक्षम है। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे तो याद नहीं कि ये फिल्म मैंने कितनी बार देखी, अनगिनत बार। और जहां से देखो, जहां से फिल्म आती आ रही होती है टीवी पर, मैं तो वहीं से देखना शुरू हो जाती हूँ। इतनी बार ये फिल्म देखी है और हर कलाकार को देखना अच्छा लगता है, चाहे वो किशोर कुमार हो, सुनील दत्त हो, महमूद हो या सायरा बानो हो। कमाल की फिल्म है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आज छुट्टी का दिन है, कल भी छुट्टी का दिन है और मौसम भी अच्छा है, तो आप अच्छे मौसम का फ़ायदा उठाकर इस फिल्म को ज़रूर देख सकते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल

0: कर सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक बजकर 32 मिनट और 48 सेकंड हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का ये एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। कार्यक्रम में कलाकार बेमिसाल, और आज हम याद कर रहे हैं सायरा बानो को। एक से एक खूबसूरत फिल्में उन्होंने की और गाने तो खैर उनके कमाल के हैं, तो मुझे यकीन है इस बात का कि आपको कार्यक्रम में बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि हम गाने भी बहुत कमाल के चला रहे हैं। और सायरा बानो का अगर जिक्र करें तो उनकी ज़िंदगी में आया वो रिश्ता जिसकी चर्चा आज भी मोहब्बत की मिसाल के तौर पर देखा जाता है। सायरा बानो और दिलीप कुमार, जी हाँ, उम्र के फासले के बावजूद दोनों का रिश्ता बेहद गहरा रहा, बेहद खूबसूरत रहा। और 1966 में दोनों ने निकाह किया और सायरा ने अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम किरदार निभाया और वो किरदार था दिलीप कुमार की हमसफर बनकर। अच्छा, शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग है ना कि अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं तो पूरी कायनात शिद्दत के साथ जुट जाती है आपको मिलाने में, उस चीज़ को आपसे मिलाने में, ऐसा कुछ है ना। मुझे लगता है कि सच में ऐसा है, हम यूनिवर्स को जो देते हैं ना, यूनिवर्स वापस हमें उस चीज़ को लौटाता है। सायरा बानो का अगर जिक्र करें तो कई ऐसे इंटरव्यू जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनकी दो ही ख्वाहिश थी, एक तो ये कि वो अदाकारा बनना चाहती थी और दूसरे वो दिलीप कुमार के हमसफर बनना चाहती थी। और देखिए ना, उनकी इस ख्वाहिश को जो उन्होंने जाहिर किया, यूनिवर्स ने उनको वापस किया, मतलब वो फिल्मों में एक कामयाब अदाकारा तो बनी ही और दिलीप साहब की हमसफर भी बनी है ना। कहने का मतलब ये है कि आप भी अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। फिलहाल ये गीत आपके लिए।

जी हाँ, वैसे तो होश जो है सामने वाले के उड़ जाते थे उनकी खूबसूरती देखकर और उनकी कमाल की अदाकारी देखकर। 60 और 70 के दशक में सायरा बानू ने हिंदी सिनेमा के लगभग हर बड़े सितारे के साथ काम किया, चाहे वो राजेंद्र कुमार के साथ आई मिलन की बेला फिल्म हो या मनोज कुमार के साथ पूरब और पश्चिम, दिलीप कुमार के साथ गोपी और सगीना जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया और उनके अभिनय के अलग अलग रंग फिल्मों में देखने को मिलते हैं। और दिलीप साहब के साथ भी उनकी जोड़ी को खासा पसंद किया गया।

लगभग दो दशकों के अपने फिल्मी सफ़र में सायरा बानू ने कई यादगार फिल्में की और कई अलग अलग तरह के किरदार उन्होंने निभाए। 1961 की जंगली से शुरू हुआ ये सफ़र 70 के दशक के आखिर तक आते आते एक खूबसूरत विरासत बन चुका था। सायरा बानू ने पर्दे पर सिर्फ खूबसूरती नहीं दिखाई, उन्होंने अपने अंदाज, अपनी नज़ाकत और अपनी अदाकारी से हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर में अपनी एक अलग पहचान बनाई और यही वजह है कि आज भी उनका नाम आते ही एक खूबसूरत मुस्कान और पुरानी फिल्मों की वो दिलकश दुनिया आंखों के सामने आ जाती है।

जी हाँ, तो अब तो फिलहाल वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, और हमें इस बात का यकीन है कि सायरा बानो पर आज हमने जो प्रोग्राम किया वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बातें भी पसंद आई होंगी और गाने भी पसंद आए होंगे, उनकी फिल्मों के गाने हैं ही कमाल के। तो एक बार फिर से हम उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हैं और दुआ करते हैं कि आप स्वस्थ रहें। आपसे कहना यह है कि आप कहीं नहीं जाइएगा, आप जुड़े रहिएगा एफएम गोल्ड के साथ, क्योंकि अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे उर्दू में समाचार और उसके बाद कार्यक्रमों का सिलसिला चलता रहेगा। 2:30 पर मैं फिर आऊंगी एक बार आपसे मिलने लेकर कार्यक्रम संगीत.com। तो आप बने रहिए हमारे साथ।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं हबीबुर रहमान। भारत ने सोमालिया के साथ दो गैर मुल्की परचमबरदार तिजारती बहरी जहाजों को हाईजैक किए जाने के मामले को उठाया है, जिस पर 22 भारतीय मल्लाह सवार थे। हुकूमत ने आज 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड पर मुश्तमिल तमाम फिक्स डोज कम्बिनेशन FDC अद्वियात की तैयारी, फरोख्त और तकसीम पर पाबंदी आयद कर दी हैं। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मुल्क के नौजवानों के उमूर के उजरा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मशरकी मध्य प्रदेश में बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में भारत की खवातीन की डबल्स जोड़ी त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद आज दोपहर सेमीफाइनल में चीन की जोड़ी ली शेंगशू और टैनिंग का सामना करेगी। अब खबरें तफसील से। भारत ने सोमालिया हुकाम के साथ दो गैर मुल्की परचमबरदार तिजारती जहाजों को हाईजैक किए जाने के मामले को उठाया है, जिनमें 22 भारतीय मल्लाह सवार थे। इन जहाजों को यमन और सोमालिया के साहिलों के नजदीक अलग अलग वाकयात में मुसल्लह कज़ाकों ने हाईजैक किया था। 16 भारतीय मल्लाह MT सीबू में, जबकि 6 भारतीय मल्लाह MT लुत्फ में सवार थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कीनिया में भारतीय हाई कमीशन ने कहा है कि सभी भारतीय मल्लाह महफूज बताए जाते हैं। कल वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने हफ्ते में 2 बार होने वाली मीडिया गुफ्तगू के दौरान एक सवाल के जवाब में उन भारतीय मल्लाहों के तहफ्फुज से मुतालिक तशवीश के बारे में भी जानकारी दी जो ऐसे समंदरी इलाकों में काम करते हैं जहां शिद्दत से लहरें उठती हैं। उन्होंने मल्लाहों की बरादरी के तहफ्फुज और उनकी फलाह व बहबूद को अव्वलीन तरजीह देने के भारत के आज़म को दोहराया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस्लाहात कोई मजबूरी नहीं बल्कि उनकी हुकूमत के लिए एक आज़म और पुख्ता यकीन का मामला है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की पॉलिसियां अवाम दोस्त, तरक्की पसंद और मुल्क की तरक्की के लिए हैं। कल शाम नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने इस्लाहात के लिए एक वाज़ह रोड मैप तैयार किया है, जिसमें बुनियादी तवज्जो हुक्मरानी के निज़ाम में इस्लाहात पर मरकूज है। उन्होंने कहा कि भारत मुल्क के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए पॉलिसी सतह पर अगले सिलसिले की इस्लाहात कर रहा है।
1: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है।

0: और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है कि रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
1: हुकूमत ने आज 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरमाइन और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड पर मुश्तमिल तमाम फिक्स डोज कम्बिनेशन FDC अद्वियात की तैयारी, फरोख्त और तकसीम पर पाबंदी आयद कर दी हैं। वजारत सेहत ने एक नोटिफिकेशन में लाजमी करार दिया है कि मस्कूरा अद्वियात पर वाज इंतबाह दर्ज किया जाए कि उन्हें 4 साल से कम उम्र बच्चों के लिए हरगिज इस्तेमाल न किया जाए। यह इकदाम कम उम्र बच्चों की सेहत और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने की सम्त एक अहम कदम है। हुकूमत ने दवासाज कंपनियों को हिदायत दी है कि वो मस्कूरा दवाओं के लेबल, पैकेज के अंदर मौजूद मालूमात और तशहीरी मवाद पर वाजह तौर पर यह वार्निंग दर्ज करें कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन 4 साल से कम उम्र बच्चों के लिए इस्तेमाल न किया जाए। हुकूमत ने कहा है कि इस तरह की अद्वियात का इस्तेमाल 4 साल से कम उम्र बच्चों के लिए खतरात पैदा कर सकता है, जबकि इसके मुकाबले में ज्यादा महफूज मुतबादिल अद्वियात दस्तियाब हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स के नौजवानों के उमूर के उजरा की मीटिंग और ब्रिक्स के खेलों के उजरा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स के नौजवानों के उमूर के उजरा की मीटिंग आज होगी, जबकि खेलों के उजरा की मीटिंग कल होगी। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत के मुताबिक नौजवानों के उमूर के उजरा की मीटिंग में तालीम, हुनरमंदी के फरोग, कारोबार, खुशहाली और पायदार तरक्की पर तबादले ख्याल के साथ नौजवानों की तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाने में ताउन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ब्रिक्स मुल्कों के वजरा और आला सतह के मंदूबीन के साथ आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के करीब वाक़ तारीखी थोटला कोंडा बुद्ध मत विरसे का दौरा किया। मंदूबीन ने बुद्ध मत के कदीम आसार और बाकियात देखे, जिनमें महास्तूप, ध्यान मराकज, कुएं और बावरची खाना के इलाके शामिल हैं। डॉक्टर मांडविया ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत थोटला कोंडा में एक पौधा भी लगाया। मरकजी वजीर ने थोटला कोंडा के शानदार बुद्ध मत विरसे की तारीफ की और कहा कि भारत का बुद्ध मत का विरसा पूरी दुनिया के लिए अहम है। ब्रिक्स के खेलों के वजरा की मीटिंग कल विशाखापट्टनम में मुनाकिद होगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज मशरकी मध्य प्रदेश में शदीद से बहुत शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने कहा है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, मशरकी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में दिन में शदीद बारिश होने का इम्कान है। बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ज़ैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल, उत्तराखंड और भारत के शिमाल मशरकी हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह का मौसम रहने की पेशगोई की गई है। इस दौरान मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और मशरकी राजस्थान में कल तक गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: मध्य प्रदेश में गिरदाबी हवाएं चलने और हवा के कम दबाव का हल्का बनने के सबब सख्त मौसमी निज़ाम फ़ाल है। इसके नतीजे में पिछले 2 दिन से रियासत के शिमाली हिस्सों में शदीद बारिश हो रही है और कई दरिया तुगयानी पर हैं। मौसमियात के महकमे ने आज सियोनी और बालाघाट में इंतहाई शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। निज, दतिया, भिंड, निवारी, तिकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर और दमोह समेत 12 जिलों में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर में कांग्रेस पर रिपब्लिकन कंट्रोल को बरकरार रखने की खातिर अपनी मुहिम के दौरान इंतखाबी जवाबित को मरकजी अहमियत देते हुए वोटरों के लिए तस्वीरी शनाख्त और शहरियत का सबूत लाजमी करार दिए जाने का अपना मुतालबा दोहराया है। सदर ट्रंप ने आज जनूबी कैरोलिना के मर्टल बीच पर एक रिपब्लिकन रैली के दौरान सेव अमेरिका एक्ट को मंजूर किए जाने की अपील की। सदर ट्रंप ने कहा कि इस कानून के तहत हर वोटर को अपनी तस्वीर वाली शनाख्त पेश करना होगी और इस बात की तस्दीक करना होगी कि वो अमरीकी शहरी हैं। उन्होंने कहा कि उनके इंतजामिया ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कामयाबी हासिल कर ली थी, अगरचे उन्होंने कहा कि ये कानून इन शराइत को मुस्तकिल बनाने के लिए जरूरी था।

0: BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में भारतीय खवातीन ट्रीसा जोली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी खवातीन के डबल्स के सेमीफाइनल में आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में चीन की ली शेंशू और टैन निंग की जोड़ी से मुकाबला करेगी। भारतीय जोड़ी कल चीन के चौथे मकाम की जोड़ी ज़ेई फैन और ज़ेंग शूज़ियान को 16-21, 21-15 और 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में दाखिल हुई है। इस जीत के साथ ही ट्रीसा और गायत्री की जोड़ी ने भारत के लिए तमगे को यकीनी बना लिया है। ट्रीसा और गायत्री की जोड़ी आलमी चैंपियनशिप में तमगा हासिल करने वाले भारतीय खवातीन की डबल्स की ऐसी दूसरी जोड़ी बन गई है। ज्वाला गुट्टा और अश्वनी पोनप्पा की पहली भारतीय जोड़ी थी जिसने 15 साल पहले लंदन में कांसे का तमगा जीता था। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत ने सोमालिया के साथ दो गैर मुल्की परचमबरदार तिजारती बहरी जहाजों को हाईजैक किए जाने के मामले को उठाया है जिस पर 22 भारतीय मल्लाह सवार थे। हुकूमत ने आज 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड पर मुश्तमिल तमाम फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन FDC अद्वियात की तैयारी फरोख्त और तकसीम पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मुल्कों के नौजवानों के उमूर के उजरा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मशरकी मध्य प्रदेश में बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में भारत की खवातीन की डबल्स की जोड़ी त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद आज सहपहर सेमीफाइनल में चीन की जोड़ी ली शेंगशू और टैन निंग का सामना करेगी। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द मिडडे न्यूज। द हेडलाइंस: Government imposes restrictions on manufacturing, sale and distribution of all fixed-dose combinations containing chlorpheniramine maleate and phenylephrine hydrochloride for children aged below 4 years. India to host BRICS Youth Ministers meeting at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh this evening. India raises with Somalia issue of hijacking of 2 foreign-flagged commercial vessels with 22 Indian sailors on board. US imposes 50% tariffs on $20 billion worth of Canadian products after trade talks with US fail. Canada says it will retaliate. IMD issues orange alert for very heavy rainfall over East Madhya Pradesh today. And in BWF Badminton World Championships, Indian women's doubles pair of Trisa Jolly and Gayatri Gopichand to be up against China's Liu Shengshu and Tan Ning in semi-finals this afternoon. And now the news in detail. The government today imposed restrictions on the manufacturing, sale and distribution of all fixed-dose combinations, FDCs, containing chlorpheniramine maleate and phenylephrine hydrochloride for children below 4 years of age. The Health Ministry, in a notification, mandated a clear warning that these medicines shall not be used in children below 4 years of age in a significant step to safeguard the health and safety of young children. The government directed manufacturers to clearly display the warning, fixed-dose combination shall not be used in children below 4 years of age, on the label, package insert and promotional literature associated with these formulations. The government said that the use of such combinations may pose risks to children below 4 years of age and that safer alternatives are available. Union Minister for Youth Affairs and Sports Dr. Mansukh Mandaviya, along with ministers and senior delegates from the BRICS countries, today visited the historic Thotlakonda Buddhist Heritage Site near Vishakhapatnam in Andhra Pradesh. The delegates visited the ancient Buddhist remains, including the Mahastup, meditation centers, wells and kitchen areas. Dr. Mandaviya also planted a sapling at Thotlakonda as part of the Ek Ped Maake Naam campaign. The visit is part of the programs being held in Vishakhapatnam under India's BRICS Presidency 2026. The BRICS Youth Ministers meeting will be held in Vishakhapatnam this evening. The meeting, chaired by Dr. Mansukh Mandaviya, will discuss ways to strengthen cooperation in youth development and empowerment with a focus on education, skill development, entrepreneurship, well-being and sustainable development. The BRICS Sports Minister

0: Indian duo stormed into the semi-finals yesterday, defeating 4th seeds Jiayi Fan and Zhang Shuxian of China 16-21, 21-15 and 21-13. With this victory, Teresa and Gayatri have assured India of a coveted medal at the prestigious championship. The duo also became only the second Indian women's doubles pair to win a medal at the World Championships. Jwala Gatta and Ashwini Ponappa were the first Indian combination to achieve this feat when they clinched the bronze in London 15 years ago. Earlier in the day, Indian men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty crashed out of the tournament after losing to China's Liang Wei-Keng and Wang Chang. The Indian duo went down to the 4th-seeded Chinese pair in straight games 18-21, 9-21 in the quarterfinals. With Vishnu B.S., Bhanu Pratap Singh, Akashwani News, Delhi.
1: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government imposes restrictions on manufacturing, sale and distribution of all fixed-dose combinations containing chlorpheniramine maleate and phenylephrine hydrochloride for children aged below 4 years. India to host BRICS Youth Ministers meeting at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh this evening. India raises with Somalia issue of hijacking of 2 foreign flagged commercial vessels with 22 Indian sailors on board. US imposes 50% tariffs on $20 billion worth of Canadian products after trade talks with US fail. Canada says it will retaliate. IMD issues orange alert for very heavy rainfall over East Madhya Pradesh today. And in BWF Badminton World Championships, Indian women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand to be up against China's Liu Shengshu and Tan Ning in semi-finals this afternoon. And with that, we end the midday news. नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत ने सोमालिया के साथ 2 विदेशी ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मुद्दा उठाया। इसमें 22 भारतीय नाविक सवार थे। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के 20 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। कनाडा ने भी समान स्तर की जवाबी टैरिफ लगाने की बात कही। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला जोड़ी त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद आज सेमीफाइनल में चीन की लियू शेंगशू और टैन निंग से खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
2: स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। यह कदम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि इन दवाओं के लेबल, पैकेज में दिए गए निर्देशों और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से चेतावनी लिखी जाए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इस वर्ष जून में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में लोगों के इस्तेमाल के लिए 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी। शिवांग के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वहीं सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए भी विज्ञापन की 12 मिनट की अधिकतम अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये फैसला केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन को राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के साथ लागू हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा करने की जरूरत महसूस की गई। मंत्रालय ने कहा कि भारत में टेलीविजन क्षेत्र विज्ञापनों पर काफी निर्भर है, चाहे कोई चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख

0: करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। डॉक्टर मांडविया ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत थोटलकोंडा में पौधारोपण भी किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ाती है, कारोबार सुगमता को मजबूत करती है और किसी देश को निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है। नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मजबूत संस्थान, विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था आर्थिक विकास की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने लाइसेंस राज के दौरान उत्पादन को दंडित करने के अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन किया है। अब उसके स्थान पर सरकारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना के माध्यम से इसे पुरस्कृत किया जाता। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पिछली सरकारों की उस सोच की आलोचना की जिसमें जानबूझकर चीजों की कमी बनाए रखी जाती थी ताकि लोगों को सरकार पर निर्भर रखा जा सके। शासन की सोच में परिवर्तनकारी बदलाव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने नकारात्मक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मॉडल की तुलना वर्तमान पीएलआई योजना से की।
1: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। पीएलआई स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सप्तधारा पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और हरित अर्थव्यवस्था सहित 7 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
1: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है कि रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े सभी पक्षों के साथ बैठक की। इसमें उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक मध्यस्थ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। ये समिति अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। पहला जहाज एमटी सिवू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। इसमें 16 भारतीय नाविक समेत 20 लोग सवार थे। दूसरा जहाज एमवी 17 अगस्त को सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास अगवा किया गया। इसमें 6 भारतीय नाविक समेत 10 लोग सवार थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।
2: 2 ships which are foreign flag. 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
3: We are in touch with the authorities that are concerned in this.
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कल से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान श्री जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका ने 20 अरब डॉलर मूल्य के कनाडा के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ आज लागू हो गए। अंतिम समय में तनाव कम करने के लिए हुई वार्ता विफल रहने के बाद कनाडा ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। नए अमरीकी टैरिफ से कनाडा के अमरीका को होने वाले

0: सालाना निर्यात का करीब 5% हिस्सा प्रभावित होगा। प्रभावित उत्पादों में हॉकी स्टिक और मेडिकल जांच में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की स्टिक भी शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा भी डॉलर के बदले डॉलर के आधार पर समान टैरिफ लगाएगा। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वार्ता विफल होने के लिए वॉशिंगटन को जिम्मेदार ठहराया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इफ्फी इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति के उस निर्णय की कड़ी निंदा करती है और स्पष्ट रूप से विरोध करती है, जिसमें पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पिछले 2 छंद गाने का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने पंजाब सरकार को एक दुष्कर्म के मामले को दबाने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए आरोपों की जांच कराने को कहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी ने मामले को दबाने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की। रामगढ़ में देर रात एक सीमेंट और इस्पात पावर प्लांट में टरबाइन फटने के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। एक रिपोर्ट।
1: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण प्लांट का प्रोटेक्शन सिस्टम फेल हो गया, जिससे टरबाइन ओवर स्पीड हो गया और विस्फोट हुआ। प्लांट कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम में अत्यधिक तापमान और खराब कूलिंग व्यवस्था की जानकारी प्रबंधन को पहले ही दी गई थी, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। विस्फोट और आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग को लेकर आज रामगढ़ पतरातू मार्ग जाम कर दिया। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश के जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है।
2: मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है, इसके चलते प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है और कई जगह नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज सिवनी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़ समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा कई अन्य जिलों में तेज बारिश और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार है, लेकिन उत्तर और तटीय ओडिशा के कई इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में करीब 14 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।
3: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी बना हुआ है और 7 जिलों में लगभग 14 लाख लोग इससे प्रभावित है। हालांकि मुख्य नदियां का जलस्तर घट रहा है, लेकिन कई गांव अभी भी पानी से घिरे हुए हैं। बालेश्वर में पानी में डूबे कई गांव के लोग अभी भी नाव पर निर्भर है और उन्होंने पके हुए भोजन, सूखे राशन और पीने का पानी की भारी कमी की शिकायत की है। अब तक इस बाढ़ में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच IMD ने आज से इसी महीने की 26 तारीख तक उड़ीसा में बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह की स्थिति रहने की स्थिति है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सोमवार तक अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्सों और बुधवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। भारतीय सेना ने हवाई निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और युद्ध क्षेत्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए सीमावर्ती राज्य पंजाब में अत्याधुनिक ड्रोन से लैस अपनी पहली बाज बटालियन का गठन किया है। ये बटालियन आकाश में निगरानी तंत्र और युद्ध क्षेत्र में दुश्मन पर बढ़त के रूप में काम करेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने प्रतिष्ठानों से आग्रह किया है कि वो EPF के दायरे से बाहर कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 का लाभ उठाएं। इस अभियान का उद्देश्य नियोक्ताओं के स्वैच्छिक अनुपालन को सुगम बनाना और

0: छात्र श्रमिकों को भविष्य निधि पेंशन और बीमा के लाभ प्रदान करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब बात खेलों की। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंग शू और टैन निंग से होगा। ये मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: भारतीय जोड़ी ने कल चीन की चौथी वरीयता प्राप्त जिया यी फैन और झांगशू जियान को 16-21, 21-15 और 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने इस चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया है। त्रिशा और गायत्री विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला युगल जोड़ी भी बन गई है। ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा पहली भारतीय जोड़ी थी जिन्होंने 15 साल पहले लंदन में कांस्य पदक जीतकर ये उपलब्धि हासिल की थी। विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
0: वहीं FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टल फेन में भारत का सामना शाम 7:30 बजे से नीदरलैंड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के $20 अरब मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

वक्त हो चला है 2:31 एक सेकेंड और कार्यक्रम है संगीत.com और इस धुन से आप कुछ तो समझ गए होंगे। जी हाँ, आज हम उस दौर का जिक्र करेंगे, उस दौर की बात करेंगे जब मोहब्बत खत लिखकर होती थी, मिलने के बहाने बनाए जाते थे और प्यार का इजहार गानों में होता था। जब कैसेट प्लेयर में ना जब टेप अटक जाता था तो हम उसे पेंसिल से घुमाते थे और जब रेडियो पर अपना पसंदीदा गाना बजता था तो आवाज थोड़ा और तेज कर दिया करते थे। जी हाँ, ये 90 का दशक था जहां कुमार सानू की आवाज में इश्क था, उदित नारायण की आवाज में शरारत और अलका याग्निक में नजाकत, और हाँ, हर गाने की एक कहानी हुआ करती थी।

हम याद कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की। जी हाँ, उस दौर की बात कर रहे हैं जहाँ गाने सुने नहीं जाते थे, जिए जाते थे। बने रहिए फिल्म गोल्ड के साथ, मैं संगीता हूँ आपके साथ।

खलनायक के इस गाने की अगर हम बात करें ना, तो इसमें लोक का रंग है, ठेठ हिंदुस्तानी रंग दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ मॉडर्न यानी 90s का तड़का, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी के बोल और धुन ऐसी कि बजते ही मन थिरक उठता है।

गाने की धुन कह रही है कि आपने गाना पहचान लिया है कि हम कौन सा गाना सुनाने वाले हैं। ये काली काली आंखें, लेकिन लेकिन काजोल की आंखें तो भूरी थी। अब्बास मस्तान को भी यही बात खटक रही थी कि भैया गाना है ये काली काली आंखें और काजोल की जो हीरोइन है उसकी आंखें तो भूरी है, लेकिन गाना इतना जबरदस्त था कि उन्होंने कहा कि चलो दर्शक गाने की धुन में आंखों का रंग ही भूल जाएंगे। और हुआ भी यही कि गाना इतना सुपरहिट हुआ कि हमें ये याद ही नहीं रहा कि हीरोइन की आंखें काली हैं, भूरी हैं, हरी हैं या फिर कैसी हैं। और एक और मजेदार बात वो ये कि सरोज खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शाहरुख ने शुरुआत में इस गाने के लिए रिहर्सल नहीं की थी, बहुत ज़्यादा बहुत गंभीरता से नहीं लिया था, और जब सेट पर मुश्किल स्टेप्स आए तो उन्हें 1 घंटे प्रैक्टिस के बाद फिर ये परफॉर्म करना पड़ा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

कार्यक्रम है संगीत.com और संगीत.com में 90s के गानों के साथ हम हाजिर हुए हैं और अभी कौन सा गाना सुनवा रहे हैं? करण अर्जुन का। इसकी शूटिंग के दौरान शाहरुख खान और सलमान खान की

जी हाँ, फिल्म है आंखें और आंखें फिल्म में गोविंदा है, इस फिल्म में चंकी पांडे हैं और दोनों की केमिस्ट्री कमाल की है इस गाने में। कॉमिक टाइमिंग जो है वो एक अलग ही रंग जमा दिया है। कुमार सानू, सुदेश भोसले और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ और बपीदा का संगीत, 90s का एकदम शानदार जो है संगीत है ये। और इस पूरे गीत से वो पूरा एक दौर याद आता है। आपको कुछ याद आता है इन गानों को सुनकर?

काम ये है और आपसे कहना ये है कि आप जुड़े रहिए एफएम गोल्ड के साथ, क्योंकि वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। तो संगीता को इजाजत दीजिए, बने रहिए गोल्ड के साथ। सीमा वर्मा स्टूडियो में आ चुकी हैं और कार्यक्रमों का सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल समाचारों का समय है, हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफिनिलामाइन मैलेट और फिनेलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। ये कदम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इस वर्ष जून में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देशभर में लोगों के इस्तेमाल के लिए 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी। ये निर्णय विशेषज्ञ समिति और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के बाद लिया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। प्रतिनिधियों ने महास्तूप, ध्यान केंद्रों, कुओं और रसोई क्षेत्रों सहित प्राचीन बौद्ध अवशेषों को देखा। उन्हें स्थल के ऐतिहासिक महत्व और सदियों पहले यहां रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के जीवन के बारे में जानकारी दी गई। डॉ मांडविया ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत थोटलकोंडा में पौधारोपण किया। केंद्रीय मंत्री ने थोटलकोंडा के समृद्ध बौद्ध विरासत की सराहना करते हुए कहा कि भारत की बौद्ध विरासत पूरे विश्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये दौरा भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित कार्यक्रमों का एक हिस्सा है। इसमें 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अमेरिका ने 20 अरब डॉलर मूल्य के कनाडाई उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ आज तड़के लागू हो गए। अंतिम समय में तनाव कम करने के लिए हुई वार्ता विफल रहने के बाद कनाडा ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करने की बात कही। नए अमेरिकी टैरिफ से कनाडा के अमेरिका को होने वाले सालाना निर्यात का करीब 5% हिस्सा प्रभावित होगा। प्रभावित उत्पादों में हॉकी स्टिक और मेडिकल जांच में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की स्टिक भी शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा भी डॉलर के बदले डॉलर के आधार पर समान टैरिफ लगाएगा। अमेरिका के प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कनाडा ने अमेरिका के स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल और लकड़ी पर लगाए गए टैरिफ में रियायत की मांग की थी। अधिकारी ने कहा कि वाशिंगटन इन रियायतों के लिए तैयार नहीं था। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वार्ता विफल होने के लिए वाशिंगटन को जिम्मेदार ठहराया। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। पहला जहाज एमटी सिबू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। इसमें 16 भारतीय नाविक समेत 20 लोग सवार थे। दूसरा जहाज एमवी लुत्फ 17 अगस्त को सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास अगवा किया गया। इसमें 6 भारतीय नाविक समेत 10 लोग सवार थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह की स्थिति रहने का

0: है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सोमवार तक अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्सों और बुधवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की ल्यू शेंग शू और टैन निंग से होगा।
1: भारतीय जोड़ी ने कल चीन की चौथी वरीयता प्राप्त जिया यी फैन और झांगशु जियान को 16-21, 21-15 और 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने इस चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया है। त्रिशा और गायत्री विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला युगल जोड़ी भी बन गई है। ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा पहली भारतीय जोड़ी थी जिन्होंने 15 साल पहले लंदन में कांस्य पदक जीतकर ये उपलब्धि हासिल की थी। विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
0: ये मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति।
1: पूर्वोत्तर डायरी।
0: श्रोताओं, आज के पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के संस्करण की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। हाल ही में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में पूर्वोत्तर भारत की खेल प्रतिभाओं ने भारत का परचम दुनिया में फिर लहराया, फिर भारत का झंडा शान से फहराया और देश की झोली में तमाम मेडल की टैली लाकर भारत को फिर गौरवान्वित किया। तो आज हम बात करने जा रहे हैं शुरुआत में मीराबाई चानू की। मीराबाई चानू का नाम कौन नहीं जानता और एक दशक में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो आज देश के तमाम युवा खिलाड़ियों के लिए खेल एक प्रेरणा स्रोत है। तो इस बार ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में फिर से स्वर्ण पदक जीतकर मीराबाई चानू ने न सिर्फ पूर्वोत्तर भारत की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिया है बल्कि देश के विभिन्न वेटलिफ्टर्स के लिए एक मिसाल कायम की है। तो आइए जानते हैं मीराबाई चानू की ये सफलता और उनकी जीवन की कहानी।
2: मणिपुर के नॉकपोंग कांगचिंग से शुरू हुआ मीराबाई चानू का सफर आज कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास का हिस्सा बन चुका है। बचपन में मीराबाई अपने परिवार के साथ पहाड़ी इलाके में लकड़ियां लेने जाती थी। यही वह समय था जब उनकी शारीरिक ताकत ने परिवार का ध्यान खींचा। आगे चलकर उन्होंने वेट लिफ्टिंग को अपना खेल बनाया और धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनानी शुरू की। 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई ने सिल्वर जीता था। इसके बाद 2018 गोल्ड कोस्ट और 2022 बर्मिंगम में उन्होंने गोल्ड अपने नाम किया। अब 2026 में वही मीराबाई फिर ग्लासगो लौटी। इस बार उनके सामने सिर्फ पदक जीतने की चुनौती नहीं थी, वह लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गोल्ड जीतने उतरी थी। फाइनल में शुरुआत थोड़ी मुश्किल रही। स्नैच के पहले प्रयास में 82 किलो वजन नहीं उठा सकी, लेकिन दूसरे प्रयास में उन्होंने वापसी की और फिर 85 किलो वजन उठाकर रिकॉर्ड बना दिया। क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 105 किलो वजन उठाया, कुल वजन पहुंचा 190 किलो। गोल्ड पक्का हुआ और साथ में नया गेम्स रिकॉर्ड भी। मेडल जीतने के बाद मीराबाई ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार और लंबे समय से उनके साथ काम कर रहे कोच विजय शर्मा को दिया।
3: बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती, बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहुत इमोशनल भी हूँ, सब कुछ है। और खुश इसलिए कि मैं काफी सेक्रीफाइस और बहुत सारे टेंशन इंजुरी से लेके गेम्स तक आके मैंने मेडल दिया है। पहला इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतना एक प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी बात होते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा खुश।
2: उन्होंने बताया कि करियर के दौरान कई चोटों के बावजूद परिवार ने उनका हौसला बनाए रखा। उनकी यह जीत सिर्फ मणिपुर या भारत के लिए एक गोल्ड नहीं था, यह उस खिलाड़ी की कहानी है जिसने सालों तक खुद को लगातार बेहतर बनाया और हर बार बड़े मंच पर वापसी की। मीराबाई ने ग्लासगो में फिर साबित किया कि अनुभव, अनुशासन और हौसले के दम पर उम्र नहीं, प्रदर्शन मायने रखता है। मणिपुर की इस बेटी ने एक बार फिर वजन उठाया, रिकॉर्ड बनाया और भारत का तिरंगा सबसे ऊपर पहुँचा।

0: दिया। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं निशा साहू।
1: श्रोताओं, इन एथलीट्स की जो कहानियां हम सुनते हैं वो सचमुच सफलता की कहानी तो है ही, लेकिन उसके पीछे एक बहुत चुनौतीपूर्ण जीवन भी रहा है, संघर्ष भी रहा है। वो कहा जाता है ना, संतुष्ट नहीं वो जीवन पथ में सदा सफल रस पीता है, संतुष्ट वही जो कष्ट भोगकर सुखमय जीवन जीता है। तो हमारे जो एथलीट्स हैं उनकी कहानियां भी ऐसी चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन जब वो अपनी इन चुनौतियों से, संघर्षों से पार पाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत कर लाते हैं तो पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा उठ जाता है और देश भर के करोड़ों युवाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। अब ऐसी ही एक कहानी सुनते हैं त्रिपुरा की अस्मिता डे की। अस्मिता डे ने भारत के जूडो खेल का इतिहास बदल कर रख दिया है और उन्होंने इस बार कॉमनवेल्थ गेम में 48 किलो वर्ग श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतकर मीराबाई चानू ने जिस तरह से तमाम युवाओं को प्रेरित किया, उसी तरह से अस्मिता डे ने भी तमाम युवाओं को प्रेरित किया और जूडो क्षेत्र में जो आगे आना चाहते हैं उनके लिए मिसाल बन गई। तो आइए फिर से हम एक और प्रेरणादायी कहानी सुनते हैं जिन्होंने इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना खेल का एक नया इतिहास रचा है।
2: त्रिपुरा के एक छोटे से गांव से निकलकर अस्मिता डे ने ग्लासगो में भारतीय जूडो का इतिहास बदल दिया। महिलाओं के 48 किलो वर्ग में अस्मिता ने कनाडा की हेडी कवाज को हराकर गोल्ड मेडल जीता। वे कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो का गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी। मुकाबला आसान नहीं था, फाइनल गोल्डन स्कोर तक पहुंचा जहां अस्मिता ने बाजी अपने नाम की, लेकिन इस जीत के पीछे लंबा संघर्ष है। अस्मिता के पिता साइकिल मैकेनिक थे, परिवार की आर्थिक स्थिति सीमित थी। अस्मिता ने अपने खेल करियर की शुरुआत जूडो से नहीं बल्कि 800 मीटर दौड़ से की थी। जिला स्तर के एक ट्रायल में जूडो से जुड़ने के बाद उन्होंने इसी खेल को अपना करियर बना लिया। फिर उनकी जिंदगी में बड़ा झटका आया, 2025 में पिता का निधन हो गया। पिता की मौत के बाद अस्मिता ने जूडो छोड़ने तक का फैसला सोच लिया था, लेकिन उन्होंने वापसी की और अपना अभ्यास जारी रखा। ग्लासगो में जब उन्होंने गोल्ड जीता तो ये उनकी करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि बन गई। जीत के बाद अस्मिता ने कहा कि सफर में जिन लोगों ने उनका साथ दिया वे उन सभी की शुक्रगुजार हैं।
3: ये मेरी पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स है और मैं इसमें गोल्ड मेडल जीती हूँ और मेरे लिए सबसे बड़ी बात है।
2: उन्होंने यूपी पुलिस की नौकरी के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया जिसने उन्हें अपने परिवार की मदद करने का सहारा दिया। एक छोटे गाँव से निकली अस्मिता अब भारतीय जूडो की नई पहचान बन चुकी है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं वैष्णवी।
1: श्रोताओं, हाल ही में त्रिपुरा में एक अनोखी पहल हुई। चकमा भाषा और लिपि दिवस मनाया गया था और चकमा भाषा और लिपि दिवस के अवसर पर जो चकमा की सांस्कृतिक विरासत है, परंपरा है, उसको प्रदर्शित करने का एक बड़ा महत्वपूर्ण अवसर रहा। और इस अवसर पर अगरतला में जुलूस का आयोजन हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और चर्चा परिचर्चाओं का आयोजन हुआ। विभिन्न कलाकारों ने, लेखकों ने और जो विभिन्न रचनाकार हैं और चकमा भाषा और लिपि से जुड़े हुए बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं चकमा भाषा और लिपि के बारे में और किस तरह से इस दिन के मनाए जाने से इस लिपि और भाषा का सांस्कृतिक महत्व उभर कर सामने आया है, इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
4: त्रिपुरा हाल ही में चकमा समुदाय की पारंपरिक वेशभूषा, रंगों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सराबोर नजर आया। पहली बार मनाए गए चकमा भाषा और लिपि दिवस का उद्देश्य चकमा भाषा, उसकी लिपि, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। कार्यक्रम में आने वाली पीढ़ियों तक इस विरासत को पहुंचाने और भाषाई विविधता को बनाए रखने पर जोर दिया गया है।
5: चकमा समुदाय भारत की धरती से दिल और आत्मा से प्रेम करने वाला एक शांति प्रिय, देशभक्त और भारतीय होने पर गर्व करने वाला समाज है। प्रियो से हम भारत के साथ अपने भावनात्मक और सांस्कृतिक संबंध को गर्व के साथ संजोए हुए हैं। भारत के प्रति हमारी निष्ठा और प्रेम हमारे पहचान का अभिन्न हिस्सा है। स्वतंत्रता के समय से ही चकमा समाज भारत के असम, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में निवास करता आया है और इन राज्यों में चकमा समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। हमारा मानना है कि अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति और परंपराओं से प्रेम करना है तथा साथ ही भारत के प्रति गर्व और समर्पण की भावना रखना, इन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े रहकर ही हम और अधिक आत्मविश्वास के साथ भारत के समृद्ध और विविध संस्कृति का हिस्सा बन सकते हैं।
4: अगरतला में आयोजित राज्य

0: राज्य स्तरीय समारोह की शुरुआत रंगारंग जुलूस के साथ हुई। छात्र छात्राओं, कलाकारों और चकमा समुदाय के लोगों ने पारंपरिक पोशाक और आभूषणों के साथ इसमें हिस्सा लिया। जुलूस ने त्रिपुरा की सांस्कृतिक विविधता और अनेकता में एकता का संदेश दिया।
1: चकमा भाषा हमारी लिपि दिवस का आयोजन हमारे लिए गर्व का विषय है। अपनी भाषा और संस्कृति को आने वाले पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। एक चकमा भाषी होने के नाते मुझे इस अवसर पर विशेष रूप से गर्व और खुशी हो रही है। हमारी राज्य सरकार चकमा भाषा, साहित्य और संस्कृति को संरक्षण एवं संवर्धन के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। सभी को नमस्कार।
0: इसके बाद रविन्द्र भवन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने हर समुदाय की भाषा और सांस्कृतिक पहचान के सम्मान को आवश्यक बताया।
2: गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैज बीन वर्किंग फॉर देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट व्हेन इट कम्स टू द अदर सब ट्राइब्स ऑफ आवर स्टेट। We have 19 sub-tribes all together in our state and we are committed for the holistic development of all other sub-tribes in our state.
0: पहला चकमा भाषा और लिपि दिवस केवल एक भाषा का उत्सव नहीं बल्कि समुदाय की पहचान, इतिहास और परंपराओं को सहेजने की पहल है। भाषा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक समाज की परंपराएं, ज्ञान और यादें पहुंचाती हैं। ऐसे में चकमा भाषा और लिपि को जीवित रखना समुदाय की सांस्कृतिक पहचान से सीधे जुड़ा हुआ है। कार्यक्रम में युवाओं और विद्यार्थियों की भागीदारी ने ये संदेश दिया कि नई पीढ़ी अपनी मातृभाषा सीखे, उसका इस्तेमाल करे और अपनी विरासत पर गर्व करे। साथ ही समारोह ने त्रिपुरा की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को भी सामने रखा। चकमा भाषा और लिपि दिवस का संदेश स्पष्ट है, किसी भाषा को बचाना उसके साथ जुड़ी पहचान और विरासत को बचाना है। इस विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना समुदाय के साथ साथ समाज की भी साझा जिम्मेदारी है। सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं मुकेश कुमार बल।
3: श्रोताओं, सिक्किम की लेपचा संगीत संस्कृति सिक्किम की एक बहुत बड़ी विरासत है और यहाँ की परंपरा को प्रदर्शित करती है। तो सिक्किम की लेपचा संगीत संस्कृति का प्रदर्शन अभी हाल ही में एक विशेष राज्य स्तरीय समारोह में देखने को मिला और इस समारोह की ये खास बात रही कि यहाँ पर तुंगवुक नाम का एक जो महत्वपूर्ण वाद्य है, इसके वादकों ने एक रिकॉर्ड कायम किया। 32 वादकों ने एक साथ तुंगवुक वाद्य बजाकर इस रिकॉर्ड को कायम किया और एक अलग ही माहौल का प्रदर्शन देखने को मिला। ये वाद्य GI टैग प्राप्त वाद्य है और लेपचा संगीत एक मधुर संगीत है। आइए हमारे संवाददाता के इस विशेष रिपोर्ट में इस राज्य स्तरीय समारोह के बारे में जानते हैं और साथ ही लेपचा संगीत की धुन भी आपको इस रिपोर्ट में सुनने को मिलेगी। तो आइए ये खास रिपोर्ट सुनते हैं।
4: सिक्किम की समृद्ध लेपचा संगीत परंपरा को तेंदोंग लोरूम फात 2026 के राज्य स्तरीय समारोह में बड़ी पहचान मिली। पारंपरिक तुंगबुक वाघ बजाने वाले सबसे बड़े समूह ने नया रिकॉर्ड कायम किया।
5: दिस इज एन अटेम्प्ट बाय सिक्किम टू सेट इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड विद लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ लेपचा म्यूजिशियंस प्लेइंग ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट तुंगबुक।
4: 7 अगस्त को गैंगटॉक के रिज पार्क स्थित योंगथोंग ओपन मार्केट में 32 कलाकारों ने एक साथ तुंगबुक बजाया। GI टैग प्राप्त यह पारंपरिक वाघ लेपचा समुदाय की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा है।
5: Alright, ladies and gentlemen, let's count with me. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and go!
4: लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से सबसे बड़े तुंगबुक वादकों के समूह का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को मनन केंद्र में आयोजित समारोह के दौरान सौंपा गया। यह पहल योंगथोम सीजन 3 के तहत आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य लगभग भुलाए जा चुके तुंगबुक वादन को फिर से जीवंत करना और युवा पीढ़ी को लेपचा लोक संगीत सीखने के लिए प्रेरित करना है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री प्रेम सिंह

0: तमांग ने कहा कि तेंदोंग लोरूम फात लेपचा समुदाय के मयेल ल्यांग यानी सिक्किम प्रकृति और अपनी सांस्कृतिक विरासत से गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। उन्होंने विकास के साथ साथ भाषा, पारंपरिक ज्ञान, संगीत और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखने पर जोर दिया। कार्यक्रम में बोंग थिंग की पारंपरिक रस्मों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और लेपचा विरासत के संरक्षण में योगदान देने वाले को सम्मानित करने का कार्यक्रम भी हुआ। यह आयोजन आने वाली पीढ़ियों तक सिक्किम की स्वदेशी परंपराओं को पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मोइनक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं श्रेया पाठक।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको निश्चित तौर पर पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना संदेश भेज सकते हैं और इस कार्यक्रम में सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।

3:26:15 शुरू होता है कार्यक्रम मन भावन आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। सभी सुनने वालों को सीमा वर्मा का नमस्कार। फरमाइशी कार्यक्रम है, पहली फरमाइश मेरी तरफ से आप सबके लिए।

आंखें पढ़ना वैसे कोई सिखाता नहीं है, लेकिन वक्त ये तालीम हमें दे देता है। और फिर जब हम आंखों को देखते हैं तो कई अफसाने बयां होते हैं। बहरहाल फिलहाल मेरे पास जो नंबर है उसे मैं आपको बता दूं, और ये भी याद दिला दूं कि आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद एफएम गोल्ड 100.1। आज शनिवार की दोपहरी आपके साथ मैं सीमा वर्मा, और मेरे साथ आपके बहुत सारे मैसेजेस जो बहुत पहले से आना शुरू हो गए हैं 9868886853। ये वो नंबर है जी जिस पर आपको हमें संदेशा भेजना है। पहला संदेशा मनाली हिमाचल प्रदेश से हर्ष, विनय और विनीत और रोजाज का आया है। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और इसी के साथ साथ ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान, अब्बासी परिवार पूरा का पूरा हमें सुन रहा है। वहीं अगला संदेशा मोहम्मद यासीन हाशमी और नजमा बेगम हाशमी है, मोहम्मद तौसीफ हैं, और मोहम्मद तैमूर हैं, साथ में मोहम्मद कलीम अंसारी हैं। गंज डुंडवारा से इन्होंने हमें संदेशा भेजा है। इसी तरह आपके बहुत प्यारे प्यारे संदेशे आ रहे हैं जिन्होंने अभी अभी रेडियो सेट ट्यून इन किया है। आप जान लें कि आप एफएम गोल्ड 100.1 सुन रहे हैं। मनभावन प्रोग्राम आपका पसंदीदा प्रोग्राम है जी, जिसमें आप हमें अपनी फरमाइश भेजते हैं 9868886853 पर। और आपके मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा साहब हैं, ओम प्रकाश मल्होत्रा हैं, आपका संदेशा आया, बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। सतीश अनेजा और बिमला अनेजा चंडीगढ़ से हमें संदेशा भेज

भेजते हैं। बहुत शुक्रिया आपके संदेश के लिए भी। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा गुप्ता और रिमझिम गुप्ताएं जो हमें संदेशा भेज रहे हैं। शनिवार की दोपहर ही है, हो सकता है आपकी आज छुट्टी हो। बहुत सारे दफ्तर में छुट्टी होती है लेकिन हर जगह छुट्टी होती भी नहीं है, लेकिन मैं ये मान के चल रही हूँ कि हो सकता है आपका हाफ डे हो या फिर इस वक्त आप सुस्ता रहे हों और अपने पसंद की गीत भी सुन रहे हों। भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल और किरण हैं, इनके साथ कपिल मेहरा हैं और पूरा का पूरा मेहरा परिवार है। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और ऐसे में आपके लगातार मैसेजेस मुझ तक पहुंच रहे हैं। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां, ये आपने संदेशा न जाने कहां से भेजा है। ये देखती रहूँगी तो अगला संदेशा मिस हो जाएगा। और अब तो आपको भी लगने लगा होगा कि बहुत ज़्यादा मैसेजेस ले लिए हैं, अब एक गीत होना चाहिए। चलिए इस मैसेज के बाद भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा और पूजा परिहार, अब यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम लगाती हूँ और सुनाती हूँ आपको आज के कार्यक्रम का अगला गीत।

रफी साहब के गाए हुए इस गीत के बाद आइए अगला संदेशा लेते हैं, लेकिन उससे पहले 9868686853 ये वो नंबर है जी जिस पर आपको हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजना है। और अब हम मध्य प्रदेश से ये संदेशा ले रहे हैं। सुदर्शन शाह हैं, पल्लवी शाह हैं, प्रखर हैं, इनके साथ कुशल हैं और नीति हैं, सुरभि और अश्विन, और यहाँ पर मंगला बेन शाह हैं और राजेंद्र जी शाह हैं। बहुत शुक्रिया आपके संदेश के लिए। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख साहब हैं, नाजिया हैं इनके साथ, साजिद हैं और शाहिद हैं, शाहिद हैं। भवरपुर बसना से हमारे पास राधेश्याम चंपा देवगन और नेहा और राजू का संदेशा आया है। गंज डुंडवारा से मोहम्मद उस्मान अंसारी हैं, मोहम्मद कलीम अंसारी हैं, शमशुल कंवर राही हैं। आपके संदेशे के लिए शुक्रिया जी। और अगला संदेशा हमारे पास रिंगनी छत्तीसगढ़ से आया है, दिनेश वर्मा है, करुणा वर्मा है, और सांगली से हमें सैफुल्ला साहब और सबाहत किरत हुजेरी और रेहान शेख साहब ने हमें संदेशा भेजा है। वहीं झारखंड से हमारे पास शिवा गोप, प्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली गोप का संदेशा आया है। द्वारका की बात करें तो द्वारका से हमें अनीता वर्मा ने मैसेज किया है। वहीं महाराष्ट्र पूना से हमें सुनील, सुषमा, अनन्या, राजवीर गायकवाड़ ने हमें संदेशा भेजा है। मेरठ कैंट की बात करें तो दिग्दर्शन जी और कविता गौड़ हैं, इन्होंने हमें संदेशा भेजा है। नाम बहुत सारे ले लिए ना। पानीपत से नरेश मल्होत्रा साहब हैं, लक्ष्य हैं, कोयल हैं, नानक चंद जी हैं। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल जी, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे पास आफ्ताब रिवाज साहब का संदेशा आया। मोहम्मद कैफ हैं इनके साथ, अनवर हैं, लुबना हैं, आलिया अंसारी हैं। तो मैंने बहुत सारे मैसेज ले लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे मैसेजेस मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ पर गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अभी तो मैंने नाम लिया आपका, देखिए अब वैसे हमें याद नहीं रहता है, बहुत सारे नाम लेते हैं ना, लेकिन फिर भी कभी कभी याद आ भी जाता है। यहाँ पर मोहम्मद जाकिर मंसूरी हैं, कमरून निशा हैं, और ये कहाँ से आपने भेजा, मैं यही ढूंढती रहती हूँ, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अपने नाम जो है ना वो एक के नीचे एक लिखें तो ज़रा सुविधा सी हो जाती है हमें। प्रमोद कुमार का ये संदेशा आया है, साथ में इनके पुष्पेंद्र कुमार हैं और इन्होंने हमें हिसार से अपना संदेशा भेजा है। बहुत सारे मैंने संदेशे पढ़ दिए हैं और अब बारी है आपकी पसंद की एक गीत की। जितने भी नाम मैंने पढ़े हैं इनमें से किसी एक की पसंद का गीत है, इसको अपनी पसंद बनाते हैं, बना के देखिए तो सही आपको अच्छा लगेगा।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा

9868687853 ये वो नंबर है जिस पर आप हमें हमारी जो अपनी फरमाइश है वो हम तक पहुंचा रहे हैं। गंज डुंडवारा से शमशुर कमर राही, शाहीन, फातिमा, अनु खान, उस्मान और कलीम अंसारी हमें मैसेज करते हैं। राम प्रकाश वर्मा जी न जाने कहां से मैसेज करते हैं लेकिन लिख रहे हैं कि आप किसी भी गीत में हमें शामिल कर लीजिए। और गौरी शंकर नांगलोई से हमें संदेशा भेजते हैं। दीप्ति वैद, दिलीप वैद और अंबा जोगाई मराठवाड़ा से हमें संदेशा भेजते हैं। यहाँ पर सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी और बुशरा अंसारी, यहाँ पर गुलिस्ता रानी है इनके साथ, नंदनी है और अंजलि हैं, ये हमें मथुरा से संदेशा भेजते हैं। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। ऐसे ही और भी आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जी। मुकेश बंसल हैं, भावना बंसल हैं और वंदना बंसल हैं, ये हमें साहिबाबाद उत्तर प्रदेश से हमें संदेशा भेजते हैं। शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। और आपका हमने मैसेज ले लिया है, बार बार आप मैसेज ना करें प्लीज़। मैं जिन्हें कहना चाह रही हूँ वो समझ गए होंगे। बाड़मेर से हमारे पास बबलेश पवार हैं, डैनी पवार हैं, मनीष हैं। और अगला संदेशा जो है वो किसका है साहब? अगला संदेशा हमारे पास गांधीनगर गुजरात से है, जी के परमार हैं और यहाँ पर ज्योत्सना है, इनके साथ हर्ष हैं और दीपल हैं और इन्होंने भी एक गीत की फरमाइश की है। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। मेरी नज़र जो है वो घड़ी की ओर भी जा रही है, ज़्यादा समय नहीं है। श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख जी हैं, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख हैं और जगुताई हैं इनके साथ, कुमार और संचित देशमुख हैं, प्रथमेश हैं, सर्वद हैं, हर्षिता हैं और सानवी हैं और प्रणाली देशमुख हैं। बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। और भी बहुत सारे संदेशे आ रहे हैं लेकिन मैं क्या करूं, एक गीत मुझे कह रहा है बाजू पकड़कर मेरा कि बस अब मुझे आपसे मिलना है, यानी आप सबसे मिलना है। सहारनपुर चंदन नगर से आशु नारंग हैं और सोनाली नारंग हैं। और अब मैं अब यहाँ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ अगला गीत। जी ये रहा अगला गीत, सुनिए।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: एफएम गोल्ड पर 3:55 आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम मन भावन। और अब मुझे लग रहा है कि नंबर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वैसे ही आपके बहुत सारे संदेश हैं हमारे पास यहाँ पहुँचे हुए हैं। एटा से नबी हसन अब्बासी साहब हैं, शहनाज हैं इनके साथ, नवेद हसन अब्बासी हैं, सुहेल हैं और अनम यशफ अब्बासी हैं, रसीद वारसी हैं। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और अब मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा संदेशे नहीं ले पाऊँगी क्योंकि एक बहुत खूबसूरत गीत भी आप तक पहुँचाना है। गंज पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हमारे पास अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक का संदेश आया। वहीं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन साहब हैं, नसरीन हैं और आसना है, इनके साथ मोहम्मद कैफ हैं, सनावत से शेख मूसा मोहसिन हैं और शगुन त्रिपाठी दिल्ली कैंट से हमें संदेशा भेज रही हैं। उत्तम नगर पर अगर हम जाते हैं तो कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल हमें मैसेज करते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपके सभी संदेशों के लिए। जिनका मैंने संदेशा लिया वो तो खैर खुश हुए, जिनका नहीं ले पाई उनके लिए ये एक आस है कि ये कार्यक्रम आपसे रोज़ मुखातिब होता है तो आप अपना प्रयास जारी रखिएगा, आपका नाम कभी ना कभी जरूर आएगा। फिलहाल आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत।
1: धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलियट और फिनालेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
1: स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। सरकार ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि इन दवाओं के लेबल, पैकेज में दिए गए निर्देशों और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से चेतावनी लिखी जाए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। शिवांग के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। प्रतिनिधियों ने महास्तूप, ध्यान केंद्रों, कुआं और रसोई क्षेत्रों सहित प्राचीन बौद्ध अवशेषों को देखा। उन्हें स्थल के ऐतिहासिक महत्व और सदियों पहले यहां रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के जीवन के बारे में जानकारी दी गई। डॉ. मांडविया ने एक पेड़ मां के अभियान के तहत थोटलकोंडा में पौधारोपण भी किया। यह दौरा भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। इसमें 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ब्रिक्स देशों के युवा मंत्रियों की बैठक आज शाम विशाखापट्टनम में होगी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक कल विशाखापट्टनम में होगी। बैठक में खेल के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ाती है, कारोबार सुगमता को मजबूत करती है और किसी देश को निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है। नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मजबूत संस्थान, विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था आर्थिक विकास की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने लाइसेंस राज के दौरान उत्पादन को दंडित करने के अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन किया है। अब उसके स्थान पर सरकारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना के माध्यम से इसे पुरस्कृत किया जाता है। इकोनॉमिक टाइम्ड वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पिछली सरकारों की उस सोच की आलोचना की जिसमें जानबूझकर चीजों की कमी बनाए रखी जाती थी ताकि लोगों को सरकार पर निर्भर रखा जा सके। प्रधानमंत्री ने नकारात्मक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मॉडल की तुलना वर्तमान PLI योजना से की। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पहला जहाज MT Cebu 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। इसमें 16 भारतीय नाविक समेत 20 लोग सवार थे। दूसरा जहाज MV लुत्फ 17 अगस्त को सोमालिया के पुटलैंड तट के पास अगवा किया गया। इसमें 6 भारतीय नाविक समेत 10 लोग सवार थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। अमरीका ने $20 अरब मूल्य के कनाडाई उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ आज तड़के लागू हो गए। अंतिम समय में तनाव कम करने के लिए हुई वार्ता विफल रहने के बाद कनाडा ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करने की बात

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड रेडियो स्टेशन है 100.1 MHz। सभी सुनने वालों को सीमा वर्मा का नमस्कार। आइए साथियों, आपको बताते हैं आपके मनपसंद FM गोल्ड में आने वाले घंटों में आप कौन कौन से कार्यक्रमों का लुत्फ ले सकते हैं। अब से कुछ ही देर बाद आप और हम मिलकर सुनेंगे 4:20 पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार। 4:30 का वक्त न्यूज सर्विसेज डिवीजन के कार्यक्रम परिक्रमा का रहेगा और आगे 5:00 आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे और 5:10 पर आपकी मुलाकात एक बार फिर मुझसे गाते गुनगुनाते प्रोग्राम में होगी, जिसमें हम सुनेंगे कुछ चुनिंदा रेट्रो गाने। हर घंटे समाचारों की कड़ी में 6:00 की कड़ी जुड़ेगी हिंदी समाचारों से, 6:05 पर अंग्रेजी समाचार और 6:10 पर आप सुन सकते हैं विश्लेषण। शाम 6:20 पर संस्कृत में समाचार होंगे और 6:30 का वक्त मार्केट मंत्रा का रहेगा। और आइए साथियों, इसके आगे के कार्यक्रमों के बारे में मैं आपको जरूर जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं 1961 की फिल्म जंगली का ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: स्वागत एक बार फिर आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 मेगाहर्ट्ज। साथियों, अगर हम शाम के कुछ कार्यक्रमों की बात करें जिसमें आप बातों के साथ साथ फिल्मी गीतों का भी आनंद ले सकते हैं, तो हम 7:25 की ओर जाएंगे जहां पर आप सांझ ढले कार्यक्रम सुन सकते हैं। आपके साथ रहेंगी नूपुर गुप्ता। सात बजकर 7:45 पर प्रादेशिक समाचार होंगे, वहीं रात 8 बजे हिंदी में समाचार, 8:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 8:10 पर कार्यक्रम मधुरिमा आपसे मुखातिब होगा। साथ होंगी नूपुर गुप्ता और इस प्रोग्राम में जो गीत आप तक पहुंचाए जाएंगे उन गीतों के शास्त्रीय अंग की बात भी आप इस कार्यक्रम में जान सकते हैं। 8:30 का वक्त स्पॉट स्कैन का रहेगा, वहीं 8:45 पर समाचार संध्या हिंदी में आप सुन सकते हैं। रात 9 बजे News@9 कार्यक्रम होगा और 9:15 पर आप सुन सकते हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। साथियों, रात 10:30 हर सिंगार कार्यक्रम सुनना ना भूलिएगा। आपके साथ रहेंगे फिरोज आलम और 11:40 पर गीत मेरे मनमीत। तो ये तो एक छोटी सी रूपरेखा हमने आपको बताई। शुरू में कहा था एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 4:20 पर। समय हो गया है, आइए सुनते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़।
1: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with the Directorate General Border Security Force is inviting nominations for Group B non-gazetted non-ministerial combatized post in the BSF paramedical setup on deputation, including short-term contract or promotion basis. The available posts are Subedar Major Dietitian at pay level 8 and Sub-Inspector Electronic Cardiographics Technician at pay matrix level 6, with one vacancy

0: रक्षा उच्च तुंगता अनुसंधान संस्थान आमंत्रित करता है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता, रिक्तियां हैं 16, अनुसंधान सहयोगी, रिक्तियों की संख्या है 2। योग्यता, आरक्षण, अध्येता वृत्ति आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए 8 अगस्त 2026 से 14 अगस्त 2026 का रोजगार समाचार पत्र। विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण में महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, जनसंपर्क अधिकारी और सहायक प्रबंधक की रिक्तियां उपलब्ध हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in। इसके अतिरिक्त आप इस वेबसाइट पर भी देख सकते हैं www.iepf.gov.in। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद NCVET में भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित हैं, निश्चित अवधि के अनुबंध के आधार पर इन पदों के लिए। सीनियर कंसल्टेंट 1 पद, कंसल्टेंट Grade 2 1 पद, कंसल्टेंट Grade 1 4 पद, यंग प्रोफेशनल 7 पद, डेटा एनालिस्ट 2 पद, रिसर्च एनालिस्ट 2 पद और थीमेटिक लीड 2 पद। परफॉर्मेंस और संगठन की जरूरतों के आधार पर 2 वर्ष की अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है, जो ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष तक के लिए हो सकती है। आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 31 अगस्त 2026। आवेदन करने के लिए इस लिंक पर आप जा सकते हैं ncvet.gov.in/career-opportunities। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के लिए प्रोफेसर ऑफ लॉ के 1 पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पात्रता की शर्तें, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, प्रतिनियुक्ति की अवधि, आयु सीमा आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.lbsnaa.gov.in/vacancy.php। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान आमंत्रित करता है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। टेक्नीशियन Grade A इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, टेक्नीशियन Grade A इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन पे लेवल 2। इसके लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.niot.res.in। इसके अतिरिक्त 15 से 21 अगस्त 2026 का रोजगार समाचार पत्र भी आप आवश्यक जानकारी के लिए देख सकते हैं। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी सुनने वालों का न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा में। कार्यक्रम में हम आप तक लाएंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज क्या उनके पास खास रिपोर्ट्स हैं आपके लिए, और खेल के मैदान की गतिविधियों और अर्थ जगत की सुर्खियों पर भी एक नज़र हम डालेंगे। कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों के बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है या फिर आज के दिन जिनका हुआ था जन्म। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं सायरा मुश्तबा। हेलो सायरा।
2: हेलो विशाल, नमस्कार, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हू हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा वेयर वी ऑलवेज ब्रिंग यू अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज आर ऑफ कोर्स आर डिस्कशन सेगमेंट दैट ओपन्स द शो डेटलाइन इंडिया सम रिपोर्ट्स कैप्सूल्स ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर ऑल दिस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। बट विशाल, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस फर्स्ट।
1: जी जरूर।
2: Government imposes restrictions on manufacturing, sale and distribution of all fixed dose combinations containing chlorpheniramine maleate and phenylephrine hydrochloride for children aged below 4 years.
1: भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा।
2: India raises with Somalia issue of hijacking of two foreign flagged commercial vessels with 22 Indian sailors on board.
1: अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के 20 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। कनाडा ने भी समान स्तर के जवाबी टैरिफ लगाने की बात कही।
2: IMD issues orange alert for very heavy rainfall over east Madhya Pradesh today.
1: और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारतीय महिला जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद और चीन की लियु शेंगशू और टेनिंग के बीच मुकाबला जारी है।
2: And Vishal, as I had mentioned that we opened the show with our special segment Dateline India. Today we'll be discussing two topics, Vishal. The first topic will be International Day that commemorates the victims of acts of violence based on religion or belief. And the second topic is of course very interesting, India's कोकोनट सेक्टर। तो पहले क्यों ना हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा उस पर बात करते हैं।
1: जी सायरा, कुछ दिन हमें जश्न मनाने के लिए कहते हैं और कुछ दिन हमें रुकने और याद करने और सोचने समझने का मौका लेकर आते हैं। आज का जो दिन है वो धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के शिकार लोगों की याद में मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ये दिन उन लोगों को याद करने के लिए समर्पित है जिन्होंने सिर्फ अपनी आस्था के कारण हिंसा, नफरत और उत्पीड़न का सामना किया है।
2: That's right, and a very, very, you can say, somber day indeed to remember the victims of violence that was either based on religion or their belief. This day was established by the United Nations General Assembly on 28th of May 2019. Just think about it, that a place of worship where people come seeking peace, it turns into a target. A festival that is meant for joy is often disrupted by violence. So this is very, very tragic.
1: जी सायरा, किसी व्यक्ति को इसलिए धमकाया जाता है या उस पर हमला किया जाता है कि उसने क्या किया है, बल्कि कहा जाए तो कि ये भी इस बात के लिए भी धमकाया जाता है कि वो किस पंथ से जुड़ा है, किस धार्मिक विचारों को मानने वाला है। यहाँ एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि नफरत के माहौल में क्या कोई समाज शांतिपूर्ण रह सकता है?
2: बिल्कुल नहीं। और मेरे ख्याल से समाज शांतिपूर्ण क्या, आप खुद कभी भी शांति नहीं पा सकते। आप खुद कभी जिस खुदा में, भगवान में आप बिलीव करते हैं, वो भी आपको कभी प्राप्त नहीं होगा अगर आप उसी भगवान की बनाई हुई किसी और क्रिएशन से नफरत करते हैं। वेल ऑफ कोर्स एज आई सेड द आंसर इज नो, बिकॉज एन अटैक ऑन वन कम्युनिटी इज अल्टीमेटली एन अटैक ऑन द सेंस ऑफ सिक्योरिटी दैट वी ऑल शेयर। And we have seen this reality in different parts of the world, from attacks on churches, mosques, temples and synagogues, to people being harassed online because of their religious identity.
1: जी बिल्कुल, नफरत फैलाने वाली पोस्ट या गुमराह करने वाले मैसेज भी बहुत बड़ी चीज़ बन सकते हैं। ये खतरा तब और बढ़ जाता है जब ऐसे संदेश किसी को बलि का बकरा बनाने की भावना को बढ़ावा देते हों।
2: You're very right, Vishal. And a religious festival that brings together people from different communities, for a moment, differences become secondary. This is the everyday that everyday India that many of us know and we have grown up knowing. That spirit is beautifully captured even in our civilizational ethos of Vasudhaiv Kutumbakam, that the world is one family.
1: जी, भारत की ताकत जो है हमेशा से सायरा इसकी अद्भुत जो विविधता है वो रही है. अलग अलग धर्म, भाषाएं, परंपराएं और त्यौहार सभी एक साथ मनाए जाते हैं. दिवाली और ईद से लेकर क्रिसमस, गुरु पर्व, बुद्ध पूर्णिमा और महावीर जयंती तक हमारे त्यौहार ही अपने आप में अनेकता में एकता की कहानी कहते हैं.
2: बिल्कुल सही कहा आपने. और भाई अगर एक घर में भी जब पांच लोग अगर रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है उन पांचों में नहीं बन पाती, बट दैट डजंट मीन कि उन पांचों में मोहब्बत ख़त्म हो जाए. तो छोटे मोटे वो डिफरेंसेस होना लाजमी है.

0: but that shouldn't snowball into violence at any cost. And diversity does not survive on its own, Vishal. It needs respect and mutual respect for that matter. And as Mahatma Gandhi famously said, that all religions are true. We must remember that a disagreement does not have to become hatred. Or especially jab se ye social media aaya hai, Vishal, I think so. Jo disagreement ki paribhasha hai na, wo hi badal gayi hai. Agar main aap se sehmat nahi hoon, to usi waqt jo hai talwarein khinch jaati hain. भाई नहीं सहमत हूँ, मेरे अपने विचार हैं, आपके अपने विचार हैं, बट उसके बावजूद हम दोनों में दोस्ती तो रह सकती है ना?
1: बिल्कुल रह सकती है।
0: बट दिस इज समथिंग दैट हैज कंप्लीटली चेंज्ड विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज वी हैव प्रॉब्ली फॉरगॉटन व्हाट डिस्कशन मींस एंड वी ओनली आर्ग्यू।
1: मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए।
0: एब्सोल्युटली।
1: और सरकारों की भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वे लोगों की सुरक्षा करें और हिंसा करने वालों को सजा भी दिलाएं। धार्मिक नेताओं की भी ये जिम्मेदारी है कि वे नफरत और हिंसा के खिलाफ साफ साफ आवाज उठाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने प्लेटफॉर्म का गलत उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल न होने दें और उत्पीड़न, बदनामी तथा किसी को बलि का बकरा बनाने जैसी गतिविधियों का अड्डा न बनने दें।
0: That's very right, Vishal. And even Nelson Mandela said that no one is born hating another person. Hatred is acquired. It is something that we learn after gaining consciousness. And if hatred can be learned, perhaps compassion can be taught as well. In fact, agar yun dekha jaye ki insani fitrat mein compassion hota hai, usko aapko sikhana nahi padta.
1: Ji, karuna hoti hai.
0: Ha, to insan, we are actually born as a pure soul, so we already have positive traits. What we acquire is the negative traits. To wahi khayal se agar aap jo usko unlearn kar dein, jo aapne nafrat aur differences seekhe, to automatically jo andar chupi hui aapke karuna aur positive cheezein apne aap aa jayengi. And well, perhaps our role begins with something very simple, that seeing the person before seeing the label, because behind every statistic is a human being, someone with a family, someone with hopes, someone who deserves to pray, celebrate, gather and live without fear.
1: जी, और इस दिन हम धर्म या आस्था के आधार पर सताए गए लोगों को याद करते हैं और उसका डटकर सामना करने वाले लोगों के साहस का भी सम्मान करते हैं। हम उनकी गरिमा और उनके अधिकारों को फिर से मान्यता भी देते हैं। आज का दिन ये याद करने का भी है कि हमारे मतभेद हमें बांटते नहीं हैं, बल्कि वे हमारी साझा पहचान को और भी समृद्ध बनाते हैं।
0: That's right, and we all deserve a world where every person can say that my faith is respected and so is yours. And is a very important topic जो हमने आज डिस्कस किया। अच्छा, इससे पहले हम ये टॉपिक क्लोज कर रहे हैं, यू वोंट बिलीव, कुछ दिन पहले, क्योंकि आज़ादी का जश्न हम लोग ने मनाया और एक सोशल मीडिया के जरिए कुछ रील्स बड़ी फेमस हो रही थी। आई केम अक्रॉस अ रील, इसमें एक इन्फ्लुएंसर जो है दूसरे मुल्क के लोगों पास जा रहा है और कह रहा है कि मेरे पास, वो एक नोट की गड्डी निकालता है और कहता है मैं ये आपको दूंगा, पर जो मैं आपसे कहूंगा नेक्स्ट वो आप करेंगे, आपको एक चीज जलाना है, कहेंगे आप बताइए। तो वो निकालता है किसी मुल्क का परचम, तो वो कहते हैं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे मुल्क का परचम कोई और जलाए, तो मैं क्यों दूसरे मुल्क का परचम जलाऊं। तो नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, जो कहने को वो दो मुल्क आपस में दुश्मन है, लेकिन जो आम जनता है उसने यही कहा कि अगर हम खुद को रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वी शुड नो हाउ टू रिस्पेक्ट दी अदर्स ऑल्सो। तो मेरे ख्याल से जो जोश मलियाबादी का शेर है ना, कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक फैले।
1: बहुत खूब।
0: तो आम जनता तो मेरे ख्याल से यही करना चाहिए हम लोगों को, कि जितना हो सके सिर्फ मोहब्बत ही फैलाएं, एंड डिफरेंसेस होने के बावजूद जो दिलों में आपने कहा ना मनभेद नहीं हो, वो नहीं होना चाहिए। And that comes to, we come to our next topic, Vishal, which is...
1: दूसरा टॉपिक जो है आज हमारा डेडलाइन का सायरा श्रीफल से संबंधित है।
0: Yes.
1: जैसे हम कोकोनट भी कहते हैं, नारियल भी कहते हैं।
0: Yes, absolutely. India's coconut sector. And this is one fruit, Vishal, I think, जिसका अगर आप तसव्वुर कीजिए कि कोई भी चीज एसोसिएटेड है उस पेड़ से, वो काम में आती है।
1: जी, बिल्कुल।
0: You know, whether it's leaves, whether the fruit, whether, you know, everything of a coconut that is used. So I think it's a very, very important fruit. And of course, India's coconut sector is also very important. And today, the iconic boat race in Keralam has begun, because we all know that Keralam is now, steeped in Onam festivities.
1: Mm-hmm.
0: We'll take you through all the excitement in our regional correspondent section, jab hum desh ki parikrama pe niklenge. But with Onam around the corner, Keralam is already gearing up for a season of color, celebration.

0: and of course delicious food. So what better time to talk about one ingredient that is almost inseparable from the flavors, culture and landscape of South India, that is the humble coconut.
1: बिल्कुल सही कहा आपने. दक्षिण भारतीय व्यंजनों की जब बात होती है तो उसमें अगर नारियल नहीं है तो वो दक्षिण भारतीय व्यंजन नहीं है माना जाएगा. और नारियल सिर्फ रसोई में पसंद की जाने वाली खाद्य वस्तु नहीं है बल्कि ये भारत की कृषि अर्थव्यवस्था और लाखों लोगों की आजीविका का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है.
0: Very rightly said, and India ranks the second in the world in coconut production, contributing about 22.44% of global production. In 2024-25, India produced around 13.97 million tons of coconut from 2.19 million hectares of land.
1: और जब हम नारियल की बात करते हैं वो भी भारत में, तो फिर केरलम का जिक्र ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता सायरा. केरलम नारियल के लहराते पेड़ों की एक धरती है. देश में नारियल की खेती का सबसे बड़ा इलाका भी केरलम में ही है जो लगभग 7.54 लाख हेक्टेयर में फैला है और यहाँ करीब 35.44 लाख टन नारियल का उत्पादन होता है.
0: However, Tamil Nadu leads India in overall coconut production, while Andhra Pradesh records the highest productivity. So when it comes to coconut, different states bring different strengths to the table.
1: और इन दक्षिण भारतीय राज्यों में जिसमें कि केरलम सबसे ऊपर भी है, 2024-25 में लगभग 4,349 करोड़ रुपए मूल्य के नारियल और नारियल से बने उत्पादों का भारत ने निर्यात किया और पिछले साल की तुलना में इसमें 25% की उल्लेखनीय वृद्धि भी दर्ज की गई है.
0: And Vishal, what's even more fascinating is how dramatically this sector has evolved. Back in 2001-2002, coconut exports were worth only around 25 crore rupees and they were largely centered around traditional products such as raw coconut, coconut oil and desiccated coconut.
1: और आज के दिन दुनिया में नारियल उत्पादों की मांग पहले से कहीं अधिक हो गई है. जैसे आपने कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिए, कुछ उत्पादों के नाम लिए, तो मैं भी कुछ आपके सामने उत्पाद बताना चाहूँगा. वर्जिन कोकोनट ऑयल, नारियल कोकोनट मिल्क जिसे हम कहते हैं, नारियल का दूध, नारियल पानी और नारियल से बने कई तरह के मूल्य संवर्धित वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी हैं. तो क्या नारियल अब सिर्फ एक फल रह गया है? शायद नहीं, ये एक पूरा आर्थिक इकोसिस्टम बन चुका है सायरा.
0: Yes, absolutely Vishal. Behind this ecosystem are people, nearly 30 million of them, including around 10 million farmers, whose livelihoods are connected to the coconut sector. To support them, the Coconut Development Board under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare works towards the integrated development of coconut cultivation and related industries across 22 states and union territories.
1: जी, और नारियल विकास बोर्ड ने नारियल किसान उत्पादक संगठनों के गठन का भी समर्थन किया है जिससे किसानों को एकजुट होने, मोल भाव करने की क्षमता को मजबूत करने और अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलती है.
0: And there's another interesting development on the horizon. What happens when old, low-yielding coconut trees are replaced with improved saplings and high-yielding varieties? Of course, better productivity and ultimately better incomes for farmers.
1: केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रस्तावित नारियल संवर्धन योजना कोकोनट प्रमोशन स्कीम का उद्देश्य भी यही है. प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में नारियल के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देना.
0: So this autumn, when you see those beautiful coconut palms swaying in the breeze, perhaps look at them a little differently. They're not merely part of Kerala's picturesque landscape. They represent farmers, livelihoods, exports, innovation, and a growing Indian industry.
1: और अब चलते हैं अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानते हैं कि आज उनके पास क्या खास रिपोर्ट्स हैं.
0: So we are starting our journey, our parikrama from down south in Tamil Nadu. Well, Madras Day is observed on this day every year. The 387-year-old coastal city was founded in 1639. The day is widely associated with the East India Company's acquisition of Madrasapattinam. The day also highlights the city's transition from a colonial settlement into a major cultural, commercial and urban center. So this was a trivia that was related to Madras Day today. Aur ab hum log chalte hain
1: Keralam. Abhi hum Keralam ki baat bhi kar rahe the, nariyal ki baat ho rahi thi to Keralam ki bhi baat ho rahi thi. Aur Keralam mein aaj sab की नजरें अलापुझा पर टिकी हैं जहां

0: कहानियों को डिजिटल माध्यम से देश भर तक पहुंचाने की तैयारी है। इसी उद्देश्य से अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा द्वीपों में जागरूकता सह उन्मुखीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यशालाओं के माध्यम से छात्रों, युवाओं और उभरते डिजिटल क्रिएटर्स को चैलेंज के उद्देश्यों और इसमें मिलने वाले अवसरों की जानकारी दी जा रही है। पर्यटन विभाग के संसाधन अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभागियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारी विरासत को दस्तावेजित करें, हमारी कहानी बताएं, द्वीपों का रत्न बने संदेश के साथ युवाओं को अपने समुदाय की विशिष्ट संस्कृति, परंपराओं, प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यटन स्थलों और उपलब्धियों को रचनात्मक डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इन रचनात्मक प्रस्तुतियों के जरिए अंडमान एवं निकोबार के एमराल्ड आइलैंड्स की विविध और समृद्ध पहचान को राष्ट्रीय मंच पर नई आवाज मिलेगी। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपादक पी हरिकृष्णा के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद।
1: और अब डालते हैं नज़र खेल के मैदानों पर, आज क्या हलचल हो रही है। तो BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टैन निंग से हो रहा है। और उधर अम्स्टरडैम में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम 7:30 बजे भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। अब याद करते हैं उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।
2: On this day in 1907, Madam Bhikaji Kama raised India's first national flag at Second International Socialist Conference at Stuttgart in Germany. Bhikaji Kama was born on September 24, 1861 in an influential Parsi family. An outstanding lady of great courage, integrity and passion for freedom, Bhikaji spent most of her time in social work. Madam Kama's intense love for nation made her sacrifice her family life and worked tirelessly for the cause of the nation. In October 1896, when the Bombay presidency was hit by famine and shortly thereafter by bubonic plague, Bhikaji provided care for the afflicted. In 1905, Madam Kama relocated to Paris, where she co-founded the Paris Indian Society. While living in exile in the Netherlands and Switzerland, Kama wrote and published revolutionary literature for the movement, including Bande Mataram and later Madan's Talwar, which was published in response to the execution of Madan Lal Dhingra. On this day in 1907, Kama attended the Second Socialist Congress at Stuttgart, Germany, where she described the devastating effects of the famine that had struck the Indian subcontinent. In her appeal for human rights, equality and freedom from the Great Britain, she unfurled what she called the flag of Indian independence. For this act, she came to be known as the Mother of the Indian Revolution. Kama's flag was a modification of the Calcutta flag. It was co-designed by Kama and Vinayak Damodar Savarkar and would later serve as one of the templates from which the current national flag of India was created. Madam Bhikaji Kama was a pioneer amongst those who worked for the freedom of the country from abroad. It was her motto to serve humanity and to raise her voice against any exploitation of fellow beings.
3: This day, 71 years ago, a patriot and freedom fighter, Shoaibullah Khan, was shot dead on 22nd August 1948 by the Razakars led by Qasim Rizvi. Shoaibullah Khan was the editor of Imroz, the Urdu daily published from Hyderabad. He was in favor of the merger of Hyderabad with the Union of India and opposed Qasim Rizvi's idea of an independent Hyderabad state. On the fateful day, Shoaibullah Khan was shot from behind. Department of Journalism of Osmania University has instituted a gold medal in honor of Mr. Khan for the top student of BCJ. Another interesting fact about today is that on this day exactly 100 years ago in 1921, Gandhiji made a bonfire of foreign clothes during the non-cooperation movement. Gandhiji called for a campaign of non-cooperation with British rule on 31st August 1920. People were asked to adhere to renunciation of all voluntary association with the British government. Thus, people boycotted schools, colleges, courts, and withheld the payment of taxes. It was

0: during this non-cooperation movement that people burnt foreign clothes in public. Acts like these clearly sent a message to the British government that their days in India were limited.
1: On this day, Gosai Bhai Patel, a freedom fighter from Gujarat, snatched away a rifle from British policeman and hit him with the butt of the gun in protest against the killing of three nationalists in Mathwad. While growing up, though attracted in Gandhian non-violence principle, Gosai Bhai involved in a few violent attacks against British rule. He and his friends successfully attacked the police station and released the captives. He, along with some of his like-minded friends, tried to blow away a railway bridge too, but lack of technological know-how diffused the impact of the explosion.
0: Patel went on to become a successful politician. He was elected for the Gujarat Assembly thrice. He was also at the helm of Dandi's development. Gosabai became a strong follower of Gandhiism. He has written many books on Gandhiism and was active in social work till the age of 90, despite his failing health. Interestingly enough, on this day in 1639, Madras, now Chennai, was founded by the British East India Company on a sliver of land bought from local Nayak rulers. Later on, Robert Clive built the British Empire from the Madras Presidency.
2: और अब याद करते हैं उन व्यक्तित्वों को जिनकी आज पुण्यतिथि है या फिर आज ही के दिन जिनका हुआ था जन्म. और सबसे पहले इस कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं हिंदी साहित्य के महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई को, जिनकी लेखनी ने समाज की विसंगतियों पर न केवल तीखा प्रहार किया बल्कि आत्मचिंतन के लिए भी प्रेरित किया. हरिशंकर परसाई ने हिंदी व्यंग को साहित्य की एक सशक्त और प्रतिष्ठित विधा के रूप में स्थापित किया था. परसाई जी ने अपने समय की सच्चाइयों को लोगों के सामने रखने के लिए व्यंग को माध्यम बनाया. परसाई जी का व्यंग केवल हंसाने के लिए नहीं था, उनकी रचनाओं में आम आदमी का जीवन, सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड, भ्रष्टाचार और रूढ़ियों के प्रति गहरी संवेदना दिखाई देती है और जो पाठक को देर तक सोचने के लिए भी विवश करती है. उनकी रचनाओं ने हिंदी साहित्य में व्यंग को नई ऊंचाइयां दी और विकलांग श्रद्धा का दौर जो उनकी रचना थी उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था. वर्ष 1992 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया. परसाई जी की अगर सबसे बड़ी उपलब्धि का अगर हम बात करें तो उन्होंने व्यंग को समाज के प्रति जिम्मेदार साहित्य बनाया. उनकी लेखनी ये हमें बताती है कि सच्चा व्यंग किसी व्यक्ति का उपहास नहीं बल्कि व्यवस्था और समाज की कमियों को पहचानने का माध्यम है. इस महान रचनाकार को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि.
3: Today we are also remembering Shambhu Mitra today, who was a pioneer of modern Bengali theatre as an actor, director and playwright. He founded the Bahurupi Theatre Group in 1948 after associations with IPTA, and he also appeared in films including Dharti Ke Lal and Jaagte Raho and received the Padma Bhushan, Sangeet Natak Akademi Fellowship and the Raymond Magsaysay Award. And we are also remembering an actress of yesteryears today, Vishal. We are talking about Vimlesh Kaur Vadhwan, jinko hum log jante hain Vimi ke naam se. And she appeared in films like Hamraaz, Aabru, a Punjabi film called Nanak Naam Jahaz Hai, and a film Patanga.

0: जी। और जिस फिल्म का आप अभी गीत सुन रहे हैं, 1967 में आई थी, हमराज और बीआर चोपड़ा के निर्देशन में, और सुनील दत्त के साथ डेब्यू किया था इसमें, और ये फिल्म बहुत हिट रही थी और अपने दौर की खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार। विमी की मृत्यु 22 अगस्त 1970 को मुंबई के नानावटी अस्पताल में लिवर की बीमारी से हुई। और आज ही पुण्यतिथि है यू आर अनंत मूर्ति की भी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध कन्नड़ साहित्यकार, आलोचक और शिक्षाविद यू आर अनंत मूर्ति को नव्या आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना रही है संस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले 8 कन्नड़ साहित्यकारों में से वे 6ठे साहित्यकार थे। और अब समय हो रहा है कार्यक्रम परिक्रमा में आपसे यहीं अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए सायरा और विशाल को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं संपन्न करने की। नमस्कार, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइल एफरीन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। सरकार ने कहा है कि ऐसी दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के सुकना में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ बैठक की। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि बैठक सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने रचनात्मक ढंग से अपने मुद्दे रखे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी संबंधित मुद्दों पर अपने विचार और प्रतिबद्धता व्यक्त की। बैठक के बाद गृहमंत्री ने घोषणा की कि मुद्दों के समाधान के लिए वार्ताकार पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। ये दौरा भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। इसमें 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ब्रिक्स देशों के युवा मंत्रियों की बैठक आज शाम विशाखापट्टनम में होगी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक कल विशाखापट्टनम में होगी। बैठक में खेल के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ाती है, कारोबार सुगमता को मजबूत करती है और किसी देश को निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है। नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मजबूत संस्थान, विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था आर्थिक विकास की आधारशिला है। सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल है। न्यायालय ने कहा कि ये पहल न्याय व्यवस्था के मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पहला जहाज एमटी सिबू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। दूसरा जहाज एमवी लुत्फ 17 अगस्त को सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास अगवा किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत अशांत समुद्र क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।
2: 2 ships which are foreign flagged. 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
3: We are in touch with the authorities that are concerned in this.
1: अमेरिका ने 20 अरब डॉलर मूल्य के कैनेडाई उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ आज तड़के लागू हो गए। कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कैनेडा भी डॉलर के बदले डॉलर के आधार पर समान टैरिफ लगाएगा। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह निर्णय पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में लिया गया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच एम्स्टरडेम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान पर 5-3 की शानदार जीत के साथ भारत ने पूल डी में दूसरा स्थान हासिल किया। उधर BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टैंडिंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Union Home Minister Amit Shah held an important meeting with senior Gorkha leaders today at a resort in Sukna, Siliguri. After the meeting, the Home Minister announced that a high-level committee to resolve the issues would be formed under the chairmanship of interlocutor Pankaj Singh, former BSF Director and Deputy National Security Advisor. Briefing media after the meeting, Darjeeling Lok Sabha MP Raju Bista said, "The meeting was very fruitful and all Gorkha leaders constructively presented their issues." After hearing the leaders, the Chief Minister Shubhendu Adhikari also expressed his views and commitment regarding concerned issues. The government today imposed restrictions on the manufacturing, sale and distribution of all fixed-dose combinations, FDCs, containing chlorpheniramine maleate and phenylephrine hydrochloride for children below 4 years of age. The Health Ministry in a notification mandated a clear warning that these medicines shall not be used for children below 4 years of age in a significant step to safeguard the health and safety of young children. The government directed manufacturers to clearly display the warning, "fixed-dose combination shall not be used in children below 4 years of age," on the label, package insert and promotional literature associated with these formulations. The government said the use of such combinations may pose risks to children below 4 years of age and that safer alternatives are available. The central government has notified the removal of the 12-minute advertisement duration cap for television channels. The decision has come into effect with notification of the amendment in the Cable Television Networks Rules 1994 in the Gazette. Earlier, the Information and Broadcasting Ministry said in a statement that in view of the changes that have occurred in the TV broadcasting sector, a need was felt to revisit the stipulations relating to advertisement duration. The BJP today passed a resolution regarding the honour and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In a social media post, BJP President Nitin Naveen said the party strongly condemned and unequivocally opposed the Congress Working Committee's decision to sing only the first two stanzas of Vande Mataram in the party programmes. He added that the BJP is resolved to reject every attempt to subordinate the national song to communal pressure, political appeasement or narrow vote bank considerations. The BRICS Youth Ministers meeting will be held in Visakhapatnam this evening. The meeting, chaired by Union Minister for Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandavia, will discuss ways to strengthen cooperation in youth development and empowerment, with a focus on education, skill development, entrepreneurship, well-being and sustainable development. The BRICS Sports Ministers meeting will be held in Visakhapatnam tomorrow, with discussions expected to focus on strengthening cooperation in sports. India has raised with Somalian authorities the issue of the hijacking of two foreign-flagged commercial vessels with 22 Indian sailors on board. The vessels carrying 16 Indian seafarers on board MT Cebu and 6 Indian seafarers on board MV Lutuf were hijacked by armed pirates in separate incidents off Yemen and Somalia. In a social media post, the Indian High Commission in Kenya said all Indian seafarers are reportedly safe. It said India attaches the highest importance to the safety and welfare of its seafaring community. The mission said they have taken up the matter with the concerned authorities in Somalia. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will undertake a two-day visit to Russia beginning tomorrow. The minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. In Madhya Pradesh, heavy rain is continuing in several districts. Heavy rain has been lashing the eastern parts of the state for the past 2 days and several rivers are in spate. The weather department has issued an orange alert for extremely heavy rain in Sivani and Balaghat today. A heavy rain alert has also been issued for 12 districts including Datia, Bhind, Niwari, Tikamgarh and Chhatarpur. Light to heavy rain is also expected in several other parts.

मानसून है साहब, सावन का महीना है और इसके बाद भादो आएगा, यानी सावन और भादो दोनों महीने अंबर तो बरसता है और ये घना घन बादल जो है ये कब आ जाए कोई नहीं जानता। आइए शुरुआत करते हैं इसी गीत से आपके मनपसंद कार्यक्रम गाते गुनगुनाते की। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1। आज शनिवार की जानदार शानदार शाम आपके साथ मैं सीमा वर्मा।

0: पहले गीत की शुरुआत हो गई यानी कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और अब मुझे आपसे एक ना सवाल पूछना है, क्वेश्चन पूछना है। 1988 की फिल्म तेजाब याद है आपको? अब आप पूछेंगे कि भाई ये क्या बात है, ये कोई पूछने की बात है, तेजाब बिल्कुल याद है। और जिन्हें याद नहीं भी है, कई बार कुछ गीत ऐसे होते हैं जो फिल्म की पहचान बन जाते हैं। 1 2 3 जो गीत है वो इस फिल्म की पहचान है। इस गीत को सुनते ही आपको एकदम से ये फिल्म तेजाब याद आती है। और यहाँ पर एक मेरा ये भी विचार है कि अब जैसे जैसे नई फिल्में आ रही हैं साथियों, तो कुछ पुराने गीत ऐसे होते हैं जिन्हें नई फिल्मों में एक नए अंदाज से इंक्लूड कर लिया जाता है। जैसे अगर अभी आप धुरंधर फिल्म देखेंगे तो धुरंधर फिल्म में जो कव्वाली है साहिर लुधियानवी जी की लिखी हुई, ना तो कारवां की तलाश है, उसको एक नए तरीके से थोड़ा सा उसमें लिया गया है। और अनुराधा पौडवाल जी का वो जो गीत है हम प्यार करने वाले दुनिया से न डरने वाले, तो ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुरानी किसी फिल्म का कोई बहुत चर्चित बहुत हिट गाना होता है जिसे आगे फिल्म में थोड़ा सा ले लिया जाता है। इसी तरह ये जो तेजाब फिल्म का 1 2 3 गाना है, इस गाने को बागी 2 फिल्म में लिया गया और उसे आवाज़ दी श्रेया घोषाल ने। लेकिन ओरिजिनल सॉन्ग जो है तेजाब फिल्म का वो किसने गाया भला, आप जानते हैं, अलका याग्निक जी ने गाया। और ये गीत जो है इसे गाने के बाद वो बन गई माधुरी दीक्षित जी की आवाज़। और अब बारी है उस गीत को इंजॉय करने की, सुनने की। ये बता दूं आपको मैं कि इसके लिए अलका जी को बेस्ट फीमेल सिंगर का भी अवार्ड हासिल हुआ। आइए सुनते हैं इस गाने को।
1: कहिए क्या सुनेंगे आप?
2: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
1: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
2: कौन है वो?
1: वो जिससे मैं करती

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

गाते गुनगुनाते का सफर आपके साथ सीमा वर्मा के साथ आगे बढ़ रहा है। 5:27:27 आप हैं एफएम गोल्ड 100.1 के साथ। जब भी मिलता है अंदाज नया होता है, जब भी मिलता है अंदाज नया होता है। चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के जितने भी गीत मैं यहाँ से वहाँ तक पहुँचा रही हूँ मन को भा रहे होंगे और गाते गुनगुनाते हुए आप अपने सफ़र को तय कर रहे होंगे।

इस आइकॉनिक गीत के बाद आइए कुछ अलग बात करते हैं. 1991 की फिल्म सौदागर, याद है आपको? 90s की फिल्में और 90s के

जो गीत हैं वो कहीं ना कहीं दिलों में महफूज हैं, ये बात तो खैर सच है। साथियों, जैसे मैंने कहा 91 में ये फिल्म आई और इस फिल्म में सिल्वर स्क्रीन पर हमें दो दिग्गज नज़र आए, एक तरफ दिलीप कुमार साहब और दूसरी तरफ राजकुमार जी। इस फिल्म में जो हीरो हीरोइन की भूमिका है वो मनीषा कोराला और विवेक मुशरान ने निभाई। आनंद बख्शी साहब के गीत, लक्ष्मी प्यारे का संगीत और इस फिल्म को बेस्ट डायरेक्शन और बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड भी प्राप्त हुआ। गाने अपने आप में बड़े ख़ास हैं। जैसे ही इस गीत को आप सुनेंगे बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी।

स्वागत आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 गाते गुनगुनाते में आज आपके साथ सीमा वर्मा और मेरे साथ तो आप हैं ही। मुझको मालूम है अपने सारे गुनाह, मुझको मालूम है अपने सारे गुनाह। एक तो मोहब्बत कर ली, दूसरी तुमसे कर ली और तीसरी बेपनाह कर ली।

ये तो खैर गीत में बहुत अच्छा प्रश्न हुआ कि कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं। अब ये जो कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं है, ज़िंदगी में कई बार हमें इस सवाल का सामना करना पड़ता है जब हमें समझ नहीं आता कि कुछ समझ नहीं आ रहा, अब करें तो क्या करें, ऐसे में क्या करना चाहिए भला, आप बताइए। भाई हमें लगता है ऐसे में हमें अपने अंदर की आवाज़ को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और अपने साथी की गुस्ताख आँखों की तरफ भी थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो लब तो मुस्कुराएंगे और आँखें बोलेंगी।

NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

5:54 और 20 सेकेंड आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। आपके साथ आज गाते गुनगुनाते में मैं सीमा वर्मा, और वक्त हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आया है कि मैंने आपको अपना नाम भी बता दिया, स्टेशन आईडी भी दे दी है, लेकिन अब आपसे विदा लेनी है, और वो इसीलिए क्योंकि नूपुर स्टूडियो में आ गई हैं अपने अगले कार्यक्रम की पूरी तैयारी के साथ। तो सीमा को तो अब जाना है, लेकिन ऐसे तो नहीं जैसे तरन्नुम भरे लहजे में कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, उसी तरह तरन्नुम भरे लहजे में कार्यक्रम का समापन भी हम करेंगे। साहब शाद रहिए, आबाद रहिए, इसी तरह मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। आने वाला गीत आशा जी की आवाज़ में, जो आपको मुस्कुराने पर तो मजबूर करेगा ही। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने आज देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की।

0: इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन अनेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया और प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा हुई। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामिन मैलिएट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कहा है कि ऐसी दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। यह दौरा भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक कल विशाखापट्टनम में होगी। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पहला जहाज एमटी सीबू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। दूसरा जहाज एमवी लुत्फ 17 अगस्त को सोमालिया के पुटलैंड तट के पास अगवा किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के पहले कैथोलिक संघीय मंत्री और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक शहबाज भट्टी की हत्या के 15 साल बाद भी ईसाई, हिंदू और अहमदिया सहित अल्पसंख्यक समुदाय देश भर में भेदभाव और धार्मिक स्थलों पर हमलों का सामना कर रहे हैं। अमरीकी मीडिया संस्थान पीजे मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अत्याचारों में अपहरण, जबरन धर्मांतरण और बाल विवाह शामिल हैं। रिपोर्ट में इश्निंदा कानूनों के दुरुपयोग का भी उल्लेख है। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह निर्णय पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में लिया गया। प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर 2 श्लोकों के बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पाठ रोकने का आरोप लगाते हुए इसकी कड़ी आलोचना की।
1: आज इस प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के प्रत्येक गली नुक्कड़ कोने में जाकर वंदे मातरम का यशोगान करेगा। वंदे मातरम के विषय में लोगों को हम बताएंगे। वंदे मातरम को लेकर जिस प्रकार की कुलच्छित राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है उसको लेकर हम आंदोलन खड़ा करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना और लोगों, विशेषकर युवाओं को सेवा कार्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की। और खेलों में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंग शू और टैन निंग से जारी है। महिला डबल्स के पहले गेम में भारतीय जोड़ी ने अपने नाम किया है। यह मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जा रहा है। वहीं FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच अम्स्टरडैम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Union Home Minister Amit Shah held an important meeting with senior Gorkha leaders today at a resort in Sukna, Siliguri. After the meeting, the Home Minister announced that a high-level committee to resolve the issues would be formed under the chairmanship of interlocutor Pankaj Singh, former BSF Director and Deputy National Security Advisor. Briefing the media after the meeting, Darjeeling Lok Sabha MP Raju Bista said the meeting was very fruitful and all the Gorkha leaders constructively presented their issues. After hearing the leaders, the Chief Minister, Shubhendu Adhikari, also expressed his views and commitment regarding concerned issues. The Home Minister also held a meeting to review security arrangements along the country's eastern borders, with a special focus on strengthening security at the Siliguri corridor, also called the Chicken's Neck. Senior officials of West Bengal and Central Security Forces were present in the meeting. The discussions focused on strengthening border surveillance, improving coordination among Central Security Forces, intelligence agencies and the state police and administration, and preparing a framework for a proposed triangular security grid. The BJP will run a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday, with a focus on highlighting his commitment to public service and encouraging people, particularly the youth, to undertake acts of service. Briefing media in New Delhi today, BJP National General Secretary Vinod Tavade said the campaign will also mark 25 years of Mr. Modi taking oath as the Chief Minister of Gujarat on October 7, 2001. The party also passed a resolution today regarding the honour and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In a social media post, BJP President Nitin Naveen said the party strongly condemned and unequivocally opposed the Congress Working Committee's decision to sing only the first two stanzas of Vande Mataram in the party programmes. The government has imposed restrictions on the manufacturing, sale and distribution of all fixed-dose combinations or FDCs containing chlorpheniramine maleate and phenylephrine hydrochloride for children below 4 years of age. The Health Ministry has mandated a clear warning on these medicines, stating that they shall not be used for children below 4 years of age. Manufacturers have been directed to prominently display the warning on the label, package insert and promotional literature associated with these formulations. The government said the use of such combinations may pose risks to children below 4 years of age and safer alternatives are available. The Supreme Court has settled more than 400 cases on the first day of a three-day special Lok Adalat being held as part of the Samadhan Samaro initiative. The cases include matrimonial and property disputes, motor accident claims, land acquisition and compensation matters, tax disputes and service and labour cases pending before the top court. The Supreme Court said the initiative reflects its continued efforts to promote mediation and other consensual methods of dispute resolution as an important part of the justice delivery system. The special Lok Adalat, which began yesterday, will continue till tomorrow. A report in American media says that in Pakistan, 15 years after the assassination of Shahbaz Bhatti, first Catholic federal minister for minorities and a prominent champion of religious freedom, minority communities including Christians, Hindus and Ahmadis continue to face discrimination and attacks on places of worship across the country. According to the report, the abuses also include abductions, forced conversions and child marriages alongside the misuse of the country's blasphemy laws. Shahbaz Bhatti was assassinated in Islamabad on March 2, 2011 for his vocal opposition to Pakistan's blasphemy laws. In Odisha, the flood situation is showing signs of improvement, but large pockets of north and coastal Odisha remain inundated, with about 14 lakh people affected across several districts. Heavy rain is continuing in several districts in Madhya Pradesh due to the monsoon trough, cyclonic circulation and a low pressure area. And with that, we end this news bulletin.
3: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
4: नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूँ वैष्णवी। आज के कार्यक्रम का विषय है पीएम आशा, किसानों के सशक्तिकरण के लिए एमएसपी आधारित मूल्य समर्थन को मजबूत करना। किसानों के लिए सिर्फ अच्छी फसल पैदा करना ही पर्याप्त नहीं है, उतना ही जरूरी है कि उन्हें अपनी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य भी मिले। अक्सर फसल की कीमतों में उतार चढ़ाव किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है, खासकर कटाई के समय। अगर बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से नीचे चला जाए तो किसान को अपनी उपज कम कीमत पर बेचने की मजबूरी हो सकती है। इसी चुनौती को देखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा की शुरुआत सितंबर 2018 में की थी। इस योजना का उद्देश्य है किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना, एमएसपी के प्रभावी कार्यान्वयन को मजबूत करना और किसानों को मजबूरी में कम कीमत पर फसल बेचने से बचाना। पीएम आशा के अंतर्गत दालों, तिलहन और खोपरा जैसी फसलों की खरीद नेफेड और एनसीसीएफ जैसी संस्थाओं के माध्यम से की जाती है। तो आखिर पीएम आशा किस तरह काम करती है, इस योजना के प्रमुख घटक क्या है और किसानों को एमएसपी का लाभ दिलाने में इसकी क्या भूमिका है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे आज के विश्लेषण में। आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली रिपोर्ट से।
0: किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना कृषि नीति की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा की शुरुआत की गई। यह एक एकीकृत मूल्य समर्थन ढांचा है जिसमें अलग अलग फसलों और बाजार की परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग व्यवस्थाओं का इस्तेमाल किया गया है। इसका एक प्रमुख उद्देश्य है किसानों को अपनी फसल मजबूरी में कम कीमत पर बेचने से बचाना। पीएम आशा के तहत खरीद की तैयारी फसल के बाजार में आने से पहले ही शुरू कर दी जाती है। केंद्रीय नोडल एजेंसियां और राज्य सरकारें पहले से खरीद केंद्रों और जरूरी अवसंरचना की व्यवस्था करती हैं। इससे फसल आने के समय खरीद प्रक्रिया को समय पर शुरू करने में मदद मिलती है। पीएम आशा के तहत मुख्य रूप से चार प्रमुख घटक हैं। पहला है मूल्य समर्थन योजना यानी PSS, दूसरा मूल्य स्थिरीकरण कोष यानी PSF, तीसरा मूल्य अंतर भुगतान योजना यानी PDPS और चौथा बाजार हस्तक्षेप योजना यानी MIS। इन चारों व्यवस्थाओं का उद्देश्य अलग अलग परिस्थितियों में किसानों और उपभोक्ताओं को मूल्य उतार चढ़ाव से राहत देना है। अब बात करते हैं मूल्य समर्थन योजना यानी PSS की। जब कटाई के समय बाजार में किसी फसल की कीमत MSP से नीचे चली जाती है तो PSS के तहत MSP पर फसल खरीदने की व्यवस्था की जाती है। इसमें मुख्य रूप से दालें, तिलहन और खोपरा शामिल है। राज्य सरकारों के अनुरोध पर नेफेड और NCCF जैसी एजेंसियों के माध्यम से खरीद की जाती है। खरीद वर्ष 2024-25 से दालों, तिलहन और खोपरा की खरीद की शुरुआत में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कुल उत्पादन के 25% तक अनुमति दी गई है। हालांकि घरेलू दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए तुअर, उड़द और मसूर की खरीद राज्य के उत्पादन के 100% तक करने की अनुमति है। पीएम आशा का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है मूल्य स्थिरीकरण कोष यानी PSF। इसका उद्देश्य दालों, प्याज और आलू जैसी जरूरी वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना है। कटाई के मौसम में इन वस्तुओं की खरीद कर बफर स्टॉक बनाया जाता है और जब बाजार में कीमतें बढ़ने लगती है तो जरूरत के अनुसार इनका स्टॉक बाजार में जारी किया जा सकता है। इससे उपभोक्ताओं को अचानक बढ़ी कीमतों से राहत देने में मदद मिलती है। इस तरह पीएम आशा केवल किसानों के लिए मूल्य सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, यह किसानों की आय के साथ साथ उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में स्थिरता बनाए रखने का भी प्रयास है।
4: किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि उसकी फसल के उत्पादन लागत और उससे मिलने वाली कीमत के बीच कितना अंतर है। अगर बाजार में उसे अपनी लागत से बेहतर मूल्य मिलता है तो खेती में उसका भरोसा बढ़ता है। इसीलिए पीएम आशा के मूल्य समर्थन ढांचे को उत्पादन लागत, MSP और बाजार तक पहुंच से जोड़कर देखना जरूरी है। आइए जानते हैं कि विभिन्न फसलों में उत्पादन लागत और MSP के बीच क्या अंतर है और खेत से बाजार तक पहुंच को मजबूत करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं।
5: पीएम आशा का तीसरा महत्वपूर्ण घटक है मूल्य अंतर भुगतान योजना यानी PDPS। इस व्यवस्था में किसानों की उपज को सरकार द्वारा भौतिक रूप से खरीदना जरूरी नहीं होता। इसके बजाय अधिसूचित बाजारों में MSP और वास्तविक बाजार मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाता है। ये भुगतान MSP मूल्य के अधिकतम 15% तक हो सकता है। PDPS का मुख्य इस्तेमाल तिलहन के लिए किया जाता है।

0: इस व्यवस्था से बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद और भंडारण के लिए जरूरी अवसंरचना की आवश्यकता कम होती है। साथ ही किसान बाजार में अपनी फसल बेच सकते हैं और उन्हें MSP का मूल्य संरक्षण भी मिलता है। PM आशा का चौथा घटक है बाजार हस्तक्षेप योजना यानी MIS। ये योजना उन जल्द खराब होने वाले कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए है जिन पर MSP लागू नहीं होता। इनमें टमाटर, प्याज और आलू जैसे उत्पाद शामिल हैं। जब इन वस्तुओं की बाजार कीमतें पिछले सामान्य सत्र की तुलना में कम से कम 10% तक गिर जाती हैं, तब बाजार हस्तक्षेप की व्यवस्था लागू की जा सकती है। इस व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लागत साझा की जाती है और नेफेड तथा NCCF जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वर्ष 2024-25 में PM आशा के तहत वास्तविक व्यय 5,437.99 करोड़ था। वर्ष 2025-26 के बजट में इसे बढ़ाकर 6,941.36 करोड़ कर दिया गया। ये बढ़ा हुआ आवंटन किसानों की आय सुरक्षा और मूल्य आश्वासन तंत्र को मजबूत करने पर जोर को दर्शाता है। विशाल शर्मा, आकाशवाणी समाचार।
1: PM आशा की पूरी व्यवस्था को देखें तो इसका उद्देश्य केवल सरकार द्वारा फसल खरीदना नहीं है, इसका व्यापक लक्ष्य है किसानों को मूल्य सुरक्षा, बाजार में बेहतर पहुंच और अपनी उपज के लिए लाभकारी मूल्य का भरोसा देना। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट से।
2: PM आशा के अंतर्गत मूल्य समर्थन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी उत्पादन लागत से बेहतर मूल्य मिले। वर्ष 2026-27 के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो धान सामान्य किस्म की उत्पादन लागत 1,627 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि इसका MSP 2,441 रुपए प्रति क्विंटल है, यानी लागत और MSP के बीच 814 रुपए प्रति क्विंटल का अंतर है। इसी तरह सोयाबीन पीली किस्म की उत्पादन लागत 3,805 रुपए प्रति क्विंटल है और MSP 5,708 रुपए प्रति क्विंटल है, यहाँ अंतर 1,903 रुपए प्रति क्विंटल का है। वही बात गेहूं की करें तो गेहूं की उत्पादन लागत 1,239 रुपए प्रति क्विंटल और MSP 2,585 रुपए प्रति क्विंटल है, यानी लागत और MSP के बीच 1,346 रुपए प्रति क्विंटल का अंतर है। जूट की उत्पादन लागत 3,662 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि MSP 5,925 रुपए प्रति क्विंटल है, यहाँ अंतर 2,293 रुपए प्रति क्विंटल का है। इस तरह MSP और उत्पादन लागत के बीच का लाभकारी अंतर किसानों को मूल्य सुरक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन किसान को बेहतर मूल्य तभी मिल सकता है जब उसके पास अपनी उपज को बाजार तक पहुँचाने की बेहतर सुविधा भी हो। इसीलिए सरकार ने कृषि विपणन और फसल कटाई के बाद की अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कृषि अवसंरचना कोष यानी AIF और ENAM जैसी पहल की शुरुआत की है। कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत 2,14,437 परियोजनाओं के लिए 96,426 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकार किए गए हैं। वहीं ENAM ने 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 1,656 मंडियों को एकीकृत किया है। भंडारण और कृषि विपणन के लिए भी बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। सरकार ने 25,081 कृषि विपणन अवसंरचना परियोजनाओं के साथ साथ करीब 992,00,000 मीट्रिक टन से भी अधिक भंडारण क्षमता वाले 50,249 गोदामों को मंजूरी दी है। PM आशा में हाल के सुधारों के अंतर्गत किसानों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, पूर्व पंजीकृत किसानों से सीधी खरीद और टमाटर, प्याज तथा आलू के लिए परिवहन सहायता जैसी व्यवस्थाएं भी शुरू की गई हैं।
1: किसानों की आय और उनकी उपज का उचित मूल्य कृषि क्षेत्र की मजबूती के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। PM आशा इसी दिशा में एक ऐसा ढांचा उपलब्ध कराती है जिसमें किसानों को बाजार की कीमतों में अचानक गिरावट से सुरक्षा देने की कोशिश की जाती है। आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने। तकनीकी सहयोग दिया है अरुण देव सिंह ने। नमस्कार।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका सुषमा कुमारी। आदौ मुख्य वार्ताः।

0: केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः सिलीगुड़ी नगरे वरिष्ठैः गोरखा नेतृभिः सह मेलनम् अकरोत्। वार्ताकारस्य पंकज सिंहस्य अध्यक्षतायां समाह्वानानां समाधानाय उच्चस्तरीय समित्याः घोषणा अपि जाता। सर्वकारेण चतुर्वर्षेभ्यः न्यून बालकानां कृते क्लोरफेनिरामीन मेलिएट तथा फिनाइले फ्राइन हाइड्रोक्लोराइड इत्येतैः युक्तानां सर्वाणि निश्चित मात्रा संयोजनानि निर्माणे विक्रयणे वितरणे च प्रतिबन्धं स्थापितम्। अद्य सायंकाले आन्ध्रप्रदेशस्य विशाखापत्तनम नगरे ब्रिक्स युवा मन्त्रिणां सभा आरभ्यते। भारतः सोमालिया देशेन सह द्वाविंशतिः भारतीय नाविकैः सह विदेशीय ध्वजयुक्तयोः वाणिज्यिक नौकायानयोः अपहरणस्य विषये चर्चां करोति। अपि च BWF बैडमिंटन विश्वस्पर्धायां भारतीय महिला डबल्स युग्मस्य त्रिसा जाली गायत्री गोपी चन्दयोः तथा चीनदेशस्य लियू शेंग शू टेन निंग इत्येतयोः मध्ये उपान्त्यचक्रीय स्पर्धा सम्प्रति नवदिल्ल्यां प्रचलति। पश्चिम बंगस्य पर्वतीय क्षेत्राणां सर्वैः पक्षधारकैः सह केन्द्रीय मन्त्रिणा अमित शाहेन सिलीगुड़ी नगरे उपवेशनम् एकं कृतम्। अद्य विषये अस्मिन् निर्णयो अयं जातः यत् तत्रत्य पर्वतीय क्षेत्राणां समाह्वानानां स्थायीय समाधानार्थं पूर्व आईपीएस अधिकारिणः पंकज सिंहस्य नेतृत्वे एकस्याः मध्यस्थ समित्याः संरचना जाता। समितिरियं केन्द्रीय कार्यालयं प्रति प्रतिवेदनं प्रेषयिष्यति। सिलीगुड़ी नगरस्य सुकार क्षेत्रे अनुष्ठिते अस्मिन् उपवेशने पश्चिम बंगस्य विपक्षिनेतारः सुवेन्दु अधिकारी अन्ये च गणमान्य जनाः उपस्थिताः आसन्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रोक्तं यत् भारतदेशेन लाइसेंस राज इत्यस्य कालावधौ उत्पादन दण्डितकरणस्य स्वीय दृष्टिकोणे आधारभूत परिवर्तनं विहितमस्ति। साम्प्रतं तत्स्थाने प्राशासनिक प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव ILPI इत्यनया योजनया माध्यमेन पुरस्कृतः क्रियते। प्रवर्तमान वर्षीय इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम इत्यस्मात् मंचात् संबोधने प्रधानमंत्री प्रोक्तवान् यत् पुरातनी पद्धतिः सांप्रतिकी पद्धतितः भिन्ना वर्तते। प्रधानमंत्रिणा PLI योजनायाः सफलता अपि चर्चिता, यत्र 2.5 लाख कोटि रूप्यकाणां निवेशः जातः। 22 लाख कोटि रूप्यकाणां उत्पादनं क्रयणं 15 लाख कोटि रूप्यकाणां निर्यातः अपि जातः। 14 लाखाधिकानि वृत्त्यवसराणि अपि सृजितानि।
1: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। PLI स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।
0: श्री मोदी भारतदेशः अन्ताराष्ट्रिय समुदायस्य आशा विकासस्य च उज्ज्वल स्थानं विद्यते इति अपि प्रतिपादितवान्।
1: दुनिया में ग्रोथ को लेकर के कई तरह की चिंताएं हैं। दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा है, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा है। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: सर्वकारेण अद्य क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट फिनाइले फ्राइन हाइड्रोक्लोराइड इत्येतयोः घटनानां युक्तानां सर्वासां नियत मात्रा संयोजन औषधीनां निर्माणे विक्रयणे वितरणे च प्रतिबन्धाः सन्ति। स्वास्थ्य मन्त्रालयेन एका अधिसूचना प्रदर्शिता यस्यां चतुर्वर्षेभ्य

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra. Today we'll also be taking calls from you on market-related queries, but do remember that we do not address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar. Market Mantra mein aapka abhinandan. श्रोताओं, व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी जरूर डायल करें। श्रोताओं, चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध हैं बाजार विशेषज्ञ सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
0: वार्म वेलकम सिद्धार्थ।
2: गुड इवनिंग, नमस्ते प्राची।
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए जानते हैं सुर्खियां।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव वीक, सेंसेक्स एंड निफ्टी स्लिप्स अराउंड 0.5%। यूएस इम्पोजेस 50% टैरिफ्स ऑन $20 billion वर्थ ऑफ कैनेडियन प्रोडक्ट्स आफ्टर ट्रेड टॉक्स विद यूएस फेल। Canada says it will retaliate. And global crude oil prices extend their rising streak this week.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी लगभग आधा प्रतिशत फिसले। अमेरिका ने $20 अरब मूल्य के कनाडाई उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। अंतिम समय में तनाव कम करने के लिए हुई वार्ता के विफल होने के बाद कनाडा ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। और इस सप्ताह वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़े।
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और आइए श्रोताओं, अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सप्ताह के अंतराल में शेयर बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक लगातार दूसरे सप्ताह फिसले, बढ़ते वैश्विक तनाव, कच्चे तेल के बढ़ते दाम और वैश्विक बॉन्ड बाजारों में अनिश्चितता के कारण ये गिरावट दर्ज की गई। सप्ताह के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 468 अंक यानी 0.6% फिसल कर 77,541 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी लगभग आधा प्रतिशत लुढ़क कर 24,252 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार सूचकांकों की अगर बात करें तो मिड कैप 100 में मामूली गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में सप्ताह के दौरान 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। क्षेत्रीय स्तर पर निफ्टी आईटी और एफएमसीजी में 2% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.3% की गिरावट आई। इसके विपरीत निफ्टी मेटल और रेल्टी में लगभग 2% की वृद्धि हुई। निफ्टी मीडिया में 1.4% की वृद्धि हुई, जबकि निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया इस सप्ताह 28 पैसे कमजोर होकर अमरीकी डॉलर के मुकाबले 95.71 पर स्थिर हुआ।
0: So, Siddharth, the benchmark domestic equity indices for the second consecutive week declined due to the reasons mentioned by Prachi also, renewed global tensions, elevated crude oil prices and uncertainty in global bond markets. Now that we're getting into the third week, these will continue to persist and we will continue to have the weighed down investor sentiment going forward.
2: See, Rajesh,
0: it seems so.
2: Yeah, so as you rightly said, it seems so. Yes, because we don't see any dilution.

0: From where the country is about 19, now we've almost doubled. We've all around 40. Plus, we are also spreading our energy base to a lot of renewables. So, I think all that I do not see too much of. There will be some impact. Obviously, rains are also having an impact, and there will be sentiment also getting negative on certain. But we have good buffers, so I do not see immediately any concern.
1: श्रोताओं और भी खबरों की विवेचना करें कि हमारे समक्ष सिद्धार्थ सिंह मौजूद हैं, और अगर आपके भी दिल में कोई सवाल हो तो आप ज़रूर हमें कॉल करें, कॉल मिलाएं, और ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। आगे और बात करेंगे आपसे सिद्धार्थ, मगर उससे पहले आइए जोड़ते हैं अपने पहले कॉलर को कार्यक्रम में। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे थे कृपा शंकर जी, मुझे उम्मीद है कि वो वापस लौटेंगे, मगर उससे पहले हम एक सवाल मेरे मन में है सिद्धार्थ की, आपने जैसा कि बताया कि रेजिलियंस की जो बात है, मुझे लगता है कि एक मच्योर खिलाड़ी की जो पहचान है वो ये है कि वो पिच पर कैसे टिके रहते हैं, ये नहीं कि वो कितने छक्के मार रहे हैं और एकदम जो है वो अलंकृत कर दिया है पूरे माहौल को। बहरहाल हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर का डेटा आया है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेटा आया है, अगर हम Q1 के रिजल्ट्स के लिहाज से देखें तो भी हमने अच्छा एक प्रदर्शन जो है हमारे इकोनॉमी का, तो हमारी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो है वो, या यूँ कहें कि हमारा जो बही खाता है उसमें अगर लाल लगे हैं तो हरे के भी निशान हैं।
0: नहीं, बिल्कुल ठीक कहा प्राची आपने, जैसे जो आपने Q1 की जो हम अप्रैल से जून की अगर कॉरपोरेट जगत की हम अर्निंग्स या जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफ़ी मतलब बिल्कुल भी बुरे नहीं थे, और अगर आप और ये ऐसे समय पे अप्रैल जून वो समय है जब हमने पूरा पूरा जो अमेरिका और ईरान की जो लड़ाई वो शुरू हो गई थी तकरीबन फरवरी के लास्ट में, तो वो अप्रैल जून पहला क्वार्टर पूरा पूरा जो है वो उसी में निकला है जब दोनों देशों के बीच में और पूरी दुनिया में जो है
1: इतनी उथल-पुथल
0: और अनसर्टेनिटी ऑब्वियसली, क्योंकि एनर्जी जो क्रूड ऑयल है वो एक बेस वो है, रॉ मटेरियल है फॉर लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब चाहे वो केमिकल्स हों चाहे, तो किसी भी तरह का, तो वो अगर इफेक्ट होता, और वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम 90% उसे आयात करते हैं और उसमें से भी तकरीबन काफ़ी बड़ा आयात हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से ही आता था। तो आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने उस स्थिति पे शायद हमने उस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने बहुत कदम उठाए, और उसके साथ साथ हमको लगता है जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है वो अभी भी बनी हुई है, जो इन्फ्लेशन के लेवल्स हैं या जो महंगाई दर है वो अभी भी, जब मैं कोर इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज़्यादा कोर इन्फ्लेशन जो ट्रैक करता है तो उसमें अभी कहीं ना कहीं उस तरह की चिंता या जो सेकेंड राउंड इफेक्ट हम कहें या कंपनीज पास ऑन कर रही हों प्राइजेस, ऐसा अभी दिख नहीं रहा है।
1: जी, दिल्ली से हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं कृपा शंकर जी, महोदय कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार,
2: मैं ये पूछना चाहता हूँ सर से कि जैसे सर तो विशेषज्ञ हैं, तो ये लोग अपने ऑफिस इनके कहाँ हैं जहाँ उनसे हम जाके सलाह ले सकें, और सवाल मेरा ये है कि जैसे कि मैं टोटल में अमाउंट जो है FD में लगा हुआ है लगभग 40 लाख, ये अक्टूबर में मैं मैच्योर हो जाएगी सितंबर लास्ट में, तो ये बताइए कुछ गोल्ड भी है तो ये अब मैं कैसे कहाँ मैं इसको इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में नयापन है। तो
0: कृपा शंकर जी आपकी मैं एज जान सकता हूँ, आपकी उम्र उम्र
2: की? मेरी एज तो लगभग सीनियर हो गई है, बच्चों के लिए, बच्चे जो मेरे 26-28 के हैं तो उनके लिए आगे क्या रहेगा?
0: नहीं, कृपा शंकर जी आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, मैं तो एक प्रोफेशनल हूँ, मेरा कोई इस तरह का ऑफिस तो नहीं है, मेरा बेसिकली जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड है और मैं जो अर्थव्यवस्था करीब 25-26 साल से ट्रैक करता हूँ, इसलिए मेरी जो भी इस पे नॉलेज है वो मेरे काम कर करके जो भी मैंने सीखा है। तो पहला तो सवाल आपका उसका जवाब ये है,
1: और मार्केट मंत्र में आप आते हैं, हाँ, और सभी सवालों के जवाब
0: जी
1: हैं।
0: तो वो है। दूसरा, जहाँ तक आपने जो सवाल पूछा कि आपको, आपके लिए तो बिल्कुल ऑब्वियसली आपने खुद ही कह दिया कि आप सीनियर सिटीजन हैं, लेकिन आप अपने बच्चों के हिसाब से पूछ रहे हैं तो बिल्कुल उनको अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और मुझे लगता है 25-26 के हो गए तो अब तक शुरू कर देना चाहिए था, मतलब मुझे लगता है एक राइट एज है, जैसे ही आप मेच्योर होते हैं 18-19 साल में ही म्यूचुअल फंड में आ जाएं, अगर उन्होंने PPF अकाउंट खाता आपने नहीं खोला है तो आप वो खोल सकते हैं, क्योंकि वो आज भी सबसे बढ़िया निवेश है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो पैसा जब तक निवेशित है तब तक टैक्स फ्री है और आपको जब मिलता है तब भी टैक्स फ्री रहता है। तो PPF खोलें, म्यूचुअल फंड खोलें और मार्केट बेस्ड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटीज मतलब जब स्टॉक मार्केट जो आधारित म्यूचुअल फंड्स हों उन पर ज़्यादा लगाएं। आपने FD कर रखी है तो आप अपने ज़रूरतों के हिसाब से अपना पैसे को सुरक्षित FD में ही रखें। आपको इस उम्र के इस पड़ाव पे तो मार्केट्स में लगाने की सलाह नहीं,
3: इन्फ्लेशन से बेटर इनको अर्न करना है।
0: नहीं, इन्फ्लेशन से भी राजेश, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उनको इस वक्त पे डेट मार्केट की भी सलाह इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि FD में एक सबसे बड़ा फ़ायदा इस समय ये होता है कि आपको जब भी पैसा चाहिए तुरंत मिल जाता है, डेट में भी मिल जाता है, बट मुझे नहीं लगता कि इस समय के जो डेट फ्लोज इनको उस तरह के डेट में भी उस इन्फ्लेशन को ये बीट कर पाएंगे। और इन्फ्लेशन अभी इंडिया में कोई बहुत ज़्यादा इस समय नहीं है, थोड़ा सा इस समय बढ़ा है मीडियम टर्म में, बट मुझे लगता है इनको चूंकि सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन होने का भी कुछ फायदा मिल रहा होगा।
1: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। कोलकाता से हमारे साथ अरिजीत चक्रवर्ती जी जुड़ रहे हैं। नमस्कार महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: नमस्कार, गुड इवनिंग मार्केट मंत्र टीम एंड द स्पेशलिस्ट। सर, आई जस्ट वांटेड टू नो वन थिंग, दैट इज मेरे दादाजी ने कुछ शेयर्स छोड़े थे मेरे नाम पे, तो अभी उस शेयर्स को क्लेम करने के लिए पहले तक के सक्सेशन सर्टिफिकेट वो लगता था, तो मैंने बीच में सुना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वो सक्सेशन सर्टिफिकेट उसको हटा दिया क्योंकि काफी लोग वो क्लेम नहीं कर पा रहे थे, तो आज भी क्या वो सक्सेशन सर्टिफिकेट वो लागू है?
0: नहीं अरिजीत जी, देखिए सवाल आपने जो पूछा है ये कई बार बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन जो आपने बात बोली कि सक्सेशन सर्टिफिकेट जो वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूफ करता है कि आप अपने फादर के या मदर के जो भी आप जिनके बिहाफ पे जो आपने बोला आपके फादर ने जो कुछ शेयर्स खरीदे थे आप उनको क्लेम करना चाहते हैं, तो अगर आप वो तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, उन्होंने कोई हाँ ये ज़रूर किया होगा कि उसको कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई किया होगा कि किस तरह से आप इस्टेब्लिश करें कि आप सक्सेसर हैं अपने पिताजी के। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट तो केवल ये इस्टेब्लिश करता है कि उनके कितने जो है सक्सेसर्स हैं, वो शायद उनकी आपकी मदर भी हो सकती हैं, उनकी वाइफ भी हो सकती हैं, आपके कोई और भाई बहन हैं फैमिली में, लेकिन हो सकता है आपके फादर ने अगर कोई विल छोड़ी हो या कोई अपनी उन्होंने इच्छा कहीं रिटर्न में व्यक्त की हो कि कैसे किसको ये शेयर्स मिलेंगे, लेकिन ये तो ज़रूर तय है कि आपको ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आप ही उनके राइटफुल सक्सेसर हैं और आप ही को ये क्यों आप ही को दिया जाए।
3: Subhash from Faridabad joins us now. Subhash, a warm welcome.
5: Good evening, sir.
3: Good evening.
5: Sir, अब मुझे लास्ट एक डेढ़ साल से negative return मिल रहा है equity mutual fund में, तो अभी सर 2026 में भी मैं continue कर रहा हूँ equity mutual fund में, सही चल रहा है, तो क्या मुझे continue रखना चाहिए सर या कुछ discontinue कर दें? दो तीन mutual fund हैं जिसमें मेरा सही से चल रहा है।
0: नहीं सुभाष जी, एक तो ये है कि कल का जो मार्केट मंत्र प्रोग्राम होगा उसमें म्यूचुअल फंड के ऊपर स्पेशली डिस्कशन केवल म्यूचुअल फंड पे होता है, आधारित होता है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपके सवाल का फिर भी इतना जवाब ज़रूर दूंगा कि अगर नेगेटिव रिटर्न आ रहा है तो उसकी चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड का यही एक फंडामेंटल ये है कि लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं SIP के थ्रू कर रहे हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ, तो बिल्कुल उसको करते रहें, और आपको ज़रूर जब आप एक थोड़ी अवधि के बाद आप देखेंगे 2-3 साल बाद कि आपको जो ये रिटर्न्स हैं, क्योंकि इस समय जब आप रिटर्न जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मार्केट्स अगर बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल रही हैं उसी पैसे में, और वो जब मार्केट चढ़ेगी तो वो यूनिट्स की का जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा, तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, तो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहें और इन्वेस्ट करते रहें।
3: Moving on, the United States has imposed 50% tariffs on $20 billion worth of Canadian products. The tariffs came into effect early today. Canada immediately said it would retaliate after failure of last-minute talks to ease tensions between the two historic allies. The new U.S. tariffs will affect about 5% of Canada's annual exports to the United States. The products include hockey sticks and tongue depressors. Canadian Prime Minister Mark Carney said Canada would match the tariffs dollar for dollar. Mr. Carney blamed Washington for the failure of the talks and said the last-minute changes in the U.S. proposal were unfair and uneconomic. The last line is extremely important, that last-minute changes were very unfair and uneconomic. How safe would our deal be with the United States?
0: Rajesh,
3: last-minute changes?
0: I, Rajesh,

0: partners and biggest, our exports to US haven't come down. So we continue to export to US. We are the largest exporters to US. So I don't see that risk with Mr. Trump. But though, yes, he's unpredictable, notwithstanding having said all that, yes, still the unpredictability factor with Mr. Trump always exists. And the example is right before us.
1: Yes.
2: सिद्धार्थ, और भी खबरें हैं हमारे पास जिस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, मगर उससे पहले आइए भोपाल से जुड़े शंकर को. शंकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: नमस्ते मार्केट मंत्री सिद्धार्थ जी को. नमस्ते.
0: नमस्कार.
3: ये जीडीपी रेशो यूएस का डेट टू जीडीपी करीब 123% 126% के आसपास है. अमेरिका जापान का वो ऑलमोस्ट डबल है, जिसकी वजह से वो काफी जबरदस्त रिसेशन में या स्टैग्नेशन में गए थे. क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी स्टैग्नेशन में जाने की संभावना है, उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? एक और इसी से संबंधित सवाल है, यूएस में अब इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ेंगे नहीं, घटने की उम्मीद है. ऐसा है तो हमारे यहाँ उनकी अगर यील्ड कम होगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो पैसा फ्लो इंडिया में बढ़ेगा क्या? सो दैट वी एज अ रिटेल इन्वेस्टर कैन रिमेन इन्वेस्टेड, एंड बिकॉज अवर सेविंग्स इज ऑल इन दैट, अवर पेंशन, अवर फ्यूचर इज लिंक्ड विद अवर म्यूचुअल फंड. सो हाउ इज अवर फ्यूचर इन म्यूचुअल फंड फॉर इन इंडियन इक्विटी मार्केट? थैंक यू.
0: नहीं शंकर जी, आपने काफ़ी अहम चीज़ें और बहुत ज़रूरी चीज़ें उठाई. एक तो मुझे नहीं लगता कि हमें चिंता करनी चाहिए यूएस के डेट को लेके, क्योंकि अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका. हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर वहाँ महंगाई बढ़ती है, तो वहाँ अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो हमारे लिए ख़राब है, और अगर वहाँ इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं, जैसा आपने बोला जो उन्होंने अभी बायबैक प्रोग्राम अनाउंस किया, तो उसके बाद जो है कुछ यील्ड्स वहाँ घटी भी थी, लेकिन अभी वो कितना सस्टेन करती हैं वो देखने वाली बात है. हाँ, अगर अमेरिकन इकॉनमी में अगर स्लो डाउन आता है तो बिल्कुल हमारे ऊपर असर होगा, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट जो है मार्केट है अमेरिका, साथ साथ हमारी आईटी कंपनीज बहुत बड़े पैमाने पे अमेरिका में जो है काम करती हैं, तो उन पे ज़रूर उसका इफ़ेक्ट होगा. तो और जहाँ तक आपका सवाल कि अगर वहाँ यील्ड कम होती है, तो बिल्कुल ठीक बात आपने कहा कि हो सकता है वहाँ से इन्वेस्टर ऑलरेडी आ रहे हैं. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं डेट मार्केट में तो बहुत बड़े पैमाने पे आ रहे हैं. और देखिए शंकर जी, एक बात और आपको मैं बोलूँगा, अमेरिका में क्या हो रहा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये आप हमेशा एक भरोसा मान के चलिए कि आपकी अर्थव्यवस्था, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, दुनिया की आज भी सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है. तकरीबन 7% इस साल भी हमारा एस्टिमेट है, 6.7 RBI ने बोला है. तो मुझे नहीं लगता कि आपको बिल्कुल भी अपने निवेश को लेके कोई चिंता करनी चाहिए. हमारे फंडामेंटल्स हों चाहे हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सब सॉलिड हैं, और कोई भी चिंता की बात नहीं. एक्सपोर्ट्स हों, आप देखिए इस चुनौतीपूर्ण टाइम में भी हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं. सरकार ने जो है, जब ये जो अनसर्टिनिटी दुनिया में आई है, और ये अनसर्टिनिटी तकरीबन 2 साल से, टैरिफ हो चाहे चीन को लेके हो, तो हमने FTAs वगैरह भी किए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, तो बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी हम कर रहे हैं, ताकि हमारी इकोनॉमी, हमारे एक्सपोर्टर्स इन सब चीज़ों से बचे रहें.
2: दिल्ली से हमारे साथ योगेश जुड़ रहे हैं. योगेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. अभिनंदन करते हम ज़रूर अगर योगेश जी के साथ संपर्क जो है वो बरकरार रहता, मगर शायद अभी हमारा संपर्क टूट गया है. आइए आगे बढ़ते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बताया कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा में 21 अगस्त 2026 तक 72 अरब अमरीकी डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्रवाह हुआ है. कुल प्रवाह में से विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा का हिस्सा सबसे अधिक यानी 65.4 अरब अमरीकी डॉलर था. वहीं विदेशी मुद्रा उधार से लगभग 5 अरब अमरीकी डॉलर और बाहरी वाणिज्यिक उधार से लगभग 2.5 अरब अमरीकी डॉलर का योगदान रहा. भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वर्ष 8 जून को अनिवासी जमा, बाह्य वाणिज्यिक उधार और विदेशी मुद्रा उधार में आने वाले विदेशी मुद्रा प्रवाह को कवर करने वाली विशेष USD INR विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की. रुपए की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए लाई गई यह स्वैप सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इस सुविधा को मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया के कारण इसे 1 महीने पहले ही बंद कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप देश में अपेक्षित मात्रा में विदेशी मुद्रा का प्रवाह हुआ. यह योजना अब विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा के लिए 31 अगस्त 2026 तक खुली है, जबकि बाह्य वाणिज्यिक उधार और विदेशी मुद्रा उधार के लिए यह सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक खुली रहेगी. सिद्धार्थ, RBI का लक्ष्य 80 से 90 बिलियन US डॉलर एकत्र करने का था. इस इस पर कितना इस पर बहुत उत्साह हमें देखने को मिल रहा है, रुपए की स्थिरता को बनाए रखने के लिए ये कितना

0: मैं अगर आपसे संक्षिप्त में पूछना चाहूँ तो कितना योगदान इसने दिया है?
1: नहीं प्राची, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप अभी देखेंगे, आज 21 अगस्त की ये जो फिगर्स जो दी हैं उसी में $72 बिलियन आ चुका है, और 80-90 का टारगेट था। लेकिन अब मुझे लगता है जो RBI ने इसको प्री मेच्योरली क्लोज किया है एक महीना पहले, मुझे लगता है जो उनका एम था वो पूरा हो गया है। अब रुपये भी स्थिर है, हमारा जो मुद्रा भंडार है वो भी, उसमें भी आप देखेंगे वो 700 बिलियन के ऊपर है। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको लगा कि अब इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है।
2: Global crude oil prices rose to near four-week highs as the 60-day U.S.-Iran memorandum of understanding expired this week without a permanent peace agreement. The Strait of Hormuz remains effectively closed, with Iran insisting that it will remain shut until Washington meets Tehran's demands, while the U.S. naval blockade in the region remains in place. Meanwhile, U.S. President Donald Trump has threatened tougher economic sanctions on Iran and its trading partners, raising concerns over tighter oil supplies in the coming weeks. During the week at the International Exchange, Brent crude October futures surged 6.6% to settle at $94.39 per barrel. West Texas Intermediate crude October futures soared 6.9% to end at $87.06 per barrel.
0: दिल्ली से हमारे साथ योगेश जुड़ रहे हैं। योगेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: जी, जैसे हम मार्केट में वैल्यूएशन देखते हैं तो जो लार्ज कैप में BSE इंडेक्स के हिसाब से जो वैल्यूएशन होती है उसका प्राइस अर्निंग रेशियो 20-22 के आसपास रहता है, बट मिड कैप और स्मॉल कैप का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो 32-33 तक रहता है। तो क्या ये नॉर्मल है कि इनका प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा ही रहता है, या फिर अभी ये ओवर वैल्यूएड जोन में ही इनको दिखाता है?
1: नहीं, देखिए दोनों बात आपकी अपनी जगह सही है, लेकिन जब भी स्मॉल कैप और मिड कैप का आप देखेंगे थोड़ा प्राइस अर्निंग रेशियो हमेशा ज़्यादा रहता है इन वनस्पत, जो BSE के आप इंडेक्स को देखेंगे, तो इसको लेके मुझे नहीं लगता कोई बहुत चिंता करनी चाहिए आपको। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनियों में जब भी आप निवेश करें थोड़ा उनको फंडामेंटली स्टडी कर लें, उनके ऑर्डर बुक, उनका प्राइस अर्निंग रेशियो वगैरह ध्यान से देखें, उनकी जो मैनेजमेंट है, तो मुझे लगता है बस उस पर ज़्यादा ध्यान दें, बाकी कोई मुझे नहीं लगता चिंता है।
2: Major US stock market indices rose yesterday but ended the week in the red. The Dow Jones Industrial Average advanced 1% and the S&P 500 and Nasdaq Composite each gained 0.4%. However, for the week, the Nasdaq shed 2% and the S&P 500 slipped 1.4% and the Dow fell 0.9%.
0: सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े, आपने सभी के जवाब दिए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: प्राची, राजेश, आप दोनों को भी धन्यवाद।
2: थैंक यू सिद्धार्थ फॉर बीइंग विद अस। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव वीक, सेंसेक्स एंड निफ्टी स्लिप्स अराउंड 0.5%। U.S. imposes 50% tariffs on $20 billion worth of Canadian products after trade talks with U.S. fail. Canada says it will retaliate. And global crude oil prices extend their rising streak this week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों और राज्य पुलिस तथा प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा हुई। गृहमंत्री ने सुकना में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ भी बैठक की। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि

0: बैठक सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने अपने मुद्दे रखे। बैठक के बाद गृहमंत्री ने घोषणा की कि मुद्दों के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन मेलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कहा है कि ऐसी दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम हो सकता है, इनके सुरक्षित विकल्प भी उपलब्ध हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। ये दौरा भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की कल विशाखापट्टनम में बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये निर्णय पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में लिया गया। प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर 2 श्लोकों के बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पाठ रोकने का आरोप लगाते हुए कड़ी आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देशभर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।
1: सेवा सेतु अभियान के तहत 15 दिन के लिए ब्लॉक लेवल पर हर योजना के संबंधित डिपार्टमेंट के आवश्यक कागजात को लेकर वहां लोग उपस्थित रहे, तो आप वहां आइए, फॉर्म भरिए, आपका नाम आयुष्मान में ऐड हो जाएगा। ऐसे सरकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुंचना है, तो उनको ये मौका होगा कि उनके ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु अभियान का एक अपना अलग कार्यक्रम उस दरमियान होगा, उसमें वो इस मौके का लाभ लेते हुए अपने आप को इस योजना में जोड़ सकते हैं।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि ये पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। सांसदों ने पाकिस्तानी सेना के अत्याचार को रोकने और नागरिकों के जीवन की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। यह अपील POJK में पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में सैकड़ों लोगों की मौत की खबर के बाद आई है। क्षेत्र में सख्त नाकाबंदी है और संचार बंद है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की ली यू शेंगशू और टैन निंग से हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए एआई कौशल विकास और सतत पर्यटन पर ब्रिक्स देशों के साझा विजन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुनायत, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं श्रेया पाठक।
2: जयपुर में आयोजित ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक काफी अहम रही। भारत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सदस्य देशों ने जयपुर घोषणा पत्र को मंजूरी दी। इसमें पर्यटन के क्षेत्र में तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन, युवाओं के कौशल विकास और यात्राओं को आसान बनाने पर जोर दिया गया है। इस बैठक के दौरान

0: भारत ने ब्राजील, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें भी की। यानी जयपुर में चर्चा सिर्फ ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत के इन देशों के साथ पर्यटन संबंधों को आगे बढ़ाने पर भी बात हुई। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुनायत जी। अनिल त्रिगुनायत जी, आपका हमारे कार्यक्रम सुर्खियों में हार्दिक स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच।
0: अम्बेसडर त्रिगुनायत, जयपुर घोषणा पत्र के बारे में हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में बताइए, इसमें मुख्य रूप से किन बातों पर सहमति बनी है और ब्रिक्स देशों के लिए इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है?
1: देखिए, जैसा आप जानते हैं कि भारत इस वर्ष ब्रिक्स का अध्यक्ष है और 2026 में सितंबर में मेन समिट होने वाली है। और इस समिट में सारे जो 11 देश हैं जो मेंबर हुए हैं बढ़ने के बाद में, वो सब शिरकत करेंगे इसके अंदर। और इसके बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, और उसमें जो प्रधानमंत्री ने भी कहा था, जैसे कि ब्रिक्स को बदल ही दिया उन्होंने, उसका नाम ही बेसिकली उन्होंने कहा इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा आज की मॉडर्न एज में। और वो ये है कि बिल्डिंग रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके साथ साथ में इनोवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और P2P कनेक्ट जो है और ह्यूमैनिटी फर्स्ट जो अप्रोच है, वो हमेशा से भारत ने अपनाई है। आपको मालूम है कि हमेशा से, चाहे हमारा G20 का रहा हो या कहीं पे भी दुनिया के अंदर में, प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर से कि पीपल सेंट्रिक अप्रोच को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। और पीपल सेंट्रिक अप्रोच में टूरिज्म जो है बहुत बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि जब तक लोग एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, उसके अप्रिशिएट नहीं करेंगे उनके कल्चर को, उनके सिविलाइजेशन को, और एक दूसरे से कनेक्टिविटी बढ़ती है, अप्रिसिएशन बढ़ता है, कल्चरल कनेक्ट बढ़ता है, तो ये सारी चीजों के लिए बहुत आवश्यक है। और इसी के सिलसिले में जो जयपुर के अंदर में जो मीटिंग हुई है, टूरिज्म का जो वर्टिकल है उसकी 12वीं मीटिंग थी, तो उसके अंदर में नई चीजें, क्योंकि आज की डेट में देखिए टूरिज्म भी बहुत बदल गया है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से नई टेक्नोलॉजी, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या सस्टेनेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म कैसे बनाया जाए, टूरिज्म का स्किलिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग किस तरह से की जाए और किस तरह से इसको सुलभ बनाया जाए, ये सारी चीजों के ऊपर में काफी कुछ मैं समझता हूँ जो एग्रीमेंट हुआ है वो एक अच्छा एग्रीमेंट है जिससे ये आगे बढ़े। लेकिन उसके बाद भी अभी और भी काफी चीजें उसके अंदर करने की है। मेरा मानना यह है कि सबसे मुख्य बात यह होती है, और भारत जो है, आप ये देखिएगा कि सारे में जो 11 कंट्रीज हैं उसमें काफी सारे कंट्रीज जो हैं बहुत बड़ी पुरानी सिविलाइजेशंस के हैं,
0: जी
1: और उनके पास में बहुत बड़ा एक खजाना है जिसको देखने के लिए। भारत एक प्राचीन देश है और यहाँ पर इतनी सारी चीजें देखने के लिए हैं लोगों के लिए, तो टूरिज्म जो है, आते हैं पर्यटक यहाँ पर। इसी तरह भारतीय पर्यटक भी दूसरी नंबर में दुनिया भर में जाते हैं, लेकिन भारतीय पर्यटक तब जाते हैं जहां पर कि उनको वीजा वगैरह मिलना आसान होता है। बहुत से कंट्रीज जो है उनके वीजा प्रोसेस बहुत ठीक नहीं है, सुलभ नहीं है, तो इसलिए वहां पर लोग जाना पसंद नहीं करते इतना ज्यादा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये जो कंट्रीज हमारे ब्रिक्स के हैं, अगर उनको वाकई में कोऑपरेशन को और भी ज्यादा किसी हद तक लेके जाना है, तो उसमें आवश्यक है कि ये ईज ऑफ ट्रेवल बहुत जरूरी है, और ये
0: जी
1: खाली जो है वो ग्रुप टूर्स की भी नहीं होनी चाहिए, इंडिविजुअल टूरिस्ट के बारे में भी होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस बात के ऊपर कुछ ना कुछ एग्रीमेंट जरूर हुआ होगा। और
0: जी
1: किस तरह, इसी तरह से तभी जैसे डिजिटल भारत जो है, जानते हैं आप कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत ने बड़ा नाम कमाया है, और उसको किस तरह से टूरिज्म क्षेत्र में, चाहे वो मैनेजिंग सस्टेनेबल साइट्स हो, किस तरह से जो डेस्टिनेशन का मैनेजमेंट होता है, जैसे लोग जाते हैं तो कैसे उनको कॉन्टेक्ट कनेक्ट करेंगे, किस तरह से ट्रैवल फैसिलिटेशन हो सकता है, तो ये सारी बातों के ऊपर में मैं समझता हूँ काफी गहराई से डिस्कशन हुआ है, और इससे काफी बड़ा फायदा जो है सभी देशों को इसका मिलेगा अगर ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होता है तो।
0: अम्बेसडर त्रिगुनायत, घोषणा पत्र में पर्यटन के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है, इस पर आपके क्या विचार हैं?
1: बिल्कुल, आप ये अगर देखें तो भारत ने भी अपना भाषण ही एक बनाया है, सॉफ्टवेयर AI ड्रिवन है, और उसके अंदर में सारी भाषाओं के अंदर आप बोलते जाएं तो दूसरी भाषाओं के बारे में बताता रहता है, तो ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली रियल टाइम बेसिस पे करते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है। तो जहां तक लैंग्वेज की स्किल्स, क्योंकि हम बहुत से कंट्रीज में, मान लीजिए आप चाइना में जा रही हैं या आप रशिया जा रहे हैं, तो वहां पर लोगों को जो है अंग्रेजी नहीं आती इतनी, तो वहां पर आवश्यक है कि आप अपनी कम्युनिकेट कर पाए, किसी तरह समझ पाए कि आखिरकार है क्या। आजकल तो खैर सॉफ्टवेयर डिवाइसेस वगैरह इस तरह की आ गई है कि आप उधर अगर उसको उनकी लैंग्वेज में लिखा हुआ जो चीज अगर आप उसको देखें और आप इंग्लिश में उसका मतलब जानना चाहते हैं तो वो भी कर देता है। तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं समझता हूँ हमारी जीवन का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा हो गया है, और उसके चलते देखिए

0: आपका डिजिटल करेंसीज, बहुत सी जगह आप जाएंगे, अब भारत है और भी देश है जिन्होंने अपनी अपनी करेंसीज को डिजिटाइज किया है, और इनसे यूपीआई जैसा है वो भी जो है डिजिटल बेस्ड है, तो उसको कैसे यूज किया जा सकता है, तो अब करेंसी ले आने की भी जरूरत नहीं है वहां पर, तो उससे भी काम कर सकते हैं कुछ कंट्रीज के अंदर में। तो ये मेरा मानना है कि ये जो टेक्नोलॉजीज है वो खाली ये बुकिंग, फैसिलिटेशन, ट्रैवल और इन सब चीजों में ही मदद नहीं करती, बल्कि आपकी डे टू डे लाइफ को भी काफी सिंप्लीफाई करती है। तो इन सारी चीजों में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा योगदान जो है टेक्नोलॉजी का रहा है।
1: जी अम्बेसडर त्रिगुनायत, हम देखते हैं कि जब विदेशी पर्यटक भारत आते हैं तो वे सिर्फ हमारे पर्यटन स्थल नहीं देखते बल्कि हमारी संस्कृति और जीवन शैली को भी समझते हैं। क्या इसे भारत की सॉफ्ट पावर का हिस्सा माना जा सकता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, टूरिज्म तो एक है ही सॉफ्ट पावर का हिस्सा, क्योंकि देखिए जब आप खुद बाहर जाएं या लोग आपके देश में आए, जब वो आते हैं तो वो देखते हैं। इसीलिए तो भारत की जो एक कमाल की जो हमारी संस्कृति है, जिसमें इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी जो है कलर्स है, उसको जब लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे इतने सारे लोग इतनी डाइवर्सिटी में इतनी अच्छी तरह से कैसे रह पाते हैं, इतना कलरफुल कंट्री कैसे है, इतने फेस्टिवल्स कैसे हैं। तो उनको ये तो जब टूरिज्म के लिए जाते हैं आप, तो पर्यटन में ये सब चीजों का तो बड़ा महत्व है। खाली वो आप हेरिटेज साइट्स को देखने के लिए नहीं जाते हैं, वहां पर आपको कल्चरल प्रोग्राम देखने मिलता है, लोगों को समझने का मौका मिलता है, खाने का मौका मिलता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। और उसमें भारत ने एक बड़ी अच्छी बात करी है, चाहे वो G20 समिट रही हो हमारी 2023 की या ये वाली ब्रिक्स की समिट है, कि हमने ये सारी भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग मीटिंग्स करी है। तो 400 मीटिंग करीब इसकी ब्रिक्स की होनी है, आप सोच लीजिए, अभी 350 के ऊपर ऑलरेडी हो चुकी हैं। और 12-13 सितंबर को मेन समिट मीटिंग है जिसमें राष्ट्राध्यक्ष आएंगे यहाँ पर। तो ये उसका कल्चर जो है, संस्कृति जो है, सिविलाइजेशन जो है, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है टूरिज्म के लिए। जब भी कोई जाता है तो वो देखने जाता है, कहाँ लोग आते हैं भारत में तो चलिए क्या क्या देखेंगे भाई, तो जगह जगह दिल्ली में कुछ और है, आगरा में कुछ और है, जयपुर के अंदर में अलग है, साउथ इंडिया में अलग है, टेम्पल्स हैं हजारों साल पुराने, तो देख के चकित हो जाते हैं लोग के किस तरह से कल्चर आपकी जो है वो अप्रिशिएट करते हैं, फिर वो बार बार आते हैं अगर उनको अच्छा लगता है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है।
1: जी
0: इसके सिलसिले में इसमें एक और बड़ी बात हुई है कि किस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग हो, कैसे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, फॉर एग्जाम्पल बहुत सी चीजें जो है रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा है, कम्युनिटी टूरिज्म जिसको कहते हैं, वो भी बड़ा अच्छा है वहां पर। तो मैं समझता हूँ तो ये सब बड़ी जरूरी चीजें हैं।
1: अम्बेसडर त्रिगुनायक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि घोषणा पत्र में पर्यटन से जुड़े लोगों के कौशल विकास और ट्रेनिंग पर भी जोर दिया गया है, और जैसा आपने कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बात की, तो इससे भारत और दूसरे ब्रिक्स देशों को क्या फायदा हो सकता है?
0: देखिए बिना स्किल के तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए आप तो टूरिस्ट हैं, आपको जाना है, लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी टूर ऑपरेटर से बात करते हैं, उस टूर ऑपरेटर को पूरा पता होना चाहिए कि किस तरह से हम टूर को ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे हम आपको हेल्प करेंगे, जब आप वहां जाएंगे तो उस कंट्री में उसका क्या पार्टनर होगा, वहां से कैसे जाएंगे। तो इसलिए स्किल जो टूरिज्म के ऐसे कॉलेजेस हैं, कोर्सेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर इस तरह के कोर्सेज दिए जाते हैं प्रॉपरली प्रोफेशनल वे में होता है, तो उसी के बाद में आप होटल में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर में एम्प्लॉय होते हैं, चाहे होटल में जाइए तो वहां पे भी तो ट्रेनिंग होती है उनकी। तो टूरिज्म के जो जो ये सारे उसी के हिस्से हैं, उसी के अंग हैं डिफरेंट। तो ये मैं समझता हूँ इससे क्या होगा कि जो कि अगर एग्रीमेंट जो हुआ है तो दोनों कंट्रीज अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, अपने इंस्टीट्यूशनल कनेक्शंस हैं, अपने प्रोग्राम्स एक दूसरे के साथ में, तो उससे एक तो अप्रिसिएशन और अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी, और दूसरी चीज यह है कि वो एक स्किल मैन पावर, और स्किल मैन पावर को रीस्किल करना पड़ता है। देखिए अब आजकल ये 10 साल पहले ये सब टेक्नोलॉजीज नहीं थी जो आज है, तो जो हमारे लोग जो पुराने मैनेजर्स कहिए या दूसरे लोग इसको मैनेज कर रहे हैं, उनको भी अडेप्ट करना है कि नई टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल हो। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक एजुकेशन के जरिए से और स्किलिंग और रीस्किलिंग के जरिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के जरिए हो सकता है।
1: अम्बेसडर त्रिगुनायत, बैठक के दौरान भारत ने ब्राजील, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और यूएई के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। इन बैठकों की क्या अहमियत है?
0: तो होता क्या है कि देखिए जब ये मल्टीलैटरल मीटिंग्स होती हैं तो अपनी जगह उनका जो एक उद्देश्य है वो तो सर्व होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में हमेशा से जो होस्ट कंट्री होता है या दूसरे कंट्रीज भी जो आए हैं, उन्होंने और भी मीटिंग मांगी होंगी अपने पार्टनर कंट्रीज के साथ में, तो भारत ने भी इसी तरह से जो मीटिंग्स आपने बताई हैं कई सारे कंट्रीज के साथ हुई, और इन मीटिंग्स का मतलब ये होता है कि हम बायलैटरल वे में और क्या कर सकते हैं बढ़ाने के लिए। जैसे यूएई की बात ले लें, यूएई हमारा बड़ा क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वहां पर 4.4 मिलियन इंडियंस रहते हैं, लगभग 44 लाख इंडियंस वहां पर काम करते हैं, वहां से सबसे ज्यादा भारतीय गल्फ कंट्रीज में अगर कहीं रहते हैं। अब ईरान के अंदर में भी काफी सारे भारतीय फंस गए थे, उनके बारे में भी बात करना, कैसे अगर मान लीजिए आपके अगर सेंक्शन लगी हुई है तो अगर आप वहां जाते हैं वहां पे आप अपना यूज नहीं कर पाते तो किस तरह से हम करेंगे। तो जब हम बात करते हैं बायलेटरल रिलेशंस की, तो अगर टूरिज्म सेक्टर की स्पेसिफिकली बात करेंगे तो उसमें वो मैकेनिज्म निकल के बाहर आएंगी जिससे कि एक टूरिज्म फैसिलिटेट हो सकता है, पीपल टू पीपल कनेक्ट फैसिलिटेट हो सकता है, ट्रैवल इजी हो सकता है।
1: जी अम्बेसडर त्रिगुनायत, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी यही कहा कि पर्यटन भारत के विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कूटनीति के जरिए अगर हम देखें तो ये कितना महत्वपूर्ण है।
0: देखिए टूरिज्म क्या है आफ्टर ऑल, टूरिज्म जो है कि दो देशों के लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, उनके पास में अप्रिशिएट करते हैं, और जो भी आप देखें तो कोई भी रिलेशनशिप होगी वो तभी ज्यादा अच्छी चलती है जब वहां पर के पीपल टू पीपल कनेक्ट स्ट्रांग होता है, और उसके लिए कनेक्टिविटी और टूरिज्म और ट्रैवल बहुत आवश्यक है। तो जो शेखावत जी ने कहा बिल्कुल उचित कहा, और नेचुरली है कि रेवेन्यू तो बनता ही है उससे, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आपके मुल्क में आएंगे, बहुत से कंट्रीज हैं, मैं जॉर्डन में काम करता था, वहां का 25% रेवेन्यू जो है उनका पूरा जीडीपी का हिस्सा था टूरिज्म के जरिए। ऐसे भारत में भी बहुत मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं दुनिया भर के लोग, तो उसको हम और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए, और वो नेचुरली हमारे अगले 20-22 साल में जो 2047 का भारत का एक उद्देश्य है कि किस तरह से विकसित भारत बनेगा, तो उसमें नेचुरली है कि काफी कुछ इसकी मदद मिलेगी और ये एक बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो गुडविल जनरेट होती है जब आपके देश में लोग आते हैं, उनको अच्छी तरह देखते हैं। देखिए भारतीय लोग जो हैं वो हमेशा से अतिथि देवो भव में विश्वास रखते आए हैं, और इसीलिए जो भी हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं उनका ख्याल रखना पड़ता है, उनको मिलते हैं जब लोगों के साथ में तो वार्म्थ होती है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हमें जो है और ये और अलाइड इंडस्ट्रीज होती है। देखिए टूरिज्म से खाली यही नहीं होता, बहुत देखिए ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो गए, आपके गाइड्स हो गए, आपके आर्टिजन्स हो गए, वीवर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, रूरल एरियाज में डेवलपमेंट होता है, तो जहां जहां लोग जाते हैं वहां पर नेचुरली है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनेगा। और तो ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है कि इससे डायरेक्टली ये सारी बातें जो है भारत के विकास के लिए भी और हमारे जो पार्टनर कंट्रीज है उनके विकास के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: अम्बेसडर त्रिगुनायत, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये होगा कि क्या आप मानते हैं कि भविष्य में ब्रिक्स सिर्फ व्यापार और अर्थव्यवस्था का मंच नहीं रहेगा बल्कि पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है?
0: ये इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा पहले ही कहा है कि ये इसमें काफी ऐसे देश हैं, अब चाहे देखिए भारत को देखिए, चीन को देखिए, रूस को देखिए, इथियोपिया, इजिप्ट और भी कई सारे देश हैं जो एंशियंट सिविलाइजेशन है इसके अंदर में, ऐसे नहीं है मतलब ये कोई जो दूसरे ग्रुपिंग्स में लोग कंट्रीज होते हैं, यहाँ पर सब लोग जो है एक डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन है, कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट, कितने सारे तो वर्टिकल साइंस के इतने मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है, काउंटर टेररिज्म एक बहुत बड़ा हिस्सा है इसका, तो कोऑपरेशन तो बढ़ता रहेगा। और ब्रिक्स को जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा है कि ये ब्रिक्स कोई एंटी वेस्टर्न नहीं है, ब्रिक्स जो है एक नॉन वेस्टर्न ग्रुपिंग है, इनिशिएटिव है जो एक अल्टरनेट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को बताता है।
1: अम्बेसडर त्रिगुनायत, इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे AI, कौशल विकास और सतत पर्यटन पर ब्रिक्स देशों के साझा विजन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुनायत, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी श्रेया पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: सुर्खियों में

गुड इवनिंग, नमस्कार, कहिए कैसे हैं आप। क्या आपने नोटिस किया, आजकल शाम का ना एक नया रिचुअल बन गया है। कोई जनाब सनसेट की फोटो लेते हैं, कोई गोल्डन आवर वाली सेल्फी पोस्ट करते हैं, कोई ईयरबड्स

0: गाकर वॉक पर निकल जाते हैं और कोई ऑफिस की आखिरी मेल भेजकर बस यही सोचते हैं अब मी टाइम शुरू, मेरा टाइम। तो अगर आपकी इवनिंग भी अभी अभी ऑनलाइन हुई है देन वेलकम, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स तक हम स्क्रॉल नहीं सोल रिफ्रेश करेंगे। बिल्कुल, यहाँ सिर्फ रेट्रो नहीं बजेगा, यहाँ बजेगा वो म्यूजिक जो आज भी जानता है कि मूड को कैसे अपग्रेड करना मांगता है। और शुरुआत एकदम फुल एनर्जी के साथ। आपने ट्यून इन किया आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज, सांस ठले लिए, साथ हूं मैं नूपुर।
1: चाहे कोई मुझे जंगली कहे

0: रहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: बताइए, इतनी एनर्जी के बाद भी अगर आपकी थकान नहीं भागी तो फिर शायद आपको एक और कप कॉफ़ी का या चाय का चाहिए। कहते हैं ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत धुनें अक्सर पुराने गीतों में छुपी होती हैं और सबसे प्यारी यादें शाम की इस प्यारी सी खामोशी में। दिन भर की भाग दौड़ के बाद ये शाम जैसे धीरे धीरे आपके कंधों से थकान उतार रही है। आसमान पर ढलता सूरज सुनहरी चादर बिछा चुका है जो अब धीरे धीरे रात में बदलती जा रही है, और हवा में हल्की सी ठंडक है, और दिल शायद किसी की यादों की खिड़की अब खोल चुका है। कहते हैं सुबह उम्मीद लेकर आती है, शाम एहसास और प्यार। कुछ अधूरे सपने, कुछ मीठी यादें और कुछ ऐसे गीत जो समय के साथ और भी खूबसूरत हो जाते हैं, और कुछ गीत ऐसे होते हैं जो शाम की पूरी रफ्तार बदल देते हैं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब बारी है उस दौर की जब शम्मी कपूर साहब

1966 में रिलीज हुई फिल्म तीसरी मंजिल अपने सस्पेंस और म्यूजिक के लिए भारतीय सिनेमा की एक मील का पत्थर है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई, इसके संगीत की भी बहुत प्रशंसा हुई और इसके साथ ही संगीतकार आर डी बर्मन संगीत की दुनिया का एक बड़ा नाम बन गए। तो मूल रूप से इस फिल्म के लिए देवानंद जो हैं वो मुख्य भूमिका में कास्ट किए गए थे, लेकिन निर्माता नासिर हुसैन के साथ थोड़ी अनबन के कारण उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी। और जब शमी कपूर जी को रॉकी के किरदार के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने रखी एक शर्त, कहा फिल्म तभी करेंगे जब देवानंद पर्सनल तौर पर उन्हें फोन करके बताएंगे कि उन्हें इस फिल्म को करने में कोई एतराज नहीं। बाद में देवानंद साहब ने शमी कपूर जी को फिल्म करने की इजाजत दे दी और हमें मिल गई तीसरी मंजिल। आगे बढ़ेंगे एक और सुपरहिट गाने की ओर, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातें, एक जरूरी संदेश।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: बिल्कुल आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ प्रोग्राम सांस चले साथ मैं नूपुर। और बात करें शम्मी कपूर साहब की, तो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस का जवाब नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके डांस स्टेप्स और उस पर मोहम्मद रफी साहब की आवाज, मानो एक दूसरे के लिए ही बने हों। एक और फिल्म की बात करते हैं, 1962 की हिंदी कॉमेडी फिल्म दिल तेरा दीवाना। इसमें शमी कपूर, माला सिन्हा, महमूद प्राण और ओम प्रकाश हैं। संगीत शंकर जयकिशन का है। फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में है, लेकिन 2015 में कलर्ड इसका वर्जन भी जारी किया गया। फिल्म का संगीत लोकप्रिय है, आज भी सुना जाता है। और माना जाता है कि महमूद जी ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि इस फिल्म में अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और अभिनय से तारीफ पाने के बाद शमी कपूर उनसे थोड़ा सा इनसिक्योर महसूस करने लगे थे। नतीजा शमी जी ने अपनी अगली फिल्मों में महमूद की जगह राजेंद्र नाथ को कॉमेडियन लेने की मांग की थी। फिल्म दिल तेरा दीवाना इतनी लोकप्रिय हुई कि इसके निर्देशक BR पंथालू जी ने खुद ही इसे कन्नड़ और फिर मलयालम भाषाओं में रीमेक किया। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म से ये यादगार नगमा

0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण मानकों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर कड़ी कार्रवाई की। सरकार ने 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन, मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने 3 दिवसीय विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन आघात के अंतर्गत अपराधों, अवैध हथियारों, मादक पदार्थ और आपराधिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की। और नई दिल्ली महिला डबल्स सेमीफाइनल में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण मानकों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर कार्रवाई करते हुए इस वर्ष जनवरी से जुलाई के बीच 2100 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। इस दौरान 106 इकाइयां निर्धारित पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करती पाई गईं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि निरीक्षण के दौरान 78 फैक्ट्रियां दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की वैध संचालन सहमति के बिना ही चल रही थीं। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि 44 इकाइयों पर पर्यावरणीय जुर्माना लगाया गया है, जबकि 33 गैर अनुपालन वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण नियमों का पालन करने वाले उद्योगों को सरकार सहयोग देगी। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन, मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया। एक रिपोर्ट।
1: स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। यह कदम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि इन दवाओं के लेबल, पैकेज में दिए गए निर्देशों और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से चेतावनी लिखी जाए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इस वर्ष जून में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में लोगों के इस्तेमाल के लिए 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी। शिवांग के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरठ नमो भारत रैपिड रेल सिस्टम को सकारात्मक सुशासन का एक अच्छा उदाहरण बताया है। उन्होंने परियोजना को समय पर पूरा करने और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के लिए इसकी सराहना की। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस कॉरिडोर पर रेलगाड़ियां 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जो एक समय देश में अकल्पनीय था। उन्होंने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के महत्व पर बल देते हुए कहा कि जो परियोजना शुरू हो उसे समय पर पूरा किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना और लोगों, विशेषकर युवाओं को सेवा कार्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।
2: सेवा सेतु अभियान के तहत 15 दिन के लिए ब्लॉक लेवल पर हर योजना के संबंधित डिपार्टमेंट के आवश्यक कागजात को लेकर वहाँ लोग उपस्थित रहे, तो आप वहाँ आइए, फॉर्म भरिए, आपका नाम आयुष्मान में ऐड हो जाएगा। ऐसे सरकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं, जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुंचना है, तो उनको ये मौका होगा कि उनके ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु अभियान का एक अपना अलग कार्यक्रम उस दरमियान होगा, उसमें वो इस मौके का लाभ लेते हुए अपने आप को इस योजना में जोड़ सकते हैं।
0: भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये निर्णय पार्टी के नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में लिया गया।
3: आज इस प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के प्रत्येक गली नुक्कड़ कोने में जाकर वंदे मातरम का यशोगान करेगा। वंदे मातरम के विषय में लोगों को हम बताएंगे।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिवसीय विशेष

0: उत्तर पश्चिम क्षेत्र के प्रशांत विहार में आज मेगा मार्च का आयोजन किया। श्री वाही ने स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित मार्च में लगभग 2 किलोमीटर चलकर श्रमदान किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: इस दौरान महापौर प्रवेश वाही ने सड़क किनारे लगे पेड़ों की छटाई करने, सड़कों से अतिक्रमण हटाने और गड्ढों को भरने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए। मार्च के दौरान मच्छर मारने वाली कीटनाशक दवा का भी छिड़काव किया गया। नागरिकों को जागरूक करने के लिए स्वच्छता के ऊपर एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। श्री वाही ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से चलाए जा रहे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण भी किया। महापौर ने कहा कि स्वच्छता दिल्ली नगर निगम का प्राथमिक कार्य है, लेकिन दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाने की इस मुहिम हमें जनता का भी साथ चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को अपनी आदत बनाकर और घर से निकलने वाले कूड़े को सही तरीके से पृथक कर तथा कूड़े को कूड़े की गाड़ी में डालने का संकल्प लेकर हम इस मुहिम को सफल बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी को स्वच्छ, कूड़ा मुक्त और हरित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: महापौर प्रवेश वाही ने आज उत्तर पश्चिम क्षेत्र के रोहिणी सेक्टर 8 में आयोजित एंटी डेंगू माह जागरूकता कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर महापौर ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आने वाले हफ्ते में उत्तर पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी धार्मिक स्थलों में मच्छरों की रोकथाम के लिए फॉगिंग करने के आदेश भी दिए। श्री वाही ने मच्छरों की रोकथाम के लिए और उनसे संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए 011-2705-0132 और 011-2705-0133 हेल्पलाइन नंबर जारी किया। महापौर ने कहा कि नागरिक इन नंबरों पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। दिल्ली नगर निगम के दिल्ली जोन के उपायुक्तों ने एक वार्ड कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में नगर निगम ने कहा कि संबंधित अधिकारी और प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित रहे और शहर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इनमें विकास की प्राथमिकताओं, असरदार तालमेल और बेहतर सर्विस डिलीवरी जैसे विषय शामिल थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय की सशक्त समिति ने आज नई दिल्ली में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के गैर कृषि आजीविका घटक के अंतर्गत प्रस्तावों की समीक्षा की। बैठक का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को मजबूत और व्यापक बनाना तथा स्वयं सहायता समूहों के छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाकर विकासोन्मुख व्यवसायों में बदलने का मार्ग तैयार करना था। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि अच्छे कानूनों के लिए अच्छे तथ्य, विश्वसनीय शोध और जमीनी स्तर के प्रमाण आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को ये ज्ञान विधायिकाओं और सरकारों तक पहुंचाने में सक्रिय भागीदार बनना होगा। ये बात विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज फरीदाबाद स्थित मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज में आयोजित वाइस चांसलर्स कॉन्क्लेव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कही। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की अधिकतम अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये फैसला केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन को राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के साथ लागू हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा करने की जरूरत महसूस की गई। मंत्रालय ने कहा कि भारत में टेलीविजन क्षेत्र विज्ञापनों पर काफी निर्भर है, चाहे कोई चैनल पेड हो या फिर फ्री टू एयर। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। दिल्ली पुलिस की पूर्वी जिले की टीम ने ऑपरेशन आघात के अंतर्गत अपराधों, अवैध हथियारों, मादक पदार्थ और आपराधिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की है। अभियान के अंतर्गत आर्म्स एक्ट के तहत 29 मामले, विभिन्न आपराधिक और निवारक कार्रवाइयों के अंतर्गत 151 लोगों को तथा आबकारी अधिनियम के मामलों में अवैध शराब के 501 पाउच और लगभग 1800 बोतलें बरामद की हैं। इसके अलावा डकैती और झपटमारी के लिए 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ये प्रवर्तन अभियान इस महीने की 17 तारीख से 20 तारीख तक चलाया। एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई ने अवैध शराब की आपूर्ति में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 778 क्वार्टर और आपूर्ति में इस्तेमाल होने वाले 2 वाहन भी बरामद किए हैं। दिल्ली के मधुबन चौक पर पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक

आवागमन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्काई वॉक और फुटओवर ब्रिज का निर्माण कार्य जारी है। लोक निर्माण विभाग द्वारा आउटर रिंग रोड पर 9 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार की जा रही इस परियोजना का 60% काम पूरा हो चुका है और इसे 30 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये स्काई वॉक FOB पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन, मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन और रोहिणी जिला न्यायालय के बीच सुरक्षित पैदल संपर्क उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के जरिए किया गया है। दिल्ली विधानसभा की यूथ आउटरीच पहल के अंतर्गत दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस की छात्राओं ने विधानसभा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा के ऐतिहासिक महत्व और इसकी गहरी लोकतांत्रिक विरासत को करीब से जाना और समझा। दिल्ली विधानसभा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में विधानसभा सार्थक लोकतांत्रिक आउटरीच पहल के जरिए युवाओं की भागीदारी को लगातार मजबूत बना रही है। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत पावन माटी कलश वंदन और वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन सोमवार को राजधानी के तालकटोरा स्टेडियम में होगा। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स में भारत ने कांस्य पदक जीत लिया है। आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी को चीन की ली यू शेंगशू और टेन निंग से हार का सामना करना पड़ा। और बात मौसम की, राजधानी दिल्ली में आज लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया है कि कल बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा भी हो सकती है। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण मानकों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर कड़ी कार्रवाई की। सरकार ने 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन, मेलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने 3 दिवसीय विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन आघात के अंतर्गत अपराधों, अवैध हथियारों, मादक पदार्थ और आपराधिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की। और नई दिल्ली में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने आज देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया और प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा हुई। गृहमंत्री ने सुकना में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ भी बैठक की। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि बैठक सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने अपने मुद्दे रखे। बैठक के बाद गृहमंत्री ने घोषणा की कि मुद्दों के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामिन मैलिएट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कहा कि ऐसी दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो

0: लगता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। यह दौरा भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक कल विशाखापट्टनम में होगी। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रति जागरूक फैलाने और इसके योगदान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह निर्णय पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में लिया गया। प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर दो श्लोकों के बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पाठ रोकने का आरोप लगाते हुए कड़ी आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महासचिव भी उपस्थित हैं। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए पार्टी के आधार को और मजबूत करने के लिए पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। श्री तावड़े ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर में 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनबाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनबाड़ी है वहाँ तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुँचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहाँ हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाए।
0: ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। सांसदों ने पाकिस्तानी सेना के अत्याचार को रोकने और नागरिकों के जीवन की रक्षा करने के लिए कदम उठाने की मांग की है। और खेलों में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू शेंग शू और टैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। उधर FIH हॉकी पुरुष विश्व कप में भारत का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Reshma Tiwari. Union Home Minister Amit Shah held an important meeting with senior Gorkha leaders today at a resort in Sukna, Siliguri. Chief Secretary Manoj Agarwal, Interlocutor Pankaj Singh, Lok Sabha MP Raju Bishta, Rajya Sabha MP Harshvardhan Shringla and some other Gorkha leaders were present. Briefing the media after the meeting, Darjeeling Lok Sabha MP Raju Bishta said that the meeting was very fruitful and that all the Gorkha leaders constructively presented their issues. After hearing the leaders, Chief Minister Shubhendu Adhikari also expressed his views and commitment regarding concerned issues. After the meeting, the Home Minister announced that a high-level meeting to resolve the issues would be formed under the chairmanship of Interlocutor Pankaj Singh, former BSF Director and Deputy National Security Advisor. The BRICS Youth Ministers' meeting concluded in Visakhapatnam today with the adoption of the BRICS Youth Ministers' joint statement. The meeting reviewed progress in youth cooperation among BRICS countries and discussed ways to expand opportunities for young people in education, skills, entrepreneurship, innovation and social development. The joint statement identified key areas including education, training and skills, youth entrepreneurship, science and technology, health and sports,

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्वागत है कार्यक्रम मधुरिमा में, एक ऐसा संगीतमय मंच जहां रागों की बात होती है, सुरों की सरिता बहती है और भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा की एक मनोहारी झलक यहां पर प्रस्तुत की जाती है। तो आइए संगीत के इन अनमोल रंगों में डूबते हैं, उतरते हैं, तैरते हैं और शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम मधुरिमा की, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे राग केदार की। प्रोग्राम में आपके साथ हूं मैं नूपुर। सुनते हैं फिल्म घर का ये सदाबहार गीत, जिसका संगीत राग केदार को आधार मानकर बनाया गया। संगीतकार आरडी बर्मन ने इस मधुर धुन को तैयार किया, गाया लता मंगेशकर और किशोर दा ने, गीतकार हैं गुलजार।

राग केदार आमतौर पर भक्ति संगीत और गंभीर भाव के लिए जाना जाता है, लेकिन इस गीत में ना इसे बेहद खूबसूरती से एक रोमांटिक नगमे के रूप में ढाला गया है और अगला गीत भी कुछ ऐसा ही है। तो अगर बात करें राग केदार की, तो ये उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक गंभीर राग है जो अपनी दिव्यता, शांति और माधुर्य के लिए प्रसिद्ध है। कल्याण थाट का ये राग है जिसमें वादी स्वर है म और संवादी स्वर है सा। गाने का समय रात का पहला प्रहर यानी कह सकते हैं शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच। प्रमुख रस शांति, भक्ति और गंभीर। राग केदार की सबसे बड़ी विशेषता म का विशेष महत्व है जिसमें शुद्ध मध्यम प्रमुख होता है। तीव्र मध्यम का प्रयोग अलंकार के रूप में सीमित और विशेष स्थानों पर ही किया जाता है। स्वर चालन में मध्यम के इर्द गिर्द सुंदर घुमाव इस राग की पहचान है। तो राग केदार को जब हम सुने

ना तो कह सकते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे मंदिर की संध्या आरती की ध्वनि वातावरण में गूंज रही हो। चांदनी रात में मन पूरी तरह शांति और शांत हो गया हो और स्थिर हो गया हो और हमारे मन के भीतर श्रद्धा, संतोष और निर्मल आनंद का भाव जाग रहा हो। इस राग में ना तो तीव्र विरह है और ना ही चंचल उल्लास, इसकी सुंदरता गंभीर शांति और आध्यात्मिक माधुर्य में है। लेकिन फिलहाल जो गीत आप सुनने वाले हैं, फिल्म चिंगारी से गीत है, महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में, संगीतकार हैं रवि और गीतकार साहिल लुधियानवी। ये गीत भी पहले ही गीत की तरह कुछ ऐसा एक खूबसूरत जो है वो माहौल क्रिएट करता है, एक रोमांटिक सा माहौल, और इसका संगीत बनाया गया राग केदार को ही आधार बनाकर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz कार्यक्रम मधुरिमा, साथ मैं नूपुर और हमारे साथ राग केदार की कुछ बातें। राग केदार को अक्सर शांति, भक्ति और दिव्य प्रकाश का राग कहा जाता है। कह सकते हैं कि यदि राग मालगुन जीवन में स्मृतियों की हल्की लहर जगाता है तो राग केदार मन को स्थिर करता है और आध्यात्मिक अनुभूति की ओर ले जाता है। इस राग को जब सुने तो कुछ जो सामान्य अनुभूतियां हैं वो हैं मन की चंचलता का कम होना, भक्ति का भाव जागृत होना जो कि किसी विशेष धर्म से नहीं बल्कि गहरी श्रद्धा और विनम्रता का अनुभव कराता है। एक निर्मल आनंद महसूस होता है बिना किसी बाहरी कारण के, हल्का शांत सुख ऐसा महसूस होता है और इस राग में एक संतुलित गंभीर सौंदर्य है, गरिमा लिए गंभीरता है। विचारों का शोर जैसे धीरे धीरे शांत हो रहा होना ऐसे हमें प्रतीत होता है। यदि इस राग को एक दृश्य में कल्पना करना हो तो शायद मैं कहूँ कि ऐसा लगे कि शाम का समय है, आकाश में हल्की हल्की चांदनी उभरने को है, मंदिर में दीप जल रहे हैं, दूर से घंटियों की मधुर ध्वनि आ रही है, हवा ठंडी है और मन बिना किसी प्रयास के ना शांत और प्रसन्न अनुभव करने लगता है। और यही कारण है कि राग केदार को सुनने के बाद कई श्रोताओं को मन अपेक्षाकृत अधिक शांत, संतुलित और एकाग्र महसूस होता है। हालांकि देखिए यह भी सच है कि संगीत का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ अलग भी हो सकता है। बहरहाल राग केदार की बात हो और फिल्म गुड्डी की का ये प्रार्थना गीत हमको मन की शक्ति देना, ये आप तक ना पहुंचाए ये तो ज्यादती होगी। 1971 की ये फिल्म, इसका एक गीत राग केदार ताल दादरा पर बनाया गया। संगीतकार वसंत देसाई जी ने बनाया, गीतकार गुलजार साहब ने लिखा और वाणी जयराम जी ने इसको गाया। आइए सुनते हैं और इस गीत के बाद आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन, तो सुनते रहिए FM गोल्ड। फिलहाल नूपुर को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। त्रिशा गायत्री सेमीफाइनल हारी, विश्व चैंपियनशिप में पहला कांस्य पदक अपने नाम किया। हॉकी विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से जारी। अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मानसी लाथर ने रजत, तन्वी और कोमल ने कांस्य पदक जीता। लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे, श्रीलंका के रुमेश ने जीता खिताब। कोलंबो में कल भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जाएगा और विशाखापट्टनम में कल भारत की मेजबानी में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी।

0: करते हैं बैडमिंटन से, जहां भारतीय जोड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया है। बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियो शेंगशू और टैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का शानदार सफर हार के साथ खत्म हुआ। हालांकि भारतीय जोड़ी ने विश्व चैंपियनशिप में अपना पहला कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय जोड़ी ने शानदार शुरुआत करते हुए पहला गेम जीत लिया, लेकिन चीन की जोड़ी ने वापसी करते हुए अगले दो गेम हासिल कर 1 घंटे 11 मिनट में 18-21, 18-21, 21-13, 21-8 से जीत दर्ज की। चीन की जोड़ी के खिलाफ पिछले 7 मुकाबलों में त्रिशा और गायत्री को 6 बार हार मिली थी। इसके बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने आक्रामक शुरुआत की और 7-2 की बढ़त बना ली। लियू और तान ने लगातार 6 अंक लेकर वापसी की और ब्रेक तक 11-7 से आगे हो गई। इसके बाद भारतीय जोड़ी ने शानदार खेल दिखाया और स्कोर 12-12 से बराबर कर दिया। स्कोर 18-18 होने के बाद त्रिशा ने एक शानदार शॉट लगाया और भारत 19-18 से आगे हो गया। इसके बाद भारतीय जोड़ी ने लगातार 2 अंक लेकर पहला गेम 21-18 से जीत लिया। दूसरे गेम में चीन की जोड़ी ने 3-0 की बढ़त के साथ शुरुआत की। भारत ने वापसी करते हुए स्कोर 10-10 से बराबर किया और कुछ समय के लिए बढ़त भी बनाई, लेकिन इसके बाद लियू और तान ने भारतीय खिलाड़ियों की गलतियों का फायदा उठाते हुए चीन ने 17-12 और फिर 19-12 की बढ़त बना ली। चीन की जोड़ी ने दूसरा गेम 21-13 से जीतकर मुकाबला निर्णायक तीसरे गेम में पहुंचा दिया। तीसरे गेम की शुरुआत में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन इसके बाद चीन की जोड़ी ने लगातार अंक जुटाए और 17-7 की बढ़त बना ली। अंत में लियू और तान ने क्रॉस कोर्ट शॉट के साथ मुकाबला खत्म किया और तीसरा गेम 21-8 से जीत लिया। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
0: और श्रोताओं, आपको बता दें कि भारत ने महिला डबल्स में आखिरी बार विश्व चैंपियनशिप का पदक 2011 में जीता था। तब ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने लंदन में कांस्य पदक हासिल किया था। चलते हैं हॉकी के कोर्ट की ओर। एफआईएच हॉकी पुरुष विश्व कप में भारत का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से वैगनर हॉकी स्टेडियम में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक तीसरा क्वार्टर का मुकाबला खेला जा रहा है। दोनों ही टीम बराबरी पर है और अभी स्कोर जो है वो 0-0 है। कोई भी टीम अब तक गोल नहीं कर सकी है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं शक्ति। क्या कुछ प्रदर्शन रहा है इस टूर्नामेंट में भारत का अब तक?
2: अगर प्रशांत बात की जाए अब तक के भारत के प्रदर्शन की, 1975 के बाद पदक की आस में हरमनप्रीत की आर्मी उतर चुकी है मैदान पे। क्या शानदार जीत इस टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में जो दर्ज की थी, उसके बुलंद हौसले शायद आज भी दिख रहे हैं। एक टफ फाइट देते हुए 4 पेनल्टी कॉर्नर अब तक नीदरलैंड्स को मिले हैं, जिसमें से भारतीय मजबूत डिफेंस के आगे टीम लगभग लाचार नजर आई है और कोई गोल नहीं कर सकी है। हालांकि भारत को उम्मीद होगी कि आने वाले 2 क्वार्टर में कुछ और अटैक किए जाएं। और अगर पहले राउंड की बात कर ली जाए तो तीनों मैच में भारत ने 2 में जीत दर्ज की थी और 1 में उसको हार का सामना करना पड़ा था। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम ने वेल्स और पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन जीत दर्ज की है
0: जी। और इस मैच में जुगराज सिंह और अभिषेक और राजिंदर ने जो मुकाबला था, जिससे पहले नीदरलैंड्स में जो भारत जीती थी, जो हराया था मुकाबला, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि शक्ति, भारत का मुकाबला जो है पुरुष वर्ग की बात की जाए तो अच्छा रहा है, लेकिन कल महिला वर्ग में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। महिला हॉकी विश्व कप में कल नीदरलैंड्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को 2-0 से हराया। वैगनर स्टेडियम में दूसरे राउंड के पहले मुकाबले में नीदरलैंड्स की टीम पूरी तरह से हावी नजर आई और उन्होंने भारतीय टीम को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: मैच की शुरुआत से ही नीदरलैंड्स की टीम भारत के डिफेंस पर हावी नजर आई। नीदरलैंड्स को मैच के 3rd ही मिनट में सफलता मिली। पेनल्टी कॉर्नर पर मिले गोल करने के मौके को यिब्बी जानसेन ने बखूबी भुनाया और शानदार गोल दागा। नीदरलैंड्स ने इसके बाद भी भारतीय डिफेंस पर दबाव बनाए रखा। भारतीय टीम ने दूसरे क्वार्टर में भी गोल करने के कई प्रयास किए, लेकिन टीम को सफलता हाथ नहीं लगी। दूसरे क्वार्टर में भारतीय टीम को पेनल्टी कॉर्नर भी मिला, लेकिन दीपिका इसे गोल में तब्दील नहीं कर सकी। पहले हाफ के अंत तक नीदरलैंड्स की टीम 1-0 की बढ़त बनाए रखने में सफल रही। हालांकि भारतीय टीम के डिफेंस ने इस दौरान नीदरलैंड्स को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। मैच के 30वें मिनट में सविता ने शानदार बचाव भी किया। तीसरे क्वार्टर के 2 मिनट के खेल के बाद ही नीदरलैंड्स को पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन भारतीय डिफेंस बचाव करने में सफल रहा। मैच के 38वें मिनट में नीदरलैंड्स ने अपनी बढ़त को 2 गुना कर दिया। पेनल्टी कॉर्नर पर मिले मौके को फ्रेडरिके माटला भुनाने में सफल रही और उन्होंने शानदार गोल दागा।

0: 2-0 की बढ़त हासिल करने के बावजूद नीदरलैंड्स ने लगातार अटैक जारी रखा और भारतीय टीम को मैच में वापसी करने का मौका नहीं दिया। चौथे क्वार्टर में भारतीय टीम ने गोल करने के कई मौके बनाए, लेकिन वो नीदरलैंड्स के डिफेंस को भेदने में नाकाम रहे। इस हार के साथ ही भारतीय टीम की राह मुश्किल हो गई है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कल हर हाल में ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात कुश्ती पर। स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला कुश्ती टीम ने 3 और पदक जोड़े। चैंपियनशिप के आखिरी दिन टीम ने 1 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: मानसी लाथर ने प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया। 68 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में चीन की चेन लिंग सोंग से मानसी को डिफेंसिव बाउट के जरिए 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। तन्वी गुंडेश मकदुम ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में कनाडा की एग्निया क्राकोव्स्का को 10-4 से हराकर कांस्य पदक जीता। वहीं कोमल ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में हंगरी की एडा बालास को 5-2 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारतीय महिला कुश्ती की नई सनसनी काजल ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा तनु शर्मा और सविता ने रजत पदक जीते थे। 18 वर्षीय काजल धोचक ने 76 किलोग्राम चैंपियनशिप बाउट में हिस्सा लिया। उन्होंने चीन की झिंगरू सुन के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 7-0 से मुकाबले को अपने नाम कर खिताब जीता। तनु शर्मा और सविता ने प्रतियोगिता के अलग अलग वर्ग में रजत पदक हासिल किया। 72 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में तनु को जापान की चिसातो योशिदा से हार का सामना करना पड़ा। वहीं 62 किलोग्राम भार वर्ग में सविता को जापान की सकुरा ओनिशी से 2-12 से हार झेलनी पड़ी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: इस बीच रजत पदक विजेता तनु शर्मा के पिता ने इसे गर्व का क्षण बताया।
3: उसका सपना यही था भोपाल के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। उससे थोड़ा सा इसको हौसला मिला। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में नागालैंड में ब्रॉन्ज मेडल आया था। चेन्नई के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम में गोल्ड मेडल आया, तब तो इसको पंख मिल गए। और घर परिवार का यही सपना था कि विदेश में खेल के आए, इंटरनेशनल खेल के आए। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप थी, इसमें बेटी ने देश का नाम रोशन किया है, सिल्वर मेडल हासिल किया है, इसलिए हमें अपनी बेटी पर गर्व है।
1: और श्रोताओं को बता दें कि इससे पहले काजल ने 2024 में 69 किलोग्राम वर्ग के अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता था और 2025 में अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप के 72 किलोग्राम कैटेगरी भी वो जीत चुकी है। काजल ने इस साल के शुरुआत में अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप और बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। और अब बात डायमंड लीग की। लुसाने डायमंड लीग में भारतीय स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने सीजन का अपना बेस्ट थ्रो करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। श्रीलंका के रुमेश थरंगा ने 88.14 मीटर के थ्रो के साथ खिताब अपने नाम किया। वहीं ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स 86.69 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। सुनते हैं ये रिपोर्ट।

0: और अब चलते हैं क्रिकेट के कोर्ट मैदान की ओर। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और आखिरी टेस्ट क्रिकेट मुकाबला कल से कोलंबा के सेहली क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। भारत ने पहले टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 165 रन से हराया था। दो मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: भारत ने पहले टेस्ट मैच में तीनों डिपार्टमेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। बल्लेबाजी में देवदत्त पडिक्कल ने 167 रन की लाजवाब पारी खेली थी, जबकि केएल राहुल और ध्रुव जुरेल भी श्रीलंकाई गेंदबाजों के लिए सिरदर्द साबित हुए थे। दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने 66 रन की दमदार पारी खेली थी। हालांकि दूसरे टेस्ट में यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल से भी टीम को बड़ी पारी की उम्मीद होगी। वहीं गेंदबाजी में मानस सुधार ने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 6 विकेट अपने नाम किया था। रविंद्र जडेजा भी गेंद से किफायती साबित हुए थे। फील्डिंग में भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कई रन बचाए और कैचेस भी लिए। वहीं दूसरी ओर मेजबान श्रीलंका कोलंबो में अपने बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। गोल टेस्ट की दोनों ही पारियों में श्रीलंकाई बल्लेबाजी क्रम भारतीय स्पिनर्स के आगे बेबस नजर आया था। कुशल मेंडिस और दिनेश चांदीमल के दूसरे टेस्ट से बाहर होने से टीम को दोहरा झटका लगा है। गोल टेस्ट की दोनों ही पारियों में दमदार प्रदर्शन करने वाले सोनल दिनुषा से टीम को इस मुकाबले में भी ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी। वहीं कप्तान धनंजय डी सिल्वा को भी बल्ले से अहम योगदान देना होगा। गेंदबाजी में प्रभात

0: जयसूर्या अच्छी लय में दिखाई दिए थे और उन्होंने कुल 7 विकेट अपने नाम किए थे। वहीं तेज गेंदबाजी में असीथा फर्नांडो असरदार साबित हुए थे। भारत और श्रीलंका के बीच अब तक कुल 47 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें से भारतीय टीम को 23 मुकाबलों में जीत मिली है, वहीं श्रीलंका ने 7 मैच जीते हैं, जबकि 17 मुकाबलों का अंत ड्रॉ के रूप में हुआ है। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: इस बीच भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर ने मुकाबले से पहले आज क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
2: We want to work extremely hard, not only for one or two days, but extremely hard for 5 days to win a test match. And that is exactly what we did in the last test match. That is why it was very, very pleasing for us that we worked extremely hard. We did the right things right in test cricket. Our guys got in, make those big runs. We had partnerships. We batted first. We batted for 4.5 sessions, put big runs on the board. That is what the key is in these subcontinent conditions. If you bat first, you try and bat big so that you can control the test match from there. And then we had wickets from our seamers. We had wickets from our spinners as well. So I'm not going to say that it was perfect test match, but that is how we want to see test cricket going forward as well, so that teams have to work extremely hard to win a test match over a course of 5 days.
1: शक्ति, जब से कप्तानी मिली है शुभमन गिल को, लगातार भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले हमने इंग्लैंड में देखा कि सीरीज को ड्रॉ किया था और अब पहला मुकाबला भी श्रीलंका में जाके श्रीलंका को हराना कोई आसान बात नहीं है। लगातार शुभमन गिल बल्ले से और अपनी कप्तानी से अच्छा एक इतिहास रच रहे हैं और अपना एक नाम बना रहे हैं। क्या कुछ नया मौका होगा उनके पास इस श्रृंखला में? अब और
3: जी प्रशांत, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर मुकाबले में एक नया रिकॉर्ड भारतीय क्रिकेट के इस प्रिंस की नज़रों में होता है। ऐसे ही कई रिकॉर्ड जब कल भारतीय टीम उतरेगी तो सबसे बड़ी जो उपलब्धि हासिल करने का मौका होगा गिल के पास कि वो 5 शतक लगा चुके हैं WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल में। कल वो 6ठा शतक लगाते ही इस पूरे साइकिल में सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। अभी वो इंग्लैंड के कप्तान जो रूट के साथ 5-5 शतकों की बराबरी पर हैं और 26 रन जैसे ही अपने बल्ले से शुभमन गिल निकालेंगे, 9 मैचों में तकरीबन 70 की औसत के साथ ये खिलाड़ी अपने इस साइकिल में 1000 रन पूरे कर लेगा।
1: और शक्ति, इस बीच लगातार टेस्ट मैच जो है अलग अलग टीमों का भी खेला जा रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मद्देनजर, भारत और ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का भी मुकाबला खेला जा रहा है, क्या कुछ रहा आज का हाल?
3: जी बिल्कुल, एक मुकाबला जहां बांग्लादेश जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया में आगे बढ़ा है पहले मैच में, लेकिन आज कह सकते हैं कि मिचेल स्टार्क का कहर देखने को मिला बांग्लादेश के बल्लेबाजों के ऊपर और बांग्लादेश की पूरी टीम 64 रन पर सिमट गई, जिसमें मिचेल स्टार्क ने 35 रन देकर शानदार 6 विकेट झटके और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 165 रन बनाते हुए 101 रन की बढ़त हासिल कर ली है। और इस बीच मिचेल स्टार्क जो है WTC साइकिल में 56 मैचों में 108 पारियों में 230 विकेट हासिल कर चुके हैं।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति इस जानकारी के लिए। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के खेल मंत्री और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख शामिल होंगे। इसका उद्देश्य खेल के क्षेत्र में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा आप इस पर अपने सुझाव sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की, संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे से समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव से तेज वर्षा की संभावना, बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति गंभीर। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महासचिव सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि भाजपा टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए पार्टी के आधार को और व्यापक बनाने के लिए पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इसका उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना है। श्री तावड़े ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाए।
0: श्री तावड़े ने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।
1: सेवा सेतु अभियान के तहत 15 दिन के लिए ब्लॉक लेवल पर हर योजना के संबंधित डिपार्टमेंट के आवश्यक कागजात को लेकर वहां लोग उपस्थित रहे तो आप वहां आइए, फॉर्म भरिए, आपका नाम आयुष्मान में ऐड हो जाएगा। ऐसे सरकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुंचना है तो उनको ये मौका होगा कि उनके ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु अभियान का एक अपना अलग कार्यक्रम उस दरमियान होगा, उसमें वो इस मौके का लाभ लेते हुए अपने आप को इस योजना में जोड़ सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इनमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। एक रिपोर्ट।
2: श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर भी चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने सुकना में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ भी बैठक की। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि बैठक बेहद सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने अपने मुद्दे रखे। बैठक के बाद गृह मंत्री ने घोषणा की कि मुद्दों के समाधान के लिए वार्ताकार पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को विश्व का एक अनूठा देश बताया क्योंकि कोई अन्य राष्ट्र अपने पड़ोसी पर हमला करने और दबाव डालने के लिए आतंकवाद का इतने व्यवस्थित और निरंतर तरीके से उपयोग नहीं करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
3: संयुक्त वक्तव्य में शिक्षा प्रशिक्षण

0: बराड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित विकसित भारत एट 2047 युवा राजनीतिक नेताओं के संवाद में डॉक्टर सावंत ने कहा कि युवा राजनीतिक नेताओं को पद पाने की लालसा के बजाय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने उनसे नीति निर्माता, जमीनी स्तर के आयोजक, प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता और सामाजिक उद्यमी के रूप में विकसित होने का आग्रह किया। डॉक्टर सावंत ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश, बुनियादी ढांचे और रोजगार के क्षेत्र में की जा रही विकास पहलों की भी सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करने पर बल दिया है। नोएडा में एक लैब का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह शहरों की संख्या बढ़ रही है, उसी के अनुरूप देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार होना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में चिकित्सा सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक मेडिकल इमेजिंग, डीएनए जांच, जीनोमिक्स, डिजिटल पैथोलॉजी और डेटा आधारित स्वास्थ्य सेवाएं बीमारियों की जांच और उपचार के तरीकों को तेजी से बदल रही है। उन्होंने बताया कि सरकार सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में भी नई तकनीक को शामिल कर रही है।
2: जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना ही होगा। हमारा लक्ष्य केवल बीमारी के सामने आने के बाद ट्रीटमेंट तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। फ्यूचर के हेल्थ केयर सिस्टम को प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, रिस्क एसेसमेंट और पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर पर अधिक ध्यान देना होगा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले 400 दिन से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि यह पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के लिए उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। मेघालय और असम सरकार के बीच आज गुवाहाटी में संयुक्त बैठक हुई। इसमें 19 अगस्त को शिलांग में असम में पंजीकृत वाहनों में तोड़फोड़ की घटना के बाद स्थिति पर चर्चा की गई। मेघालय के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर असुनिया भालंगधार और असम सरकार में सीमा संरक्षण, असम समझौता कार्यान्वयन और विकास मंत्री अतुल बोरा ने गुवाहाटी में कोयनाधार स्टेट गेस्ट हाउस में दोनों राज्यों की सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। त्रिपुरा में नीति आयोग के सदस्य डॉ. जोरम अनिया ने आज गोमती जिले के अथारू भोला में गरिया अकादमी मॉडल स्कूल का दौरा किया। दौरे के दौरान स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हुई। डॉक्टर अनिया ने जमातिया होडा समुदाय की संस्कृति, परंपराओं और विरासत के बारे में भी जानकारी ली। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में आज सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दवा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक्स सेवा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी परीक्षा के लिए चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती के कारण सीजीएचएस वेलनेस सेंटर को 27 से 31 अगस्त तक बंद रखने का नोटिस का खंडन किया है। मंत्रालय ने कहा कि यह नोटिस झूठा है और अनाधिकृत है। सभी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर अपने निर्धारित कार्य समय के अनुसार कार्य करेंगे। मंत्रालय ने लाभार्थियों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक सीजीएचएस चैनलों के माध्यम से जारी की गई जानकारी पर ही भरोसा करें। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रुपए की सुनिश्चित आय देने का दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह वीडियो फर्जी है और AI से तैयार किया गया है। इकाई ने स्पष्ट किया कि वित्त मंत्री ने ऐसी

0: किसी निवेश योजना या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। जांच इकाई ने लोगों से ऐसे जालसाजों से सावधान रहने की अपील की है जो फर्जी योजनाओं का लालच देकर लोगों को ठगने और उनका पैसा हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उड़ीसा में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कई इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है।
1: उड़ीसा में एक बार फिर बारिश होने की संभावना है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बने नए मौसम से बारिश बढ़ने की उम्मीद है। IMD भुवनेश्वर ने कई जिलों में हल्के से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया है और ये बारिश का दौर आने वाले हफ्ते तक जारी रहने की संभावना है। आज केंदुझर, मयूरभंज, कालाहांडी और नवरंगपुर के लिए भारी बारिश की येलो वार्निंग जारी की गई है, जबकि 24 और 25 तारीख को केंदुझर और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग का अनुमान है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू शेंगशू और टैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। और FIH हॉकी पुरुष विश्व कप में भारत का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड ने 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले राउंड के 3 मैचों में भारतीय टीम ने 2 जीत और 1 हार के साथ दूसरे राउंड में जगह बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की, संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with office bearers of the BJP in New Delhi, stresses on strengthening organization and deepening connect with the people. Center announces high-level committee to resolve Gorkha issue after Home Minister holds high-level meeting with senior Gorkha leaders in Siliguri. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says India-Bangladesh ties have to be based on mutual interests. BJP to launch month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan to mark Prime Minister Modi's birthday to highlight his commitment to public service. BRICS youth ministers adopt joint statement to expand opportunities for young people in education, skills, entrepreneurship, innovation and social development. In Odisha, fresh weather system over Bay of Bengal to enhance rainfall activity, raising concerns for flood-hit districts. And in BWF Badminton World Championships, Indian women's doubles pair of Trisha Jolly and Gayatri Gopichand clinches historic bronze medal. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi this evening. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's national vice presidents and general secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed National Office Bearers,

श्रोताओं नमस्कार, माह अगस्त की विज्ञान पत्रिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विज्ञान, जिज्ञासा से समाधान तक की यात्रा। श्रोताओं, अगस्त का महीना हमारे लिए स्वतंत्रता, संकल्प और नव निर्माण का संदेश लेकर आता है। आज जब हमारा देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तब ये आवश्यक है कि वैज्ञानिक सोच केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रहे, बल्कि हमारे दैनिक जीवन और समाज का अभिन्न हिस्सा बने। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लेकर जैव प्रौद्योगिकी तक, विज्ञान की दुनिया तेजी से बदल रही है। इन उपलब्धियों के साथ नई संभावनाएं तो जन्म ले ही रही हैं, लेकिन नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। जलवायु परिवर्तन, खाद्य एवं जल सुरक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण आज पहले से कहीं अधिक जरूरी है। आसमान को देखकर कभी न कभी हमारे मन में ये सवाल जरूर उठा होगा, इन तारों के पार क्या है। मानव की इसी जिज्ञासा ने उसे धरती से अंतरिक्ष तक पहुंचाया, और इसी माह अगस्त की 23 तारीख को हम मनाते हैं अंतरिक्ष दिवस, जो कि केवल भारत के नहीं विश्व के समस्त वैज्ञानिक हलकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस अंक में हमारा प्रयास है कि विज्ञान के जटिल विषयों को सरल, सहज और रोचक भाषा में आप तक पहुंचाया जाए। हमारा विश्वास है कि वैज्ञानिक चेतना का विस्तार ही एक जागरूक, तर्कशील और आत्मनिर्भर समाज की मजबूत नींव है। रेडियो की आवाज दूर दराज के गांवों को लेकर महानगरों तक पहुंचती है, इसलिए विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आइए सवाल पूछें, तथ्यों को परखें और अंधविश्वास के स्थान पर वैज्ञानिक सोच को अपनाएं, क्योंकि विज्ञान केवल भविष्य की खोज नहीं बल्कि बेहतर भविष्य के निर्माण का माध्यम भी है। आज की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका में हम आपको सुनवाएंगे एक भेंट वार्ता, 150 सालों की वैज्ञानिक विरासत। इस साक्षात्कार में प्रतिभागी होंगे प्रोफेसर शेखर सी मांडे। हम आपको सुनवाएंगे एक और बातचीत, रोबोटिक

0: और कृत्रिम मानव, हमारे कृत्रिम प्रतिरूप और भविष्य की संभावनाएं। इसमें प्रतिभागी होंगे प्रोफेसर रविंद्र धर। एक और भेंटवार्ता श्रोताओं हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जीन थेरेपी, जीन एडिटिंग, चुनौतियां, संभावनाएं, नैतिकता और हमारी सीमाएं। इस साक्षात्कार में प्रतिभागी होंगे प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव। क्वांटम कंप्यूटिंग, भविष्य की तकनीकी क्रांति, ये विषय होगा एक और बातचीत का। इसमें हमारे साथ होंगे प्रोफेसर आशुतोष शुक्ला। इसके अलावा हम बातें करेंगे विज्ञान जगत की और अगस्त माह क्यों विशेष है हमारे इस संपूर्ण विज्ञान जगत के लिए, इस पर भी बातें करेंगे और कुछ विज्ञान समाचार। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं हमारी विशेष बातचीत 150 सालों की वैज्ञानिक विरासत। प्रतिभागी हैं प्रोफेसर शेखर सी मांडे और आपसे बातचीत कर रहे हैं दिलीप झा।
1: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर शेखर सी मांडे जी, वर्तमान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एकेडमी के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो इंस्टीट्यूट है इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, किस किस तरह के वैज्ञानिक अनुसंधान यहाँ से उत्पन्न हुए और वैज्ञानिक यहाँ से जुड़े रहे, और अभी जब हम बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ साइंस की तो भारत में ये क्यों जरूरी हो जाता है, खास करके हमारे विकसित भारत के लक्ष्य को देखते हुए।
2: जैसा कि आप जानते हैं 18वीं और 19वीं सदी में हमारे देश पर प्रदूषियों का राज था। उसी वक्त ये भी हुआ था पूरे विश्व में कि विज्ञान और तंत्रज्ञान के माध्यम से हर जगह एक बहुत बड़ी क्रांति आई थी, औद्योगिक क्रांति हम जिसे कहते हैं, वो उसी समय पे आई थी। लेकिन जो कि हम लोगों पर अंग्रेजों का राज था, हमारे देश को ज्यादातर बड़े स्तर पे विज्ञान और तंत्रज्ञान की प्रगति में वंचित किया गया था। और ये जानते हुए हमारे देश में कई सारे ऐसे प्रमुख व्यक्तियां जो थी उन्हें काफी दुख हो रहा था कि ऐसा ना हो कि भारत दुनिया से पिछड़ जाए क्योंकि हमें वंचित किया गया है विज्ञान की प्रगति से। उस समय जैसे कि आप शायद जानते हो कि बंगाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसे रिनायस सा कहते हैं बंगाल का, उसमें काफी सारी प्रमुख व्यक्तियों उभर कर आई थी हमारे देश के सामने में, बहुत बड़ी बड़ी व्यक्तियों का उसमें उल्लेख किया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी है, सब लोग, ये एक बंगाल रिनायस जो था उसके प्रमुख व्यक्ति थे। उसी में एक अग्रेसर नाम जो है वो डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार जी का है, और महेंद्रलाल सरकार जी रामकृष्ण परमहंस जी के निजी चिकित्सक थे, मेडिकल डॉक्टर थे। और महेंद्रलाल सरकार जी के मन में भावना थी कि हमारे देश में भी विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी संस्थाएं होना जरूरी है जहां पे कोई भी आके अपने मन में जो कोई प्रश्न है अपने सृष्टि के बारे में या कुछ भी, और उसके लिए विज्ञान का सहारा लेते उस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहे तो वहां पे काम कर सकते हैं। इसी स्वदेशी भावना से महेंद्रलाल सरकार जी ने 29 जुलाई 1876 में एक संस्थान का स्थापन किया जिसे हम लोग इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के नाम से जानते हैं। और जैसे कि 1876 और 8 तो 150 वर्ष हाल ही में इस संस्थान के पूरे हुए हैं, और बहुत ही गौरवशाली समय ये रहा है भारत के इतिहास में 150 वर्षों का।
1: निश्चित रूप से, क्योंकि जब ये संस्थान बनाया गया था तो इसे कहा गया था कि ये भारतीयों द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा शोध संस्थान है जो आधुनिक विज्ञान की खेती यानी कि संवर्धन एवं मौलिक अनुसंधान के लिए बनाया गया है, और उसके प्रतिफल में रमन प्रभाव दिखाई दिया दुनिया को, और जिसके लिए भारत के प्रथम वैज्ञानिक सर सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जो रमन इफेक्ट का जब उन्होंने पता किया स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो उस समय बहुत कम संसाधनों से इस पर खोज की गई थी विश्व के अन्य देशों के जो लेबोरेटरी थे उसकी अपेक्षा, और बाद में इसके क्या दूरगामी परिणाम हुए इस खोज के बाद।
2: जैसे कि आपने सही कहा, साइंस का जो सपोर्ट था, इंस्ट्रूमेंट्स थे, इतना सपोर्ट भारत में नहीं था, लेकिन रमन जी ने जी डी बिरला जी को एक पत्र लिखा कि अगर आप मुझे इतना पैसा दोगे तो उसमें से मैं ये इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा, और अगर मैं इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा तो मैं भारत के लिए नोबेल पारितोषिक ले आऊंगा। और जी डी बिरला जी ने रमन पे विश्वास किया और सीवी रमन जी को उन्होंने वो पैसा दिया, रमन जी ने वो इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसके ऊपर रमन जी को नोबेल पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। लेकिन दुर्गामी परिणाम तो ऐसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रमन इफेक्ट आजकल अगर देखे तो उसके उपरांत जो टेक्नोलॉजी बनी है रमन इफेक्ट को लेके काफी सारी है। जैसे कि हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं और हमारा सामान जो स्क्रीन होता है सिक्योरिटी में, वहां पे रमन इफेक्ट से देखते हैं कि सामान में क्या सही में असली चीज है या कुछ गलत चीज हम तो लेने जा रहे हैं साथ में,
1: स्कैटरिंग।
2: तो वो रमन इफेक्ट का काफी हर जगह उसका उपयोग होता है, लेकिन वो रमन के प्रभाव के आधारित ही है सब कुछ।
1: प्रोफेसर मांडे, क्योंकि आप भी संक्रामक रोगों खास करके टीबी के अनुसंधान कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो आज इस तरह की जो समस्याएं हैं, आपको क्या लगता है कि जो अगर प्राथमिकताओं के आधार पर काम करने की आवश्यकता है तो विज्ञान अनुसंधान किस तरह से इस क्षेत्र में अधिक से अधिक योगदान दे सकता है?
2: काफी सारे ऐसे रोग महामारी महामारी हमारे सामने में है, जिसे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस का मतलब ऐसा होता है कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक वो पहुंच सकती है। और कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसे हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जो ऐसी फैलती नहीं है एक आदमी से दूसरे आदमी

0: तक फैलती नहीं है, जैसे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, ये फैलती नहीं है। लेकिन कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलते हैं, जैसे मलेरिया हो, ट्यूबोकुलोसिस हो या फ्लू हो। अगर एक आदमी पीड़ित हो तो उसके अगल बगल में बाकी लोगों को भी वो हो सकता है। और भारत में कई वर्षों में ऐसा देखा गया है कि भारत ने काफी बड़े स्तर पर काम करके कई सारे ऐसे रोगों को बिल्कुल यहां से हटा दिया है। जैसे कि आपने सुने होगा कि अब पोलियो भारत में नहीं रहा, 2014 में भारत ने अपने आप को पोलियो मुक्त देश कहलवाया था। वैसे ही आज के दिन हम लोग करीबन बहुत पास आए हुए हैं, जिसे हम लोग काला आजार से हम लोग मुक्त हो गए ऐसा मानते हैं। एक हमारे आंखों में बीमारी होती है जिसे ट्रेकोमेटिस कहते हैं, उसे भी हम लोग मुक्त होने में है। और अगर देखी जाए तो मलेरिया वगैरह जैसी बीमारी भी काफी स्तर पर गए 10-15 वर्ष में बहुत कम हुई है। तो ये भारत के विज्ञान की अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे कि काफी सारे जो कम्युनिकेबल डिजीजेस है वो कम होते जा रहे हैं भारत में, और इसमें विज्ञान और तंत्रज्ञान का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है।
1: अंत में क्या संदेश देंगे आकाशवाणी के माध्यम से?
0: मैं यही कहना चाहूंगा युवाओं को कि विज्ञान का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आज तक हम लोग हमारे प्रकृति के बारे में, निसर्ग के बारे में, सृष्टि के बारे में जो जानते नहीं है, ऐसे कोई प्रिंसिपल हो, लॉ हो, और अगर उसकी खोज करने की हमारे मन में अगर जिज्ञासा हो, और अगर हम विज्ञान के मार्फत उस जिज्ञासा को, उसका उत्तर खोजने की अगर कोशिश करें, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है।
1: प्रोफेसर शेखर सिंह मांडे जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, जब हम बात करते हैं रोबोट्स की, जब हम बात करते हैं रोबोटिक्स की, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठी और अनोखी दुनिया है। क्या भविष्य हो सकता है, क्या चुनौतियां हैं, क्या नैतिकताएं हैं, इन सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। आइए इस साक्षात्कार में सुनते हैं प्रोफेसर रविंद्र धर, जो कि विभागाध्यक्ष हैं मटेरियल साइंस, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। श्रोताओं नमस्कार, आज हम बात करेंगे रोबोटिक्स की। विकास की ये दौड़, ये हमको कहाँ तक लेकर के जाएगा, किस तरह से हमको, संसार को, मानवता को प्रभावित करेगा, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रविंद्र धर, जो कि अध्यक्ष हैं इस समय डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल साइंस के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। प्रोफेसर रविंद्र धर, आपका प्रयागराज आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में और संक्षेप में ये बताइए कि रोबोटिक्स है क्या, और एक आधुनिक रोबोट के पीछे कौन कौन सी प्रमुख जो तकनीकें हैं वो काम करती हैं।
3: वर्तमान रोबोटिक्स, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप AI कह रहे हैं, हिंदी में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, यौम आधुनिक गैजेट्स से मिलकर बना हुआ है। यह मानव के एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि इसमें कुछ इथिकल इश्यूज आते हैं। अब मानव के विकल्प के रूप में कोई गैजेट डिवाइस, जिसको आपने रोबोटिक्स कहा है, तैयार किया जा रहा है, तो इसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? हमारे मानव में सबसे पहले आते हैं हमारे ज्ञानेंद्रिय, जिनसे हम सेंस करते हैं। तो सेंसर्स में हमारे हो गए आंख, नाक, कान, टच भी कर सकते हैं हाथ से, वो भी हो गया, ये सेंसिंग का काम करते हैं। तो हमारे आर्टिफिशियल जो रोबोटिक्स होंगे, उसमें सेंसर होना चाहिए, जिससे हम आसपास की प्रॉब्लम्स को सेंस कर सकें। सेंसर्स के साथ साथ एक्चुएटर्स होना चाहिए, हमारे हाथ, हमारे पैर, ये सब एक्चुएटर्स हैं जिनसे हम काम करते हैं। तो जब सेंस करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि क्या करना है। ठंड लग रही है तो गर्म जगह पे जाना है, गर्म लग रही है तो ठंडी जगह पे जाना है। अब सेंसर ने जो सेंस किया उसको कम्युनिकेट करना है एक्चुएटर को, और उचित निर्णय भी लेना है। तो इसके लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो मानव में ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उसी तरह से रोबोटिक्स में CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। वो ये बताता है कि ये फीलिंग्स हो रही हैं, अब इसी के हिसाब से आपको एक्शन लेना है एक्चुएटर को। कम्युनिकेशन भी कैसे होगा इनके लिए? मानव में हमारे यहाँ तंत्रिका तंत्र होता है, उसके थ्रू मैसेज भेजा जाता है। तो फाइबर केबल्स यूज किए जाते हैं रोबोटिक्स में। तो इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं मॉडर्न रोबोटिक्स के।
2: अपनी भाषा में, जिसे हम सहज विवेक कहते हैं, ये कैसे आप किसी मशीन में डाल सकते हैं? ये इतना आसान है क्या?
3: बिल्कुल। हम भी क्या करते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करते हैं, और उसको अपने लॉजिक के हिसाब से, जिसको विवेक आप कह रहे हैं, वो निर्णय लेता है। वही विवेक एल्गोरिदम के थ्रू रोबोट्स के अंदर डेवलप किए जाते हैं। वही इम्पोर्टेंट बात होती है, प्रोसेसिंग, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है।
2: एक प्रश्न सर और आता है, आज का जो, अगर हम यूथ की बात करें, युवा की बात करें, तो एक बहुत बड़ी समस्या देखने में आ रही है, डिप्रेशन, अकेलापन या अवसाद। क्या कोई ऐसा रोबोट हमने तैयार अभी तक किया है, कर पाए हैं या कर पाएंगे क्या कि जिस इमोशनल इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे थे, जो उस व्यक्ति को भी एक सांत्वना या एक साथ प्रदान कर सके जिसको साथ की जरूरत है।
3: अभी एग्जैक्टली तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो बिल्कुल मदर का सब्स्टिट्यूट हो सके, फादर का सब्स्टिट्यूट हो सके, वो तो जगहें अभी भी आवश्यक हैं। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में उस डायरेक्शन में कुछ काम हो रहा है। अभी भी फ्रस्ट्रेशन रिमूवल बॉक्स

0: फॉरेन में तैयार होने शुरू हुए हैं। कई बार आदमी जब फ्रस्ट्रेट होता है तो क्या करता है, अपने कोलीग पर गुस्सा उतारता है, तेजी से चीखना चिल्लाना शुरू करता है। तो वहाँ पे कुछ इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि वो जा करके अपना फ्रस्ट्रेशन खत्म करे। तो तमाम तरीके की चीजें डेवलप की गई वहाँ पे।
1: जी जी,
0: लेकिन अभी ये बहुत कम है। अभी तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का केवल बना है, तो वन साइडेड है। दूसरी तरफ से भी सांत्वना आनी चाहिए,
1: बिल्कुल
0: वो करना होगा, लेकिन वो थोड़ा सा भी काफी दूर।
1: चलते चलते प्रोफेसर रविंद्र धर, हमारे माध्यम से हमारे श्रोताओं से कुछ अपील करना चाहें या संदेश देना चाहें।
0: हमारी अपील तो यही है कि इंडिया को विकसित देश अगर बनाना है तो पहली बात तो ये है, यहाँ के युवाओं को नियम कानून पहले सीखना पड़ेगा, टाइम का महत्व सीखना पड़ेगा कि हम कैसे टाइम के अनुसार सब चीजें करें, जो नियम कानून है उसको कैसे फॉलो करें। बड़ा कष्ट होता है जब मैं देखता हूँ कि ट्रैफिक पे सिग्नल लोग खूब तोड़ते हैं। इलाहाबाद जैसी जगह पे अगर हम ये सिखा ले जाएं कि नहीं भाई ट्रैफिक का आनर करिए, जो विदेशों में होता है खूब होता है। मजाल क्या है कि सिग्नल अगर रेड हो गया तो कोई भी आदमी, वहाँ कोई ट्रैफिक पुलिसमैन की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप लोग फॉलो करते हैं। तो रोबोट अगर रहेंगे और रोबोट को खड़े कर दिए जाएं या रोबोटिक से कुछ वहाँ पे डिवाइसेस डेवलप कर दिए जाएं तो कंट्रोल भी करना बड़ा आसान हो जाएगा लोगों को। तो हम रोबोट्स के पॉजिटिव साइड देखें।
1: श्रोताओं, ये थे प्रोफेसर रविंद्र धर, जिनसे हम बात कर रहे थे रोबोटिक्स के ऊपर, रोबोटिक्स के भविष्य के ऊपर, रोबोटिक्स के वर्तमान के ऊपर। आइए इस कार्यक्रम में अब आगे आपको लेकर के चलते हैं एक ऐसे विषय पर जिसने मानव को दो कदम आगे खड़ा कर दिया है। जी हाँ, हम बात करेंगे जीन थेरेपी या जीन एडिटिंग की। क्या है इसमें चुनौतियाँ, क्या है संभावनाएं और क्या है हमारी सीमाएं, इस पर जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव, जो कि लाइफ साइंसेज मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव, आपका आकाशवाणी प्रयागराज के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
0: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बहुत सरल भाषा में बताइए कि ये जीन एडिटिंग क्या है और किसी जीव के डीएनए में कैसे बदलाव कर सकते हैं।
0: हर जीवाणु या हर ऑर्गेनिज्म जो है सेल से बना हुआ है और उस सेल के अंदर एक अनुवांशिक तत्व जिसे हम डीएनए भी बोलते हैं वो होता है। डीएनए जो है वो हर अलग अलग साइज का हो सकता है ऑर्गेनिज्म के हिसाब से। जो भी जीवाणु की बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करें तो डीएनए का साइज जो है ह्यूमन जीनोम का करीब 3 बिलियन बेसिस का है। 3 बिलियन बेसिस का मतलब ये है कि अगर आप एक पेज पे अल्फाबेट्स लिख रहे हैं और 3000 अल्फाबेट्स अगर एक पेज पे आप लिख पा रहे हैं तो आप उसकी अगर किताब बनाते हैं तो करीब 1 मिलियन पेजेस या 10 लाख पेजेस की वो बुक बनेगी। तो इतना बड़ा जीनोम होता है ह्यूमन का। अलग अलग जीवाणियों का अलग अलग जो है तरह का जीनोम हो सकता है। डीएनए जो है कुल 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस से बना है, एडेनिन, थाइमिडीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो यही 4 तरह के जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इनका एक सीक्वेंस जो है वो जीनोम बनाता है किसी भी जीव का। ये जीनोम जो है वो कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स है। किसी भी जीव के अंदर कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स को हम जीनोम बोलते हैं। तो अब इसमें हमें समझ पाना कि हाँ कौन सा जीन कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, बहुत मुश्किल है और केवल ATGC से कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन जो सेल है वो इससे एक सेंस बना लेता है क्योंकि इस सीक्वेंस में भी कहीं कॉमा कहीं फुल स्टॉप लगे हुए हैं। वो कॉमा फुल स्टॉप डिसाइड करते हैं कि कौन सा जीन जो है कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है। और हर जीन किसी न किसी प्रोटीन को बनाता है और वो जो है उस सेल के लिए काम करते हैं। जब हम बात करते हैं एडिटिंग की तो उस किताब में से कोई एक लेटर आपको अगर हटाना है तो मूलतः जो है हम जीनोम एडिटिंग या जीन एडिटिंग में हम यही करते हैं।
1: क्या एक लेटर हटा करके पूरी किताब का मतलब बदल सकता है?
0: हाँ, एक लेटर भी कभी कभी बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यही ये लेटर्स का जो सीक्वेंस होता है वो किस तरह का प्रोटीन बनाएगा वो डिसाइड करता है। अगर एक लेटर भी चेंज होता है तो उस प्रोटीन का सीक्वेंस चेंज हो जाता है जिससे उस प्रोटीन की जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाती है।
1: कौन सी ऐसी असाध्य बीमारियां हैं जिनका इलाज जीन एडिटिंग के माध्यम से किया जा सकता है?
0: देखिए, जीन एडिटिंग यूज करके आप बहुत तरह के असाध्य रोगों का इलाज किया जा सकता है। इसमें हेमोफीलिया हो गया, बीटा थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बहुत तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो कि किसी जीन के खराब होने की वजह से हो रही हैं। तो ये सारी बीमारियां जो हैं जीन एडिटिंग यूज करके आप उनको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारी को भी जो है जीन एडिटिंग से ठीक किया जा सकता है। और जीन एडिटिंग से केवल बीमारियां ही नहीं, नए नए तरह के फसल भी तैयार किए जा सकते हैं, केवल हेल्थ के ही फील्ड में नहीं, इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर और बहुत अलग अलग तरह की फील्ड्स में भी जो है इनका इस्तेमाल किया जा रहा है।

0: प्रोफेसर, हम बात कर रहे हैं जीन की गड़बड़ियों के ऊपर जो आप सुधारते हैं जिनको, ये होती कैसे हैं?
1: देखिए, दो तरह के ये चेंजेस होते हैं। एक तो ये चेंजेस जो हैं फैमिली में ही हैं, जैसे कि आपने रॉयल फैमिलीज के बारे में सुना होगा इंग्लैंड की, कि उसमें एक हीमोफीलिया करके एक इनहेरिटेड डिजीज है जिसमें की ब्लीडिंग अगर हो रही है तो वो क्लॉट नहीं करता है। तो ये फैमिली में ही चल रहा है वो। तो ऐसे भी ये चेंजेस हो सकते हैं, जो बॉडी है उसमें जो सेल्स है वो भी डिवाइड करते रहते हैं। सेल डिविजन में भी जो है बहुत तरह के एरर्स होते हैं, क्योंकि डिवीजन में आप सोच सकते हैं कि 3 बिलियन सीक्वेंस है। इन 3 बिलियन सीक्वेंस को जब डिवीजन हो रहा है तो जो डॉटर सेल बन रही है उसमें वो एग्जैक्टली कॉपी होना चाहिए वो पूरा का पूरा सीक्वेंस। कभी कभी क्या होता है कि सेल डिवाइड हो रही है तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जब डीएनए का सिंथेसिस होता है, तो कभी कभी उसमें भी एरर आ सकता है। तो उस एरर को ठीक करने के लिए भी सेल के पास पूरा तंत्र होता है, रिपेयर मैकेनिज्म। लेकिन मान लीजिए उस गड़बड़ी को ठीक नहीं कर पा रहा है, तो मतलब कि एक सेल ऐसी बन गई जो कि खराब है, पहले से उसमें चेंज आ गया। तो अब वो चेंज, अगर गड़बड़ चेंज है, किसी ऐसी जगह हुआ है जो कि किसी डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कैंसर जो है मूलतः ऐसे ही शुरू होता है बहुत सारे केसेस में, कि किसी ऐसे इंपॉर्टेंट जीन में चेंज हुआ जो कि जरूरी था कि वो सही रहे वो जीन। अब वो जीन खराब होने की वजह से जो है वो सेल कैंसरस होती गई। अब ये भी जो है ये कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे ये चेंज हो रहा है।
0: तो श्रोताओं, ये थे प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव जो जानकारी दे रहे थे जीन एडिटिंग या जीन थेरेपी के ऊपर। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, भविष्य की तकनीकी या नई वैज्ञानिक क्रांति, इस पर जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर आशुतोष शुक्ला जो कि जुड़े हुए हैं भौतिकी विभाग इविंग क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज से। प्रोफेसर आशुतोष कुमार शुक्ला, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत धन्यवाद।
0: क्वांटम कंप्यूटर्स, हम सिर्फ कंप्यूटर्स जानते थे, वो कंप्यूटर्स जिनमें एक मॉनिटर होता था, एक सीपीयू होता था, एक कीबोर्ड होता था और एक यूपीएस होता था।
2: हाँ, बिल्कुल।
0: ये क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है और ये पारंपरिक कंप्यूटिंग से किस तरह से अलग है, संक्षेप में हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: देखिए, ऐसा है कि हम अगर कहें कि क्वांटम कंप्यूटिंग इंसानों की कुछ सबसे मुश्किल समस्याओं को हल करने के लिए अभूतपूर्व कंप्यूटिंग क्षमताएं लेकर आई है, और ये ऐसा कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से उभरती हुई एक नई डेटा प्रोसेसिंग तकनीक है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम मैकेनिक्स के बुनियादी सिद्धांतों पर काम करते हैं और इसी वजह से जो क्लासिकल कंप्यूटर है उससे कहीं ज्यादा क्षमताएं हैं, और बहुत ज्यादा क्षमता वाले ये क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं।
0: क्वांटम का मतलब क्या होता है डॉक्टर साहब?
2: देखिए, अगर हम शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो क्वांटम का मतलब है, जैसे ऊर्जा के क्वांटीकरण की बात करें तो ऊर्जा किस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स में होती है, तो वहां से यह शब्द क्वांटम लिया गया है।
0: जरूरत क्या पड़ी इसकी? क्या सामान्य जो हमारे कंप्यूटर्स थे वो उस प्रकार से काम नहीं कर पा रहे थे?
2: अब देखिए, जब भी नई तकनीक आती है तो उसके पीछे ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो समस्याओं का वांछित रूप से समाधान प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं। यानी आवश्यकता ही आप कह सकते हैं कि आविष्कार की जननी है। तो जब आवश्यकता हुई तब देखा गया, जब हमारे पास इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस की बात है, जैसे आप किसी भी सेक्टर की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, ये सब अपने आप में बहुत जटिल कैलकुलेशंस पर आधारित होते हैं। तो इन जटिल कैलकुलेशंस तक पहुंचने के लिए क्लासिकल कंप्यूटिंग से काम नहीं चलने वाला है, और यहीं से इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि अब क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित क्वांटम कंप्यूटर्स की जरूरत है।
0: ये क्वांटम सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट क्या है, इनका क्या महत्व है क्वांटम कंप्यूटिंग में?
2: बहुत अच्छी बात की आपने, पर उससे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग में तेज गति और पैरेलल प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं वो कहां से आ रहा है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम स्टेट्स का इस्तेमाल करके बड़े डेटा वॉल्यूम के मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग को बेहतर बनाते हैं। ये जो क्षमता है यही सुपरपोजिशन से आती है, जिससे क्वांटम कंप्यूटर्स एक साथ कई डेटा सेट्स को मैनेज कर पाते हैं। इसके अलावा इंटेंगल्ड क्यूबिट्स यानी एक दूसरे से संलग्न क्यूबिट्स जो हैं, वो जटिल डेटा संबंधों को स्टोर और ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये क्लासिकल सिस्टम की क्षमताओं से कहीं ज्यादा है, और क्वांटम इंफॉर्मेशन स्टोरेज जो है वो क्वांटम एल्गोरिदम को चलाने में मदद करता है, जिससे बड़े पैमाने पर सिमुलेशन, जैसे मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन का सिमुलेशन और बड़े सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना बहुत ज्यादा कुशलता से हो जाता है।
0: आज का दौर एक AI का दौर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दौर, और एक तरह से अगर

0: क्यूबिट्स को डिजाइन करने से लेकर क्वांटम एल्गोरिदम तैयार करने, डिवाइस को कंट्रोल और कैलिब्रेट करने, रियल टाइम में गलतियों को ठीक करने और क्वांटम कंप्यूटिंग से मिलने वाले आउटपुट को समझने तक हर चीज में बड़ी भूमिका निभा सकता है।
1: डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने कहा था कि पेड़ों में जीवन होता है।
0: बिल्कुल,
1: हम
0: बिल्कुल।
1: इतनी भारी भरकम क्वांटम कंप्यूटिंग की बातें कर रहे हैं, कोई पेड़ अगर ये बातें सुन रहा होगा तो उसके मन में क्या विचार आ रहा होगा?
0: बहुत बड़े पैमाने पर संसाधनों का इस्तेमाल होता है तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात करते हैं, यानी पर्यावरण के ऊपर असर पड़ रहा है। देखिए, वो बोल नहीं पा रहा है, वो एक उसकी कैपेसिटी नहीं है तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो न बोल करके भी अगर वो प्रकृति का घटक अगर घुट रहा है तो उसको हम ही को भोगना पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली फिर हम उससे प्रभावित होंगे। तो ये आप कह सकते हैं एक बड़ी चुनौती है, विकास के साथ साथ और भी चीजें जुड़ी हुई हैं।
1: बिल्कुल। तो ये थे प्रोफेसर आशुतोष शुक्ल जो हमें जानकारी दे रहे थे क्वांटम कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। आइए अब बातें करते हैं विज्ञान जगत की और विज्ञान समाचारों की। अगस्त माह में ऐसे कौन से विशिष्ट वैज्ञानिक व्यक्तित्व थे जो जन्मे, जो दिवंगत हुए, और प्रमुख वैज्ञानिक घटनाएं?
2: श्रोताओं, अगस्त 2026 में भारत और विश्व से विज्ञान की दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण और रोचक प्रगति पर एक संक्षिप्त नजर डालते हैं। भारत से भारतीय वैज्ञानिकों ने बंगाल की उत्तरी खाड़ी के ऊपर 21 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की असामान्य रूप से अधिक मात्रा वाली परत का पता लगाया। ये परत एक दिन से अधिक समय तक बनी रही। अध्ययन के अनुसार इसका संबंध ओजोन समृद्ध हवा के क्षैतिज परिवहन और नीचे की ओर वायुमंडल गति से था। इसमें एरीज यानी कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, नैनीताल के स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर रडार सहित रडार, मौसम गुब्बारों, उपग्रहों और वायुमंडलीय मॉडलों का प्रयोग किया गया। अगली खबर न्यूक्लिक एसिड्स रिसर्च में प्रकाशित। भारत में वैज्ञानिकों ने ACSC-END नाम का मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क विकसित किया है जो ट्यूमर जीन एक्सप्रेशन डेटा से कैंसर स्टेम लाइक सेल्स की अवस्थाओं की पहचान में मदद करता है। 25,000 से अधिक ट्यूमर प्रोफाइल्स के विश्लेषण में इन कोशिकाओं की अधिक उपस्थिति को कम डिजीज फ्री सर्वाइवल, ट्यूमर रिकरेंस और इम्यूनोथेरेपी के कमजोर रिस्पॉन्स से जोड़ा गया। ये AI स्वयं कैंसर का उपचार नहीं बल्कि जेनोमिक डेटा सेट्स में महत्वपूर्ण जैविक संकेतों की पहचान का माध्यम है। ये प्रिसिजन मेडिसिन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विश्व से बात करें तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने MOMBH1 नाम की अत्यंत दूरस्थ वस्तु का अध्ययन किया जिसका प्रकाश उस समय का है जब ब्रह्मांड लगभग 66 करोड़ वर्ष पुराना था। इसके केंद्र में घने गैस आवरण से घिरे एक बहुत बड़े ब्लैक होल के संकेत मिले हैं। ये जानकारी ब्रह्मांड में विशाल ब्लैक होल्स के निर्माण को समझने में महत्वपूर्ण हो सकती है। तो विज्ञान जगत की इन खबरों में कहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कभी जेनोमिक एनालिसिस है, कहीं सूर्य और स्पेस वेदर का अध्ययन तो कहीं ब्रह्मांड के आरंभिक ब्लैक होल्स। विज्ञान की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है, हर नई खोज हमारी जानकारी बढ़ाती है और नए प्रश्न भी सामने लाती है। अब अगस्त माह से जुड़े उन महान वैज्ञानिकों को याद करते हैं जिनके कार्यों ने विज्ञान की दिशा पर गहरा प्रभाव डाला। 2 अगस्त 1861 को आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म हुआ। आधुनिक भारतीय रसायन विज्ञान के अग्रदूतों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना की और अ हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री लिखी। 7 अगस्त 1925 को MS स्वामीनाथन का जन्म हुआ। प्लांट जेनेटिक्स और क्रॉप ब्रीडिंग में उनके कार्यों ने भारत की हरित क्रांति और खाद्य सुरक्षा को वैज्ञानिक आधार दिया। बाद में उन्होंने टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि पर भी काम किया। इनके योगदानों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। 8 अगस्त 1902 को पॉल डिराक का जन्म हुआ। उनकी डिराक इक्वेशन ने क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेशल रिलेटिविटी को जोड़ने तथा एंटी मैटर की सैद्धांतिक संभावना समझने का मार्ग दिया। 1933 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। उनके सम्मान में दिए जाने वाला डायरेक्ट मेडल भी सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र का प्रतिष्ठित सम्मान है। और हाल ही में वर्ष 2026 का ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत के प्रख्यात सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी एवं IIT कानपुर के पूर्व छात्र प्रोफेसर दीपक धर को सांख्यिकीय भौतिकी में उनके मौलिक योगदान के लिए प्रदान किया गया और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। 12 अगस्त 1919 को डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म हुआ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख वास्तुकारों में उनका अग्रणी स्थान है। उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान को संचार, मौसम, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास से जोड़ने की दूरदृष्टि प्रदान की और इनको भी भारत सरकार ने पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो कि उनको मरणोपरांत दिया गया उससे सम्मानित किया गया। 21 अगस्त 1995 को महान एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यन चंद्रशेखर का देहावसान

0: तारों की संरचना और विकास पर उनके मौलिक कार्य तथा चंद्रशेखर लिमिट ने व्हाइट ड्वार्फ्स के अध्ययन को नई दिशा दी। 1983 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रसायन विज्ञान, कृषि, अंतरिक्ष विज्ञान, तारकीय भौतिकी और न्यूक्लियर फिजिक्स, अगस्त हमें विज्ञान के इन विविध क्षेत्रों के महान वैज्ञानिकों को स्मरण करने का अवसर देता है। इन सभी वैज्ञानिक यात्राओं में एक भावना समान थी, जिज्ञासा। यही जिज्ञासा प्रश्न पैदा करती है, प्रश्न अनुसंधान को जन्म देते हैं और अनुसंधान मानव ज्ञान को आगे बढ़ाता है।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती। जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा हमारा ये अंक आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र का अंशदान था। वाचन अंजलि श्रीवास्तव और अभिनव प्रज्ञ पांडे, प्रस्तुति अभिनव प्रज्ञ पांडे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाएगा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करने पर बल दिया है। नोएडा में एक लैब का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह शहरों की संख्या बढ़ रही है उसी के अनुरूप देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार होना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक मेडिकल इमेजिंग, डीएनए जांच, जीनोमिक्स, डिजिटल पैथोलॉजी और डेटा आधारित स्वास्थ्य सेवाएं बीमारियों की जांच और उपचार के तरीके को तेजी से बदल रही है। उन्होंने बताया कि सरकार सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में भी नई तकनीक को शामिल कर रही है।
2: जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना ही होगा। हमारा लक्ष्य केवल बीमारी के सामने आने के बाद ट्रीटमेंट तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। फ्यूचर के हेल्थ केयर सिस्टम को प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, रिस्क असेसमेंट और पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर पर अधिक ध्यान देना होगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रुपये के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रुपये की सुनिश्चित आय देने का दावा किया जा रहा है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियो शेंगशू और टैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi this evening. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's national vice presidents and general secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed national office bearers. The BJP president said the BJP team is committed to working with full dedication and devotion for expanding the base of the party to realize the resolve of Prime Minister Narendra Modi to make India a developed nation. Mr. Nitin Naveen informed that during the meeting, the BJP also passed a resolution regarding the honour and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In the resolution, the party has condemned and unequivocally opposed the decision taken by the Congress Working Committee on the 19th of this month to reaffirm its 1937 resolution restricting the singing of Vande Mataram to its first two stanzas at Congress programmes. The party also resolved to uphold the honour, dignity, legacy and national status of the complete Vande Mataram as the national song of India, as an immortal symbol of the country's national consciousness and freedom struggle. Union Home Minister Amit Shah held an important meeting with senior Gorkha leaders in Siliguri, West Bengal today. After the meeting, a decision was made to form an intermediary committee headed by former IPS officer Pankaj Singh to solve all the problems permanently in connection with the hills in North Bengal. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said India-Bangladesh ties must be based on mutual respect. Speaking at the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi today, he said for any relationship to work, it has to meet the test of mutual interest. India wants positive, constructive and forward-looking relations with Bangladesh based on mutuality of interests and reciprocity.
4: For any relationship to work, it has to meet the test of mutual interest. It has to work for them, it has to work for us. There has to be a fair degree of my recognizing and respecting what is their interest, just as I expect them also to do so. It is when you get that landing point, that common ground, that relationships work smoothly.
3: The External Affairs Minister also described Pakistan as a unique country in the world, as there is no other nation that uses terrorism so systematically and in a sustained manner to attack and put pressure on a neighbour. Defence Minister Rajnath Singh has emphasised the integration of healthcare with modern technology. Speaking after inaugurating a lab facility in Noida today, Mr. Singh said as the number of cities grows, healthcare infrastructure should also expand accordingly. He said the country has witnessed significant expansion of medical facilities over the past 12 years. Mr. Singh said technologies including artificial intelligence, advanced medical imaging, molecular diagnostics, genomics, digital pathology and data-driven healthcare are transforming disease diagnosis and management. The United States has imposed 50% tariffs on $20 billion worth of Canadian products. The tariffs came into effect early today. Canada immediately said it would retaliate after failure of last-minute talks to ease tensions between the two historical allies. The new U.S. tariffs will affect about 5% of Canada's annual exports to the United States. Canadian Prime Minister Mark Carney said Canada would match the tariffs dollar for dollar. Odisha is facing the prospect of another spell of widespread rain, even as floodwaters are yet to fully recede from several affected areas. The Indian Meteorological Department has forecast rainfall across the state over the coming days, with heavy to very heavy rain likely in parts of northern Odisha. India's Teresa Jolly and Gayatri Gopichand have etched their names in history by clinching the bronze medal at the BWF Badminton World Championships. They have become only the second Indian women's doubles pair to win a World Championship medal, following in the footsteps of Jwala Gutta and Ashwini Ponnappa. And with that, we end this news bulletin.
5: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। ब्रिटिश सांसदों ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में हो रही हिंसा रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया। अमरीका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के 20 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। कनाडा ने जवाबी कार्रवाई की बात कही। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी तिरसा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को विश्व का एक अनूठा देश बताया, क्योंकि कोई अन्य राष्ट्र अपने पड़ोसी पर हमला करने और दबाव डालने के लिए आतंकवाद का इतने व्यवस्थित और निरंतर तरीके से उपयोग नहीं करता है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के पहले कैथोलिक संघीय मंत्री और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक शहबाज भट्टी की हत्या के 15 वर्ष बाद भी ईसाई, हिंदू और अहमदिया सहित अल्पसंख्यक समुदाय देश भर में भेदभाव और धार्मिक स्थलों पर हमलों का सामना कर रहे हैं। अमरीकी मीडिया संस्थान PJ मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों में अपहरण, जबरन धर्मांतरण और बाल विवाह शामिल हैं। शहबाज भट्टी की हत्या 2 मार्च 2011 को इस्लामाबाद में कर दी गई थी। उन्होंने पाकिस्तान के शनिंदा कानूनों के मुखर विरोध के कारण अपनी जान गंवाई थी। रिपोर्ट के अनुसार भट्टी की हत्या से 2 महीने पहले पंजाब के तत्कालीन गवर्नर सलमान तासीर ने की भी हत्या कर दी गई थी। 70 से अधिक ब्रिटिश सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। सांसदों ने पाकिस्तानी सेना के अत्याचार को रोकने और नागरिकों के जीवन की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। एक रिपोर्ट।
6: ये अपील पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में सैकड़ों लोगों की मौत की खबर के बाद आई है। क्षेत्र में सख्त

0: नाकाबंदी, कर्फ्यू और संचार बंद है। सांसदों ने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने, जवाबदेही तय करने और शांतिपूर्ण समाधान के लिए निरंतर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जरूरी हैं। सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तानी अधिकारियों पर मनमानी गिरफ्तारियां रोकने, उचित कानूनी प्रक्रिया और कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा स्वतंत्र मानवाधिकार पर्यवेक्षकों को क्षेत्र में पहुँच देने के लिए दबाव बनाने की भी अपील की है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: यूक्रेन में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार ये हमले मध्य यूक्रेन में एक शॉपिंग सेंटर पर रूसी हमले के एक दिन बाद हुए हैं। इन हमलों में 16 लोगों की मौत हुई थी और 130 लोग घायल हुए थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके बलों ने रेल इंजन डिपो को निशाना बनाया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक के अंत में ब्रिक्स युवा मंत्रियों का संयुक्त वक्तव्य अपनाया गया। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास के क्षेत्र में युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त वक्तव्य में शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल, युवा उद्यमिता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और खेल, पर्यावरण और सतत विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी, स्वयं सेवा, गरीबी उन्मूलन, अंतर धार्मिक संवाद और युवा समावेशन सहित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवाओं को भविष्य को आकार देने में भागीदार होना चाहिए। बैठक में निर्णय लेने की प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने, युवा नेतृत्व वाले पहलों को मजबूत करने, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने और सीमा पार युवा आदान प्रदान को विस्तारित करने पर चर्चा हुई। विजयवाड़ा से अलु मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: अमेरिका ने 20 अरब डॉलर मूल्य के कनाडाई उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ आज तड़के लागू हो गए। अंतिम समय में तनाव कम करने के लिए हुई वार्ता विफल रहने के बाद कनाडा ने तत्काल कार्रवाई करने की बात कही है। एक रिपोर्ट।
3: नए अमरीकी टैरिफ से कनाडा के अमरीका को होने वाला सालाना निर्यात का करीब 5% हिस्सा प्रभावित होगा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि कनाडा भी डॉलर के बदले डॉलर के आधार पर समान टैरिफ लगाएगा। कनाडा ने स्टील, एल्युमिनियम, ऑटोमोबाइल और लकड़ी पर अमरीकी टैरिफ में राहत मांगी, लेकिन अमरीकी प्रशासन ने इन मांगों को मानने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वार्ता विफल होने के लिए अमरीका को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रस्ताव में अंतिम समय में किए गए बदलाव अनुचित और आर्थिक रूप से अव्यवहारिक थे। श्री कार्नी ने कहा कि उन्होंने वार्ता स्थगित कर दी और प्रतिनिधि मंडल को स्वदेश लौटने का निर्देश दिया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: टिकटॉक और उसकी चीनी मूल कंपनी बाइस्टांस ने बच्चों के ऑनलाइन गोपनीयता संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन संबंधी मामलों में 40 करोड़ डॉलर भुगतान की सहमति व्यक्त की है। कंपनी पर अमेरिका में ऐप के माध्यम से बच्चों का डाटा एकत्र करने के मामले में मुकदमा जारी है। अमेरिका के न्याय विभाग ने संघीय व्यापार आयोग की ओर से 2024 में टिकटॉक पर यह मुकदमा किया था। कंपनी पर आरोप है कि उसने 13 वर्ष से कम आयु के लाखों बच्चों को उनके माता पिता की सहमति के बिना खाते बनाने की अनुमति दी। कई वर्षों में पेचिंग स्थित टिकटॉक को अमेरिका में राजनीतिक और नियामक दबाव का सामना करना पड़ा था। राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं ने देश में ऐप के भविष्य को खतरे में डाल दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मतदाताओं के लिए अनिवार्य फोटो पहचान पत्र और नागरिकता प्रमाण पत्र की मांग को दोहराया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री ट्रंप ने इसे नवंबर में होने वाले चुनावों में अमरीकी संसद पर रिपब्लिकन नियंत्रण बनाए रखने के अभियान का प्रमुख मुद्दा बनाया है।
4: दक्षिण कैरोलिना के मर्टल बीच में एक रिपब्लिकन रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने सेव अमेरिका एक्ट पारित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून के तहत प्रत्येक मतदाता को फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा और यह प्रमाणित करना होगा कि वह अमेरिकी नागरिक है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि उनके प्रशासन को इस मुद्दे पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जीत मिली है। हालांकि उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों को स्थायी बनाने के लिए कानून जरूरी है। उन्होंने डेमोक्रेट्स पर इन आवश्यकताओं का विरोध करने का आरोप आरोप लगाया। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का हवाला देते हुए भारत की चुनाव प्रणाली और मतदाता पहचान पत्र की व्यवस्था की प्रशंसा की थी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से जया भारती।
1: अमेरिका में कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने इस वर्ष 8 नवंबर को दिवाली दिवस के रूप में मान्यता देने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया है। प्रस्ताव में देश के लोगों से दिवाली समारोह में शामिल होने का आग्रह किया गया है। प्रस्ताव में कैलिफोर्निया और दुनिया भर में रहने वाले भारतीय अमरीकी और भारतीय प्रवासी समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया है। इसमें कहा गया कि दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और ये संघर्षों पर विजय पाने, सकारात्मक तथा विनम्रता को अपनाने का संदेश देती है। इससे पहले डेलावेयर, न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी और मैसाचुसेट्स सहित कई अमरीकी राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने की विशेष घोषणा की थी। इन घोषणाओं में भारत की स्वतंत्रता, समृद्ध विरासत और विविधता का उल्लेख किया गया था। खेलों में BWF विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू सेंग सू और टेन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। ब्रिटिश सांसदों ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में हो रही हिंसा रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया। अमरीका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के $20 अरब मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। कनाडा ने जवाबी कार्रवाई की बात की और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम रेशमा तिवारी विथ द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says India-Bangladesh ties have to be based on mutual interests. British MPs seek UN intervention to end bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir by Pakistani forces. BRICS youth ministers adopt joint statement to expand opportunities for young people in education, skills, entrepreneurship, innovation and social development. US imposes 50% tariffs on $20 billion worth of Canadian products after trade talks with US fail. Canada says it will retaliate. And in BWF Badminton World Championships, Indian women's doubles pair of Trisha Jolly and Gayatri Gopichand bags historical bronze medal. External Affairs Minister S. Jaishankar has said that India-Bangladesh ties must be based on mutual respect. Speaking at the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi today, he said, for any relationship to work, it has to meet the test of mutual interest. India wants positive, constructive and forward-looking relations with Bangladesh based on mutuality of interest and reciprocity.
6: For any relationship to work, it has to meet the test of mutual interest. It has to work for them, it has to work for us. There has to be fair degree of my recognizing and respecting what is their interest, just as I expect them also to do so. It is when you get that landing point, that common ground, that relationships work smoothly.
5: The External Affairs Minister also described Pakistan as a unique country in the world, as there is no other nation that uses terrorism so systematically and in a sustained manner to attack and put pressure on a neighbor.
6: Pakistan is unique not because, you know, it's a neighbor of India. We have other neighbors. There are other countries who have problems between. It is unique because in this day and age, there is no other country which uses terrorism so systematically and so in such a sustained manner to attack and pressurize another neighbor. And that has an impact on public opinion in this country.
5: More than 70 British parliamentarians have written to the UN Secretary General Antonio Guterres urging intervention over the worsening situation in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK. We have a report.
7: The British parliamentarians have called for an end to the bloodshed caused by Pakistani

कांटों से दिल लगाओ जो ताउम्र साथ दें, कांटों से दिल लगाओ जो ताउम्र साथ दें, फूलों का क्या जो सांस की गर्मी न सह सके। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज, और वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 10:31 और 50 सेकेंड। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब, और एक बार फिर से सदाबहार गीतों के कारवां को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल में, जिसका नाम है हर सिंगार। हर सिंगार यानी वो महफिल जिसमें होते हैं वो सदाबहार नगमे जो अमर हो गए, और वो सदाबहार कहानियां जो हमारे दिल में बस गईं। हर सिंगार एक ऐसा फूल जो रात के खामोशी में महकता है और सुबह की पहली किरण के साथ अपनी खुशबू बिखेर जाता है, ठीक वैसे ही जैसे ये पुराने सदाबहार फिल्मी गीत। वक्त गुजर जाता है लेकिन उनकी महक, उनकी कशिश और उनका एहसास दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहता है। कभी कभी मौसम सिर्फ मौसम नहीं होता, वो किसी की याद बन जाता है। हवा में घुली खुशबू, फूलों की नरमी और बहारों की रंगीनियत सब मिलकर

दिल से बस एक ही बात कहते हैं, मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। तो आइए यादों की इस खुशनुमा महफिल का आगाज़ करते हैं एक ऐसे ही नगमे से जिसमें मोहब्बत की रोशनी, मुलाकात की तासीर, दिल की धड़कनों की नरमी और फूलों की खुशबू हैं। साल था 1965 का जब फिल्म आरजू ने संगीत प्रेमियों को एक बेहद खूबसूरत गीत दिया जो रुमानियत के एक बेहतरीन मिसाल है। इस दिलनशीन नगमे को अपनी मखमली आवाज से सजाया मोहम्मद रफ़ी साहब ने। गीत के अल्फाज लिखे हैं हसरत जयपुरी साहब ने, जो साधारण शब्दों में भी दिल की सबसे खूबसूरत कैफियत बयान करने का हुनर रखते हैं। वही इसे अपनी मधुर धुनों से अमर बनाया हिंदी सिनेमा की मशहूर संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन साहब की। यही वजह है कि 6 दशक से भी ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी ये गीत अपनी ताजगी और कशिश बरकरार रखे हुए हैं। जब भी ये नगमा सुनाई देता है यादों की एक नर्म सी दस्तक सीधे दिल पर दस्तक देती है। तो आइए फिल्म आरजू का वही सदाबहार नगमा रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार, यानी वो महफिल जहां सदाबहार नगमे सिर्फ सुनाई नहीं देते बल्कि दिल की गहराइयों तक उतर जाते हैं। मैं हूं आपके साथ फेरोज, और अगले कुछ लम्हों तक हम साथ मिलकर सिनेमा के उस सदाबहार गीतों की खुशबू, उसके अल्फाज और उसकी धुनों का सफर तय करेंगे। सिनेमा और संगीत की उस खूबसूरत दुनिया में आपका स्वागत है, जहां कुछ फिल्में सिर्फ पर्दे पर कहानी नहीं सुनाती बल्कि हमारी जिंदगी के एहसासात को आवाज देती हैं। अब हम बात कर रहे हैं साल 1976 की एक बेहद यादगार और रोमांटिक फिल्म कभी कभी की। फिल्म की कहानी और पटकथा पामेला चोपड़ा ने लिखी थी, जबकि इसका निर्देशन और निर्माण किया था मशहूर और मारूफ फिल्मकार यश चोपड़ा साहब ने। इस फिल्म में उस दौर के शानदार कलाकारों की एक नायाब महफिल सजी थी। वहीदा रहमान, शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, राखी, ऋषि कपूर और नीतू सिंह। कभी कभी की सबसे बड़ी खासियत इसकी कहानी के साथ साथ इसका संगीत भी था। संगीतकार खयाम ने गीतों को ऐसी नजाकत और ऐसी रूहानी मिठास दी कि फिल्म का संगीत आज भी सुनने वालों के दिलों में उतर जाता है। और जब बात गीतों की हो तो साहिद लुधियानवी का नाम अपने आप ही जहन में आता है। उनके अल्फाज में मोहब्बत भी थी, जज्बात भी थे और जिंदगी की गहरी सच्चाई भी। और फिल्म का सबसे यादगार गीत कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है आज भी हिंदी फिल्म संगीत के सबसे खूबसूरत प्रेम गीतों में शुमार किया जाता है। इसी गीत के लिए साहिर लुधियानवी को सर्वश्रेष्ठ गीतकार और मुकेश साहब को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। वहीं खयाम साहब को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का सम्मान भी मिला। दिलचस्प बात यह भी है कि कभी कभी में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की जोड़ी को दीवार के बाद फिर से यश चोपड़ा ने पेश किया था, और आगे चलकर वहीदा रहमान, शशि कपूर, अमिताभ बच्चन और राखी, ये चारों कलाकार यश चोपड़ा की फिल्म त्रिशूल में भी एक साथ नजर आए। बॉक्स ऑफिस पर भी कभी कभी ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया था। और पुरस्कारों की बात करें तो 24वें फिल्म फेयर अवार्ड में कभी कभी को कुल 13 नामांकन मिले और इसने 4 पुरस्कार अपने नाम किए। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ संवाद, सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का खिताब भी जीता। तो आइए इसी फिल्म का एक दूसरा नगमा हम आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में, और यादों की इस हसीन शाम को सुरों की रोशनी से हम

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल सदाबहार गीतों की हर सिंगार में। हर सिंगार जहां हर शाम महकती हैं उन सदाबहार नगमों से जो वक्त की गर्द से बेअसर होकर आज भी दिलों में उसी शिद्दत से बसते हैं, वो नगमे जो अपने दौर में बेहद मशहूर रहे। दोस्तों, मोहब्बत का भी अपना एक मौसम होता है। जब फिजाओं में बहार हो, हवाओं में गर्मी हो और किसी की एक मुस्कान पूरी दुनिया को हसीन बना दे, तब दिल अपने आप गुनगुनाने पर मजबूर हो जाता है। हिंदी सिनेमा ने ऐसे ही अनगिनत जज्बात को सुरों में डाला है और कुछ गीत ऐसे बने जो हर दौर में इश्क की जबान बन गए। आज की इस महफिल का अगला यह नगमा भी कुछ ऐसा ही है, एक ऐसा गीत जिसमें पहली मोहब्बत की हल्की सी खुमारी है, मिलने की बेताबी है और दिल की धड़कनों की मीठी सी सरगम भी। और ये गीत है 1971 में प्रदर्शित फिल्म शर्मिली का। शर्मिली एक ऐसी फिल्म जिसने अपने संगीत, कहानी और कलाकारों के शानदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। और जब संगीत की कमान सचिन देव बर्मन साहब जैसे महान संगीतकारों के हाथों में हो तो फिर क्या कहने, वो संगीत अमर हो ही गया। गीत के खूबसूरत बोल लिखे बेहद जज्बाती शायर नीरज ने, उनके अल्फाजों में शायरी की नजाकत भी है और प्रेम की मासूमियत भी। और फिर जब इन अल्फाजों को सुरों की रूह बख्शी हो लता जी ने, तो यकीनन एक ऐसा नगमा जन्म लेता है जो पीढ़ियां बदलने के बाद भी दिलों पर राज करता है।

खिलते हैं गुलियां, बेहद खूबसूरत ये नगमा फिल्म शर्मिली से आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर श्रृंगार की इस दिलकश महफिल में, और हर श्रृंगार में अब वक्त है एक और बेहद खूबसूरत नगमे का, और यह नगमा है 1976 की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म महबूबा से। इस फिल्म का निर्माण किया था मुशीर रियाज ने और इसका निर्देशन किया था शक्ति सामंत ने। इस फिल्म के गीतों को लिखा आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा आर.डी. बर्मन साहब ने। आवाजें हैं किशोर कुमार साहब और लता जी की।

महबूबा फिल्म के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज़ को अब दीजिए इजाज़त हर सिंगार से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद आप सुनेंगे 11:10 पर मार्केट मंत्रा का पुनः प्रसारण, और उसके पश्चात आप सुनेंगे गीत मेरे मन में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नबीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाए।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बलों और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। श्री सिंह नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि जैन धर्म भारत की सभ्यता और संस्कृति का गौरव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जैन परंपराओं और विरासत के संरक्षण के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में विदेशों से भगवान तीर्थांकर की 20 से अधिक चोरी हुई प्राचीन प्रतिमाओं को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक

0: 1.7%. So, and if you look at the GST collections, the income tax, the direct tax collections, or the policy of the government to push manufacturing and to also the policy measures in to take policy, to, you know, which is leading to investments and especially foreign investment into India. So I don't see anything for the investor to worry. But yes, one has to be, one has to look at opportunities. And also, if you're investing now, so you should keep in mind that yes, the returns, you may not get immediate returns. And we always say that you have to have a medium to long term
1: horizon. So what
0: horizon.
1: I hear you say, Siddharth, is that the market will remain vulnerable. And this is primarily because of the expensive crude, a weaker rupee and higher US yields, which you mentioned, can simultaneously affect inflation, corporate margins, interest rates, and also foreign portfolio flows.
0: See, but if you look at, obviously these are things which could, no, pan out in coming days. But if we look at the estimates given by the central bank in its last monetary policy, they do not see inflation getting generalized still. They have still maintained their neutral stance as far as interest rate is concerned. So, and they expect that they will be able to contain inflation. And they do not see a reason to hike interest rates now, at least for the Indian economy. And they do not see that danger of inflation, no, cutting across or impacting on the core inflation also. So I think it would be early to assume something like that, until unless if the crude, obviously the crude oil prices sustain at these levels. So that needs to be seen. And I would also say to counter that argument that India, when the war started, the US-Iran war, we also took a lot of steps as far as
1: to secure our
0: energy supplies. We have increased the number of sourcing from where the country is about 19. Now we've almost doubled. We around 40. Plus, we are also spreading our energy base to a lot of renewables. So I think all that, I do not see too much of. There will be some impact. Obviously, rains are also having an impact, and there will be sentiment also getting negative on certain. But we have good buffers, so I do not see immediately any concern.
2: श्रोताओं, और भी खबरों की विवेचना करें कि हमारे समक्ष सिद्धार्थ सिंह मौजूद हैं. और अगर आपके भी दिल में कोई सवाल हो तो आप जरूर हमें कॉल करें, कॉल मिलाएं. और ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. आगे और बात करेंगे आपसे सिद्धार्थ, मगर उससे पहले आइए जोड़ते हैं अपने पहले कॉलर को. दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे थे कृपा शंकर जी, मुझे उम्मीद है कि वो वापस लौटेंगे. मगर उससे पहले हम एक सवाल मेरे मन में है सिद्धार्थ की, आपने जैसा कि बताया कि रेजिलियंस की जो बात है, मुझे लगता है कि एक मच्योर खिलाड़ी की जो पहचान है वो ये है कि वो पिच पर कैसे टिके रहते हैं. ये नहीं कि वो कितने छक्के मार रहे हैं और एकदम जो है वो अलंकृत कर दिया है पूरे माहौल को. बहरहाल हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर का डेटा आया है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेटा आया है. अगर हम Q1 के रिजल्ट्स के लिहाज से देखें तो भी हमने अच्छा एक प्रदर्शन जो है हमारे इकोनॉमी का, तो हमारी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो है वो, या यूं कहें कि हमारा जो बही खाता है उसमें अगर लाल लगे हैं तो हरे के भी निशान हैं.
0: नहीं, बिल्कुल ठीक कहा प्राची आपने. जैसे जो आपने Q1 की, जो हम अप्रैल से जून की अगर कॉर्पोरेट जगत की हम अर्निंग्स या जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफी, मतलब बिल्कुल भी बुरे नहीं थे. और अगर आप, और ये ऐसे समय पे अप्रैल जून वो समय है जब हमने पूरा जो अमेरिका और ईरान की जो लड़ाई वो शुरू हो गई थी तकरीबन फरवरी के लास्ट में, तो वो अप्रैल जून पहला क्वार्टर पूरा जो है वो उसी में निकला है जब दोनों देशों के बीच में और पूरी दुनिया में जो है
2: इतनी उथल पुथल
0: और अनसर्टेनिटी, ऑब्वियसली क्योंकि एनर्जी जो क्रूड ऑयल है वो एक बेस वो है, रॉ मटेरियल है फॉर लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब चाहे वो केमिकल्स हो चाहे, तो किसी भी तरह का, तो वो अगर इफेक्ट होता. और वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम 90% उसे आयात करते हैं और उसमें से भी तकरीबन काफी बड़ा आयात हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से ही आता था. तो आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने उस स्थिति पे, शायद हमने उस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने बहुत कदम उठाए और उसके साथ साथ हमको लगता है जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है वो अभी भी बनी हुई है. जो इन्फ्लेशन के लेवल्स हैं या जो महंगाई दर है वो अभी भी, जब मैं कोर इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज्यादा कोर इन्फ्लेशन जो ट्रैक करता है तो उसमें अभी कहीं ना कहीं उस तरह की चिंता या जो सेकेंड राउंड इफेक्ट हम कहें या कंपनीज पास ऑन

0: कर रही हूँ प्राइजेस, ऐसा अभी दिख नहीं रहा है
1: जी। दिल्ली से हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं कृपा शंकर जी। महोदय कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: हेलो नमस्कार जी।
1: नमस्कार,
2: मैं ये पूछना चाहता हूँ सर से कि जैसे सर तो विशेषज्ञ है, तो ये लोग अपने ऑफिस इनके कहाँ है जहाँ से हम जाके सलाह ले सके। और सवाल मेरा ये है कि जैसे कि मैं टोटल मेरा अमाउंट जो है एफडी में लगा हुआ है लगभग 40 लाख, ये अक्टूबर में मैच्योर हो जाएगी सितंबर लास्ट में, तो ये बताइए कुछ गोल्ड भी है तो ये अब मैं कैसे कहाँ मैं इसको इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में नयापन है। तो
0: कृपा शंकर जी आपकी मैं एज जान सकता हूँ आपकी उम्र? उम्र
2: मेरी एज तो लगभग सीनियर हो गई है, बच्चों के लिए बच्चे जो मेरे 26-28 के हैं तो उनके लिए आगे क्या रहेगा?
0: नहीं कृपा शंकर जी आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए मैं तो एक प्रोफेशनल हूँ, मेरा कोई इस तरह का ऑफिस तो नहीं है, मेरा बेसिकली जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड है और मैं जो अर्थव्यवस्था करीब 25-26 साल से ट्रैक करता हूँ, इसलिए मेरी जो भी इस पे नॉलेज है वो मेरे काम कर करके जो भी मैंने सीखा है। तो पहला तो सवाल आपका उसका जवाब ये है,
1: पर मार्केट मंत्र में आप आते हैं। हाँ, और सभी सवालों के जवाब
0: जी तो वो है। दूसरा जहां तक आपने जो सवाल पूछा कि आपको, आपके लिए तो बिल्कुल ऑब्वियसली आपने खुद ही कह दिया कि आप सीनियर सिटीजन हैं, लेकिन आप अपने बच्चों के हिसाब से पूछ रहे हैं तो बिल्कुल उनको अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और मुझे लगता है 25-26 के हो गए तो अब तक शुरू कर देना चाहिए था, मतलब मुझे लगता है एक राइट एज है, जैसे ही आप मेच्योर होते हैं 18-19 साल में ही म्यूचुअल फंड में आ जाए। अगर उन्होंने पीपीएफ अकाउंट आपने नहीं खोला है तो आप वो खोल सकते हैं, क्योंकि वो आज भी सबसे बढ़िया निवेश है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो पैसा जब तक निवेशित है तब तक टैक्स फ्री है और आपको जब मिलता है तब भी टैक्स फ्री रहता है। तो पीपीएफ खोलें, म्यूचुअल फंड खोलें और मार्केट बेस्ड मतलब ज्यादा से ज्यादा इक्विटीज मतलब जब स्टॉक मार्केट जो आधारित म्यूचुअल फंड हो उन पर ज्यादा लगाएं। आपने एफडी कर रखी है तो आप अपने जरूरतों के हिसाब से अपना पैसे को सुरक्षित एफडी में ही रखें। आपको इस उम्र के इस पड़ाव पे तो मार्केट्स में लगाने की सलाह नहीं,
3: से बेटर इनको अर्न करना है।
0: नहीं इन्फ्लेशन से भी राजेश, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उनको इस वक्त पे डेट मार्केट की भी सलाह इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि एफडी में एक सबसे बड़ा फायदा इस समय ये होता है कि आपको जब भी पैसा चाहिए तुरंत मिल जाता है, डेट में भी मिल जाता है, बट मुझे नहीं लगता कि इस समय के जो डेट फ्लोज इनको उस तरह के डेट में भी उस इन्फ्लेशन को ये बीट कर पाएंगे। और इन्फ्लेशन अभी इंडिया में कोई बहुत ज़्यादा इस समय नहीं है, थोड़ा सा इस समय बढ़ा है मीडियम टर्म में, बट मुझे लगता है इनको चूंकि सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन होने का भी कुछ फायदा मिल रहा होगा।
1: बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, कोलकाता से हमारे साथ अरिजीत चक्रवर्ती जी जुड़ रहे हैं। नमस्कार महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: नमस्कार, गुड इवनिंग मार्केट मंत्र टीम एंड स्पेशलिस्ट सर, आई जस्ट वांटेड टू नो वन थिंग दैट इज मेरे दादाजी ने कुछ शेयर्स छोड़े थे मेरे नाम पे, तो अभी उस शेयर्स को क्लेम करने के लिए पहले तक के सक्सेशन सर्टिफिकेट वो लगता था, तो मैंने बीच में सुना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वो सक्सेशन सर्टिफिकेट उसको हटा दिया क्योंकि काफी लोग वो क्लेम नहीं कर पा रहे थे, तो आज भी क्या वो सक्सेशन सर्टिफिकेट वो लागू है?
0: नहीं अरिजीत जी, देखिए सवाल आपने जो पूछा है ये कई बार बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन जो आपने बात बोली कि सक्सेशन सर्टिफिकेट जो वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूफ करता है कि आप अपने फादर के या मदर के जो भी आप जिनके बिहाफ पे जो आपने बोला आपके फादर ने जो कुछ शेयर्स खरीदे थे आप उनको क्लेम करना चाहते हैं, तो अगर आप वो तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, उन्होंने कोई हाँ ये जरूर किया होगा कि उसको कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई किया होगा कि किस तरह से आप इस्टेब्लिश करें कि आप सक्सेसर हैं अपने पिताजी के। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट तो केवल ये इस्टेब्लिश करता है कि उनके कितने जो है सक्सेसर हैं, वो शायद उनकी आपकी मदर भी हो सकती हैं, उनकी वाइफ भी हो सकती हैं, आपके कोई और भाई बहन है फैमिली में, लेकिन हो सकता है आपके फादर ने अगर कोई कोई विल छोड़ी हो या कोई अपनी उन्होंने इच्छा कहीं रिटर्न में व्यक्त की हो कि कैसे किसको ये शेयर्स मिलेंगे, लेकिन ये तो जरूर तय है कि आपको ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आप ही उनके राइटफुल सक्सेसर हैं और आप ही को ये क्यों आप ही को दिया जाए।
3: Subhash from Faridabad joins us now. Subhash, a warm welcome.
5: Good evening, sir.
3: Good evening.
5: Sir, मुझे लास्ट 1.5 साल से negative return मिल रहा है equity mutual fund में, तो अभी सर 2026 में भी मैं continue कर रहा हूँ equity mutual fund में, ऐसा ही चल रहा है, तो क्या मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए सर या कुछ डिस्कंट

0: शुरू कर रहे हैं, दो तीन म्यूचुअल फंड हैं जिसमें मेरा सही से चल रहा है।
1: नहीं सुभाष जी, एक तो ये है कि कल का जो मार्केट मंत्र प्रोग्राम होगा उसमें म्यूचुअल फंड के ऊपर स्पेशली डिस्कशन केवल म्यूचुअल फंड पे होता है, आधारित होता है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपके सवाल का फिर भी इतना जवाब जरूर दूंगा कि अगर निगेटिव रिटर्न आ रहा है तो उसकी चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड का यही एक फंडामेंटल ये है कि लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, SIP के थ्रू कर रहे हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ, तो बिल्कुल उसको करते रहें। और आपको जरूर जब आप एक थोड़ी अवधि के बाद आप देखेंगे 2-3 साल बाद कि आपको जो ये रिटर्न्स हैं, क्योंकि इस समय जब आप रिटर्न जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मार्केट्स अगर बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल रही हैं उसी पैसे में, और वो जब मार्केट चढ़ेगी तो वो यूनिट्स की का जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा, तो आपको फायदा ज़रूर होगा। तो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहें और इन्वेस्ट करते रहें।
2: Moving on, the United States has imposed 50% tariffs on $20 billion worth of Canadian products. The tariffs came into effect early today. Canada immediately said it would retaliate after failure of last-minute talks to ease tensions between the two historic allies. The new U.S. tariffs will affect about 5% of Canada's annual exports to the United States. The products include hockey sticks and tongue depressors. Canadian Prime Minister Mark Carney said Canada would match the tariffs dollar for dollar. Mr. Carney blamed Washington for the failure of the talks and said the last-minute changes in the U.S. proposal were unfair and uneconomic. The last line is extremely important, that last-minute changes were very unfair and uneconomic. How safe would our deal be with the United States?
1: Rajesh,
2: last minute changes?
1: Rajesh, I think we've had a fairly very detailed discussions, and I think now behind the curtains, the last minute threadbare details are being details are being worked out.
2: I'm sure Canada also had the last
1: but with Canada, if you go back, Rajesh, I think there has been some problem with Canada, and last time also when US imposed tariffs on them, Canada retaliated with the
2: so we same. Are quite hopeful in our case.
1: Yeah, in our case obviously we've come down to 10% now, so, and I don't see, and we are very large partners still, we continue to be one of the biggest trading partners. US continues to be our biggest trading partner, and biggest our exports to US haven't come down, so we continue to export to US, and we are the largest exporters to US, so I don't see that risk with Mr. Trump. But though, yes, he is unpredictable, notwithstanding having said all that, yes, still the unpredictability factor with Mr. Trump always exists, and the example before us.
2: Yes.
3: सिद्धार्थ, और भी खबरें हैं हमारे पास जिस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, मगर उससे पहले आइए भोपाल से जुड़े शंकर को। शंकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: नमस्ते मार्केट मंत्री सिद्धार्थ जी को, नमस्ते।
1: नमस्कार।
4: ये GDP रेशो US का डेट टू GDP करीब 123% 126% के आसपास है, जापान का वो ऑलमोस्ट डबल है, जिसकी वजह से वो काफी जबरदस्त रिसेशन में या स्टेग्नेशन में गए थे। क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी स्टेग्नेशन में जाने की संभावना है, उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एक और इसी से संबंधित सवाल है। US में अब इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ेंगे नहीं, घटने की उम्मीद है, ऐसा है तो हमारे यहाँ उनकी अगर यील्ड कम होगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो पैसा फ्लो इंडिया में बढ़ेगा क्या, सो दैट वी एज अ रिटेल इन्वेस्टर कैन रिमेन इन्वेस्टेड, एंड बिकॉज अवर सेविंग्स इज ऑल इन दैट, अवर पेंशन, अवर फ्यूचर इज लिंक्ड विद अवर म्यूचुअल फंड, सो हाउ इज अवर फ्यूचर इन म्यूचुअल फंड फॉर इन इंडियन इक्विटी मार्केट। थैंक यू।
1: नहीं शंकर जी, आपने काफ़ी अहम चीज़ें और बहुत ज़रूरी चीज़ें उठाई। एक तो मुझे नहीं लगता कि हमें चिंता करनी चाहिए US के डेट को लेके, क्योंकि अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर वहाँ महंगाई बढ़ती है तो वहाँ अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो हमारे लिए ख़राब है, और अगर वहाँ इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं, जैसा आपने बोला जो उन्होंने अभी बायबैक प्रोग्राम अनाउंस किया, तो उसके बाद जो है कुछ यील्ड्स वहाँ घटी भी थी, लेकिन अभी वो कितना सस्टेन करती हैं वो देखने वाली बात है। हाँ, अगर अमेरिकन इकोनॉमी में अगर स्लो डाउन आता है तो बिल्कुल हमारे ऊपर असर होगा, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट जो है मार्केट है अमेरिका, साथ साथ हमारी IT कंपनीज बहुत बड़े पैमाने पे अमेरिका में जो है काम करती हैं, तो उन पे ज़रूर उसका इफ़ेक्ट होगा। तो और जहां तक आपका सवाल कि अगर वहां यील्ड कम होती है, तो बिल्कुल ठीक बात आपने कहा कि हो सकता है वहां से इन्वेस्टर ऑलरेडी आ रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं डेट मार्केट में तो बहुत बड़े पैमाने पे आ रहे हैं। और देखिए शंकर जी, एक बात और आपको मैं बोलूंगा, अमेरिका में क्या हो रहा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये आप हमेशा एक भरोसा मान के चलिए कि आपकी अर्थव्यवस्था, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया की आज भी सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तकरीबन 7% इस साल भी हमारा एस्टिमेट है, 6.7 आरबीआई ने बोला है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको बिल्कुल भी अपने निवेश को लेके कोई चिंता करनी चाहिए। हमारे फंडामेंटल्स हों चाहे हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सब सॉलिड हैं और कोई भी चिंता की बात नहीं। एक्सपोर्ट्स हों, आप देखिए इस चुनौतीपूर्ण टाइम में भी हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। सरकार ने जो है, जब ये जो अनसर्टिनिटी दुनिया में आई है और ये अनसर्टिनिटी तकरीबन 2 साल से, टैरिफ हो चाहे चीन को लेके हो, तो हमने एफटीएस वगैरह भी किए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, तो बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी हम कर रहे हैं ताकि हमारी इकोनॉमी, हमारे एक्सपोर्टर्स इन सब चीजों से बचे रहें।
3: दिल्ली से हमारे साथ योगेश जुड़ रहे हैं। योगेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। अभिनंदन करते हम जरूर अगर योगेश जी के साथ संपर्क जो है वो बरकरार रहता, मगर शायद अभी हमारा संपर्क टूट गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बताया कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा में 21 अगस्त 2026 तक 72 अरब अमरीकी डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्रवाह हुआ है। कुल प्रवाह में से विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा का हिस्सा सबसे अधिक यानी 65.4 अरब अमरीकी डॉलर था। वहीं विदेशी मुद्रा उधार से लगभग 5 अरब अमरीकी डॉलर और बाहरी वाणिज्यिक उधार से लगभग 2.5 अरब अमरीकी डॉलर का योगदान रहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वर्ष 8 जून को अनिवासी जमा, बाह्य वाणिज्यिक उधार और विदेशी मुद्रा उधार में आने वाले विदेशी मुद्रा प्रवाह को कवर करने वाली विशेष यूएसडी आईएनआर विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की। रुपए की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए लाई गई यह स्वैप सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इस सुविधा को मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया के कारण इसे एक महीने पहले ही बंद कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप देश में अपेक्षित मात्रा में विदेशी मुद्रा का प्रवाह हुआ। यह योजना अब विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा के लिए 31 अगस्त 2026 तक खुली है, जबकि बाह्य वाणिज्यिक उधार और विदेशी मुद्रा उधार के लिए यह सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक खुली रहेगी। सिद्धार्थ, आरबीआई का लक्ष्य 80 से 90 बिलियन यूएस डॉलर एकत्र करने का था। इस पर बहुत उत्साह हमें देखने को मिल रहा है। रुपए की स्थिरता को बनाए रखने के लिए ये कितना, मैं अगर आपसे संक्षिप्त में पूछना चाहूं तो कितना योगदान इसने दिया है?
1: नहीं प्राची, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप अभी देखेंगे, आज 21 अगस्त तक की ये जो फिगर्स जो दी हैं उसी में 72 बिलियन डॉलर आ चुका है और 80-90 का टारगेट था, लेकिन अब मुझे लगता है जो आरबीआई ने इसको प्री मेच्योरली क्लोज किया है एक महीना पहले, मुझे लगता है जो उनका एम था वो पूरा हो गया है। अब रुपए भी स्थिर, हमारा जो मुद्रा भंडार है वो भी, उसमें भी आप देखेंगे वो 700 बिलियन के ऊपर है, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको लगा कि अब इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है।
2: Global crude oil prices rose to near 4-week highs as the 60-day US-Iran memorandum of understanding expired this week without a permanent peace agreement. The Strait of Hormuz remains effectively closed, with Iran insisting that it will remain shut until Washington meets Tehran's demands, while the US naval blockade in the region remains in place. Meanwhile, US President Donald Trump has threatened tougher economic sanctions on Iran and its trading partners, raising concerns over tighter oil supplies in the coming weeks. During the week at the International Exchange, Brent crude October futures surged 6.6% to settle at $94.39 per barrel. West Texas Intermediate crude October futures soared 6.9% to end at $87.06 per barrel.
3: दिल्ली से हमारे साथ योगेश जुड़ रहे हैं। योगेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: जी, जैसे हम मार्केट में वैल्यूएशन देखते हैं तो जो लास्ट ट्रेप में इंडेक्स के हिसाब से जो वैल्यूएशन होती है उसका प्राइस अर्निंग रेशियो 20-22 के आसपास रहता है, बट मिड कैप और स्मॉल कैप का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो 32-33 तक रहता है। तो ये नॉर्मल है कि इनका प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा ही रहता है या फिर अभी ये ओवर वैल्यूएट जोन में ही इनको दिखाता है?
1: नहीं देखिए, दोनों बात आपकी अपनी जगह सही है, लेकिन जब भी स्मॉल कैप और मिड कैप का आप देखेंगे थोड़ा प्राइस अर्निंग रेशियो हमेशा ज़्यादा रहता है इन वनस्पत जो बीएससी के आप इंडेक्स को देखेंगे, तो इसको लेके मुझे नहीं लगता कोई बहुत चिंता करनी चाहिए आपको। हाँ ये ज़रूर मैं कहूँगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनियों में जब भी आप निवेश करें थोड़ा उनको फंडामेंटली स्टडी कर लें, उनके ऑर्डर बुक, उनका प्राइस अर्निंग रेशियो वगैरह ध्यान से देखें, उनकी जो मैनेज

0: इवेंट है, तो मुझे लगता है बस उस पे ज्यादा ध्यान दें, बाकी कोई मुझे नहीं लगता चिंता है।
1: Major US stock market indices rose yesterday but ended the week in the red. The Dow Jones Industrial Average advanced 1% and the S&P 500 and Nasdaq Composite each gained 0.4%. However, for the week, the Nasdaq shed 2% and the S&P 500 slipped 1.4% and the Dow fell 0.9%.
2: सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े, आपने सभी के जवाब दिए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: प्राची, राजेश, आप दोनों को भी धन्यवाद।
1: थैंक यू सिद्धार्थ फॉर बीइंग विद अस। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, benchmark domestic indices declined for the second consecutive week. Sensex and Nifty slips around 0.5%. US imposes 50% tariffs on $20 billion worth of Canadian products after trade talks with US fail. Canada says it will retaliate. And global crude oil prices extend their rising streak this week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You are listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 11:41 और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। गीत मेरे मनमीत ये वो जगह है, ये वो प्रोग्राम है जहां पर सुनहरे दौर के उन बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर होते हैं। ये वो दौर था जब हिंदी सिनेमा में एक नई रूह पैदा हुई थी, एक नया जश्न का माहौल था, एक नए तरीके की फिल्में बन रही थी। ये वो दौर था जिसको आज भी हम उसी तरीके से याद करते हैं और ये दौर 1945 से लेकर तकरीबन 1965 के आसपास का माना जाता है। और इस दौर में जो फिल्में बनी वो मील का पत्थर साबित हुई। उन्हीं फिल्मों में से हम कुछ चुनिंदा नगमों के साथ हाजिर हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और इस महफिल में सबसे पहला नगमा विजय भट्ट साहब के निर्देशन में बनी फिल्म बैजो बावरा से। यह फिल्म आई थी 1952 में। इस फिल्म के गीतों को लिखा था बेहद खूबसूरत गीतकार शकील बदायूनी और संगीत था नौशाद साहब का। इस फिल्म के ज्यादातर नगमे शास्त्रीय संगीत पर आधारित थे और ये जो नगमा है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, सबसे पहला नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की बेहद खूबसूरत आवाज़ों में। और इस फिल्म में जिन लोगों ने अभिनय किया था उनमें मुख्य कलाकारों में भारत भूषण, मीना कुमारी, सुरेंद्र, मनमोहन कृष्ण वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। तो आइए आज के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत।

तो गंगा की मौज में जमुना का तारा, बेहद खूबसूरत यह नगमा फिल्म बैजू बावरा से, यह फिल्म आई थी 1952 में। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मन मीत में, जिसमें हम सुनहरे दौर के उन बेहद खूबसूरत यानी गोल्डन एरा के उन बेहद खूबसूरत और सदाबहार नगमों के साथ हाजिर है। तो आए इस सफ़र को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत ही खूबसूरत गीत आपको सुनवाते हैं, और ये गीत है संगम फिल्म से। राज कपूर साहब के निर्माण और निर्देशन में बनी इस फिल्म में खुद राज कपूर साहब, वैजयंतीमाला राजेंद्र कुमार और इफ्तिखार राज मेहरा, नाना पालेसकर, ललिता पवार वगैरह ने बेहद खूबसूरत अभिनय किया था। ये फिल्म राज कपूर साहब की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। ये राज कपूर की पहली रंगीन फिल्म थी। इसे ज़्यादातर राज कपूर साहब की शानदार और प्रसिद्ध रचना भी माना जाता है, क्योंकि ये उनके सबसे अच्छे कामों में से एक है। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं मुकेश साहब और वैजयंतीमाला की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में। संगीत है शंकर जयकिशन साहब का और इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

खूबसूरत सदाबहार नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फिरोज। दोस्तों, कभी कभी मोहब्बत का आगाज इजहार से नहीं बस एक एहसास से होता है। नजर किसी को तलाशती है मगर पहचान बिल्कुल नहीं पाती, और दिल बिना वजह मुस्कुरा उठता है। आज की ये नाजुक सी हसीन सी पेशकश में भी कुछ ऐसा ही है। ये नगमा भी कुछ इसी तरीके का है जिनमें इश्क की एक छोटी सी दास्तान है। साल 1953 की फिल्म आह से हसरत जयपुरी की कलम से निकला ये बेहद खूबसूरत नगमा, जिसे अपने दिलकश आवाजों से सजाया है लता जी और मुकेश साहब ने, और जिसकी धुन शंकर जयकिशन साहब ने तैयार की है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नाम है और उनकी धुनें हमेशा याद रहेंगी। तो जिससे आपकी नजर तलाश रही है, ढूंढ रही है और नहीं मिल पाई, मगर आपका जिगर उसे महसूस कर चुका है, तो ये गीत उसी के नाम कर दीजिए, अपने प्यार के नाम कर दीजिए। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर आ फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा आपके लिए।

लता जी और मुकेश साहब की इसी आवाज़ के साथ मुझे यानी फ़ेरोज़ को अब दीजिए इजाज़त। गीत मेरे मनमीत से अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार आपके साथ रहेंगे मंजू। कल पुनः हमारी और आपकी मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नबीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाए।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कहा कि जैन धर्म भारत की सभ्यता और संस्कृति का गौरव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जैन परंपराओं और विरासत के संरक्षण के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में विदेशों से भगवान तीर्थांकर की 20 से अधिक चोरी हुई प्राचीन प्रतिमाओं को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में कल ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की गई। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग और नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में कल सहयाद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दवा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में आयोजित युद्धाभ्यास उदारा शक्ति 2026 में अपनी भागीदारी सफलतापूर्वक पूरी की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन दोनों देशों में भारतीय वायुसेना की तैनाती, उसकी संचालन की पहुंच, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारियों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू सेंग सू और टैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल गोल्ड और आप हमें सुन पा रहे हैं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये कार्यक्रम है पानी पर लिखी कहानी। तो मेरी कहानी का वो किरदार हो जो इसे पढ़ने लायक बनाता है। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है राग पहाड़ी और इसे आपके लिए लिखा है शीतल शाह ने। आवाज भी उन्हीं की है। तो आइए सुनते हैं कहानी राग पहाड़ी।

पहाड़ों में गूंजा राग बसंत बहार। कुसुम ने सूटकेस सीट के नीचे रखी। दिल्ली से काठगोदाम जाने वाली एक्सप्रेस सही समय पर रवाना हुई। इस वक्त उसे अपने दिल की धड़कन रेलगाड़ी की रफ्तार से भी ज्यादा तेज महसूस हो रही थी। खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी, लेकिन नजरों के सामने नजारे नहीं बीते दिनों की झांकियां तैरने लगी। अतीत के झरोखों से 9 साल पहले का लम्हा लम्हा नजर आने लगा। कहने के लिए कुमाऊं का वह पहाड़ी गांव छोटा सा था, पर कुसुम का सारा संसार उसमें समाया था। स्कूल, सखियां, संगीत, सबसे खास उसका बेस्ट फ्रेंड सौरभ। पगडंडियों पर हंसते खेलते स्कूल जाना, लौटने पर कभी देवदार और साल के पेड़ों की ओट में लुका छुपी खेलना, तो कभी झरने के किनारे रेडियो रेडियो का खेल रचाना। वादियों में उनकी खुशियां गूंजती थी। कुसुम और सौरभ को पहाड़ों से टकराकर लौटती उनकी आवाज की गूंज सुनना बहुत पसंद था। वह गीत सुनाती, राग पहाड़ी उसका सबसे पसंदीदा राग था। सौरभ रेडियो संचालक की अदायगी करता, कभी क्लासरूम में सिखाई गई कविता की पंक्तियां दोहराता, तो कभी अपने मन से गढ़ी हुई तुकबंदी सुनाता। धरती के साथ जब तक रहेगा नब, कुसुम का साथ देगा तब तक सौरभ। कुसुम की आवाज की स्वर लहरिया और छल छल बहते झरने की अटखेलिया। किशोरावस्था की कच्ची धूप में आत्मीय रिश्ते पक्के हो रहे थे।

लेकिन 9 साल पहले की वह घटना अभी भी भुला नहीं सकी थी। पापा ने रातों रात गांव छोड़कर दिल्ली जाने का फैसला किया। 12 साल की कुसुम के मन पर मानो कोई बिजली सी गिरी। अलबत्ता वह जानती थी कि अगर पापा ने यह फैसला लिया है तो उसके पीछे खास वजह जरूर थी। पापा सत्य प्रताप भारद्वाज गांव के विकास कार्यों में सिर्फ इसलिए सक्रिय नहीं थे कि वे सरकारी विभाग के प्रमुख इंजीनियर थे, परंतु वह गांव उनके पुरखों का बसाया हुआ था। बचपन के मित्र राजदीप पाराशर उस गांव के मुखिया थे। भाभी संगीता ने कुसुम को मुंह बोली बेटी माना था। उसे बचपन से संगीत की तालीम भी देती थी।

यही कारण था कि कुसुम को कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। सत्य प्रताप ने अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ अपने गांव के हितार्थ लिया। विकास कार्यों के साथ साथ वे पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते थे। बतौर मुखिया राजदीप पाराशर उन तमाम परियोजनाओं को अपने हाथों में लेते थे। बात उस वक्त की है जब एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने वहां 5 सितारा हिल रिसोर्ट बनाने के लिए राजदीप को प्रस्ताव भेजा। इसके लिए सरकारी अनुमति की दरकार थी। सत्य प्रताप ने इसकी समीक्षा की और प्रारंभिक मंजूरी दे दी, लेकिन परियोजना के 3 महीने के बाद उस पर रोक लगा दी। कहा, राजदीप, आवंटित की गई जमीन से 3,000 वर्ग फीट पर अधिक तुमने निर्माण काम किया है। वह भूमि खेत की जमीन है। नियम के अनुसार यह अतिक्रमण के वर्ग में आता है। नक्शे के हिसाब से तुम्हें इसमें सुधार करना पड़ेगा, इसीलिए निर्माण काम रोका गया है। यार, रिसोर्ट में मिनी गोल्फ कोर्स को जोड़ने के लिए यह काम करना पड़ा। गोल्फ टूरिज्म को आजकल दुनिया में कितनी तवज्जो मिल रही है। जरा सोचो यार, इस रिसोर्ट में अगर मिनी गोल्फ कोर्स जुड़ जाएगा तो हमारे गांव में पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा। सुनो, अगर गोल्फ कोर्स जोड़ना चाहते हो तो अलग से प्रस्ताव भेजना पड़ेगा। मेरी मानो तो झील के उस पार गांव में गोल्फ कोर्स के लिए आसानी से मंजूरी मिल जाएगी। एक अलग से अर्जी दे दो। भाई सत्या, थोड़ा एडजस्टमेंट करवा दो ना। घी गिरेगा तो हमारी थाली की खिचड़ी में ना। हमारे गांव के लाभ को छोड़कर दूसरों के बारे में क्यों सोचे यार। भाई राजदीप, यह गांव हम दोनों के पूर्वजों ने मेहनत और समर्पण से बनाया था। आज हम दोनों में इतना सामर्थ्य है कि अपना योगदान आसपास के गांवों के विकास के लिए भी कर सकते हैं, ताकि उस गांव के लोगों को भी रोजगार के नए आयाम मिले। देख यार, संसाधनों और मजदूरी की बात करें तो यहाँ रिसोर्ट बनाना हमारे लिए ज्यादा आसान और फायदेमंद रहेगा। समाज कल्याण तो बाद में भी होता रहेगा। राज, पिछले इन सालों में तुम कितने बदल गए हो। यार देख, यही वक्त है, तुम और मैं मिलकर दौलत कमा सकते हैं। देख राज, दोस्ती अपनी जगह है, कायदे कानून अपनी जगह। भाई सत्य प्रताप, मैं तो दोस्ती के बारे में भी सोच रहा हूँ, दोस्त की बेटी के बारे में भी। इसीलिए तो तुम्हारी बेटी कुसुम और अपने बेटे सौरभ में कोई अंतर नहीं समझता। मेरे घर उसका आना जाना, संगीता से उसका इतना लगाव, मुझे कोई एतराज नहीं है। सोचना तो तुम्हें है कुसुम के बारे में, उसके भविष्य के बारे में। धन राशि कमा लोगे तो उसका भविष्य सुरक्षित कर पाओगे। राज, मेरी दुख तिरक पर हाथ मत रखो। जब सूत्रों से मुझे पता चला कि तुमने पिछले कई परियोजनाओं में पैसों की गफलत की है, मैंने यकीन नहीं किया था, क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं था। लेकिन तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम कानून के दायरे में रहो। दोस्ती भुलाकर कानूनी कार्यवाही करने पर मुझे मजबूर मत करो। इससे राजदीप का गुस्सा हद पार कर गया। मौका देखकर उसने गंदी चाल चली

विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में सत्य प्रताप जब नैनीताल गए, तब राजदीप ने उन तमाम लोगों को बुलाया जिनके खेतों की जमीन निर्माणाधीन रिसोर्ट में आ रही थी। मुंह मांगे दाम पर जमीन खरीद ली। दूसरे दिन सरपंच की बैठक बुलाई। गांव के लोग भी उपस्थित हुए। इनमें ज्यादातर राजदीप के आदमी थे। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि इन दिनों क्यों सत्य प्रताप अपने गांव के विकास परियोजनाओं में रोड़े डालते हैं, जानबूझकर नीति नियमों का वास्ता देकर काम में बाधा पहुंचा रहे हैं। राजदीप ने भी ढोंग रचा, बोला, हां, मेरे सत्या से इस पर जब बात हुई थी तब वह आसपास के गांवों को ज्यादा तवज्जो दे रहा था। भीड़ में से कोई चिल्लाया, कहीं इसमें उसका कोई निहित स्वार्थ तो नहीं है। प्लान के मुताबिक कुछ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सत्य प्रताप के खिलाफ लोगों का आक्रोश सड़कों पर उतर आया। यह सब जब हो रहा था तब कुसुम सौरभ के साथ पढ़ाई कर रही थी, राजदीप के घर पे थी। नारेबाजी सुनकर वह सहम गई। संगीता ने खिड़कियां बंद कर दी, पर्दे लगा दिए। बच्चों का मूड बदलने के लिए वह बोली, सौरभ आज कौन सी कविता सीखी स्कूल में, चलो दोहराओ तो। उसके बाद कुसुम एक अच्छा सा गीत राग पहाड़ी में सुनाएगी। सौरभ ने टेबल पर रखी चम्मच को अपना माइक बना लिया। दोनों के सामने बैठकर सुनाई अपनी कविता। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। दो लोगों की ऑडियंस ने खूब तालियां बजाई। कुसुम ने भी गीत सुनाया। फिर संगीता बोली, कुसुम चलो जल्दी खाना खा लो और सो जाओ, कल सुबह स्कूल जाना है ना बेटा।

0: कुसुम को कमरे में सुलाकर संगीता बाहर आई। सौरभ ने पूछा, माँ सत्यप्रताप अंकल और पापा इतने अच्छे दोस्त हैं ना, मगर आज पापा ने उनका बचाव क्यों नहीं किया? संगीता बोली, बेटा तुम अभी छोटे हो, वक्त और हालात के साथ रिश्तों में बदलते समीकरण को इस वक्त समझ नहीं पाओगे। हर रिश्ता एक अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरता है, कभी दौलत तो कभी किस्मत हर संबंध को आजमाती है। अगर रिश्ता सच्चा हो तो उस अग्नि परीक्षा में पास हो जाता है और संबंध और भी पक्का हो जाता है। अब इन दोनों की दोस्ती भी अग्नि परीक्षा से गुजर रही है, तुम फिक्र मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, चलो तुम भी जाकर सो जाओ। राजदीप घर लौटे। संगीता ने कहा, ईश्वर का दिया सब कुछ हमारे पास है, अचानक ये दौलत कमाने की इतनी भूख क्यों?
1: अरे तुम दोनों के लिए तो सब कुछ कर रहा हूं।
0: अरे सुनिए, नैतिकता को दांव पर लगाकर कमाया गया धन हमारे किस काम का? अब सौरभ भी बड़ा हो रहा है, आपकी करनी का उस पर भी तो असर होगा।
1: संगीता, बहती गंगा में हाथ धोने में अकलमंदी है, वरना तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग जाएगी खेत।
0: संगीता ने बस आंखें बंद कर ली और दोनों बच्चों के बारे में सोचने लगी। वहां सत्यप्रताप भी कुसुम के बारे में सोच रहे थे। कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली से आए पर्यावरण संरक्षण समिति के प्रतिनिधि मंडल ने प्रस्ताव दिया, पहाड़ी पारिस्थितिकी संतुलन समिति में उन्हें सलाहकार के रूप में नामांकित किया गया था। इस नए पदभार को संभालने के लिए उन्हें दिल्ली स्थानांतरित किया जा रहा था। सत्यप्रताप कुसुम के बारे में सोचने लगे, और सालों से राजदीप की दोस्ती उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गई थी। दिन भर इस धर्म संकट से जूझते रहे। उन्होंने अपने आला अधिकारियों से कहा कि कुछ सोचकर बताता हूं। वे अपने गांव लौट आए। सत्यप्रताप ने कहा, भाभी जी कुसुम स्कूल से आ गई क्या?
2: हाँ भाई साहब, संगीत का रियाज कर रही है।
1: तभी राजदीप ने व्यंग्य में कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी के हमारे घर अच्छी देखभाल होती है।
0: सत्यप्रताप कुसुम को लेकर घर तो आए, पर पिछले दो दिनों में हुई घटनाक्रम के बारे में सुना, रात भर चिंतन किया। राजदीप का बदलता रुख और दौलत कमाने की अंधी दौड़ अब मित्रता की आहुति ले रही थी। उसके परिवार से कुसुम की आत्मीयता आगे चलकर कहीं बोझ न बन जाए, यही सोचकर सत्यप्रताप ने फैसला किया। दो फोन कॉल लगाए, अपने आला अधिकारियों से बातचीत की। अगली सुबह कुसुम को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली जाते वक्त पापा ने कहा था, पता है कुसुम, भगवान कृष्ण ने मथुरा क्यों छोड़ी थी? पूरे तन्मयता से जिस राज्य को संभाला था उसे छोड़कर नई द्वारिका नगरी क्यों बसाई थी? बेटा, क्योंकि जिस प्रजा से वो इतना प्रेम करते थे वे उनकी रक्षा करना चाहते थे, पर प्राणों से प्यारी जनता को रण में झोंक कर उनका अहित मंजूर नहीं था। इस वक्त तुम छोटी हो, इस वक्त शायद तुम्हें मेरा फैसला समझ नहीं आएगा, लेकिन कुसुम वक्त आने पर तुम जान जाओगी। इतना याद रखना बेटा कि जब बात सिद्धांतों की हो तो समझौता नहीं किया जाता। ट्रेन में बैठी बैठी कुसुम अपने सिद्धांतवादी पापा की बात समझने लगी थी। जिन परिस्थितियों में मजबूर होकर पापा ने गांव छोड़ा था, कमोबश कुछ ऐसे ही हालात कुसुम की जिंदगी में आ गए थे। वरना दिल्ली में सबसे लोकप्रिय टेलीविजन रियलिटी शो को बीच में छोड़कर वह अपने गांव वापस जाने के बारे में क्यों सोचती? पापा की कही बात मन में गूंजने लगी।

किस्मत जब एक दरवाजा बंद करती है तब कुदरत हजार नई खिड़कियां खोल देती है। बंद दरवाजे की दहलीज पर सर पीटने के बजाय जरूरत है खुले झरोखों की ओर रुख मोड़ने की।

कुसुम के ख्यालों का सिलसिला अचानक टूटा। काठगोदाम स्टेशन आ गया था। अपनी सूटकेस और हैंडबैग लेकर प्लेटफॉर्म पर उतरी। वक्त ने कैसी करवट ली है ना। 9 साल पहले जिस गांव को छोड़कर गई थी, आज वहीं वापस लौटी है। गांव तक जाने के लिए टैक्सी उसका इंतजार कर रही थी। वह गाड़ी में बैठी। 9 साल बाद फिर से पहाड़ों की आगोश में

रेडियो स्टेशन की ओर से आयोजित राग पहाड़ी उत्सव में भाग लेने के लिए उसे आमंत्रित किया गया था। कुसुम सोचने लगी, अगर टेलीविजन पर उस रियलिटी शो के आधार पर उसे गाने के लिए निमंत्रण मिला है तो बात अजीब है ना, क्योंकि जिस शो की वह टॉप 5 प्रतियोगी में शुमार हो चुकी थी उसी शो में वह बदनामी का शिकार भी तो हुई थी। सोशल मीडिया में लोग उसे ट्रोल करने लगे थे। इसके बावजूद कुमाऊं के उस रेडियो स्टेशन से उसे उत्सव में लाइव गाने के लिए बाइज्जत बुलाया गया। एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ हैरानी हुई, क्योंकि टेलीविजन पर शो के दौरान बतौर निर्णायक आए उस सेलिब्रिटी ने रिहर्सल के दौरान कुसुम से बदतमीजी की थी। कुसुम ने आयोजकों से उस सेलिब्रिटी के खिलाफ शिकायत दायर करने की अपील की। प्रतियोगिता का फिनाले नजदीक था, शो के टीआरपी पर असर होने का डर था, तो कुसुम को खामोश रहने की सलाह दी गई। इससे पहले कि वह कोई कदम उठाती, उस सेलिब्रिटी ने अपने चैनल पर कुसुम का चरित्र हनन किया, कहा कि जीतने के लिए प्रतियोगी ने उस पर डोरे डाले थे। लाखों फैन फॉलोइंग वाले चैनल पर कही गई यह बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पापा की मौत के बाद कुसुम ने अपनी गायकी को जीवन का आधार बनाया था, लेकिन इस घटना ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। सहमी हुई कुसुम नहीं जानती थी कि कहां जाए। पापा की बात याद आई, किस्मत एक दरवाजा बंद करे तो कुदरत हजार खिड़कियां खोल देती है। उसी रात ईमेल पर राग पहाड़ी उत्सव के लिए आमंत्रण आया, स्टेशन से पिकअप और सर्किट हाउस में रहने की व्यवस्था का मैसेज भी था। टैक्सी रुकी, ख्यालों का सिलसिला भी थम गया। उसी झरने के किनारे सर्किट हाउस था। 5

साल पहले वहां भूस्खलन की खबर टीवी पर देखी थी। उसके दिल में मानो कोई भूचाल आ गया था। वो कितना रोई थी। इस वक्त वो गांव का नजारा देख रही थी। सब कुछ बदला बदला लग रहा था। कमरे में सामान रखकर कुसुम रिसेप्शन में आई। मैनेजर ने बताया कि शाम को राग पहाड़ी उत्सव की टीम उससे मिलने आएगी। कुसुम ने अपनी शॉल ओढ़ी, झरने के पास टहलने गई। बचपन की सारी खूबसूरत यादें पलकों पर आरोहित होने लगी। बचपन का हर पल संगीता आंटी और सौरभ की सुखद स्मृति से सजा था। दिल्ली जाने के बाद पापा के कहने पर उसने सौरभ से संपर्क तोड़ दिया था। न अपना पता या नंबर उसे दिया, न कभी उसे कॉल किया। लेकिन जब टीवी पर लैंडस्लाइड की खबर आई थी तो लैंडलाइन पर उसने फौरन फोन किया था, लेकिन पता चला कि वह नंबर अस्तित्व में नहीं है। कुसुम की नजर इस वक्त देवदार के उस पेड़ पर पड़ी जिस पर सौरभ ने लिखा था, जब तक रहेगा धरती के संग नभ, तब तक साथ रहेगा कुसुम संग सौरभ। सौरभ को याद करके इस कदर सस्कियां भरने लगी कि पीछे से जब किसी ने उसका नाम पुकारा, उसे सुनाई नहीं दिया। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। कुसुम ने मुड़कर देखा तो लंबे कद का एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। कुसुम की आंखों में आंसुओं का सैलाब था, ठीक से उसको देख नहीं पाई। उस नौजवान ने अपने रुमाल से कुसुम के आंसू पोछे, रूहानी आवाज में बोला, चाहे जितनी तेज हो हालात की आंधी, कुसुम कभी आंसू नहीं बहाती। बुत से बैठी कुसुम टकटकी लगाकर उसे देख रही थी। होने से पूछा, सौरभ?

जी हाँ मैडम जी, राग पहाड़ी उत्सव में आपका स्वागत है। इस बार आंसुओं की धारा खुशी की थी, गले से आवाज निकल नहीं रही थी, बस अपनी उंगलियां सौरभ के चेहरे पर घुमा रही थी। सिसकी भरने के बाद गला साफ किया और पूछा, ये कोई ख्वाब तो नहीं है? 9 साल का अंतराल बुरा सपना जरूर था, वह बीत गया है कुसुम। अब तुम और मैं आमने सामने हैं, यह इस लम्हे की हकीकत है। सौरभ, तो इस उत्सव में भाग लेने के लिए तुमने मुझे न्योता भेजा है? देश की उभरती हुई गायिका का स्थानीय रेडियो के क्रिएटिव हेड सौरभ पराशर की ओर से हार्दिक स्वागत है। सौरभ, तुम्हें मेरा मेल आईडी कैसे मिला? 9 साल से शिद्दत से तुम्हें तलाशता रहा, अचानक टीवी पर रियलिटी शो में तुम्हें देखा, तुम्हें फॉलो करता रहा। तो फिर तुमने सोशल मीडिया पर मेरे बारे में भी, तो मुझे अपनी कुसुम पर यकीन है, आदर्शवादी पापा की सिद्धांतवती बेटी कुसुम शो छोड़ सकती है पर समझौता नहीं कर सकती। कुसुम की आंखें फिर से भर आई, सौरभ ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम्हें पल पल याद करने का यही सिला है, लंबी तपस्या के बाद शुभ फल मुझे मिला है। सौरभ, हालात ऐसे थे कि मैं तुम्हें संपर्क नहीं कर पाई, मगर बताओ संगीता आंटी कैसी है? और अंकल, माँ तुम्हें देखने के लिए बेताब है। पता है तुम्हें कुसुम, रेडियो स्टेशन की वे अब सीनियर प्रोग्राम प्रोड्यूसर है। अरे वाह, सीरियसली? तो मुझे बताओ कि ये नाम राग पहाड़ी उत्सव उन्हीं ने दिया होगा। ओ मैडम, सुनना चाहती हो तो सुनो, राग पहाड़ी उत्सव ये नाम उनके बेटे ने दिया है, यानी मैंने, क्योंकि तुम्हें ये राग बहुत पसंद है ना? कुसुम मुस्कुराकर बोली, ये राग तुम्हारे बगैर अधूरा था सौरभ। सौरभ ने कुसुम का हाथ अपने हाथों में लिया और फिर कुसुम ने अचानक पूछा, अच्छा बताओ अंकल कैसे हैं? उसने जवाब दिया, कुछ साल पहले यहां भूस्खलन हुआ था कुसुम, बहुत सारे मकान बह गए थे, पिताजी भी उस वक्त, ओ आई एम सो सॉरी, मगर पता है उस वक्त कुसुम माँ के साथ मैं रेडियो स्टेशन में था। कुसुम सौरभ से लिपट गई, भगवान की दया है कि तुम ठीक हो सौरभ, पता है उस वक्त मैंने टीवी पर यह खबर देखी थी, मैंने फोन भी लगाया था, मैं कितनी डर गई थी। कुसुम, याद है तुमसे मैंने वादा किया था, 1000 साल तक कुसुम और सौरभ साथ रहेंगे, वक्त के दरिया में बस 9 साल बह गए हैं, अभी तो सदियों का साथ बाकी है, राग पहाड़ी में तुम्हारी आवाज का गूंजना बाकी है, मेरे दिल के आंगन में तुम्हारा खिलखिलाना बाकी है, बसंत बहार में बगिया का महकना बाकी है।

थी कहानी राग पहाड़ी, आपको सुना रही थी शीतल शाह, और ये कहानी भी उन्हीं की लिखी हुई थी। परिकल्पना, निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेती की। तो अब मुझे इस कार्यक्रम से दीजिए विदा। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर ईमेल कीजिएगा fmgoldchannel@gmail.com पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्र पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाए।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा है और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। श्री सिंह ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हित की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में कल ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार और रोजगार तथा कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में कल सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत में क्यूबा के राजदूत जुआन कार्लोस मार्सन एगुलेरा ने कल नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। ये दौरा संग्रहालय के आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ जिसमें उनके साथ प्रथम सचिव और क्यूबा के अन्य राजनयिक भी मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल ने संग्रहालय के विभिन्न दीर्घाओं का भ्रमण किया जिसमें स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्रियों की विरासत और उनके योगदान को प्रदर्शित किया गया है। श्री एगुलेरा ने कहा कि भारत और क्यूबा के बीच 66 वर्षों से अधिक समय से राजनयिक और द्विपक्षीय संबंध हैं। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की तिरसा जौहरी और गायत्री गोपीचंद को चीन की ल्यू सेंग सू और टेन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारत की जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। भारतीय टीम FIH हॉकी पुरुष विश्व कप में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से 1-3 से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। वेगनर हॉकी स्टेडियम में भारत को अंतिम चार में पहुंचने के लिए यह मुकाबला हर हाल में जीतना था। अब भारत सोमवार को अर्जेंटीना के खिलाफ अपने दूसरे दौर का अंतिम और औपचारिक मुकाबला खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Mehwash Fatima. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed National Office Bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi yesterday. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's national vice presidents and general secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed national office bearers. The BJP president said that the BJP team is committed to working with full dedication and devotion for expanding the base of BJP to realize the resolve of Prime Minister Narendra Modi to make India a developed nation. Mr. Nitin Naveen informed that during the meeting, the BJP also passed a resolution regarding the honour and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In the resolution, the party has condemned and opposed the decision taken by the Congress Working Committee on the 19th of this month to reaffirm its 1937 resolution restricting the singing of Vande Mataram to its first two stanzas at Congress programmes. The party also resolved to uphold the honour, dignity, legacy and national status of the complete Vande Mataram as the national song of India, as an immortal symbol of the country's national consciousness and freedom struggle. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar yesterday held a telephonic conversation with his Greek counterpart Georgios Gerapetridis. In a social media post, Dr. Jaishankar said that during the conversation, the two sides discussed current geopolitical developments and agreed to remain in touch. National Testing Agency NTA has issued a show cause notice to Messrs. Adequity Courier Technologies Private Limited for lapses in the conduct of the All India Ayush Postgraduate Entrance Test AIA PGET examination at a centre in Jaipur. NTA has informed that pending resolution of the notice, the empanelment of Messrs. Adequity with the agency stands suspended with immediate effect. Earlier, due to a power supply failure at a centre in Jaipur, 49 candidates could not complete the examination. NTA has informed that the re-examination of AIA PGET for affected students will be conducted on 1st of next month at 10 a.m. in Rajasthan College of Engineering for Women, Jaipur. It added that further details will be shared through the revised admit card issued for such candidates. The agency has expressed regret for the inconvenience caused. The AIA PGET examination was conducted yesterday in two shifts across nearly 205 centres. Of 51,482 registered candidates, 49,867 appeared in the examination. The resumption of public transport along the Imphal-Dimapur-Guwahati route via National Highway 2 continued smoothly on its second day, with more than 200 passengers leaving Imphal in a fleet of four buses and six winger vehicles yesterday. The vehicles departed from the interstate bus terminal at Khuman Lampak in Imphal at around 10 a.m. this morning. In a related development, the 125 passengers who had embarked on the inaugural journey safely reached Guwahati yesterday. The Indian men's hockey team conceded two goals in the final quarter despite a flawless first half to lose 1-3 against reigning Olympic champions, the Netherlands, and crash out of the semi-final race of the ongoing FIH World Cup at Amstelveen, Netherlands yesterday. India needed to win this match at all costs to reach the last four stage, but despite a good start, the team committed mistakes in the final 10 minutes to get knocked out of podium contention. Captain Harmanpreet Singh scored the only goal for India in the 52nd minute from a penalty corner. India's Teresa Jolly and Gayatri Gopichand have etched their names in history by clinching the bronze medal at the BWF Badminton World Championships. They have become only the second Indian women's doubles pair to win a World Championship medal, following in the footsteps of Jola Gutta and Ashwini Ponappa. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर बंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकंड। गीत सुहानी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज़ के साथ।

महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत, फिल्म का नाम गीत गाया पत्थरों ने, संगीत था रामलाल का और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। ये फिल्म आई थी 1964 में और इस फिल्म का निर्माण किया था वी शांताराम ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी जितेंद्र और राजश्री ने और ये इन दोनों की पहली फिल्म थी। अगला गीत रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

फिल्म का नाम लव मैरिज और आवाज़ें थी लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की, संगीत शंकर जयकिशन का और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। ये फिल्म आई थी 1959 में और इस फिल्म को निर्देशित किया था सुबोध मुखर्जी ने। इस फिल्म में

चौदहवीं का चांद फिल्म से रफ़ी साहब की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये खूबसूरत गीत। संगीत था रवि का और गीतकार थे शकील बदायूनी साहब। ये फिल्म आई थी 1960 में। इस फिल्म का निर्देशन किया था मोहम्मद सादिक ने और निर्माण किया था गुरुदत्त साहब ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी गुरुदत्त, वहीदा रहमान और रहमान ने। 1959 की फिल्म कागज़ के फूल की असफलता के बाद गुरुदत्त साहब के लिए ये फिल्म कामयाब फिल्म रही और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी ये फिल्म। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म पतंग से। इस गीत का संगीत है चित्रगुप्त का और गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनल।

चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

101 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफ़र मंजू। वक्त हुआ है 1:40 और 2 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में।

फिल्म उजाला से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में सुना आपने ये गीत। संगीत था शंकर जयकिशन का और ये फिल्म आई थी 1959 में और ये एक रोमांटिक क्राइम फिल्म थी जिसमें शमी कपूर, माला सिन्हा, राजकुमार, लीला चिटनिस और टुनटुन ने अभिनय किया था। इस फिल्म को लिखा और निर्देशित

0: किया था नरेश सहगल ने, और इस फिल्म का संदेश यही था कि ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। और अगला गीत लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ में।
1: वो जब याद आए

फिल्म का नाम पारसमणि और आवाज़ थी रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीतकार असद भोपाली। ये फिल्म 1963 में प्रदर्शित हुई थी और ये एक संगीतमय फिल्म थी। इस फिल्म का निर्देशन किया था बाबू भाई मिस्त्री ने और ये फिल्म आर्थिक रूप से सफल रही थी और इस फिल्म को मायामणि शीर्षक से 1964 में तमिल में रिलीज किया गया था। अगला गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे और आशा जी की आवाज़ में फिल्म उस्तादों के उस्ताद से।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नबीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाए।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक बैठक कर देश के पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकननेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा है और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान ये बात कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल ग्रीक के विदेश मंत्री जॉर्ज गैरा पेट्रिटिस से टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने मौजूदा भू राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की। दोनों ने एक दूसरे के संपर्क में बने रहने पर भी सहमति जताई। उन्होंने मिस्र के विदेश मंत्री बदर अब्दिलट्टी से भी टेलीफोन पर बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा की। पनामा के झंडे वाला एक मालवाहक पोत कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। पोत पर चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा ओडिशा के तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर हुआ। मालवाहक पोत एमवी ओशियन विनर पर सवार चालक दल के सदस्यों में से 20 चीनी, 3 म्यांमार और 1 बांग्लादेशी नागरिक है। ये पोत ओडिशा से 72,100 मीट्रिक टन लौह आयस्क लेकर सिंगापुर जा रहा था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। भारत में क्यूबा के राजदूत जुआन कार्लोस मार्सन एगुइलेरा ने कल नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। ये दौरा संग्रहालय के आउटरीच कार्यक्रम की अंतर्गत हुआ जिसमें उनके साथ प्रथम सचिव और क्यूबा के अन्य राजनयिक भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने संग्रहालय की विभिन्न दीर्घाओं का भ्रमण किया जिसमें स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्रियों की विरासत और उनके योगदान को प्रदर्शित किया गया है। श्री एगुवेरा ने कहा कि भारत और क्यूबा के बीच 66 वर्षों से अधिक समय से राजनयिक और द्विपक्षीय संबंध हैं। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपी चंद को चीन की लियू शेंग शू और टेन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित किया। भारतीय टीम FIH हॉकी पुरुष विश्व कप के मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से 1-3 से हार कर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। वैगनर हॉकी स्टेडियम में भारत को अंतिम 4 में पहुंचने के लिए यह मुकाबला हर हाल में जीतना था। अब भारत सोमवार को अर्जेंटीना के खिलाफ अपने दूसरे दौर का अंतिम और औपचारिक मुकाबला खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the BJP at the party.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ

तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर। जब सूरज डूब रहा होगा और चांद निकलने को होगा, हम मिलेंगे समंदर किनारे, किसी हल्के से सुनहरे थोड़े धुंधलाए से रेत के घर में। ये दुनिया कभी इतनी बड़ी नहीं हो सकेगी कि तुम आ ना सको, और ना ही हो पाएगी इतनी छोटी कि हमें मिलने की जगह ना दे सके। हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफ़र पंजू। वक्त हुआ है 2:12:03। रात सुरमई प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज़ के साथ।

प्यार में ऐसा ही होता है, ना घर चाहिए होता है ना ही दुनियादारी चाहिए होती है, बस साथी की एक नज़र ही काफ़ी होती है। और वैसे भी कहा जाता है कि आशियाने तो ज़मीन पर बनते हैं, दीवानों की दुनिया तो दिल से बनती है, जहाँ पर ना शर्तों की जगह होती है ना ही कोई शिकायत होती है, बस एक साथ होता है जो ताउम्र साथ चलता है। अगला गीत आप ही के लिए।

तुमने जब पहली बार मेरा हाथ थामा था, तो मैंने ये जाना कि दो शहरों की दूरी सिर्फ हाथों को थाम लेने भर से कम हो जाती है।

छोड़कर जिसको गए थे आप कोई और था, छोड़कर जिसको गए थे आप कोई और था, अब मैं कोई और हूँ, वापस तो आकर देखिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

मुझे खींच ही लेती है हर बार उसकी मोहब्बत, मुझे खींच ही लेती है हर बार उसकी मोहब्बत, वरना बहुत बार मिली हूँ आखिरी बार उससे। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, 101 MHz पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी रात की हम सफ़र मंजू। 2:38 हुए हैं और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। अगला गीत आप ही के लिए।

0: चले।
1: वैसे ये बात तो सच है कि प्यार का जहाँ बसाने के लिए बहुत बड़ी जगह की आवश्यकता नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती। प्यार और विश्वास होना चाहिए और तैयार हो जाती है एक अलग दुनिया। यकीन ना हो तो करके देखिए। अगला गीत आप ही के लिए।

वाकई मौसम मस्ताना तो है पर रास्ता बिल्कुल भी अनजाना नहीं है, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ यानी कि अपनी रात की हम सफ़र के साथ। और मेरे साथ जुड़ने का मतलब है दिल से दिल तक जुड़ना। अगला गीत आप ही के लिए।

अगर बात सपनों तक पहुंच गई है तो प्यार का मामला काफ़ी आगे निकल चुका है, और ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्यार का इजहार कर लिया जाए। अब जब मौसम रोमांटिक हो चला है तो फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और रोमांटिक गीत सुन लिया जाए।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी रूपा धवन। मुझे यानी अपनी रात की हम सफ़र मंजू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इनके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाए।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 केंद्रों के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके बाद GRSE भवन में MSME के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बगान सुपर जायंट्स के बीच फुटबॉल ड्यूरेंट कप का फाइनल मुकाबला भी देखेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान श्री जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे, साथ ही क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। पनामा के झंडे वाला एक मालवाहक पोत कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। पोत पर चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर हुआ। मालवाहक पोत MV ओशियन विनर पर सवार चालक दल के सदस्यों में 20 चीनी, 3 म्यांमा और 1 बांग्लादेशी नागरिक है। ये पोत ओडिशा से 72,100 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर सिंगापुर जा रहा था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में कल सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दवा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू सेंग सू और टेन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय टीम FIH हॉकी पुरुष विश्व कप में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से 1-3 से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed National Office Bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi yesterday. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's National Vice Presidents and General Secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed National Office Bearers. Mr. Nitin Naveen informed that during the meeting, the BJP also passed a resolution regarding

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां वक्त हुआ है इस वक्त 3:11:24। आप हैं हमराही कार्यक्रम में रूपा धवन के साथ, और आज हम कौन से गीत सुनेंगे और क्या उनकी भाषा होगी, क्या उनकी भावनाएं होंगी जानेंगे। लेकिन इस गीत के बाद शायद इस गीत से ही आपको कुछ पता चल जाए कि आज हम किस शब्द पर या किस भाव पर आपको गीत सुनाएंगे हमराही कार्यक्रम में। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और लीजिए, आ रहा है पहला गीत आपकी ओर आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार।

दिल की जमी पर जब यादों की फसल बोगे, दिल की जमी पर जब यादों की फसल बोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना ही रोगे। दिल पे बहुत मुश्किल है दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। किसी और को क्यों देखें ये आंखें थी मेरी, जब दिल पर लिखा है नाम सिर्फ तेरा। जी हाँ, आपने सही पहचाना। आज हम हमराही में आपको गीत सुनवाएंगे दिल शब्द के ऊपर, दिल की गहराई और जज्बात। दोस्तों, कोई भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि दिल की गहराई क्या है, दिल के जज्बात क्या हैं। इनमें जितना आप उतरेंगे उतना ही आप डूबते चले जाएंगे। रात की इस बेहद खूबसूरत खामोशी और इस खामोश सफ़र के साथ ही आप और हम सुन रहे हैं दिल की धड़कनों को, कार्यक्रम हमराही के ज़रिए। रात के इस पहर में जब शहर की हलचल थम जाती है, तब एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा बातें करता है, दिल। रात के सन्नाटे को चीरती हुई दिल की धड़कनों के साथ आज हमराही में सुनेंगे दिल शब्द पर फिल्मी युगल गीतों को, जिन्होंने दो दिलों को जोड़ा है और शायद दो दिलों के मिलने का कुछ गहरी वजह भी हो सकती है। तभी तो दो दिलों की मुलाकात होती है, और जब दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं तब एक दूसरे को दोनों तड़प तड़प कर कुछ इस तरह से पुकारते हैं,

ये दिल कितना पागल है, हर पल तेरे ही ख्वाब ये बुनता है, रहता है मेरे सीने में, धड़कन पर तेरी ही सुनता है।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

तो लीजिए जनाब, आपकी और हमारी मुलाकात का सिलसिला बरकरार है, जारी है आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। हमराही कार्यक्रम सुन रहे हैं आप अपनी ही दोस्त रूपा के साथ, और आज

जी हाँ, तस्वीर जब दिलों पर उभरती है तो अपनी अजीज को कुछ इसी तरह से याद करती है।

अगर बात करें नज़र की, तो नज़रें क्या कहती हैं? दिल की नज़र जब दिल से मिलती है तब क्या असर होता है, आइए जानते हैं फिल्म अनाड़ी का गीत सुनकर, लता जी और मुकेश साहब का स्वर।

साथियों कहते हैं दिल बहुत ज़िद्दी होता है, पर जब इसे किसी से मोहब्बत होती है तो ये बहुत मासूम हो जाता है। इस रात की गहराई में छुपाए हुए दर्द जज्बात भी बाहर आने लगते हैं, और ऐसे में जब किसी की याद आए तब रफ़ी साहब, मुकेश साहब, महेंद्र जी और लता जी की आवाज़ों से सजा हुआ जब गीत सुने हम, तो इससे बेहतर तो कोई मरहम हो ही नहीं सकता। संगम फिल्म का भी गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं मुकेश साहब, महेंद्र जी और लता जी के स्वर में। ये गीत आप सब के लिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

साथियों, रात के इस पहर में दिल अक्सर पुरानी यादों के पन्ने पलटता है, जिन्हें हम टूटकर मोहब्बत करते हैं। उनके बिना जब रहना पड़ता है तो दिल संभाले नहीं संभलता। कुछ ऐसा ही जज्बा है इस प्यारे से गीत में, जिसे हम शामिल कर रहे हैं फिल्म रात से। लता जी और मुकेश साहब की आवाज़ से सजा ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए।

जनाब, समय बीतता है, जमाना बदलता है, लेकिन दिल की भाषा हमेशा एक सी रहती है। चाहे 70 का दौर हो या आज का ज़माना, जब दो दिल आपस में बातें करते हैं तो धड़कनें संगीत बन जाती है। अगला गीत दिल की पुकार के नाम, दो रास्ते फिल्म का ये गीत आपके लिए, रफ़ी साहब और लता जी के स्वर में।

आइए चलते हैं अब रेट्रो दौर में, जहां मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले के उस क्लासिक युगल गीत की तरफ जिसने दिल चुराने का सभी को हुनर सिखाया। यादों की बारात का ये गीत आशा भोसले और रफ़ी साहब के स्वर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नबीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी का एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाएगा।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 केंद्रों के भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके बाद GRSE भवन में MSME के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री युवा भारतीय क्रीडांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का फाइनल मुकाबला भी देखेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान श्री जयशंकर भारत और रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉ. जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे, साथ ही क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। पनामा के झंडे वाला एक मालवाहक पोत कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। पोत पर चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर हुआ। मालवाहक पोत MV ओशियन विनर पर सवार चालक दल के सदस्यों में 20 चीनी, 3 म्यांमार और 1 बांग्लादेश का नागरिक है। यह पोत ओडिशा से 72,100 मीट्रिक टन लौह आयस्क लेकर सिंगापुर जा रहा था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय तटरक्षक और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। महाराष्ट्र और जर्मनी के हिस्से राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में कल सहयाद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू सेंग सू और टेन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया। इस बीच कोच पुलेला गोपीचंद ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में शानदार उपलब्धि के लिए दोनों खिलाड़ियों की प्रशंसा की और कहा कि पिछले कुछ वर्षों में इस जोड़ी ने एक साथ खेलते हुए काफी प्रगति की है। भारतीय पुरुष टीम हॉकी विश्व कप में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से 1-3 से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। वेनेगर हॉकी स्टेडियम में भारत को अंतिम 4 में पहुंचने के लिए यह मुकाबला हर हाल में जीतना था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महबश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi yesterday. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's national vice presidents and general secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives, aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed national office bearers. Mr. Nitin Naveen informed that during the meeting, the BJP also passed a resolution regarding the honour and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In the resolution, the party has condemned and opposed the decision taken by the Congress Working Committee on the 19th of this month to reaffirm its 1937 resolution restricting the singing of Vande Mataram to its first 2 stanzas at Congress programs. The party also resolved to uphold the honour, dignity, legacy and national status of the complete Vande Mataram as the national song of India, as an immortal symbol of the country's national consciousness and freedom struggle. Raksha Mantri Rajnath Singh will participate in the Bhumi Pujan ceremony in Kolkata.

जब आप दुखी होते हैं तो जीवन आप पर हंसता है, और जब आप खुश होते हैं तो जीवन आप पर मुस्कुराता है, लेकिन जब आप दूसरों को खुश करते हैं तो जीवन आपको सलाम करता है। जी हाँ, सलाम करते हैं हम भी, और नमस्कार करते हैं आप सभी को आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमारे जुड़े सभी श्रोताओं को, हमारे सभी साथियों को, और स्वागत करते हैं आप सभी का तहे दिल से। ये समय ऐसा समय है जब रात तो बीतने को है और दिन की जो उजली लालिमा है वो आने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब चंदा अपने रास्ते पर जाए और सूरज अपने रास्ते पर आए, एक सुनहरे रथ पर तैयार होकर। तो इसी समय को मद्देनजर रखते हुए हम और आप कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अरुणिमा की। अरुणिमा, जो सुनहरी किरणों से सजा रथ आपके लिए तैयार रहता है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, रूपा है आपके साथ और आप हैं हमारे साथ। तो इसी तरह जुड़ी रहिए, बने रहिए, बातें होंगी ढेर सारी और गीत भी हम सुनेंगे ढेर सारे।

साथियों, सकारात्मक सोच आगे बढ़ने का एक बेहद प्रेरणादायी सबब बन जाती है। जब कुछ नहीं सोचता तब हमारे साथ हमारे सकारात्मक विचार चलते हैं। अरुणिमा में सकारात्मक विचारों के साथ सुनेंगे कुछ चुनिंदा गीतों को आपके साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। जाली नोट फिल्म से ये गीत आप सभी के लिए।

जिंदगी में मुश्किलें हमारा इम्तिहान लेने आती हैं, हमारी राहें रोकने नहीं आती, क्योंकि हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और ताकत से परिचित नहीं होते। पर जब हमें परेशानियां घेरती हैं, तब अपने भीतर छुपी ताकत से हम परिचित होते हैं। इसीलिए तो किसी ने खूब कहा है कि हमें इम्तिहान से घबराना नहीं है, बल्कि हंसकर हर तूफान का सामना करना है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है इस वक्त 4:33 आप हैं अरुणिमा में अपनी ही दोस्त रूपा के साथ। तो दोस्तों, मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जब जिंदगी है, परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, तो क्यों ना जिंदगी को हंसते हंसते बिताया जाए और गाते गुनगुनाते गीतों के साथ इस सफर को और भी मजबूत बनाया जाए, खुद को भी और दूसरों को भी जो हमारे साथ रहते हैं या हमारे आसपास रहते हैं।

अपनी हार से जब हम सबक लेते हैं तो हर गलती हमारे लिए एक खाली पन्ना लेकर आती है। उस पन्ने पर हम एक नई इबारत खड़ी कर सकते हैं, यानी जो गलतियां हमने की उनसे हम सबक लेकर एक नई शुरुआत भी तो कर सकते हैं। तो क्यों ना इन गलतियों से हम आज ही सबक लें और आज ही हम एक नई शुरुआत करें।

और यकीन मानिए, जब अपनी गलतियों से हम सबक लेकर एक नई शुरुआत करेंगे तो हमारी सफलता चारों तरफ अपनी गूंज सुनाई देगी, हमारी सफलता चारों तरफ अपना शोर मचा देगी। और ये ऐसा शोर होगा जब हर तरफ से हमारे लिए तारीफ हो रही होगी, हमारा प्रोत्साहन हो रहा होगा। गिरते को तो सभी गिराते हैं, लेकिन जो गिरकर उठता है उसको कोई कोई सराहता है और वही पहचान दुनिया में बनाता है। हमारा जीवन और सुख दुख धूप और छांव की तरह हमारे साथ साथ चलते हैं। आशा और निराशा का नाम भी जिंदगी है। इसे गम के सागर में डुबोने की बजाय हमें छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाना चाहिए। और जब हम ऐसा करने लगेंगे तो देखिएगा जिंदगी कितनी हसीन लगेगी और ये बहारें और भी हमारे जीवन के साथ जुड़ती चली जाएंगी।

रात कितनी भी गहरी हो, भोर होने से रोक नहीं सकती। रुकावटें कितनी भी हों, तेरी राह रोक नहीं सकती। पंख समेट कर बैठना छोड़, खुले आसमान में उड़ना सीख। तो खुद अपनी तकदीर है, हर गिरते कदम से उठना सीख। जी हाँ, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि हमें हर गलती से एक सबक लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते रहता है, और उसी हिम्मत और जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि ये जीवन है और जीवन सुख दुख धूप और छांव का खेल है। आप जुड़े हुए हैं अरुणिमा में अपनी दोस्त रूपा के साथ, और आप सुन रहे हैं अरुणिमा कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

हमारे छोटे छोटे प्रयास चाहे वो धीमी गति से हों, रुक जाने से तो कहीं बेहतर है। हर छोटा कदम आपको मंजिल के करीब ले जाता है। अरुणिमा का सफर यहीं तक। रूपा को अनुमति दीजिए, आपसे थोड़ी देर में फिर से मुलाकात होगी भोर सुहानी में। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, तब तक के लिए विदा लेती है रूपा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठकें की। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाएगा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कल एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 केंद्रों के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे।

0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इसके बाद जेआरएसई भवन में एमएसएमई के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री युवा भारती क्रीड़ांगण में ईस्ट बंगाल एफसी और मोहन बागान सुपर ज्वाइंट्स के बीच डूरंड कप का फाइनल मुकाबला भी देखेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान श्री जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुंबई में कल सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस रायन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। पनामा ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीनी नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। अधिकारियों ने बताया कि उड़ीसा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर से यह दुर्घटना हुई। जहाज एमवी ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमार के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक था। जहाज उड़ीसा से करीब 72,000 मेट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर रवाना हुआ था। मानवाधिकार संगठन बलूच यकजहती कमेटी ने बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में नागरिकों पर पाकिस्तानी बलों द्वारा किए गए ड्रोन हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में 4 नागरिकों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए। संगठन ने इस घटना को राज्य प्रायोजित आतंकवाद करार दिया। भीषण शक्तिशाली तूफान मोक हवाई की ओर बढ़ रहा है। इससे बिग आइलैंड में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। यहां के लोग अभी भी तूफान लाला के कारण आई भीषण बाढ़ और तेज हवाओं से हुए नुकसान से जूझ रहे हैं। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू शेंगशू और टैंग निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष टीम हॉकी विश्व कप में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से 1-3 से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। वैगनर हॉकी स्टेडियम में भारत को अंतिम 4 में पहुंचने के लिए यह मुकाबला हर हाल में जीतना जरूरी था। भारत सोमवार को अर्जेंटीना के खिलाफ अपने दूसरे दौर का अंतिम और औपचारिक मुकाबला खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed National Office Bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi yesterday. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's National Vice Presidents and General Secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed National Office Bearers. Mr. Nitin Naveen informed that during the meeting, the BJP also passed a resolution regarding the honour and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In the resolution, the party has condemned and unequivocally opposed the decision taken by the Congress Working Committee on the 19th of this month to reaffirm its 1937 resolution restricting the singing of Vande Mataram to its first 2 stanzas at Congress programs. The party also resolved to uphold the honour, dignity, legacy and national status of the complete Vande Mataram as the national song of India, as an immortal symbol of the country's national consciousness and freedom struggle. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will undertake a 2-day official visit to Russia beginning today. The minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. During the visit, Dr. Jaishankar will also meet Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and exchange perspectives on regional and global issues. Raksha Mantri Rajnath Singh will participate in the Bhumi Pujan ceremony in Kolkata today for 5 facilities of Garden Reach Shipbuilders and Engineers GRSE Limited and Yantra India Limited at Garden Reach. West Bengal Chief Minister

साथियों, सपनों की उड़ान आसमान तक लेकर तो जाएगी, हर मेहनत की रोशनी हर अंधेरे को मिटाएगी। हर सुबह विश्वास जगाकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो मेहनत ही हमें मंजिल दिलाएगी। जी हाँ, मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद यकीनन हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाता तो है, साथ ही हमें एक नई दिशा भी प्रदान करता है। स्वागत है आप सभी का भोर सुहानी कार्यक्रम में, और ये कार्यक्रम जुड़ा है एक नई ऊर्जा के साथ, आपके साथ, जिसे आप सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो जब हमें नई दिशा प्रदान करता ही है ईश्वर, तो क्यों ना इस खूबसूरत और बेहतरीन सुबह में भी आज हम स्मरण करें उस परमात्मा का जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया। भोर सुहानी में आपके साथ हूँ मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन।

वाकई इस सृष्टि का निर्माण करने वाले परमात्मा का जब भजन सुनो तो आनंद ही आ जाता है। ऐसा लगता है कि आज का दिन तो हमारा बन ही गया। दोस्तों, सुबह का ये खूबसूरत पल नई भोर का संदेश तो लेकर आया ही है, साथ ही अपने दिलों को एक नई ऊर्जा और उमंगों से भी भरने के लिए आया है। ये नया सवेरा हमारे सपनों को साकार करने आया है, तो क्यों ना दोनों हाथों से दिल खोल कर इसका स्वागत करें और इस शांत और पावन समय में अपने मन को थोड़ी सी शांति और एक हल्की सी मुस्कान दें। लीजिए एक लंबी गहरी सांस और हमारे साथ महसूस कीजिए इस नई सुबह की ताजगी को।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे